ओम शांति। हम सभी परमात्मा पालना में पलने वाली बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। सोच लें, हमें जन्म भी भगवान ने दिया, पालना भी उसके मिली, भोजन भी उसने खिलाया, हमारी जीवन नैया का खिवैया भी वही बन गया और आकर हमारा सच्चा साथी बना, खुदा दोस्त बना। हम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनकी केयर स्वयं भगवान करते हैं। तो आइए हम इस प्रभु पालना का रिटर्न दें जिसने आकर हमें सच्चा ज्ञान दिया, जिसने हमारी जीवन रूपी बगिया को प्यार से सींचा, जिसने हमारे जीवन को सुगंधित पुष्प बनाया, जिसने हमें संसार में उपराम रहना सिखाया। ऐसे बाप की प्यार की पालना का रिटर्न हम सहज योगी बन कर देंगे। परमात्मा प्यार की पालना का रिटर्न है ही सहज योगी जीवन। हमारा जीवन ही योगी जीवन है, हमारा जीवन सहज योगी जीवन बन जाए, यही संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप है। और ये उनका ही बनता है जो स्वराज्य अधिकारी बनकर रहते हैं, जिन्होंने योग की सभी विधियों को सहज रूप से जान लिया है और जो कर्म करते हुए योग का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते ये योग बिल्कुल सहज और नेचुरल बन जाता है। और हमें याद रखना है, जो सहज योगी जीवन जीते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो हमें अपने जीवन को सहज भी बनाना है, बहुत सरल, और सहज योगी भी बनना है। सहज योगी वही बन जाते हैं जिनका जीवन सहज होता है, जो सरल चित्त होते हैं, जो इजी गोइंग नेचर वाले होते हैं, जिनका स्वभाव संपूर्ण रूप से सरल होता है। हम अपने जीवन को सरल बनाएं। कर्म करते हुए सहज भाव से जीना सीखें। कई लोग कर्म भी ऐसे करते हैं कि हर कर्म को टेंशन बना लेते हैं। थोड़ा समय है, ज्यादा काम है, जल्दी करना है, मन में एक टेंशन की भावना पैदा कर लेते हैं। इससे कर्म का सुख समाप्त हो जाता है, कर्म की सफलता पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम सहज भाव से कर्म करें, उसके परिणाम को भी सहज भाव से स्वीकार करें। तो आइए हम सहज योगी जीवन बनाएं, चलते फिरते अभ्यास करें, बाबा की शक्तियों की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मानो ऊपर से एक फाउंटेन मुझ पर गिर रहा है। हम चलते फिरते इस फाउंटेन के नीचे हैं, हम परमात्मा शक्तियों के नीचे निरंतर स्नान कर रहे हैं। हम सहज भाव से इस संकल्प को बढ़ा दें कि स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, उसकी हजार भुजाओं की छत्र छाया हमारे सिर पर है। हम चलते फिरते और काम करते इस अभ्यास को बढ़ा दें कि मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ और सभी आत्माएं अपने अपने शरीरों में बैठकर अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये हो जाएगा सहज योगी जीवन, नेचुरल योग। आवश्यकता है केवल बार बार अभ्यास करने की। अभ्यास किसी भी चीज को सरल कर देता है और हमारा राजयोग का अभ्यास हमारे इस योग को बिल्कुल जीवन का आनंद बना देता है। तो आज सारा दिन हम ये सब प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाबा का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैंने इस देह में प्रवेश किया है और सभी आत्माएं हैं, बिल्कुल नेचुरल रूप देंगे, बाबा हमारे साथ है।
ये बहुत सुंदर स्मृति है कि सर्वशक्तिवान स्वयं हमारे साथ है। तो आइए इन सभी चीजों का आज दिन भर अभ्यास करें और ये चारों अभ्यास हर घंटे में एक बार अवश्य सुंदर रूप से कर लेंगे। बात केवल स्मृति की है तो प्रभु पालना का रिटर्न हम दे पाएंगे। बाबा ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। आइए संसार में योगी बनकर विचरण करें। योगी माना चलता फिरता लाइट हाउस। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। हम हमेशा की तरह एक बहुत सुंदर सुविचार के द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सुनिए आज का सुविचार क्या है। किसी ने बहुत खूब कहा है, कहते हैं कि जितनी शक्ति विश्वास में होती है उतनी ही शक्ति अंधविश्वास में भी होती है। लेकिन विश्वास और अंधविश्वास के बीच का मुख्य अंतर केवल एक ही है, वो कौन सा? विश्वास हमारे लिए मार्गदर्शक बनता है, जबकि अंधविश्वास हमें पथ भ्रष्ट करता है। कितनी सुंदर बात है दोस्तों। और आज तक हमने कई बार इसका अनुभव भी किया है। जब हम विश्वास रखते हैं, और कोई भी कार्य हो, लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें एक शक्ति भी प्राप्त होती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन बिना किसी जांच परख किए अंधविश्वास जब करते हैं, तब मुझे लगता है कि हमारे अंदर की शक्ति तो खत्म होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे कि पथभ्रष्ट होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपने हर कार्य में विश्वास रखिए। आप जिस परमात्मा को मानते हैं उसमें भी जरूर विश्वास रखिए। विश्वास से हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अमृतधारा जिसमें हम अलग चिंतन और एक नया दौर जिसको कहेंगे, जो हम अपने ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं, उस पर बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। आप भी सदा हमारे साथ शामिल होते हैं। तो चलिए, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। सबसे पहले हम करते हैं उनका स्वागत। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोतागण जो है वह हमारा कार्यक्रम बड़ी रुचि से सुनते हैं। अभी देखिए, विश्वास और अंधविश्वास, ये विश्वास क्यों है? क्योंकि यहाँ से जैसे प्रसारण होता है, कार्यक्रम का प्रसारण होता है और लोग ट्यून करके हमारे श्रोतागण सुनते हैं। खाली अगर सुनते थे तो हमें पता नहीं लगता था, लेकिन जब उनकी फीडबैक आती है तब पता चलता है कि वो बड़े खुशी से और रुचि से सुनते हैं। तो विश्वास और अंधविश्वास में थोड़ी सी एक सूक्ष्म रेखा है। जब हम आंखें खोल के, ज्ञान चक्षु खोल के किसी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो उसे विश्वास कहते हैं। और दूसरा है अंधविश्वास। उसका शब्द का भावार्थ ही और शब्दार्थ ही काफी है, क्योंकि ये शब्द है अंधविश्वास। आंखें मूंद करके, आंखें बंद करके ऐसे ही किसी के ऊपर विश्वास रखना, ये बड़ा धोखे का काम है। ऐसे बहुत बार हमने देखे है, घटनाएं देखी है कि किसी के ऊपर कोई ऐसे फंसाता है, कोई आता है, अजनबी आता है और कुछ ना कुछ बहाने बनाता है और कहता है कि इसका मैं सोने का गहने है फ्री में देता हूँ, या कम कीमत में देता हूँ, सस्ते में देता हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। और फिर क्या होता है, कोई ना कोई उसके लालच में आता है और फिर फंस जाता है। अंधविश्वास जिसमें लालच है वो है अंधविश्वास, जिसमें स्वार्थ है वो है अंधविश्वास, और जिसमें परमार्थ है वो है विश्वास। और विश्वास इसलिए हमेशा कहते हैं कि आत्मविश्वास, आत्मा के ऊपर विश्वास, मैं खुद आत्मा हूँ, इसके ऊपर विश्वास जब होता है, निश्चय होता है, तो परमात्मा भी मिलता है और फंसने का चांस, धोखे का चांस कम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सच्ची बात है। जब हम मन बुद्धि की चक्षु को खोल कर किसी चीज को परख कर करने लगते हैं तो सुनिश्चित है कि हमारा विजय होना ही है। लेकिन जैसे कि अंधविश्वास किसी लालच में, किसी स्वार्थ में किया जाता है, और इसीलिए लालच बहुत बुरी बला है, ये भी कहा गया है। आजकल तो हम ऐसे बहुत सारे किस्से भी सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब सुनते हैं एक बहुत सुंदर कहानी। आप सब बड़े उत्सुक होंगे, तो चलिए, कहानी का नाम ही कितना सुंदर है, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता। दोस्तों, समय के लिए तो हमेशा ही हम जानते हैं कि सचमुच एक बार हाथ से निकला तो फिर बस पछतावा करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा कर्म किया है तो। इसीलिए समय भी एक धन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं कहानी। एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया था। उसके पास इतना धन था कि वह उस नगर को भी खरीद सकता था, किंतु उसने अपने संपूर्ण जीवन भर में कभी किसी की सहायता तक नहीं की थी। और इतना धन होने के उपरांत भी उसने अपने लिए भी उस धन का कभी उपयोग नहीं किया। न कभी अपनी पसंद के कपड़े पहने, न कभी अपने पसंद का भोजन किया या कोई अन्य इच्छा की पूर्ति तक नहीं की। बस केवल अपने जीवन में पैसे कमाने में ही वह व्यस्त रहा। और वह इतना व्यस्त एवं मस्त हो गया पैसे कमाने में, उसे आने वाले बुढ़ापे का पता भी नहीं चला। उम्र बढ़ती जा रही थी, उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, एक वह जीवन का पड़ाव आ गया, अंतिम पड़ाव पर वह पहुंच गया। दोस्तों सुनते हैं आगे कहानी क्या रंग लाती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, इस प्रकार उस व्यक्ति के जीवन का अंतिम दिन निकट आ गया और यमराज उसके प्राण लेने के लिए धरती पर आ गए। यमराज को देखकर वो व्यक्ति बहुत डर गया। यमराज ने उसको कहा, भाई अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ लेने के लिए आया हूं। जैसे ही ये शब्द सुने तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं है, मैं तो अभी तक अपने काम में व्यस्त था, अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का थोड़ा तो उपयोग करने के लिए समय दीजिए ना। यमराज ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, तुम्हारे जीवन के दिन अब समाप्त हो गए हैं और अब दिनों को और बढ़ाया जा नहीं सकता। दोस्तों, फिर क्या था, जैसे ही यमराज की ये बात सुनी उस व्यक्ति ने क्या कहा, प्रभु जी मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन मेरा ले लो, लेकिन कृपा करके मुझे जीवन का एक और वर्ष तो दे दो। यमराज ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई कैसे ये संभव हो सकता है। फिर गिड़गिड़ाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, आप चाहो तो मेरा 90% धन ले लो, बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे 1 महीने का समय दे दो ना। यमराज ने पुनः मना कर दिया। फिर व्यक्ति ने कहा, यमराज जी आप मेरा पूरा का पूरा धन ले लो, बस 1 घंटा मुझे दे दो। तब यमराज ने उन्हें समझाया, भाई बीते हुए समय को धन से कभी दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिस व्यक्ति को अपने धन पर अभिमान था उसे वह सब कुछ व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि अब उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ चीजों को कमाने में लगा दिया था। और देखिए ना, जो आज उसे जिंदगी का 1 घंटा भी खरीद कर नहीं मिला तो दुखी मन से वो अपनी मौत के लिए राजी हो गया। दोस्तों, आपने देखा ना, जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन जिस चीज को कमाने में लगा दिया था वो चीज उसके लिए 1 सेकंड का समय तक नहीं खरीद पाई। तो दोस्तों, हमारा ये जीवन कितना बहुमूल्य है, जैसे कि भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, उसको कभी पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन का हर पल खुशी से, आनंद से एंजॉय कीजिए और जितना हो सके परोपकार भी कीजिए, क्योंकि विनाशी धन सिर्फ उस समय तक ही चलता है जब तक आप जीवित हैं, लेकिन अविनाशी धन जो भी हमने पुण्य कर्म परोपकार जमा किए हैं, वो जो पूंजी है वो कितने दिनों तक चलती है, कितने जन्मों तक चलती है। कहते हैं कि 21 जन्म तक वो साथ चलता है, ये कभी ना भूलना और केवल धन के पीछे नहीं भागना। दोस्तों, सचमुच ऐसी कुछ कहानियां कभी कभी हमें फिर से एक बार कितना सुंदर संदेश देती है ना।
2: बिल्कुल भक्ति जी, कहानी तो बड़ी सुंदर है और संदेश भी बड़ा अच्छा है। यह जब कहानी मैं सुन रहा था तब मुझे लगा, देखिए छोटी छोटी बातें रहती है जब हम विदेश जाते हैं तब क्या करते हैं? हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा है, पड़ा है, लेकिन जब विदेश जाते हैं तब उसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास रुपये है तो अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं सिर्फ रुपये लेके चला गया और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास इतने रुपये है तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाते। लेकिन क्या होता है, जब मैं डॉलर कन्वर्ट करके लेके जाता हूँ तो उसका फायदा भी होता है और अगर मुझे खर्च करना है तो मैं खर्च भी कर सकता हूँ। ये तो हो गई लौकिक बात देश और विदेश की। लेकिन वैसे ही वहां की करेंसी जो है वो तो अलग है। जिस देश में जाते हैं उसी देश की करेंसी हमें चाहिए ताकि हम वहां खरीद कर सके या खर्चा कर सके। लेकिन जब यहां दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जाते हैं तब वहां की करेंसी ही अलग है और वो करेंसी अगर हम समय पे कन्वर्ट करके साथ में नहीं लेके जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर वहां की करेंसी जो है वो दुआएं है, वहां की करेंसी जो है लोगों के आशीर्वाद है वो भी करेंसी है, वहां की करेंसी है सत्कर्म है, जो अच्छे कर्म है और जो सफल करते हैं वो कर्म है। ऐसे अगर हम पूंजी लेके जाते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, वहां हम जितना चाहे उतना खर्चा कर सकते हैं, दूसरों को भी दे सकते हैं किसी की जरूरत है तो। कहने का भाव यह है कि हम जब यहां है तब उसकी समझ हमें होनी चाहिए, उसकी सावधानी होनी चाहिए कि यह समय बीत रहा है, घड़ी टिक टिक टिक टिक करती रहती है, एक एक पल चला जाता है। ऐसे कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तब हमारी आयु फिक्स होती है, किसी की 100 वर्ष होगी, किसी के 50 वर्ष होगी, किसी की 80 वर्ष होगी, अपनी अपनी आयु फिक्स होती है। अभी उस आयु के जितने भी पल है, जितने भी सांसें हैं, उतनी सांसें पूरी हो गई तो हमारी जिंदगी यहां से खत्म हो गई, पूरी हो गई, तो फिर वो सांसें कितने हमें मालूम नहीं है। इसलिए संत लोग कहते हैं, महान लोग कहते हैं कि हर सांस की कीमत होती है, जो सांसें जो है वो अनमोल है, इसलिए समय अनमोल है, एक बार बीत गया तो फिर वापस नहीं आ सकता। और इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस कथा की तरफ देखें तो इससे सावधानी और सीख हमें ये मिल सकती है कि समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा मूल्यवान है और हर समय हर पल अगर हम सफल करें, हर समय खुद के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए हम सफल करें। खुद का कल्याण उसका मतलब स्वार्थ नहीं है, खुद का कल्याण मीन्स परमार्थ है, अध्यात्म है, और वो अगर सफलता हमें मिलती है तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। इस दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में भी हम जाएंगे तो भी हमारे पास बहुत सारी पूंजी होंगी सत्कर्मों की, आशीर्वादों की और दुआओं की, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, देखिए ना, हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो कितनी श्रद्धा से कहते हैं, भगवान सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। लेकिन सचमुच हमने मन बुद्धि से उसको दिया है? एक बार अपनी ही जांच करनी चाहिए। अगर सब कुछ तेरा कह दिया तो फिर चिंता की बात ही क्या है दोस्तों। बस ट्रांसफर करना है मन बुद्धि से। वैसे तो वो कुछ मांगता भी नहीं है, लेकिन जब वो भाव होता है, जब वो विश्वास होता है अंदर, तो सचमुच ही हमारी जीवन जो है वो भी अमूल्य हो जाती है। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण जी की लीला, इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और उसमें भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो मैं समझती हूँ हर एक को मालूम है। हमारी चर्चा हो रही है दशम स्कंद का जो 22वां अध्याय है उसके ऊपर, तो जिसमें बताया है कि स्वयं श्री कृष्ण जी गोपिकाओं के कुमारियों के वस्त्र चुराते हैं, तो वो उनको बार बार विनती करती है कि कृपा करके हमारे वस्त्र दे दो। तो ये बात चल रही है कि भगवान की हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय जो है वो प्रेम से सराबोर हो गया, वो तनिक सकुच गई, एक दूसरे को देखने लगी, मुस्कुराने लगी, लेकिन कैसे जल से बाहर निकलती। जब भगवान ने हंसी हंसी में ये बात कही तब जैसे कि कुमारियों का चित्त और भी उनकी तरफ खींच लिया। अब ठंडे पानी में कंठ तक वो डूबी हुई थी, उनका शरीर कांप रहा था थर थर, और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो, हम जानते हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो ना, हमारे भी तो प्यारे हो, सारे व्रजवासी को प्यारे हो, देखो ना जाड़े के मारे हम ठिठुर रहे हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र दे दो। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी है, तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो ना, तो हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। तो दोस्तों, बहुत सुंदर संवाद है भगवान श्री कृष्ण का और कुमारियों का, गोपियों का। वो श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी मुस्कान जो है वो पवित्रता से भरी है, प्रेम से भरी है, और तुम मुझे कह रही हो कि हम आपकी दासी है, तो तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का भी पालन करना चाहती हो, तो कृपा करके यहाँ आइए और अपने अपने वस्त्र लीजिए। दोस्तों, राजा परीक्षित और शुकदेव जी का ये जो संवाद है उसमें शुकदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, वे कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रहती, कांप रही थी भगवान की ऐसी बातें सुनकर। उन्होंने क्या किया कि वो अपने अंग को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकले और उस समय उन्हें ठंड बहुत सता रही थी। दोस्तों, इन सब बातों से इतना तो हम जरूर जान चुके हैं और भागवतकारों ने बहुत ही स्पष्ट रूप से ये सुंदर वर्णन किया है कि यहाँ केवल पवित्रता की बात है, यहाँ कोई विकृति नहीं है। जो प्रेम भाव है उसका जो असली रस है, प्रेम रस नवरसों में भी जिसका बहुत सुंदर वर्णन है, तो ये प्रेम जो है वो कोई अपेक्षा से नहीं है, उसमें कोई विकृति नहीं है, और उसके कारण ज्ञानेश्वर जी मुझे लगता है ये जो भी वर्णन है उसमें कितना शुद्ध भाव है, आज का कलयुग का मानव शायद इसको समझ भी नहीं पाएगा।
1: बिल्कुल भक्ति जी, ये कथा हम सुनते हैं, सुनाते भी हैं, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से लोग सुनते भी हैं, लेकिन ये कथा सुनते समय

0: विश्वास होगा, क्योंकि ऐसी कथाएं, भागवत कथा जो है वो लोगों को प्रेरणा देने वाली है, लोगों के जिंदगी में सुधार लाने वाली है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे नहीं होता। ये कथा के तरफ देखने का नजरिया लोगों का जो है वो अलग अलग है और विकृत होते जाता है। उसमें वासना भरी हुई रहती है और वो कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए तो हमने चुराए तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भी एक विचार, ऐसे भी एक भावना लोगों के मन में आ सकती है। और इसलिए मुझे इस तरफ गौर करना है कि देखिए, अगर लौकिक रूप से भी देखें तो श्री कृष्ण जी जो थे वृंदावन में, तब उनकी आयु जो थी वो 6 से 8 के बीच में थी, क्योंकि 8वें साल में या 10वें साल में उन्होंने कंस को मारा, ऐसे ही शास्त्रों में वर्णन है। 1-2 साल का फर्क पड़ सकता है, लेकिन कहने का भाव यह है कि इतना छोटा बच्चा है तो उसके प्रति या उसके मन में ऐसी कामुकता और भावना आ नहीं सकती। दूसरा, ये अगर होता है तो छोटा बच्चा है तो हमारे बच्चे ने भी अगर किसी के वस्त्र चुराए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम इस रीति से देखें, वो निष्पाप बालक है और उसने वस्त्र चुराए और इसलिए गोपिकाएं भी हंसने लगी, क्योंकि छोटा बालक अगर कोई मजाक करता है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अभी तीसरी बात, आध्यात्मिक रीति से इसके तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है कि पति और पत्नी, परमात्मा को और श्री कृष्ण जी को ये पति के रूप में गोपिकाएं देखना चाहती थी, और इसलिए ये कात्यायनी व्रत जो है इसके लिए उन्होंने जल क्रीड़ा शुरू की और जमुना में वो निर्वस्त्र होके जल में गई थी, कथा में ऐसा वर्णन है। तो इसके ऊपर भी हम गौर करें, इसके ऊपर भी हम चिंतन करें, पति और पत्नी का रिश्ता इसके ऊपर भी चिंतन करें, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच हमारा दृष्टिकोण जो है वो अगर विकृत है तो हर बात हम उसी रीति से सोचते हैं। इतना ही नहीं, हम भगवान के लिए जिनको हम इतना पूजन करते हैं, जिनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा भाव है, उनके लिए भी हम उनकी अपकीर्ति करते हैं कहो, या मन में ऐसे भाव आते हैं, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रेम इस शब्द में कितनी सारी भावनाएं भरी है जो पवित्र है, शुद्ध है, बहुत बहुत उसमें विश्वास है। दोस्तों चलिए, इन बातों की आगे भी बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद का जो 22वां अध्याय है, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है, चिंतन चल रहा है, उसमें स्वयं भागवतकारों ने भी बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया है। मैं समझती हूँ उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हमारे मन में अगर कुछ निगेटिव भावना आ गई तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण मिल सकता है। दोस्तों, चीरहरण के प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती है, स्वयं भागवतकार कहते हैं, अतएव इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। कौन सा विचार? तो वास्तव में बात यह है कि सच्चिदानंद घन भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान चिन्मय है, उसी प्रकार उसकी लीलाएं भी चिन्मयी हो जाती है। दोस्तों, ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां माना आत्मा रूपी गोपियां, और श्री कृष्ण जो सच्चिदानंद चिन्मय इस रीति से वर्णन किया है, वो है आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा। तो भागवतकार स्पष्टीकरण देते हैं कि गोपियां क्या चाहती थी, हर आत्मा की चाहत क्या है, ये बात उनकी साधना से कितनी स्पष्ट है। वे चाहती थी श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण के साथ हमें इस प्रकार से घुल मिल जाना है कि उनका रोम रोम, मन प्राण, संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्णमय हो जाए। इतनी सुंदर बात है दोस्तों, सचमुच ये समझने के लिए भी मुझे लगता है हमारे विचारों की गहराई होनी चाहिए और उनमें एक सात्विकता भी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं समझती हूँ इस स्पष्टीकरण से हमारी सारी आशंकाएं भी जरूर दूर होगी। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है?
3: बिल्कुल भक्ति जी, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, क्योंकि संपूर्ण समर्पण जो है, वो संपूर्ण समर्पण बहुत बड़ी बात है। बहुत बार होता क्या है कि हम परमात्मा के लिए समर्पित होते हैं मन से, लेकिन ऐसे कुछ संस्कार होते हैं, वो संस्कार हमें संपूर्ण समर्पण के लिए बाधित करते हैं, और ये संस्कारों का भी समर्पण जब करेंगे तब ये संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। भागवतकारों ने यह भी कहा है कि लज्जा यह भी एक संस्कार है, शरीर का मोह यह भी एक संस्कार है, देह की भावना यह भी एक संस्कार है, और वो भी संस्कार अगर हम परमात्मा को अर्पण करें तो क्या होगा, हम बिल्कुल ही निर्मोही हो जाएंगे, बिल्कुल ही पवित्र हो जाएंगे, और बिल्कुल ही शरीर के बारे में अनजान हो जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 3 मास का 4 मास का 6 मास का अगर वो निर्वस्त्र रहता है उसे कोई चिंता नहीं है, और उसे देखने के बाद देखने वाले के मन में भी बुरे संकल्प नहीं आते, क्योंकि यह है पवित्रता का बल। और ऐसी पवित्रता अगर हमारे मन में है तो हम परमात्मा को संपूर्ण समर्पण कह सकते हैं। ये कथा सुनते समय मुझे और एक कथा याद आती है, वो महाभारत की है। जैसे कहते हैं कि गांधारी ने जब पट्टी खोली और फिर दुर्योधन का कहा था कि आप निर्वस्त्र होके मेरे सामने आइए, क्योंकि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति है कि आपका शरीर वज्र समान हो जाएगा और आपको कोई नहीं मार सकता। और उस समय कहते हैं कि जैसे दुर्योधन पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होके गांधारी जी के कक्ष में जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने क्या किया, उसका बुद्धि भेद किया। उसे कहा कि आप निर्वस्त्र होके जा रहे हो, माता के सामने जा रही हो, बात ठीक है, लेकिन आप बड़े हो, माता बड़ी है, तो स्त्री के सामने ऐसे निर्वस्त्र होके जाना अच्छा नहीं है, समाज मान्य नहीं है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, छोटा वस्त्र कमर पे लपेटने के लिए दिया। क्या हुआ, वही जो शरीर का अंग है वो क्या हो गया, निर्बल हो गया और बाकी वज्र समान हो गया। और सब जानते हैं कि भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। अभी इसका आध्यात्मिक रीति से अर्थ देखेंगे तो देखिए कि कहीं ना कहीं हम निर्वस्त्र का मतलब है संपूर्ण समर्पण। लेकिन कई ऐसे मोह होते हैं, कई ऐसे संस्कार होते हैं जो हम छिपाने के लिए मजबूर होते हैं, और यही संस्कार हमें धोखा देते हैं। जिंदगी कहते हैं कि युद्ध है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये कहते हैं गीता में, और गीता में यह भी कहा है कि वासाओं से जीर्णानि यथा विख्याय, शरीर एक वस्त्र है ऐसे गीता में भी कहा है। ये वस्त्र का जब हम त्याग करेंगे, ये वस्त्र की भावना का त्याग करेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होगी। ये एक संदेश, बहुत अच्छा संदेश हमें मिलता है ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा। अगर शॉर्ट में कहे तो मैंपन का त्याग और मेरा जो है, हम जैसे ही जन्म लेते हैं तो अंत तक हम मैं और मेरा को छोड़ते नहीं हैं। लगता है हमें हमने छोड़ा, किन हम नहीं छोड़ते। तो मैंपन का मेरेपन का त्याग करते हुए बहुत ही निष्पाप मन बुद्धि से जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, वो गोपिकाओं का वर्णन है। और इसके लिए बहुत डेप्थ है मन और बुद्धि से इस बात को जानने की। दोस्तों, यही भागवतकार हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने मन बुद्धि को भगवान के सामने ऐसा समर्पण करें जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण जी को समर्पण किया। ये एक सुंदर मिसाल है। दोस्तों, इन्हीं बातों को लेकर हम भी अपने मन बुद्धि को इतना निष्पाप करने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उस विश्वास से भगवान को समर्पित होंगे। चलो दोस्तों, इन्हीं बातों से समय को देखते हुए मैं भक्ति अब अपने वाणी को देती हूँ विराम। फिर से मिलेंगे अमृतधारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे पवित्रता और ब्रह्मचर्य की, कि आज के समाज में इसकी नितांत आवश्यकता है। हमारे जितने भी धर्म गुरु होकर गए हैं, साधु संत होकर गए हैं, महापुरुष होकर गए हैं, सभी ने एक स्वर में इसके महत्व को समाज के सामने रखा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यदि किया जाए तो संसार की समस्त समस्याओं का निदान किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, बौद्धिक समस्या है या अन्य किसी भी प्रकार की समाज में हम समस्या देख रहे हैं। लेकिन विडंबना ही है कि जिस चीज का इतना मूल्य है उसकी आज कहीं चर्चा नहीं है। इसीलिए समाधान कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी समस्या जो आज समाज में है, बलात्कार के केसेस की, उसके कारण इसको निदान के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ पुनः मौजूद हैं, जिन्होंने इस विषय को बहुत ही शिद्दत से उठाया है कि आज समाज का हर वर्ग इस महत्वपूर्ण गुण को, इस ब्रह्मचर्य की धारणा को स्वीकार करे। तो इसका महत्व क्या है उसकी चर्चा हम आदरणीय भ्राता जी के साथ करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रता जी, हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के हर वर्ग के लिए। आप इसकी महत्ता में बता रहे थे कि मन और बुद्धि दोनों ही इसके माध्यम से जुड़ी हुई है, और यदि हम मलिन होते हैं अर्थात अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खोते हैं तो मन भी विकारग्रस्त हो जाता है और बुद्धि भी क्षीण होती चली जाती है, फलतः किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस विषय को थोड़ा और विस्तार से
1: देखिए। मन मलिन हो गया
0: जी
1: तो जीव मलिन हो जाता है। चाहे आप कोई वैज्ञानिक हैं, चाहे बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं। देखिए, लेखक और साहित्यकार तो बहुत पवित्र हो ही जाते हैं, और एक वैज्ञानिक भी जो मगन हो जाता है अपने किसी चिंतन में, किसी खोज के लिए, तो उसको इन विकारों से वैसे ही विरक्ति हो जाती है। तो मन को स्वच्छ रखना बहुत आवश्यक है। मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो समाज में विकृति आई है हमारे देश में, बलात्कार के केस दिनों दिन बढ़ रहे हैं, और सरकारें या पुलिस या कोई भी कानून इसको रोकने में सफल नहीं हो रहा है। लोग भी सोचते तो अवश्य होंगे क्या करें। कईयों में भय व्याप्त हो रहा है क्योंकि बच्चे अब स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं।
0: बिल्कुल भ्राता जी, विदेश का भी की भी घटनाएं ऐसी हुई हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि जो विदेशी सैलानी हमारे यहाँ आ रहे थे उनकी संख्या भी कम हुई है, और साथ ही महिलाएं, जो विदेशी महिलाएं थी उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, वो ये कह रही थी कि अब हम देर रात बाहर निकलने से डरते हैं। तो ये भय तो व्याप्त है,
1: बहुत भय व्याप्त हो गया। अभी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कोई उनमें उन्हें घर में बांध के तो नहीं रखेंगे माँ बाप, उनके पीछे सदाई कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रखा जाएगा, तो एक भय का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। इससे मनुष्य का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। और जैसे आपने कहा, हमें भी ये मैसेज मिलते रहते हैं कि पहले जो विदेशी भारत में खुले रूप से, मतलब एक स्वतंत्र रूप से, उन्हें यहाँ कोई डर नहीं रहता था, वो सोचते थे भारत तो पवित्र भूमि है, ये तो देव भूमि है, यहाँ तो हमारी लोग सुरक्षा करेंगे, किसी भी चीज का हनन यहाँ नहीं होगा, उनमें भी डर व्याप्त होगा। इससे देखिए हमारे टूरिज्म को कितना बड़ा नुकसान होगा,
0: और उससे भी बड़ा नुकसान हमारे देश की जो छवि है, अंतरराष्ट्रीय छवि, कितना सुंदर और पवित्र देश।
1: छोटा सा समाचार चारों ओर फैल जाता है क्योंकि गंदगी जल्दी फैलती है। अच्छी बातें भी हो रही हैं उनको तो प्रचार में कम लाया जाता है, लेकिन ये चीजें तो धुआंधार बन जाती है ना। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, वैसे भी हमें बहुत आशावादी होना चाहिए। किसी भी चीज की जब अति होती है तो उसका अंत तो निश्चित हो जाता है। तो ये जो तूफान चल रहा है विषय वासनाओं का, इसके अब समाप्ति का समय भी आया है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं इस पर मन पर इसका इफेक्ट, मन पर हम देख रहे हैं भय व्याप्त हो गया है। इससे हो सकता है कई लोग अपनी बच्चियों को आगे न पढ़ाएं, तो देखिए विकास रुक गया
0: जी।
1: और बच्चियों की इच्छा होगी हम कंपटीशन में पीछे क्यों रहे, तो एक ऐसा संघर्ष हो सकता है, एक ऐसी बुरी चीज ये वासनाएं ला सकती हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं। तो मानसिक विकृति के कारण भय भी पैदा हो रहा है, चिंताएं भी पैदा हो रही। निश्चित रूप से माँ बाप अपनी बच्चियों को जब स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो उनके आने की इंतजार करेंगे, और वो जरा भी कहीं इधर उधर हो गई तो उन्हें चिंतित होना बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। रही बात बुद्धि की, देखिए इसका संबंध बुद्धि से बहुत गहरा है। यहाँ दो शक्तियां हैं, बुद्धि और ब्रेन, मन उनसे अलग तीसरी शक्ति। अब बुद्धि कार्य कर रही है प्रेम के द्वारा, लेकिन यदि वासनाओं के कारण, यदि इस जीवन शक्ति के क्षय के कारण इसको हमने नष्ट कर दिया, तो हमारा ब्रेन निश्चित रूप से कमजोर होगा। ब्रेन तो एक बहुत सूक्ष्म मशीनरी है ना, जिसमें न जाने क्या क्या हो रहा है, कोई भी इसको अब तक संपूर्ण रूप से जान नहीं पाया।
0: मैं बीच में एक बात कहना चाहूंगा, मुझे एक बात याद आ गई, कई शल्य चिकित्सकों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जब लोग काम वासना के अधीन होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पर उन्होंने रिसर्च किया तो ये पाया कि उनके ब्रेन में बहुत गहरा प्रभाव, एक गहरा धक्का लगता है, और कई बार इसके कारण लोग मूर्छित भी हो जाते हैं और कईयों के प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। तो ये इन्होंने प्रूफ किया है, वैज्ञानिकों ने भी और साथ ही शल्य चिकित्सकों ने भी, कि हमारे छोटे ब्रेन पर, हमारे बड़े ब्रेन पर इसका बहुत घातक प्रभाव।
1: बिल्कुल, ये तो जैसे देह के लिए ये जीवन शक्ति है, ब्रेन के लिए तो ये सबसे बड़ी शक्ति,
0: एक प्रकार से टॉनिक है।
1: टॉनिक है, जैसे तेल उसमें जा रहा है, और इसके बिना तो बुद्धि काम ही नहीं करेगी। तो बुद्धि का पतन, बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि की मेमोरी पावर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और किसी की ये दो चीजें ही नष्ट हो जाएं, एकाग्रता और स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, तो वो क्या करेगा जीवन में? चाहे वो एक टेलर ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा काम करने वाला लुहार ही क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी थक जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसने कौन सी चीज कहाँ रख दी ये भी विस्मृति हो जाएगी, और एकाग्रता उसकी काम में लगेगी नहीं। तो 2 घंटे का काम वो 8 घंटे में पूरा करेगा, और इससे उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मन और बुद्धि के विकास के लिए हम बात करें समाज की। देखिए, समाज ही तो सब कुछ है। समाज हमारा उन्नत हो, समाज हमारा शिक्षित हो, विकसित हो, तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन जब ये चीज समाज में आ रही है, तो जैसा हम देखते जा रहे हैं, लोगों का अटेंशन ही डाइवर्ट होने लगा है दूसरी ओर, और मानवता के प्रति, युवकों के प्रति एक घृणात्मक भावना उनके मन में पैदा हो रही है। तो एक तरह से समाज में अशांति को बढ़ावा मिल रहा है
0: जी। एक चीज ये भी तो हो रहा है कि चूंकि ये विषय वासना बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हम तो ये कहते हैं और ये कहा जाता है कि भारत हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। तो भले ही हम संसार के कुल भूभाग के 2.4% में ही रहते हैं, उसमें से भी 50% जो हमारा भूभाग है वो बेकार है, तो इतने भूभाग में ही हमें इतने सारे लोगों की पालना करनी है, तो जनसंख्या विस्फोट जो है ये भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा,
1: बहुत, यही बहुत बड़ी चीज हो गई
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज को, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारी मातृशक्ति को, इस ब्रह्मचर्य को महत्व देना ही पड़ेगा। तब हम ये जो जनसंख्या का विस्फोट है इसको रोक सकेंगे
0: जी।
1: तब संतान बहुत स्ट्रॉन्ग, चरित्रवान, बुद्धिमान पैदा होगी। देखिए, बहुत यदि हमने अपनी शक्तियां नष्ट कर दी, तो आने वाली संतान भी तो वैसी होगी,
0: निस्तेज होगी।
1: उनकी शारीरिक शक्ति बहुत क्षीण होगी, उनका बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। तो हमारा तो ये कहना है कि परमात्मा की आज्ञा अनुसार, उसकी प्रेरणा अनुसार भी एक नए समाज की स्थापना के लिए हमें ये पवित्रता की क्रांति अपने समाज में लानी ही चाहिए। समाज में और भी जो वो बहुत विकृतियां आ रही ना, चोरी चकारी, लूटमार, केवल बलात्कार की बात नहीं, समाज में अनेक कुरीतियां आ गई हैं, घर घर में शराब का प्रचलन।
0: बिल्कुल, यदि चरित्र श्रेष्ठ है और यदि जीवन में वो श्रेष्ठता है, निश्चित रूप से उनके विचार में भी परिवर्तन आता है, बौद्धिक शक्ति विकसित होती है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और जो जहां जहां भी हैं अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से, ईमानदारी से, सभ्यता से, सम्मान से करते हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं समाज में इतनी सारी समस्याएं व्याप्त हैं, सचमुच इसका जड़ कहीं ना कहीं वही बात लगती है कि लोग अब ब्रह्मचर्य को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि विषय वासनाओं में बहते चले जा रहे हैं।
1: देखिए, मुझे एक घटना याद आ रही है, पिछले साल हमारे गाँव के पास के गाँव में बड़ी घटना हो गई। एक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भर के जा रहा था, उसका घर भी पास था। एक युवक साइकिल पे, जो सड़क थी गांव में, उसके बीच में खड़ा था। अभी इसने हॉर्न भी दिया, वो हटा नहीं, वो भी अकड़ू था। और फिर दोनों की थोड़ी कहासुनी हो गई, उसने ट्रैक्टर रोक दिया, हाथापाई होने लगी, क्रोध आ गया। और बात ये हुई कि एक घर में भागा गया, पिस्तौल लाया, दूसरे भी लाए, और 3 लोग तत्काल मर गए। अब देखिए बात कितनी छोटी सी, साइकिल बीच में खड़ी है, साइकिल वाला, वो साइड में हो सकता था, कोई कष्ट की बात नहीं थी, लेकिन वासनाओं के कारण, अहंकार के कारण उसमें क्रोध उमड़ा और उससे तत्काल 3 लोगों का मर्डर हुआ और फिर तो आप जानते हैं कोर्ट केस हुए, कईयों को आजीवन कैद हुई, फंसे रहे, घरों में टेंशन हो गई, पत्नियां विधवा हो गई, बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए। तो एक वासना ने कितना बड़ा नुकसान किया समाज का। इसलिए इस सामाजिक जो आक्रोश बढ़ रहा है समाज में, जो ये बहुत सारी विकृतियां, स्वार्थ बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, जिसके कारण करप्शन की समस्याएं बढ़ रही हैं। हमारे कई सामाजिक नेता इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में। तो सामाजिक बहुत बड़ी हानि हमें इससे हो रही है। लेकिन हम आगे चले तो सबसे बड़ी चीज समाज में या देश में या व्यक्तिगत रूप से इससे नुकसान हो रहा है नैतिकता का।
0: जी जी, नैतिकता का बहुत ज्यादा पतन। जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाता। और नैतिकता की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मूल्य है, गुण है, सद्गुण है, ये भी लोप होते जा रहे हैं इसके कारण।
1: तो देखिए, आजकल हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, हमारे प्रोग्राम चलते हैं, प्रधानाचार्य या उसकी मैनेजमेंट कमेटी या उसके सेक्रेटरी एक मत से स्वीकार करते हैं कि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देना परम आवश्यक है, क्योंकि जब लड़के लड़कियां कॉलेजों से बाहर निकलते हैं तब उनका जो आपसी वातावरण होता है वो वास्तव में मर्यादाहीन होता है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैं उसके लिए ज़्यादा क्या कहूँ। तो और बहुत सारे गुण, चाहे आजकल MBA का कोर्स कराया जाता है, वहाँ भी हमारे लोग जाते हैं, लोग इस बात को, उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, सब महसूस करते हैं कि मैनेजमेंट कोर्स में मॉरल वैल्यूज को जोड़े जाना बहुत आवश्यक है। हम मैनेजर तो तैयार कर देते हैं, हम ऑफिसर्स तो बना देते हैं, लेकिन यदि उनमें मॉरल वैल्यूज ही नहीं होंगी, यदि उनमें सद्गुण ही नहीं होंगे, यदि वो अपने फील्ड में जाकर अहंकार का प्रदर्शन करेगा, यदि उसको सही ढंग से बोलना ही नहीं आएगा, यदि वो अपने साथियों से कटु वचन बोलेगा, तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट फेल होना है, उसको भी टेंशन होगी, आखिर लोग कब तक सुनेंगे, वो भी फिर खड़े हो जाएंगे। तो नैतिक मूल्यों की, चाहे किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, चाहे परिवारों में, बहुत आवश्यकता है। और इसका बीज पवित्रता ही है, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख शांति रहती है, वहाँ मनुष्य का चित्त शांत होता है, वहाँ उसमें कई सद्गुण सोते ही जागृत हो जाते।
0: ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही भ्राता जी। कई बार हम इनकी चर्चा करते हैं कि हमारे अंदर ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, लेकिन उसका बीज कहाँ है, इस बात पे शायद चर्चा हम नहीं करते,
1: नहीं करते हैं।
0: तो यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए, यदि पवित्रता जीवन में होगी, तो निश्चित रूप से ये सारे जो सद्गुण हैं एक फल के रूप में जीवन में अवश्य शामिल हो जाएंगे।
1: मैं इसमें जोर देना चाहता हूँ नैतिक मूल्यों में, जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पवित्रता और ब्रह्मचर्य तो है बीज
0: जी,
1: इसको पानी देना, इसको अंकुरित करना, तो अनेक सद्गुण रूपी फल स्वतः ही जीवन में लग जाएंगे। जीवन एक सुंदर वृक्ष बन जाएगा, इससे सुगंधी फैलेगी, फल फूल होंगे, इसमें लोगों को हम सुख दे सकेंगे और हमारे व्यवहार में एक डिविनिटी आएगी, एक रॉयल्टी आएगी। प्योरिटी जो है ना वो रॉयल्टी को जन्म देती है
0: जी।
1: तो इसलिए बहुत अच्छे रूप से हम याद रखेंगे, वेयर देयर इज प्योरिटी रॉयल्टी इज देयर। तो हमारे व्यक्तित्व में रॉयल्टी ले आता है, हमारे व्यवहार में शालीनता आ जाती है, हमारे बोल बहुत सुंदर हो जाते हैं, जो सबको आकर्षित करें, जो सबको प्रिय लगे, ये सब चीजें पवित्रता से प्रारंभ।
0: और वैसे भी कहा जाता है व्रता जी कि देवी देवता जो थे बहुत पवित्र थे, इसी कारण उनके अंदर वो आकर्षण है कि हम बार बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। या जो साधु संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता अपनाई है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, आम जनता जो है उनके पीछे पीछे जाती है, उनके चरण छूती है। तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य का इतना ज्यादा महत्व है कि लोग नतमस्तक हो जाते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ पाना चाहते हैं। तो ये सद्गुण निश्चित रूप से उन तक ही क्यों सीमित रहे।
1: और अगर अनेक लोग इस संसार में सद्गुणों से युक्त हो जाएंगे तो हमारा इस संसार अंधकार से भरा हुआ नहीं, प्रकाश से भरा हुआ।
0: स्वामी विवेकानंद जी ने भी भ्राता जी यही बात कही थी कि यदि मुझे 100 ब्रह्मचारी युवक मेरे जैसे मिल जाएं, जो बिल्कुल तन से मन से संपूर्ण रूप से सुगठित हों और ब्रह्मचारी की धारणा में पक्के हों, तो मैं पूरे भारत का कायाकल्प कर सकता हूं।
1: ये सच्ची बात है। वहां आ जाए स्वामी विवेकानंद की आपने चर्चा की, तो धर्म और अध्यात्म के फील्ड में, तपस्या और साधनाओं के फील्ड में भी इस ब्रह्मचर्य का परम महत्व है। लेकिन मैं इस पे चर्चा करना अवश्य चाहूंगा कि हर साधु संत, हर सामाजिक कार्यकर्ता भी, हर योग कि साधनाओं में तल्लीन व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य की पालना करना चाहता है, ये उनका मेन मोटो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको वो कठिन और कहीं ना कहीं असंभव महसूस करते हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल साफ शब्दों में बोलूं तो सत्य ज्ञान की कमी है। अगर हमारे पास इसको पालन करने के लिए एक सत्य विधि हो तो ये कठिन नहीं, ये असंभव नहीं, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ आनंद, सर्वश्रेष्ठ सुख बन जाता है। लेकिन आजकल चाहे मनोविज्ञान के कारण, चाहे मेडिकल साइंस के कारण, लोग ये मानने लगे कि ये तो एक बुरी तपस्या है, ये तो अपने को कष्ट देना है, ये तो अपनी वासनाओं को मार देना,
0: दमन करना,
1: ये तो अपनी खुशी को नष्ट कर देना है। इसलिए जो पवित्र रहेंगे उनके चेहरे पर तो टेंशन होगी, वो तो दुखी होंगे, वो तो खींचे खींचे होंगे, उनकी तो वासनाएं उन्हें खींचेंगी और वो उनका दमन करेंगे। परंतु ऐसा
0: और इसी उहापोह में पूरा जीवन निकल जाएगा।
1: छोड़ देते हैं बेचारे। मुझे अपने यहाँ की एक घटना, बहुत अच्छी घटना याद रहती है। अहमदाबाद से हमारे यहाँ एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर बहुत समय पहले हमारा थोड़ा सा ज्ञान लेके 7 दिन का और हमारे पास आए, ये देखने के लिए कि ये लोग कह रहे हैं ब्रह्मचर्य और हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य है। वो देखने आया कि जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके मस्तक पे तो सिकुड़न और तनाव, उनके चेहरों पे खुशी नहीं होगी, वो तो उलझे हुए से, उदास से, मायूस से रहेंगे कि जैसे हमने कुछ खो दिया है, जैसे हम किसी को दबा के रखे हुए हैं। तो वो आया देखने, खास देखने कि क्या सचमुच इनके यहाँ पवित्रता है, और अगर पवित्रता है तो वो कैसे संभव है। और उसने अपना अनुभव हमारी स्टेज पर बैठकर सुनाया था कि मैंने यहाँ आते ही देखा सबके चेहरों पर मुस्कान, सबके मस्तक पर चमकता हुआ तेज, सबका सहज जीवन, ब्यूटीफुल सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हैरान हो गया। फिर उसने बहुतों से चुपचाप बात की तो उसने पाया कि यहाँ तो सब लोग सहज भाव से ब्रह्मचर्य को अपना चुके हैं। जैसे और लोगों का भिन्न भिन्न तरह का जीवन है, ये इनका सहज जीवन हो गया है। तो इसके पीछे जो फिलोसोफी है उसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अध्यात्म के फील्ड में, योगियों के फील्ड में, तपस्या साधनाओं के फील्ड में जितनी गहरी हमारी पवित्रता होगी उतनी सुंदर हमारी एकाग्रता होगी, मन का भटकाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और देखिए, हम आत्माएं जब तक पवित्रता से अपना श्रृंगार नहीं करेंगे तब तक जो परम पवित्र है परमात्मा, जो पवित्रता का सागर है, उससे हमारी बुद्धि लगेगी ही नहीं।
0: जैसे पावन भी कहते हैं,
1: हम गर्म हो और बैठे बर्फ के पास, एक गर्मी को बर्फ से जोड़ दिया जाए, दोनों का मिलन ही नहीं होगा। एक गंदगी को अच्छाई के पास रख दिया जाए, मिलन ही नहीं है। वो परम पवित्र, पतित पावन, बिल्कुल निर्मल, और मनुष्य अपवित्र हो तो दोनों का योग, दोनों का मिलन, दोनों का प्यार भरा संबंध हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक साधक, एक तपस्वी, एक राजयोगी पवित्रता को जीवन में अपना लेता है तब परम पवित्र परमात्मा की ओर उसका स्वतः ही आकर्षण होता है। तब वो भी हमें प्यार करता है, हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तब उसे न केवल हम अपना परम पिता पर अपना सच्चा सखा और खुदा दोस्त भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती का अर्थ होता है दो पवित्र दिलों का मिलन। तो दोनों के दिल पवित्र हो गए। तो साधना के फील्ड में, चाहे हम सेवाओं के फील्ड में है, चाहे हमें समाज को कुछ सिखाना है, हमने अपने अनुभवों से भी आज तक देखा कि अगर पवित्रता का बल हमारे पास है तो संसार हमारे पीछे चलता है, और अगर पवित्रता का बल नहीं है तो लोग कहेंगे अरे ऐसे कहने वाले तो बहुत आते हैं, ये भी एक आ गए, चलो सुन लिया, बहुत अच्छा और वापिस चले गए।
0: जी जी जी, स्वामी दयानंद जी की बात मुझे ध्यान में आती है भ्राता जी, जैसा आप कह रहे हैं जीवन में होना। दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु बिरजानंद जी से संपूर्ण ज्ञान लिया और उसके पश्चात वो भाषण करने के लिए गए। पहली बार उन्होंने भाषण किया, काफी लोग इकट्ठे हुए, खूब तालियां बजाई, लेकिन सभी चले गए, कोई ठहरा नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी यही हुआ, तालियां सबने बजाई लेकिन कोई ठहरा ही नहीं उनका मतलब अनुयायी बनने के लिए, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में लाने के लिए। वापस गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा तुम्हें पुनः साधना करने की आवश्यकता है, पुनः आत्मअन्वेषण करने की जरूरत है, तुम स्वयं अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उन चीजों को धारण करोगे तभी लोग तुम्हारी बात को धारण करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात पवित्रता के साथ जुड़ी हुई है।
1: वो इसके बाद ही हुआ
0: जी
1: कि स्वामी जी ने उसके बाद अच्छी साधना की, और जब फिर उन्होंने भाषण किया तो अब लोग गए नहीं थे, अब उनके पास आ गए थे। तो धर्म के फील्ड में प्रचार प्रसार करने वालों को भी ये जानना चाहिए कि हमारी सफलता केवल ज्ञानी बनने में नहीं, केवल अच्छा बोलने में नहीं हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाएं, लेकिन इसमें है हमारे पास पवित्रता का आकर्षण कितना है, हमारा ब्रह्मचर्य, हमारी पवित्रता, हमारा तेज बनकर, हमारा आकर्षण बनकर धर्म और अध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति लोगों को आकर्षित करता है। तो इस फील्ड में भी ब्रह्मचर्य की बहुत गहरी आवश्यकता है।
0: ब्रता जी, बात चूंकि आध्यात्म पथ से जुड़े हुए लोगों के लिए आप कह रहे हैं, आप पिछले 45 वर्षों से इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अपने युवा काल से आप चूंकि आए हैं, तो पवित्रता की साधना में, ब्रह्मचर्य की साधना में आपको कोई दिक्कत महसूस?
1: हाँ, देखिए आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और मैं भी खुले मन से इसका उत्तर देना चाहूंगा
0: जी।
1: मैं 14 साल का ही था, मुझे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया और मैंने राजयोग का अभ्यास किया और मुझे सुंदर प्रतीति हुई और मुझे लगा कि इस राजयोग से नाउ सेलिबेसी विल बिकम वेरी इजी टू मी। तो उससे पहले मैं 14 साल की आयु तक आर्य समाज में रहते हुए जब मैंने ब्रह्मचर्य की पहले ही प्रतिज्ञा की हुई थी, मैं महसूस करता था कि ये एक टफ काम होगा, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य में निकालना ये कठिन काम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने राजयोग का अभ्यास किया मुझे आभास हुआ नाउ इट विल बिकम माई लाइफ, इट विल बिकम वेरी इजी टू मी, और यहां से शुरू हुई मेरे जीवन की यात्रा। अब मुझे पवित्रता एक आनंद के रूप में प्रतीत होने लगी, मेरे जीवन का वो संघर्ष समाप्त हुआ, मैं समर्पित होकर 68 में यहां आ गया माउंट आबू में। अब मेरा लक्ष्य ईश्वरीय सेवा करना, केवल दूसरों को देना था, और मुझे वो स्वामी दयानंद की बात मालूम थी कि बिना साधना के तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तुम्हारे बोल में प्रभाव भी नहीं आ सकता। तो मैंने बहुत अच्छी साधनाएं की ब्रह्मचर्य के मार्ग पर। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पहले 16 साल मैंने इसमें भिन्न भिन्न अपने जीवन में परिवर्तन किए। मुझे देह के आकर्षण की अनुभूति हुई, मैंने उसको समाप्त किया। मुझे स्वप्नों में भी इसके डिस्टर्बेंस हुए, मैंने उनको भी धीरे धीरे समाप्त किया, क्योंकि इसका संबंध हमारे खान पान से बहुत ज्यादा है। फिर मैंने देखा कि व्यर्थ संकल्प कहीं ना कहीं चलते हैं, पूर्व के न जाने हजारों साल पहले के संस्कार भी उदय होकर हमारे ब्रह्मचर्य को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, फिर हमारी साधनाएं ऐसी हैं उनके बल से हमने उनको समाप्त किया। तो फिर धीरे धीरे ये देखा कि अपवित्रता की सभी सूक्ष्म इच्छाएं लोप हो गई और केवल पवित्रता तय रह गई। तो 16 साल की साधनाओं में ये एक लंबा अनुभव रहा जो मुझे 82, 83, 84 तक लगभग वो पूर्ण हुआ। उसके बाद ये बिल्कुल नेचुरल हो गया और बहुत अच्छे अनुभव।
0: मतलब जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं वो इस बात को मान के चलें कि मन में द्वंद अवश्य होगा, आकर्षण अवश्य होगा, लेकिन यदि वो अपने लक्ष्य पे अडिग हैं, यदि अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो जितेंद्रिय बनेंगे ही बनेंगे।
1: बस इसमें एक ध्यान जो मैंने भी रखा था कि एक बार जिस मार्ग पर कदम रख दिए, भगवान को वचन दे दिया, किसी मनुष्य को नहीं, वचन देकर वापिस नहीं लेना है और इसको नेचुरल बनाना है। एक बार इस मार्ग पे कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो इन कुछ चीजों ने जीवन में बहुत बल दिया।
0: आपका जीवन रता जी ऐसे साधकों के लिए ही नहीं वरन सभी के लिए आदर्श है, और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाखों भाई बहने पवित्रता को अपनाकर, ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, समाज के लिए वो सभी वरदान है। तो रता जी, आज आपने जो अपने अनुभव और साथ ही सुंदर बातें हमारे दर्शकों के सामने रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ब्रह्मचर्य की चर्चा जो हम कर रहे हैं, जो भ्राता जी ने आज बहुत सुंदर बातें, न केवल इसकी हमारे मन के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए आवश्यकता है, बल्कि समाज की मांग है आज कि हम ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करें, पवित्रता को अपने जीवन में लाएं, तभी समाज में दिखने वाली तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकेगा और हम सचमुच सच्चे आनंद की ओर बढ़ पाएंगे। कहा भी गया है, जहां पवित्रता है वहीं सुख है, वहीं शांति है, वहीं आनंद है। तो आए एक नए क्रांति की शुरुआत करें हम सब युवा मिलकर और समाज के सभी वर्ग मिलकर, ताकि समाज को हम विकास के पथ पर आगे ले चलें और साथ ही साथ एक स्वर्णिम युग की स्थापना कर सकें। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आप हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। 25 जुलाई है आज और शनिवार के शुभ दिन पर शुभ हाजिर है आप सभी के साथ बात करने के लिए गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत। तो मस्तिष्क के लिए क्या टॉनिक है इसके बारे में आपने जाना आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। कैसा लगा आपको समाधान कार्यक्रम, कॉल करके बता सकते हैं आप हमें 94 14 15 14 15। और आपके अंचलों में बारिश की क्या कुछ हालचाल है, क्या झमाझम बारिश है या फिर ऐसे नॉर्मल बारिश हो रही है, आप हमें भी कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। आइए आज के दिन विशेष के ऊपर नज़र डालते हैं। पंचांग के अनुसार आज एकादशी शनिवार है, शक संवत 1948 है, विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 25 जुलाई सन 2026, सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है, राहु काल सुबह 9 बजे शुरू होकर के 10:30 तक है, एकादशी तिथि प्रातः 11:34 तक, उपरांत द्वादशी तिथि का आरंभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी रात उपरांत अगले दिन तक रहेगा, ब्रह्म योग रात्रि 9:09 तक, उपरांत इंद्र योग का आरंभ है, विष्टिकरण प्रातः 11:34 तक, उपरांत भवकरण का आरंभ है, चंद्रमा दिन रात वृश्चिक राशि पर संचार करेगा, सूर्योदय

का समय 5:38 तक, सूर्यास्त का समय 7:17 पर, चंद्रोदय का समय 4:20 पर, चंद्रास्त का समय मध्य रात्रि के बाद 2:17 पर। सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित है, चंद्रदेव वृश्चिक राशि में स्थित है। ब्रह्म मुहूर्त 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:55 तक रहेगा। अमृतकाल रात्रि 9:41 से रात्रि 11:29 तक है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आज के पंचांग के साथ। इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 है, 10 सफर हफ्ता इखलील कल्ब है आज के दिन। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी दिन विशेष के साथ।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं हम वेदर रिपोर्ट्स की ओर। सबसे पहले राजधानी जयपुर की ओर चलते हैं और यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। फिर जिला सिरोही में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, 55% तक बारिश होने की संभावना है। बात करें चेन्नई की, चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। लगभग 60% तक बारिश होने की संभावना है। मुंबई में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। 88% तक बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है। 55% तक बारिश होने की संभावना है। कोलकाता में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। 91% तक बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री, 57% तक बारिश होने की संभावना है। और 25 डिग्री तक न्यूनतम तापमान अहमदाबाद में, 29 डिग्री तक अधिकतम तापमान और यहाँ पर जोरदार बारिश होने की संभावना है सुबह के समय भी और रात्रि के समय भी अहमदाबाद और गांधीनगर के अंचल में। राजकोट में 26 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक जा सकता है। दिन के समय भी यहां पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। मेहसाना में 30 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक वर्षा की संभावना। दिन के समय, रात्रि के समय जोरदार बारिश होने की है। लाल चेतावनी है फिलहाल मेहसाना में। सूरत में 30 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 26 डिग्री और यहां पर भी दिन भर और रात्रि में भी बारिश होने की जोरदार संभावना है। जोधपुर के अंचल में 32 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है। यहां पर भी बारिश होने की संभावना है। पाली में 32 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की संभावना 70% से ज़्यादा है पाली जिले में। माउंट आबू की बात करें तो 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है। आबूराज में वर्षा की संभावना जोरदार है, 90% से अधिक है। बात करें आबू रोड की तो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम 31 डिग्री तक जा सकता है। यहां पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। उदयपुर में 29 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है। यहां पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट्स के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्प विराम और 8 बजे के टाइम चेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: पुनः आप सभी का स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आबू रोड में आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां, रेल गाड़ियों के बारे में। 1402 अरावली एक्सप्रेस 8:30 पर ऑन टाइम आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। वहीं पर आगरा कांड से साबरमती तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12 मिनट देरी से चलती हुई 8:37 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 4, 7, 1, 9, 2, 6, 9 और ये गाड़ी पोरबंदर से मुजफ्फरपुर तक जाती है 8:41 पर 1:31 देरी से चलती हुई आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 1, 2, 4, 6, 1 9:05 पर पहुंचेगी। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 1, 9, 2, 2, 4 9:45 पर पहुंचेगी। भूज बरेली एक्सप्रेस 1, 4, 3, 1, 2 10:24 पर लगभग 9:24 देरी से, जी हाँ 9:24 देरी से चल रही है। भूज से ही ये गाड़ी लेट निकली है, 8:31 लगभग देरी से निकली है और आबू रोड रेलवे स्टेशन में लगभग 9:04 देरी से पहुंचेगी ये गाड़ी आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। और वर्तमान समय अगर स्थिति देखें तो ये गाड़ी विरंगन से थोड़ा सा पहले है और उसके बाद मेहसाना, फिर पालनपुर होकर के फिर आबू रोड तक आएगी ये गाड़ी। बात करते हैं हम अजमेर एक्सप्रेस की 1620 और 10:31 पर 1:21 देरी से अजमेर एक्सप्रेस भी चल रही है। तो 1:21 देरी से चल रही है, 10:31 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी जी। वर्तमान समय ये गाड़ी अहमदाबाद जंक्शन में है। बात करें जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 संख्या वाली गाड़ी है और ये गाड़ी कैंसल है। और वहीं पर बांद्रा टर्मिनल से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 ये गाड़ी भी कैंसल हो गई है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बांद्रा टर्मिनल से भगत की कोठी दोनों गाड़ी कैंसिल है। जो हादसपुर से पुणे होकर के जाने वाली जो गाड़ी है ये कैंसिल, और इसके साथ साथ भगत की कोठी तक जाने वाले बांद्रा से ये गाड़ी भी कैंसिल है। दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस ऑन टाइम 11:30 पर पहुंचेगी, 19412 संख्या वाली गाड़ी है। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 1422 11:40 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 1:02 देरी से चलती हुई 11:55 तक पहुंचेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। और बांगूर ग्राम में वर्तमान समय ये गाड़ी खड़ी है। गाड़ी संख्या है जोधपुर साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20693 और ये गाड़ी भी 1:48 देरी से चल रही है, 11:58 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो भगत की कोठी से ये गाड़ी लेट चल रही है और जोधपुर से भी ये गाड़ी लेट निकली है। निकली है और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन के अनुसार गाड़ी निकलेगी लेट, जो 6:15 पर निकलने वाली थी वो 8:45 पर निकलेगी, तो जिसके वजह से ये गाड़ी लेट है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के समय 11:58 पर। इस मोड पर एक हमारे श्रोता मित्र हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, फिल वक्त उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाई है, फिर से कोशिश करें और क्षमा करें कि रेलवे इन्फॉर्मेशन इसमें क्रूशियल होता है कि इसके बीच में कई बार कॉल रिसीव करना असंभव हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी धैर्यता के लिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्फिरा, मिलते हैं अल्फिरा आपके उस पास। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप रेलवे स्टेशन जाने से पहले ज़रूर गाड़ियों के चेकिंग करिएगा आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ कैंसिल भी हो रही है, कुछ लेट भी चल रही हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। एक साथी का कॉल है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच नहीं पा रही है। आइए सुनते हैं ये गाना।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को एक बार फिर से निवेशकों को निराश किया है। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स शुक्रवार को 0.43% यानी कि 331.62 अंक की गिरावट के साथ लगभग 76,059.77 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी वहीं पर 0.43% यानी कि 102.15 अंक की गिरावट के साथ 23,767.45 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 कंपनियों के शेयर कल लाल निशान पर बंद हुए और वहीं पर इटरनल, महिंद्रा, बजाज फाइनेंस से और भी शेयर 2% तक के गिरावट के साथ बंद हुए हैं। भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस के शेयरों में कल गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ से गिरावट वाले माहौल में भी SCL टेक और ITC एक्सिस बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। और वहीं पर भारत में सोने चांदी की बात करते हैं, क्या कुछ हाल चाल है। 24 कैरेट गोल्ड रेट से 1,66,661 रुपये और 22 कैरेट 1,52,783 रुपये, 18 कैरेट 1,25,039 रुपये। और वहीं पर पेट्रोल डीजल की भी बात कर लेते हैं।

पेट्रोल मुंबई में 111 रुपये 21 पैसे है, और हमारे राजधानी में क्या कुछ है, जयपुर में 113 रुपये 97 पैसे है पेट्रोल रेट। डीजल रेट भी जान लेते हैं, डीजल है 97 रुपये 83 पैसे मुंबई में, और राजधानी जयपुर में है 98 रुपये 96 पैसे। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी। एलपीजी है 941 रुपये 50 पैसे, कमर्शियल है 2885 रुपये 50 पैसे, और वहीं पर प्रति बैरल 96 रुपये 33 डॉलर है क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे अर्थव्यवस्था के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। और आइए कुछ सूचनाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। गरासिया समाज की जिला बैठक 26 जुलाई को होगी और ये बैठक है दोपहर 1 बजे मुखरी माताजी तलेटी स्थित समाज भवन में, जिला अध्यक्ष नरसाराम गरासिया जी की अध्यक्षता में। 9 अगस्त को विशेष आदिवासी दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा होगी और वहीं पर माउंट में 9 घंटे में 8 इंच बारिश, नदियों में आया पानी। और इसके साथ साथ रोहिड़ा, अनादरा, स्वरूपगंज थानों में नए अधिकारी आए हैं। एसपी पुष्पेंद्र सिंह जी ने 3 थानों में थाना अधिकारियों में बदलाव किया है। रोहिड़ा थाने के थानाधिकारी अमरा राम को अनादरा थाने में लगाया। अनादरा थानाधिकारी कमलेश गहलोत जी को स्वरूपगंज थाने में भेजा गया। पुलिस निरीक्षक ओमकरण चारण जी को रोहिड़ा थानाधिकारी के पद पर लगाया गया। स्वरूपगंज थाने में एसपी ने कुछ दिन पहले ही पुलिस निरीक्षकों की लिस्ट में सब इंस्पेक्टर कमल सिंह जी को थानाधिकारी के पद पर लगाया था। इसके बाद जोधपुर रेंज आईजी सत्येंद्र सिंह ने लिस्ट जारी की। सब इंस्पेक्टर कमल सिंह का तबादला सिरोही से जैसलमेर किया गया है। वहीं पर रीको थाने के भवन का लोकार्पण, साइबर ठगी पर पुलिस की सख्ती। घर घर कचरा ग्रहण को मिले 4 ई वाहन और 15 भूखंड पट्टे भी बांटे गए। आइए इस मोड़ पर एक साथी जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
3: जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से। कैसे हैं सुरेश बहन जी?
2: बढ़िया, आप कैसे हैं सुरेश भाई?
3: बस बहुत अच्छे हैं, बैठा है, कार्यक्रम सुन रहे हैं। बारिश चल रही है अभी बहुत जोरों से।
2: जी
3: बारिश तो 2-3 दिन से तो लगातार बह रही है इधर हमारे गुजरात में।
2: जी जी जी, यहाँ पर भी बारिश हो रही है 2 दिन से।
3: अहमदाबाद में भी बहुत बारिश है, कई सारे
2: आज भी बहुत बारिश होने की संभावना है जोरदार। जी
3: बता रहे, अहमदाबाद में तो एक जो 5-5 फुट पानी लग गया।
2: जी हेलो, फिलहाल तो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, इस बात के लिए हमें खेद है। हेलो जी, जी बताइए।
3: बस अच्छे दिन है, आप हमारे सभी मित्र अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे। और शनिवार है, हनुमान जी का दिन है, तो सभी को आपके दिन की शुभकामनाएं दीजिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका भी दिन शुभ हो।
3: तो बहुत जोरों से बता रहे हैं जो अभी मौसम विभाग बोल रहे हैं कि अभी तो ज्यादा बारिश आएगी।
2: जी
3: है,
2: बारिश नहीं आ रही थी तो लोग परेशान, बारिश आई तो भी परेशान, क्योंकि हम तैयार नहीं है कि बारिश को कैसे हैंडल करें।
3: ये बात है, तो भगवान भी बोल रहा है कि क्या करें, नहीं थी तो वो नहीं बोल रहा, बोल रहे थे बारिश नहीं आ रही है तो बंद हो गया, क्या करें, ऐसा है।
2: जी जी बिल्कुल, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो ये थे हमारे सुरेश भाई फ्रॉम जोटाना से। तो आइए हम बात कर रहे थे कुछ सूचनाओं के बारे में, आसपास के घटनाक्रमों के बारे में। और आबू चैलेंज कप में सिरोही के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और आहाना ने जीता गोल्ड। वहीं पर बारिश होते ही स्कूल में पौधारोपण शुरू और केवी सिरोही में 135 बच्चों ने पौधे लगाए हैं। स्कूल में मां के नाम लगाया गया पौधा। शिवगंज में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर समेत 186 उपकरण वितरित किया गया है। प्रशिक्षण शिविर सिरोही में स्काउट गाइड के पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश। महिला सुरक्षा पर स्कूल में जागरूकता, साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई सिरोही में। शिवगंज में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव बताए गए और वहीं पर नेत्र जांच शिविर मंडार में किया गया। 105 मरीजों की जांच की गई है। और जेतावाड़ा में 15 दिवसीय सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम का समापन हुआ। गांव की महिलाओं ने सीखा कमाई का नया तरीका। पोसालिया में बेरा जेतपुरा में राज्य सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर लगा। शिविर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी और तथा तहसीलदार आशुराम राणा जी की मौजूदगी में हुआ और शिविर में 11 परिवारों को पट्टे बांटे गए। अग्रवाल संघ ट्रस्ट चुनाव है। आबूरोड में 29 से प्रक्रिया, 9 अगस्त को मतदान है। आरोग्य वन सिरोही में 1530 पौधे रोपण किया गया, पर्यावरण का संदेश भेजा गया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के घटनाक्रमों के साथ। और यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड बात भी हम करेंगे, लेकिन इस मोड पर एक दोस्त है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो।

जिन्होंने किया है वो आवेदन कर सकते हैं, 7 अगस्त लास्ट डेट है। और वहीं पर अयोध्या श्री राम मंदिर में CEO की भर्ती के लिए बहाली निकली है और 25 जुलाई यानी कि आज के दिन लास्ट डेट है। और SBI में बैंक मेडिकल ऑफिसर के 35 पदों पर भर्ती है। शीघ्र करें आवेदन और लास्ट डेट निकलना चाहिए इसलिए वेबसाइट पर चेक करते रहें। भारतीय सेना में NCC स्पेशल एंट्री और जैग के तहत ऑफिसर बनने का मौका 17 अगस्त है लास्ट डेट है। 27 जुलाई UPSC PCS 2026 के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट के लिए मौका है। और वहीं पर HPCL में 358 ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर भर्ती होगी। हर माह 25,000 स्टाइपेंड है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2026। NICL पर 500 असिस्टेंट पदों पर भर्ती होगी। ग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन, 7 अगस्त 2026 है लास्ट डेट। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी जॉब्स के साथ भी। यहीं पर एक भजन सुनेंगे हम हनुमान जी के और फिर मैं आप सभी से लेती हूँ विदाई। मुलाकात होगी कल संडे, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

उठो जागो अपना भाग्य संवारो। ये समय है जागने का, जागृति लाने का। ये समय है ईश्वर से प्रीत निभाने का। ये समय है स्वर्णिम युग बनाने का, जिसकी शुरुआत स्वयं से होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच सुझाव।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जाँच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंटी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
5: Today, as the world is being reshaped by artificial intelligence, digital technologies and other rapid scientific advances, universities like this has even greater responsibility to ensure that knowledge is guided by wisdom, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
6: The recent increase in flows,
7: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले LPG टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में LPG टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। जंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आशियाना में इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, फिर आपको घरेलू नुस्खे तुलसी पर बहुत ही अच्छे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे कि अपने दृष्टिकोण को बदल करके तो देखिए, खुशियाँ बनी रहेगी। और रेसिपी में परवल का अचार जो बनाएंगे जरूर बना करके खाइएगा। और फिर जीके, अब आप इंतजार कर रहे हो ना कि उषा जी ने ऐसा क्यों कहा कि आशियाना जरूर सुनना। अरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अपने बच्चों को संस्कारशील बनाना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा सर्विस करते हुए देखना चाहते हैं तो आशियाना जरूर सुनना। तो मनीषा जी भोसले, जिनका मैं परिचय आपको दे रही हूँ, आप छत्रपति शिवाजी के 10वें वंशज है, उनके कुल की कुल बहू है और आप साइकोलॉजिस्ट है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आपको उसी समय बताएंगे जब आप जीके सुनेंगे। तो मनीषा जी बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे कि किस तरह गर्भवती बहनें गर्भ में ही अपने बच्चे का ख्याल रखे तो बच्चा आपके मन पसंद का होगा, संस्कारशील बनेगा और जो आप करवाना चाहते हैं किसी भी प्रकार की सर्विस बिजनेस वो करेगा। लेकिन शुरुआत में 13 सप्ताह बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि शुरुआत के जो 13 सप्ताह होते हैं उसी समय दिमाग डेवलप होता है। और अगर इस समय आप पॉजिटिव किरणें अगर देते हो आप अपने बच्चे को तो आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो, उसके बाद भी ध्यान देना है। तो ये सारी बातें मनीषा जी के द्वारा जानेंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आशिया नामे पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है उसके संबंध। बच्चे के जन्मते ही संबंध उसे सौगात के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये संबंध ही उसके भविष्य की उन्नति का आधार बनते हैं। संबंध वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द रहकर व्यक्ति अपने अंदर अनेक योग्यताओं कलाओं का विकास करता है। श्रेष्ठ संबंधों के माध्यम से ही छिपे हुए आंतरिक मानवीय मूल्यों व दैवीय गुणों को जीवन में अनुभव किया जा सकता है। संबंध वह सीढ़ी है जिसके सहारे व्यक्ति कुशलता पूर्वक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए कहा गया है, सुखी जीवन का आधार संबंधों में मधुरता है। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और सुखी रहना हो तो अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

नियो। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। जैसा कि मैंने गीत की लाइन गुनगुनाई है, तुलसी मेरे आंगन तुलसी का झाड़। तो तुलसी के ऊपर आपको नुस्खे दूंगी। तुलसी वैसे ही बहुत स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और तुलसी को पवित्र भी माना जाता है। दूषित जल में तुलसी की हरी स्वच्छ पत्तियां डाल दीजिए, आप जल का दूषितपन समाप्त हो जाएगा। 4 लीटर पानी लीजिए, 4 लीटर पानी में 25-30 तुलसी की पत्ती डालिए। अब कैसे डालेंगे वो आपको बता रही हूँ। पानी छानते हैं ना, छानते समय ही कपड़े में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए 25-30, ठीक है। फिर 4 लीटर पानी उससे छान लीजिए ताकि तुलसी का कस पानी में चला जाए, तो पानी का दूषित समाप्त हो जाएगा, बीमारियों से बच जाएंगे। तो कितना अच्छा नुस्खा है, कोई खर्चा ही नहीं है, और तुलसी तो हम अपने घरों में लगाते ही हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। आप 4 लीटर पानी लीजिए, पानी छानते समय कपड़ा, जो कपड़े से छानते हैं ना, स्वच्छ कपड़े से, उस कपड़े में 25-30 तुलसी की पत्तियां रख दीजिए। फिर आप पानी छानिए तो तुलसी का कस पानी में उतरेगा और पानी स्वच्छ हो जाएगा, तो दूषित पानी के होने वाली बीमारियों से बच जाएंगे। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। तुलसी की पत्तियों में खाद्य वस्तुओं को विकृत होने से बचाने का अद्भुत गुण है। तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी खाना बचता है हमारा, तो उसमें या तो डाब डालते हैं या तुलसी के पत्ते। अब डाब तो हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन तुलसी हर जगह मिल जाती है, क्योंकि तुलसी, भले आप शहर में जाओ, गाँवों में जाओ, तुलसी के पौधे सभी अपने अपने घरों में लगाते हैं। तो बस तुलसी के पत्ते खाद्य सामग्री में डाल दीजिए, तो खाद्य सामग्री विकृत नहीं होगी और उसको बाद में आप खा सकते हैं, शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। ग्रहण में भी ऐसी मान्यता है। तो तुलसी के पत्ते इस तरह फायदेमंद है, और जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है ना, उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसलिए आज से ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो गमला लाइए और गमले में लगा दीजिए। इसका ज्यादा खर्चा नहीं है, और गांवों में तो खुली जगह भी बहुत होती है, तो आप एक छोटी से जगह देख करके वहाँ एक क्यारी बना दीजिए और क्यारी में तुलसी लगा दीजिए। तो इस तरह भी आप तुलसी लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आपके घर में कोई बाल्टी है, बाल्टी टूट गई हो, फूट गई हो, तो उस बाल्टी में भी आप खाद भरकर, मिट्टी भर करके तुलसी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना फायदा है कि तुलसी का पौधा जहाँ पर भी होता है, उसके आसपास 600 फुट की वायु इससे प्रभावित होती है, और इसके परिणाम स्वरूप मलेरिया, प्लेग और क्षय के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान दीजिएगा। और दूषित जल सेवन से बच्चों के पेट में कृमि से बचने के लिए अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक अवस्था के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए। दूषित जल सेवन करने से बच्चों के पेट में कृमि हो जाती है, और फिर पेट दर्द होता है, तो कृमि ना हो इसके लिए आप इस नुस्खे को भी आजमा सकते हैं, जैसे कि अजवाइन 4 भाग और काला नमक 1 भाग का चूर्ण बना करके 0.5 ग्राम से 1.5 ग्राम तक आवश्यकता के अनुसार गर्म जल के साथ दीजिए, तो बच्चों के पेट की समस्या से भी बच्चे बचे रहेंगे, और पेट दर्द भी नहीं होगा, कृमि भी नहीं पड़ेंगे, और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरह सारे ही नुस्खे लाजवाब है, इनको आजमा करके स्वयं भी ठीक रह सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए फिर से सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नजदीकियां बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहें। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए, रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। आज का विषय हमारा रहेगा दृष्टिकोण में बदलाव करके तो देखो। कहते हैं कि दृष्टि बदली तो नजरिया, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपको मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगी खुशनुमा जीवन में, दृष्टिकोण का किस तरह बदलाव करेंगे इस बारे में बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको सुना रही हूं। एक बार एक यूनानी दार्शनिक का शिष्य, जिसे उसके गुरु ने 3 साल तक हर उस व्यक्ति को पैसे देने के लिए कहा जो उसका अपमान करता था, जब परीक्षण की अवधि समाप्त हो गई तो गुरु ने उससे कहा, अब तुम एथेंस जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जब शिष्य ने एथेंस में प्रवेश किया तो उसे छत पर एक ज्ञानी पुरुष बैठा मिला जो हर आते जाते व्यक्ति को अपमानित करता था। उसने शिष्य को भी अपमानित किया तो वह शिष्य जोर से हंसा। ज्ञानी पुरुष ने उससे पूछा, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम हो कि हंसे जा रहे हो? शिष्य ने उत्तर क्या दिया होगा मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, आप अंदाजा लगा सकते हो? चलिए मैं ही सुना देती हूँ कि शिष्य ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इस तरह की बात के लिए लोगों को पैसा देता रहता हूँ और तुम मुझे ये मुफ्त में दे रहे हो। नगर के भीतर प्रवेश करो। ज्ञानी पुरुष ने कहा, ये नगर तुम्हारा है। 4वीं शताब्दी में डेजर्ट फादर्स ने, जो कि सन की पात्रों का एक संकलन था, स्किटी के निकट रेगिस्तान में जाकर के पूजा और त्याग का जीवन जीते हुए त्याग एवं परेशानियों के महत्व को दर्शाने वाली ये कथा बताई। हालांकि वह सिर्फ कष्ट नहीं था, उसने शिष्य को ज्ञान के नगर में प्रवेश दे दिया। कठिन परिस्थितियों में उतने प्रभावी ढंग से जीने के पीछे दृष्टिकोण में बदलाव लाने की स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की उसकी क्षमता मुख्य कारण था। नजरिए में बदलाव लाने की क्षमता एक अत्यंत ताकतवर एवं प्रभावशाली उपकरण है जो हमें जीवन में रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। दलाई लामा ने बताया, चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता बहुत लाभकारी होती है। इसके अभ्यास से व्यक्ति कुछ अनुभवों, कुछ त्रासदियों की मदद से दिमाग को शांत कर सकता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर बात और घटना के विभिन्न पहलू होते हैं, हर चीज सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए मेरे मामले में मैंने अपना देश खो दिया, उस दृष्टिकोण से ये बहुत दुख की बात है। इससे भी ज्यादा दुख की और कई बातें हुई है, हमारे देश में बहुत तबाही हो रही है। परंतु मैं अगर इसी बात को अलग नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है कि यदि स्थिति यथावत होती, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो बहुत से अवसरों पर आज सिर्फ चलते रहते हैं, आप दिखावा करते रहते हैं। परंतु जब आपके सामने निराशाजनक विपरीत परिस्थितियां आती है तो दिखावा करने का समय नहीं मिलता, तो उस दृष्टिकोण से वह दुख भरा अनुभव मेरे लिए बहुत लाभकारी है। ये बात कौन कह रहे हैं? दलाई लामा। मैं नहीं कह रही हूँ, दलाई लामा। तो शरणार्थी होने के नाते कई नए लोगों से भेंट होने के अवसर मिलते हैं, भिन्न धार्मिक परंपराओं और अलग अलग व्यवसाय के लोग मिलते हैं, जिनसे यदि मैं अपने देश में रह रहा होता तो कभी ना मिला होता, तो इस नजर से ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहा। ऐसा देखने में आता है कि जब कभी समस्या आती है तो हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाता है, हमारा पूरा ध्यान उस समस्या के बारे में चिंता करने पर होता है, और हमें ऐसा लगता है मानो उस तरह की समस्या सिर्फ हमें ही हो रही है। इससे व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है, जिसके कारण समस्या और भी बढ़ जाती है।

इसे भी कुछ हो ही जाता है। अगर आप सिर्फ उस घटना को देखते रहेंगे तो वह और भी बड़ी लगने लगती है। अगर आप किसी समस्या को बहुत नजदीक से, बहुत ध्यान से देखने लगेंगे तो ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी ज्यादा बड़ी घटना से उसकी तुलना करेंगे तो वह आपको छोटी दिखाई देगी और आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। तो समझे, अपने दृष्टिकोण को बदलिए। समस्याएं तो आएगी, लेकिन हमें किस नजरिए से उसे लेना है, किस दृष्टिकोण से उसे लेना है और उसका सामना करना है, ये हमें सोचना है। ठीक है, तो आइए अभी तो सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के

0: पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं। ये खुश मिजाज दोस्ती का बंधन भी बड़ा अजीब है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। ये शेर तो ऐसे ही मुझे याद आ गया तो आपको सुना दिया है। हर शेर में अच्छे अच्छे भाव छिपे हुए होते हैं, तो भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सुना ही देती हूँ आप सभी को किसके भाव कितने सुंदर है। तो हम बात कर रहे थे दृष्टिकोण के, दृष्टिकोण किस तरह का रखना वो अपने हाथ में होता है। मान लीजिए किसी पर आपको गुस्सा आता है, आहत होने के बाद स्वाभाविक और तत्काल प्रतिक्रिया गुस्सा आना है। बहुत से मामलों में दुख होने के बाद सिर्फ गुस्सा आने की बात नहीं है, आप उस घटना के बारे में बाद में सोचते हैं और हर बार उसके विषय में सोच करके गुस्सा आता है ना। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जिस व्यक्ति के कारण आपको गुस्सा आता है उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ गुण भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जिस बात से आपको गुस्सा आता है उसी ने आपको कुछ अवसर भी दिए हैं, जो अन्यथा आपके अपने नजरिए से मिलना संभव नहीं थे। तो प्रयास करने से आप एक ही घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, इससे लाभ होता है। परंतु यदि आप उस व्यक्ति की अच्छी बातों को देखना चाहें लेकिन उसमें ऐसा कुछ न हो, तो यहाँ मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ समय निकाल करके उस परिस्थिति पर किसी अलग नजरिए से विचार कीजिए, परंतु ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अत्यंत पेने और प्रत्यक्ष ढंग से। आपको तर्क करने की अपने समस्त सामर्थ्य का उपयोग करके उस स्थिति को जितना हो सके निष्पक्ष रूप से देखना होगा। उदाहरण के लिए आप ये सोचे कि जब आपको किसी व्यक्ति पर गुस्सा आता है तो वह आपको 100% गलत दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपको कोई अच्छा लगता है तो उसमें आपको 100% गुण ही नजर आते हैं। परंतु ये सोच सच्चाई से मेल नहीं खाती। यदि आपका मित्र, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, आपको किसी तरह की हानि पहुंचाने की चेष्टा करे तो अचानक आपको लगेगा कि आपके मित्र में 100% अच्छे गुण नहीं है। इसी तरह आपका शत्रु, जिसे आप नापसंद करते हैं, यदि आपसे क्षमा मांगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो शायद आपको वह 100% बुरा नहीं लगेगा। तो बदल गया ना दृष्टिकोण। इस तरह समय समय पर हमारे दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं और आपको लगता है कि उस व्यक्ति में कोई अच्छा गुण नहीं है, तो भी यह सच है कि कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं होता। अगर आप कोशिश करें तो आपको उसमें कुछ सद्गुण मिल जाएंगे। किसी को बुरा या नकारात्मक मानने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति के असली स्वभाव के कारण नहीं बल्कि आपकी अपनी मानसिक सोच पर आधारित धारणा के कारण है। इसी तरह जिस परिस्थिति को शुरू में आप 100% नकारात्मक मान लेते हैं उसमें भी कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। परंतु मेरा ख्याल है कि अगर आपको खराब परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल भी जाए तो ये काफी नहीं होता। आपको इस विचार को पुष्ट करना चाहिए, आपको वे सकारात्मक बात तब तक बार बार याद दिलानी होगी जब तक आपकी भावना न बदल जाए। सामान्य तौर पर बात करें तो अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति हो तो किसी विचार को एक या दो बार अपनाने से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। सीखने, प्रशिक्षण लेने और नए दृष्टिकोण से अभ्यस्त होकर ही आप उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। तो यह हुआ आज का खुशनुमा जीवन की बातें। तो बस हमेशा अपने दृष्टिकोण को सही बनाए रखें और सदैव खुश रहें। तो आइए, समय हो चला है फिर से आपको एक गीत सुनाने का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: मैं हूँ जयप्रदा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नई नई व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में परवल का अचार। परवल की सब्जी तो हम बनाते ही है, आइए आज आपको अचार बनाना सिखाएंगे। तो पेन और डायरी ले लीजिएगा और सामग्री लिखिएगा 250 ग्राम परवल। फिर आप लीजिए 2 चम्मच राई के, 2.5 चम्मच सौंफ लेना है और 1.5 चम्मच लीजिएगा जीरा, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, थोड़ी सी हींग ले लीजिए चुटकी भर और 3 कच्चे आम ले लीजिए, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो ये हो गए परवल के अचार की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा, परवल 250 ग्राम 2 चम्मच ले लीजिए राई और 2.5 चम्मच सौंफ लेना है, फिर आप 1.5 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए और कच्चे आम ले लीजिए 3, सरसों का तेल आवश्यकता के अनुसार। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद परवल का अचार कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है परवल का अचार। सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा। परवल, राई, सौंफ, जीरा, हल्दी, हींग, कच्चे आम, सरसों का तेल और नमक। आइए अब अचार बनाएंगे। आप पहले तो परवल की धुलाई कर लीजिए, पोंछ लीजिए इसको स्वच्छ कपड़े से। फिर परवल को खुरच कर गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। फिर राई बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीस लीजिए। अब आप एक पतीले में पानी उबाल लिए और जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ठीक है, जिससे परवल हल्का नरम हो जाएगा। इसे अब धूप में कपड़े पर सूखने डाल दीजिए। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम को कद्दूकस करके डाल दीजिए। तो इस तरह परवल का अचार बन गया है। अगर आम न हो तो, आम नहीं मिलता हो तो अमचूर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इस मिश्रण को आप एक बर्नी में भर दीजिए। यदि तेल कम हो तो ऊपर से तेल डाल दीजिए और 8-10 दिन धूप दीजिए। धूप में लगा करके फिर आप हींग डालिए बारीक, ठीक है, बारीक थोड़ी सी हींग डालिए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और बस फिर आप खाइए और खिलाइए। तो इस तरह परवल का अचार बनाया जाता है। पुनः विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परवल की धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके खुरच करके गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए, ठीक है। फिर राई को बारीक पीस लीजिए और सौंफ को दरदरी पीसना है। अब आप एक पतीले में पानी उबालिए। जब पानी उबलने लगे तो परवल के टुकड़े उसमें डाल करके बस 2 मिनट में उतार लीजिए, ताकि परवल हल्के से नरम हो जाए। फिर इसे अब धूप में कपड़े पर सुखाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है, स्वच्छ कपड़े पर सुखा दीजिए और धूप लगाइए इसको, ठीक है। फिर 3-4 घंटे बाद परवल में सारे मसाले और तेल मिला दीजिए। आम अगर हो तो कद्दूकस करके डालिए, नहीं है तो बस आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए इसमें। और इस मिश्रण को एक बर्नी में भर दीजिए और इसमें अगर तेल कम हो तो डाल दीजिए। तेल तरमा रखिए, मसाला डूब जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको 8-10 दिन धूप में लगाइए बर्नी को। उसके बाद बस आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, अच्छी तरह मिक्स करके अब आप खा सकते हैं। तो ठहरिए, खाएंगे तो जरूर, लेकिन पहले क्या करेंगे, आप सभी को पता है, तो लीजिए एक सच्चा थाली। थाली में परोठे रखिए, क्योंकि अचार के साथ परोठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो परोठे रखिए, अचार रखिए, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के रखिए। ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा परवल के अचार का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। आज मेरे प्यारे श्रोता बंधु ऐसी हस्ती से मिलाएंगे जिनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और आप छत्रपति शिवाजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके ही वंशज है। तो मनीषा जी भोसले हमारे साथ बने हुए हैं। आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। एक तो आपको पहले ही बताया है कि आप छत्रपति शिवाजी के 14वें वंशज हैं, उनके ही कुल की बहुरानी हैं। फिर BIT आपने किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हैं और आप MBA HR एंड मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट है आप, और माइंड साइकोलॉजी का भी आप काम करते हैं, सोशल वर्कर भी है। आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब किन किन विशेषताओं का आपके सामने बताऊं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो आइए उनसे मिलेंगे और आज हमको बहुत ही अच्छे सामान्य जानकारी देंगे कि गर्भवती बहनें, जैसे कि शिवाजी जब जीजाबाई के गर्भ में थे तो किस तरह जीजाबाई ने शिवाजी को अच्छे अच्छे संस्कार दिए गर्भ के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बातें हमको बताएंगे। मनीषा जी आपका स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार सभी श्रोतागणों का।
1: तो मनीषा जी आप हमें बताइएगा कि किस तरह गर्भवती बहनें जो है वो अपने बच्चों को गर्भ में ही अच्छे संस्कार दे सके।
2: पहले तो गर्भ संस्कार, हम तो पहले से जानते हैं कि शिशु एक चैतन्य जीव है जो अपनी माता के गर्भ में हर बातें माता की ग्रहण करता है, सुनता है, और जो भी व्यवहार है वो सभी आदि को ग्रहण करता है। हमारे पूर्वजों के काल से ही ये बातें सुनते आए हैं कि गर्भ संस्कार होते हैं, और वो हम जानते हैं, साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। जैसे कि आपने कहा कि शिवाजी महाराज की माता छत्रपति शिवाजी को अपनी माता जीजा माता ने उनको अपने गर्भ में ही तलवारबाजी से लेकर हर एक कला उन्होंने गर्भ में ही सिखाई। वो हर कला से निपुण थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पूरा गढ़ जीत लिया था। ये जो है ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है। पहले तो हम गर्भ संस्कार का ज्ञान और विज्ञान के बारे में समझते हैं। बच्चे के गर्भ में आने से ही उसके विकास की जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माता पिता की होती है। उनके योगदान भी, उनका सहयोग भी उनके माता पिता का बच्चे की विशेष जीवन यात्रा को सुधारने में मदद करता है। पहले तो गर्भ संस्कार क्या है? मैं तो संस्कार तो हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्भ में क्यों और संस्कार क्या है? माँ का हर क्षण हर पल बच्चों से जुड़ा होता है। वो माता की हर बात को ग्रहण करता है। माता की हर बात इंक्लूडिंग माँ का खाना पीना, विचारधारा, मानसिक स्थिति और परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में रह रही है, इन सभी बातों का सूक्ष्म असर अपने बच्चों पे पड़ता है।
1: गर्भ में भी?
2: गर्भ में भी,
1: चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो,
2: वो सभी परिस्थिति को वो महसूस करता है। चैतन्य जीव है तो उसको हर चीज ग्रहण कर लेता है। तो इस सभी बातों को गहराई से समझने की बात है। इनका परिणाम हम प्रत्यक्ष जो समय के बाद ही देख सकते हैं। अभी तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले तो जानते हैं कि हमारा साइंस भी इस बात से सहमत है और उसको सिद्ध कर चुका है। हम लोगों ने देखा है, साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है कि कैसे गर्भ के बच्चों में असर पड़ता है माता का। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक प्रिंसेस है, उन्होंने मतलब जिस परिस्थिति में किसी लड़के से शादी किया तो वो सामान्य घर का था। इसका उसके माता की वजह से, उसके परिवार में जो बच्चे उसके गोद में था उसकी वजह से उनको जो रॉयल फैमिली बिलोंग करती थी, तो उनका जो भी बच्चा हुआ वो बहुत रॉयल हुआ। उसके पिता का कोई भी संस्कार उसने ग्रहण नहीं किया। हालांकि ये ऐसा तभी हो सकता है जब माता पूरी तरह से वो खुशी, वो रॉयल्टी को महसूस करे। और अगर वो परिस्थिति में वो रॉयल्टी को, जिस परिस्थिति में वो 13 हफ्ते, जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं गर्भ के, तो 13 हफ्ते को उन्होंने बहुत रॉयल्टी से इंजॉय किया, हर चीजों ने उनमें रॉयल्टी से देखा, इसलिए उनके बच्चों पर उनके पिता का कोई असर नहीं हुआ। ओनली सिंगल पेरेंट माँ एज अ माँ वो हर अपने बच्चे को अपने जैसा बना सकती है। वो जैसा चाहती है, जिस तरह का संतान चाहती है, जिस तरह की चरित्र से लेकर स्वभाव, उसकी हर चीज को वो स्वतः ही बिल्ड कर सकती है। वो माँ खुद जिम्मेदार होती है और पिता का कर्तव्य है कि वो उनको सहयोग दे, प्यार और सहयोग उनका उनके बच्चों को हेल्प करता है। ये सारी बातें उनके इज्जत करती है। तो जानते हैं कि माताओं का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माताओं की आदतें कैसी होनी चाहिए, उनका इच्छा क्या चल रही है, उनकी इच्छा मनोकामनाएं जो है, उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। ये शारीरिक, मानसिक और इच्छाएं ये भावनात्मक स्वास्थ्य बनाती है बच्चों की। स्वास्थ्य तो हेल्थ भी होता है, लेकिन ये जो है माइंड साइकोलॉजीज को बोलते हैं, ये सब बचपन में डेवलप होता है, ये 13 हफ्तों के अंदर ही डेवलप हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हम लोगों ने सुना है महाभारत में, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, अभिमन्यु एक चक्रव्यूह को काटने के लिए कौरवों ने अर्जुन को बहुत फुसला कर दूर लेके गया। जब वो चक्रव्यूह में पड़े फंसे तो 23 साल का अभिमन्यु बोला कि मैं जानता हूँ इस चक्रव्यूह को कैसे काटा जा सकता है। उससे पूछा गया कि युधिष्ठिर ने कि आप कैसे जानते हो, तो उसने बताया मैं अपने माता के कोख में, सुभद्रा के कोख में जब था, तब मेरे माता को लेबर पेन से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह को कैसे काटना चाहता, कैसे भेदा जा सकता है, तब मैंने वो बात सुनी थी और अब मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ। इसका ये सिद्ध प्रमाण है जो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है, महाभारत में ये जो घटना दिखाई गई है स्पष्ट होता है कि ये होता है, ये काल्पनिक नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चाई है। हम समझते हैं कि जो भी गर्भ का संस्कार है वो कैसे दे सकते हैं। वैसे तो 14वें दिन तक कुछ होता नहीं है बॉडी में चेंजेस, लेकिन आफ्टर 14 डे फर्स्ट न्यूरॉन डेवलप होता है और उसके बाद ही हर 2.5 घंटे में, हर 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं, वो पूरे ब्रेन साइकिल पूरे बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो वो उनमें छोटा सा ही होता है। हमें करना क्या चाहिए, उसके बाद जो शरीर डेवलप होता है, ज्ञान इंद्रियों का निर्माण होता है, उसमें हम विशेष योगदान माँ का क्या हो सकता है, उनका आहार कैसा होना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, शरीर और मानसिकता, उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा जी, ये सब हम आपसे जानेंगे जरूर कि ये क्यों होना चाहिए, लेकिन अभी समय का ध्यान में रखते हुए अभी तो एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद आपसे फिर से इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, मनीषा जी हमारे साथ बने हुए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी इन्होंने कि गर्भ में किस तरह माँ के हर क्रिया का असर पड़ता है बच्चे में। तो माताएं चाहे तो गर्भ में अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया है अभिमन्यु का, शिवाजी का। तो इस तरह आप जिस तरह अपने बच्चे को चाहती है उस तरह का आप बना सकती है, गर्भ के अंदर ही तैयार कर सकती है, ठीक है ना। तो इस बारे में और भी विस्तृत जानेंगे, लेकिन तो आइए सुनाएंगे आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं कि किस तरह दूषित जल से स्वयं को बचाना है और स्वस्थ रखना है तो आप तुलसी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा। और खुशनुमा जीवन की भी बहुत ही अच्छी बातें की है, अपने दृष्टिकोण को बदल के देखिए, सचमुच खुशियां हमारे सामने खड़ी है। और परवल का जो अचार बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और मनीषा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह गर्भ में बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आज की किचन टिप्स इस प्रकार है, आलू की सब्जी बनाते समय नमक सब्जी बन जाने के बाद डालिए। ऐसा करने से सब्जी स्वादिष्ट बनने के साथ साथ जल्दी गल भी जाएगी। आज का अनमोल वाणी इस प्रकार है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआ की होती है, जो जुबा तक पहुंचने से पहले ईश्वर तक पहुंच जाती है। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, आपको एक प्यारा सा भजन भी सुनाऊंगी और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

तारो, भक्तों को तारा तूने सत्संग में लाकर, भक्तों को तारा तूने सत्संग में लाकर, कीर्तन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो भव से पारे उतारो, हमको भी दे दो सहारा नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको

0: साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: बस सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म।
2: हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, यहाँ अब ना कोई सहारा है ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं।
1: और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में, उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं बात मत पूछो।
3: दीदी, रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे।
4: अच्छा। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है?
5: दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं।
4: क्या, ऐसा क्यों?
5: वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं।
4: अरे, हम है ना आपके साथ।
5: हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं।
4: ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।

0: पर अभी ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर छोड़ना ही पड़ेगा। ना आदमी रहा ना सहारा, अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गांव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे।
1: हाँ, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा।
0: सरिता, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
2: ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है
0: बहन जी? अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ?
2: अकेली क्यों, भगवान है ना साथ में।
0: हाँ हाँ, भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी ये?
2: इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं? लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन के हर समस्या का समाधान है।
0: हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस।
2: माता जी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना।
1: हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी।
0: यहाँ ये अकेली एक औरत मतलब कर भी क्या सकती है?
1: हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा।
2: आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है।
3: वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं।
1: लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं।

0: हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहां वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दो जवान बेटे और फिर अपना पति, क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है।
1: आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए।
2: हाँ दीदी, मेरे अंदर अब वह बात ही नहीं रही।
0: हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
3: क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना।
0: जी जी क्यों नहीं, ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है।
2: दीदी हम जरूर सीखेंगे उसे, मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी, अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी।
1: लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है।
0: ऐसा क्यों, स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है। हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है।
2: हाँ जी दीदी मैं समझ गई, अब मैं डर कर नहीं हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी।
1: क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगे?
0: सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है। जिसके साथ ही है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
3: ये हुई ना बात, दीदी आपने तो सबकी सोच ही बदल दी।
4: दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहाँ पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी।
0: क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।
4: मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ, पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है।
1: बहन जी आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है। न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया। अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा।
5: आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है। हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता और ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं। यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: छोटे छोटे बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज़ फॉर अ पर्पज़ ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, शनिवार की सुप्रभातम, कैसन हैं? आशा करते हैं सब लोग बारिश का बहुत मज़ा ले रहे होंगे, गर्मा गर्म चाय, कहीं पकौड़े, कहीं समोसा और कहीं और चीज़ ऐसी गर्म गर्म बना के खा रहे होंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान में बारिश पड़ रही, बहुत पानी की ज़रूरत रही भाई, तो हम भी खुश हैं, आप लोग भी खुश होंगे ऐसी आशा करते हैं। और आपकी प्रभा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत करती है। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एक कहानी से, बहुत सुंदर कहानी है। शमशान से लौटते समय पूरा परिवार में गहरा सन्नाटा रहा। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने प्रिय मित्र रिश्तेदार को अंतिम विदाई दी थी। किसी की आंखें नम थी, कोई चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, जीवन इतना छोटा क्यों है? इस बीच 9 साल का आर्यन अपने दादाजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था और कुछ दूर चलने के बाद उसने मासूमियत से पूछा, दादाजी जो अंकल आज चले गए, कब अपना घर, गाड़ी और बैंक का सारा पैसा भी अपने साथ ले गए? दादाजी हल्का सा मुस्कराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं बेटा, इंसान इस दुनिया से खाली आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ सिर्फ उसके अच्छे कर्म, लोगों की दुआएं और उसकी अच्छी यादें जाती है। आर्यन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने ऐसा सवाल पूछा कि वहाँ चल रहे सभी लोगों के कदम रुक गए। आप सब कुछ यहीं रह जाता है तो लोग अपने ही लोगों से बात करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी बातों पर सालों तक नाराज क्यों रहते हैं? अगर एक दिन सबको चले जाना है तो लोग गले लगाकर क्यों नहीं जीते? उसकी मासूम आवाज सुनकर सबकी आंखें झुक गई। किसी के पास उत्तर नहीं रहा। दादाजी ने उसे सीने से लगाया और बोले, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है अभी बहुत समय है, वो माफ़ी कल मांग लूँगा, प्यार बाद में जता दूँगा, रिश्ता फिर कभी ठीक कर लूँगा, लेकिन समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। कई बार कल आने से पहले ही जिंदगी की किताब बंद हो जाती है। आर्यन ने तुरंत कहा, दादाजी मैं बड़ा होकर कभी किसी अपने से नाराज होकर नहीं सोऊंगा। अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसी दिन माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मुझे किसी को खोने के बाद पछतावा नहीं है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। घर पहुँचते ही एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जो दो भाई बरसों से जमीन के झगड़े में बात नहीं करते रहे, उनमें से छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन लगाया, भैया अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, जमीन बाद में भी बांट जाएगी, लेकिन अगर रिश्ता टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर बड़े भाई की भर्राई हुई आवाज़ आई, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं भी तुझे बहुत याद करता था। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उधर परिवार की एक बहू जो कई महीनों से अपनी सास से नाराज थी, चुपचाप उनके कमरे में गई, उनके पैरों पर सिर रख कर बोली, माँ जी मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उठा कर गले लगा लिया। उसी शाम में एक बेटे ने बरसों बाद अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया, एक पिता ने अपने बेटे को पहली बार गले लगाया, एक बहन ने अपनी रूठी ही बहन को संदेश भेजा, बहन रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं, घर आ जाओ। धीरे धीरे पूरे परिवार का माहौल बदले लगा। दादाजी ने रात को सभी बच्चों और बड़ों को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा धन कमाना बुरी बात नहीं है, बड़ा घर बनाना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उन दीवारों के बीच रहने वाले अपने ही लोग हमसे दूर हो जाएं, तो वो घर महल नहीं सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर रह जाता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन की धवलता यानी मन की पवित्रता तभी बनी रहती है जब हमारे दिल में प्रेम, क्षमा और अपनापन हो। जो व्यक्ति दूसरों को माफ़ करना सीख जाता है, उसका मन कभी बोझिल नहीं होता। जो हर दिन प्रेम बांटता है, उसके जाए के बाद लोग उसकी दौलत नहीं, उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं। फिर उन्होंने सबको एक छोटा सा संकल्प दिलाया, कभी भी गुस्से में सोने से पहले अपने अपनों से बात करेंगे, गलती होने पर माफ़ी मांगने में देर नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखेंगे, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। सभी ने हाथ जोड़कर ये संकल्प किया। समय बीतता गया। उस दिन की घटना पूरे परिवार के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। अब घर में त्यौहार सिर्फ मिठाइयों से नहीं बल्कि दिलों के मिलने से मनाए जाए लगा। जहां पहले शिकायतें रहीं वहां अब मुस्काने थी, जहां पहले दूरी रही वहां अब अपनापन हो गया, और जब भी कोई नया विवाद शुरू होता सबसे छोटा आर्यन मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता, याद है ना शमशान से लौटते समय दादाजी ने क्या कहा था, आखिर में साथ सिर्फ कर्म और प्यार ही जाता है। बस इतना सुनते ही सबका गुस्सा शांत हो जाता। उस दिन सबने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन कमाने में नहीं बल्कि ऐसे रिश्ते कमाने में है जिनकी आंखें हमारे जाने के बाद भी हमें ये प्यार से याद करें। ये छोटी सी बात से आप क्या सीखें, जिंदगी बहुत छोटी है, अपनों से प्रेम जताने, माफ़ी मांगने और रिश्ते निभाने में कभी देर मत कीजिए। धन पद और संपत्ति यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपका प्रेम, आपके संस्कार और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाए के बाद लोग आपकी दौलत नहीं आपकी इंसानियत को याद करें। देखिए भाई, ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए तो बहुत आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। परिवार आपका, जैसे कहते हैं घर घर स्वर्ग बनना चाहिए, वो बन जाएगा। कहे कि आज अगर कोनो चीज़ की कमी है तो वो अपनापन की ही कमी है, और वो जब जीवन में आ जाता है तो जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। समय और शब्द दोनों अनमोल है, इन्हें सोच समझकर खर्च करें। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे और जीवन सुखमय बन जाएगा। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, दूसरों से नहीं अपने कल से बेहतर बने, यही निरंतर प्रगति का मार्ग है, यही में जीवन की सच्ची सफलता छिपी है। किसी ने का खूब कहा है कि साइकिल तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो, और इसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो। दोनों चैन बहुत जरूरी है। सच्ची सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार और सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। किसी ने का खूब कहा है कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो आपस में बात करने से ही बात बनती है, आपस में बात न करने से आम तौर पर बातें बनती है जिसका लोग हंसकर मजाक उड़ाते हैं। आशा करते हैं आप हमारी बात पर ध्यान देंगे और अपने घर को, अपने संबंध को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं माफ़ करेंगे, अपनापन दिखाएंगे और जीवन में वो कमाई करेंगे जो हमारे साथ जाए वाली है, अच्छे कर्म, खुशी और दूसरों को प्यार देना। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा ये गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्रतिशोध की अग्नि और भीष्म का पतन। महाभारत के समय काशी नरेश ने अपनी तीन पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबलिका का स्वयंवर आयोजित किया। उसी समय हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म अपने छोटे भाई विचित्र वीर के विवाह के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन राजा सालों को अपना पति मान चुकी हूं, कृपया मुझे उनके पास जाने दे। भीष्म धर्म का पालन करने वाले थे, उन्होंने अंबा को सम्मान पूर्वक साल्व के पास भेज दिया। लेकिन जब अंबा वहां पहुंची तो राजा साल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो कहा, तुम्हारा हरण भीष्म कर चुके हैं, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इस सुनकर अंबा का हृदय टूट गया। वो फिर भीष्म के पास लौटी और बोली, मेरी ये दशा तुम्हारी वजह से हुई है, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं कर सकता। अब अंबा के पास कोई सहारा नहीं बचा। वो एक एक राजा के पास न्याय की गुहार लेकर गई, लेकिन भीष्म जैसे अपराजय योद्धा से शत्रुता मोल लेने का साहस किसी में नहीं रहा। अंत में वो भगवान परशुराम के पास पहुंची। परशुराम को उसकी पीड़ा पर दया आई। उन्होंने अपने शिष्य भीष्म को युद्ध की चुनौती दी। गुरु और शिष्य के बीच लगातार 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, देवता भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अंत में कोई विजेता नहीं बना। परशुराम भी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। अंबा समझ गई कि इस जन्म में उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंबा ने कहा, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं स्वयं भीष्म के वध का कारण बन सकूं। भगवान शिव ने कहा, अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इस सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी। समय बीतता गया और अंततः महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र में जब शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे खड़ा हुआ, तब भीष्म ने उसे पूर्व जन्म में स्त्री होने के कारण लक्ष्य बनाना उचित नहीं समझा। उसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर असंख्य बाण चलाए। महान योद्धा भीष्म सरसैया पर लेट गए और इस प्रकार अंबा का वर्षों पुराना प्रतिशोध पूरा हुआ। अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका परिणाम एक दिन अवश्य सामने आता है। शक्ति के साथ न्याय, करुणा और सही निर्णय भी उतने आवश्यक है। इस जीवन में हम जरूर ध्यान रखें, सिर्फ शक्ति से कुछ नहीं होता, जीवन में कुछ न कुछ हमारे हाथ में भी होना चाहिए। और सिर्फ क्रोध ही या जिद ही इंसान को सुख नहीं देती, कई बार उसको हमें अपनों के लिए त्यागना भी पड़ता है। और जो इंसान ये बात को समझ जाता है, वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाता है। आपके बोल कितने भी महान हो, परंतु आप अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाएंगे। सच्ची सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार और सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। किसी ने कहा, खूब कहा है कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो आपस में बात करने से ही बात बनती है, आपस में बात न करने से आमतौर पर बातें बनती हैं। हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करें, जीवन में सुख और शांति स्वतः बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार झुकना जानता है, वो कभी टूटता नहीं। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। शायद ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लेना चाहिए। और जिसने इस सीख को समझ लिया, उसका जीवन बल्ले बल्ले है। जिनको परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर भरोसा है, उनके निष्पक्ष न्याय पर विश्वास है, उन्हें इस संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए, कोई भी लक्ष्य पहली बार में ही सफल नहीं होता, इसलिए धैर्य को हथियार बनाकर आगे बढ़ते रहिए। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। आज हम शुरू से वही बात कह रहे हैं, जीवन में अहंकार ना हो, जीवन में नम्रता हो, क्षमा हो, प्रेम हो, अपनापन हो, तब जीवन हमारा संवर जाता है। हर पल खुद को शांत रखने से आप खुद को ठीक कर लेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास फिर से जाग उठेगा। कहे कि शांत मन से जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें सफलता अवश्य मिलती है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं। सड़क जो है वहीं की वहीं है, शिक्षक ही जीवन भर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। एक शिक्षक से पढ़ा लड़का और

आईएएस ऑफिसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है और बड़े बड़े पद पर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, लेकिन शिक्षक शिक्षक ही रह जाता है। गाड़ी सड़क पर से गुजरती है, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, सड़क वहीं की वहीं रह जाती है। इन दोनों का धन्यवाद करें, जीवन में खुश रहेंगे। और चलिए यही बात पर फिर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। आज लाइव कर रहे हैं, फ़ोन घनघना दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं गीत।

कि पैसे कमाएंगे तो घर बनाएंगे तो सुख होगा। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे की शादी करता है, कारण क्या कि घर में यदि बहू आएगी तो सेवा करेगी तो सुख की प्राप्ति होगी। आदमी

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: टुनटुना, राजू आज बहुत उदास रहा। आजू के हाथ से गिरने की वजह से मोबाइल की स्क्रीन टूट गई रही। शोरूम वाले ने उसे कल तक ठीक करके देने के लिए बोला है। क्या करूं, टाइम ही पास नहीं हो रहा। राजू, ओ राजू, अंदर से माँ ने आवाज़ लगाई तो राजू आया माँ कहकर उठकर चल दिया। पिछले 3-4 साल में शायद ये पहला अवसर था जब माँ की एक आवाज़ पर राजू ने जवाब दिया हो। बोलो माँ। बेटा, आज घर में सब्जी नहीं है, सुबह पानी की मोटर ने पानी देर से उठाया बेटा, इसलिए मैं तेरी मौसी बगल वाली आंटी के साथ सब्जी लेने नहीं जा पाई। मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा ये काम कर देना बेटा, माँ ने लगभग मनोहार करते हुए कहा। खाली बैठने से अच्छा है चलो आज बाजार ही घूम आता हूँ। मन ही मन मैंने सोचा, अच्छा बताओ क्या लाना है। माँ ने मुखमंडल पर एक नई सी चमक थी। माँ ने सब्जी की लिस्ट और थैला मुझे थमा दिया। बाजार जा रहे हो बेटा, ठहरो मैं भी चलता हूँ, दादाजी ने छड़ी उठाते हुए कहा। हाँ दादाजी, चलिए। बेटा, मेरा ये चश्मा टूट गया है, बहुत दिन हो गए। तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से टाइम नहीं लगता, मिलता ही नहीं टाइम, तुम ही ठीक करवा कर ला दो। दादी जी ने मेरी तरफ बढ़ते हुए टूटा हुआ चश्मा मुझे थमा दिया। मैं और दादाजी स्कूटी पर बाजार चल दिए। दादाजी को नाई की दुकान पर छोड़कर मैंने सब्जी ली और दादी जी के चश्मे का फ्रेम बदलवाया। मैं थोड़ी ही देर में फ्री हो चुका था। नाई की दुकान पर पहुंचा तो दादाजी का नंबर अभी नहीं आया था, कटिंग करवानी थी उन्हें। बेटा, अभी मुझे आधा घंटा और लग जाएगी, इतने तुमको कोई और काम है तो कराओ, दादाजी ने कहा। अरे हाँ, याद आया, रमेश का घर यहीं बगल में ही तो है, कितनी बार बोल चुका है कभी घर आना यार। मैंने मनी मन सोचा। मैं रमेश के घर पहुंचा तो घर पर ही था। आंटी से नमस्ते हुई और हम वहीं ड्राइंग रूम

0: कहतिया। वाकई कुल्फी थी भी गजब की, भूल ही गया था उसका स्वाद, अगर पहले कभी खाई भी होगी तो याद नहीं। हम वहाँ से चलकर घर पहुँचे तो दोपहर में 2 बज चुके थे। दादाजी बोले, निहाल कर दिया बेटा, तुम जा रहे थे तो साथ चला गया, नहीं तो गर्मी में हालात खराब हो जाती। दादाजी ने स्कूटी से लगभग उतरते हुए कहा, कितना आनंद था उस पल में। दादी जी के हाथ में जब चश्मा थमाया तो सैकड़ों आशीषों की पिटारी उपहार स्वरूप मिली। माँ ने भी फटाफट सिकंजी बनाकर पिलाई और पास बैठकर अपनी साड़ी से मेरा पसीना पोंछा। शायद बहुत बड़ी खुशी दी थी मैंने उन्हें आज सब्जी लाकर। थोड़ी देर में खाना तैयार बन हो गया। मैंने खाना खाया और सो गया। शायद थोड़ा थक गया था आज बाजार जाकर। 2 घंटे की नींद के बाद उठा तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। कैसे हो बरकुरदार, पापा ने पूछा तो मैंने ठीक से सिर हिला दिया। पार्क चलोगे मेरे साथ? खाली घर बैठने से तो अच्छा चलो आज पापा के साथ पार्क ही हो आता हूँ। इस सोच कर मैंने हामी भर दी। आधा घंटे बाद हम दोनों पार्क में थे। पढ़ाई, खेल कूद और न जाने कितने विषयों पर बातचीत हुई। पार्क में पापा के दोस्तों से भी मिला। शायद पहली बार ही मिल रहा था क्योंकि कभी मोबाइल से इत्र की दुनिया मैंने देखी नहीं थी। बड़ा फ्रेश सा महसूस कर रहा था आज मैं खुद को। 2 घंटे पार्क में बिताकर घर लौटे तो 8 बज चुके थे। खाना तैयार रहा। खाने के टेबल पर हम सभी ने बैठकर खाना खाया। खूब हंसी मजाक हुआ। माँ और दादाजी ने मेरी खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि आज मैंने बाजार के काम निपटाकर उनकी कितनी मदद की। क्यों बरखुरदार, आज तुम्हारे पास तुम्हारा टुनटुना नहीं है? पापा अक्सर मेरे मोबाइल को टुनटुना ही कहते हैं क्योंकि वो बजता ही रहता है, कभी व्हाट्सएप और कभी फेसबुक की नोटिफिकेशन की टोन से। पापा उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक कर देगा। तभी मैं सोचूं, हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से कृष्ण भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति, नमस्कार, कैसे हैं भैया?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: हाँ,
1: और आपने जो पर क्या बोला उसमें तो देखने को जाओ ना तो मैंने कई 25 से 30 ड्रावर बनाए होंगे।
0: हाँ,
1: और मैं खुद मेरे को गाड़ी सिखाने में कोई जुनून नहीं है मेरा। मैं खुद सीखा गैरेज के अंदर, 4 बहुत काम करके आगे पीछे करके मैं खुद सीखा।
0: अच्छा, बहुत अच्छी।
1: और ऐसा है कि कई लोग जो मैंने भी सीखा इसमें, कई सरकारी बसें चलाई, कोई तालुका पंचायत जिला पंचायत के अंदर ये लोग नहीं, ये वो कई कई बार मेरे को मिलते हैं कि भाई ये तो भाई आपकी बदौलत से हम ये हमको अच्छा है ये नौकरी मिली
0: जी,
1: तो ये लोग अपने को गुरु मानते हैं
0: जी। बहुत अच्छी बात है, दुआएं लोगों की आप प्राप्त करते हैं। हाँ, किसी को कोई गुण दे के सिखा के, बहुत अच्छी बात है भैया जी, जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमाई है जीवन में।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जी,
0: ऐसे ही।
1: और इनके भी आशीर्वाद हमको भी मिले तो इनके भी आशीर्वाद से भी हमको अच्छा है।
0: जी जी, बस यूं ही नेक कार्य करते रहिए, दुआएं इकट्ठे करती रहिए, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, वही सबसे बड़ा धन है। हाँ?
1: जी जी जी। और इनको मेरा मंत्र एक ही मैंने दिया है।
0: हाँ,
1: के देखो के दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुंचा दूंगी, और जरा सा नींद का झुका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
0: मैंने भी एक ट्रक के पीछे पड़ा था, धीरे धीरे चलोगे तो हर मोड़ पर मिलोगे, जोर से चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। यानी तेज गाड़ी चलाएंगे तो डेथ हो जाती है, तो फिर हरिद्वार में मिलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो हर मोड़ पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब जीवन में इतनी ज्यादा भी स्पीड ना हो, है ना? बहुत
1: जी जी
0: जी।
1: गुजराती में कहा के खुदना माटे बदा जीवे छे, पण बीजाने जीवाड़वा जीवी लईए ये जिंदगी जीवी कहेवाय।

0: सही बात है जी,
1: जी
0: बहुत अच्छे भैया, ऐसे ही दुआएं प्राप्त करते रहिए, देते रहिए, खुश रहिए, ठीक है।
1: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: धन्यवाद, पूरे रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से आपको भी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू।
0: ओके, तो पापा उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक कर कर देगा। तभी तो मैं सोचूं, आज हमारे बरखुरदार को हमारे पास बैठने का वक्त कहाँ से मिल गया, मैं बस झेप कर रह गया। सच्ची तो कह रहे थे पापा, शायद पिछले 3-4 साल में परिवार के इतना करीब मैं आज के अलावा शायद ही रहा था। खाना तो अक्सर मैं अपने कमरे में ही खाता था, वो आवाज़ लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन शायद आज पहली बार था जब मैंने हर किसी की पहली आवाज़ पर उनको जवाब दिया था, अच्छा चलो सो जाओ, सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ पार्क में चलना, सुबह की हवा और भी सुहानी होती है, पापा ये कहकर सोने चले गए। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया, मोबाइल पास नहीं था इसलिए बिस्तर पर पसरते ही नींद आ गई। गुर्र गुर्र की आवाज़ से अचानक आंखें खुल गई, देखा था सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन पापा ने तो सुबह 5 बजे उठने को कहा था, और इसका फ़ोन तो आज ठीक होकर मिलने वाला था, फ़ोन किसने लाकर रख दिया मेरे सिराने, ओ तो क्या ये सब सपना था, दिल ने खुद ही दिल से सवाल किया और दिल ने दिल को ही जवाब दिया, हाँ ये सपना था। उसने एक झटके से टुनटुने को टेबल पर रख दिया और माँ पापा दादाजी चिल्लाता हुआ नीचे की ओर दौड़ पड़ा, नाश्ते की टेबल की तरफ, जहाँ उसने अपने रिश्ते, उसकी खुशियाँ पलके बिछाए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टुनटुना अब भी बज रहा था, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका गुलाम आज आज़ाद हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि कहानी बताए का मतलब क्या है, आज हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं ड्राई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले जैसा प्रेम नहीं है। साइंस ने साधन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, लेकिन साइंस ने कहीं ना कहीं अपनों का प्यार, अपनों का साथ अलग कर दिया है। एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के हाथ में मोबाइल है और 6 अपने आप में बिजी है, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से हंसता नहीं, कोई किसी के काम नहीं आता, सब कुछ मोबाइल पे होए लगा, हर चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है, यूज़ करिए साधन सुविधा मिली है तो, लेकिन अति मत कीजिए। परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच आपकी सोच से अलग है, उस दिन से आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे। बदलाव से मत डरिए, कई बार वही नई खुशियों का द्वार खोलता है। अगर मैं दूसरों की कमियां मन में रखता हूं, तो वो शीघ्र ही मेरी बन जाएगी। मत रखिए, जो मन से शांत है वही जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत है। खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए सदा खुश रहो और खुशी बांटो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो सही समय पर सुख और सफलता बनकर लौटते हैं, इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करने का संकल्प ले, यही सच्ची कमाई है। चलिए यही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बताएंगे। सुनिएगा ये गीत, बहन जी को निनक वासा गीत सुना दीजिए।

0: बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के परम भक्त एक संत रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वो कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए संसार की हर वस्तु से बढ़कर प्रभु का प्रसाद था। एक दिन संत अपने शिष्य के साथ कोनो धार्मिक कार्य से हस्तिनापुर, अभी जो दिल्ली है, वहाँ गए। कार्य पूरा होने के बाद वो वापस वृंदावन लौट रहे थे। मार्ग में अचानक उनकी बैलगाड़ी टूट गई। शाम होए लगी और आसपास केवल एक छोटा सा भोजनालय दिखाई दिया। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब तक गाड़ी ठीक होती है आप यहीं पर विश्राम कर लें। भोजनालय का मालिक बड़ा श्रद्धालु था। उसने संत को पहचान लिया और तुरंत शुद्ध सात्विक भोजन बनवाया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा, ई भोजन स्वीकार करें। संत मुस्कराए और बोले, बस मैं केवल वही अन्न ग्रहण करता हूँ जिसे पहले मेरे ठाकुर श्री कृष्ण को भोग लगाया गया हो। इस सुनकर भोजनालय का मालिक, हेलो, इस सुनकर भोजनालय का मालिक बहुत दुखी हो गया। शिष्य भी सोचने लगा कि गुरुदेव सुबह से भूखे हैं, अब का होगा। उही समय जैसे स्वयं भगवान ने लीला रच दी। थोड़ी देर बाद एक रथ वहां आकर रुका। उसमें से एक भक्त दंपति उतरे। उनके हाथों में सुंदर बाल गोपाल की प्रतिमा थी। उन्होंने भोजनालय के मालिक से कहा, भैया जल्दी से सात्विक भोजन तैयार कर दो, हमारे लड्डू गोपाल के भोग का समय हो गया है। रास्ते में विलंब हो गया इसलिए हम समय पर घर नहीं पहुंच सके। हेलो
1: दादी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम संत हैं। नमस्ते दीदी, कैसे हो?
0: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे से देख कार्यक्रम वापस सुन रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ी से देर के बाद बात करूं आपसे, लेकिन फिर भी लेट हो गया बहुत।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी दीदी, बहुत अच्छी बातें हो रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला आपको, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम दीदी
0: जी।
1: और जो शुरुआत में आपने बताया कि परिवार में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लेकिन एक छोटी से छोटा सा जो लड़का ने परिवार को एक खुशियाँ वापस दे दी दीदी, ये एक ऐसा जो हम मानते हैं कि हम बड़ों से ही ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे की भी एक अच्छा काम कर देते हैं और खुशियाँ पूरी पूरा पूरे माहौल में खुशियाँ कर देता है दीदी। तो ऐसे ही बच्चे ने जो किया कि जो भाई नहीं बोलते थे, अनबन थी थोड़ी सी, तो पूरा परिवार एक इकट्ठा हो गया और पूरी खुशियाँ वापस आ गई दीदी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हम कोई बनबन फंसी है तो दीदी बहुत देर करते हैं, लेकिन देर नहीं करना है, तुरंत उसको माफी मांग लेना या
0: रिश्ता
1: जोड़ देना वापस, तो ये तो एक परिवार हो जाता है। वरना आज देखो कई भाई भाई वर्षों से नहीं बोलते और बोलते भी नहीं, जब तक वो कुछ पूरा हो जाता है फिर भी नहीं बोलता है दीदी, ऐसा हाल होता है अभी परिवार में। ऐसा नहीं करना दीदी, और बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आज का दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि टाइम पूरा होने की तैयारी है। नमस्ते दीदी, ओम शांति,
0: ओम शांति, थैंक यू। भोजनालय का मालिक आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत वही भोजन भगवान गोपाल को अर्पित कराया जो संत के लिए बनाया गया था। भोग के बाद वही प्रसाद संत के पास लाया गया। जैसे ही संत ने ये बात सुनी, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वो दौड़कर बाल गोपाल के चरणों में दंडवत लेट गए। भाव विभोर होकर बोले, हे मेरे श्याम, जहाँ मैं तेरे बिना एक ग्रास भी नहीं खा सकता था, वहाँ तू स्वयं मेरे लिए आ गया। मैं तेरा कितना ऋणी हूँ, तू अपने भक्त की छोटी सी भावना का भी कितना ध्यान रखता है। संत ने प्रसाद को अपने मस्तक से लगाया और बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उस दिन उन्हें वो प्रसाद अमृत से भी अधिक मधुर लगा। ये सब देखकर भोजनालय का मालिक भी रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे बाके बिहारी, मैं तो कभी कभी ही तुझे याद करता हूँ, फिर भी तू अपने भक्तों की लाज रखने स्वयं चला आता है, सचमुच तेरी करुणा का कोई अंत नहीं। उस दिन वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने समझ लिया कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि अपने सच्चे भक्तों की निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास में भी निवास करते हैं। जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है उसकी रक्षा और सेवा के लिए स्वयं प्रभु कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। उसकी लीला मनुष्य की समझ से परे है, इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। आशा करते हैं आप इन बातों को जरूर गौर करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे ताकि प्रभु की वरदान आप पर बरसते रहे, प्रभु की कृपा आप पे बरसती रहे और आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

मने घणो प्यारो लागे है यो सावण, मने घणो अच्छो लागे है यो सावण, मने घणो प्यारो लागे है यो सावण। सावण में बरखा आवे और नदियां भर भर जावे।

0: कर कर जावे मन घणो अच्छो लागे यो सावण मन
1: घणो प्यारो लागे है यो सावण रा गीत गाए रही है का होय रियो है
0: अरे राम राम कंचन आओ भाई आओ राम राम और जीव राजी है
1: बस राजी थारो गीत सुने वरे जीव राजी वेगियो
0: तना तो ठाई है के गीत का तो मने घणो ही शौक है आवे के नहीं आवे आपने तो गुनगुनाते रहनो
1: ना ना तू गीत तो अच्छो गावे मन तो पसंद आयो गीत थारो
0: तो पहले तो आपा अपना सगला श्रोता बंधु को स्वागत करा हाँ गावरी बातें कार्यक्रम में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: आप सगला ने खम्मा गणिसा
1: आप सभी रो अभिनंदन है
0: कंचन थू कह रही कि भाई ये गीत क्यों गारी सावन महीनो भाई लागवा वालो है सावन महीनो और सावन महीना का तो ठाट तू जाने ही है
1: हाँ वो तो है
0: तो
1: हरियाली री जू
0: हाँ चारों तरफ हरियाली होवे वशान मारो तो मन अबाणु हरियो भरियो हो गया है
1: हाँ सूखो छूको देखे देखे बोर वो जब में बरसात वरे जट हरियाली हरियाली हैंग जगह
0: हाँ वो कहवे कि प्रकृति ने देखा जतरे अपनो मन कतरो आनंदित वे जावे
1: वे वे सही बात कह रही है पेड़ पौधा हरा भरा वे वे जो पेड़ पौधा सूख जाए उन्होंने एक नवो जीवन मले परो
0: नयो जीवन मिले पेड़ पौधा ने और आपने उमंग उत्साह मिले
1: हाँ,
0: तो देख मैंने सावन महीना की भी याद आ रही कि सावन महीना की आपा पहली भी बात की दी ही अबानु भी आपा करा कि भाई सावन महीना में तो मंदिरा में बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा झूला
1: झूला झूली
0: हाँ झूला चालू हो जावे भजन कीर्तन सत्संग फूल वेवे श्री कृष्ण जी के झूला का श्रृंगार होवे श्रीनाथ जी का मंदिर चले जाए ठाकुर जी का हर मंदिर में
1: हाँ, श्रावण ती हर त्योहार चालू वे जाए सबसे मोटी बात तो आए
0: हाँ, और मने थोड़ी ये बात भी याद आ गई कि देखो ये बारिश का मौसम है माँ का ये गेम खेलता एक खेल बचपन में
1: हाँ,
0: जिन्हें हग्गो कहता
1: हाँ, मने याद आ गयो
0: है ना
1: हाँ,
0: तो बरसात के मौसम में खेल सकता जटे हाँ, गिली मिट्टी वेती मंटे भी खेल सकता
1: हाँ,
0: एक लोखन को सलिया जैसे हुए भले मोटी खिल्ली समझ ले ऐसे सलियो ले लेता
1: निशानो लगाता
0: पछे जैसे आके भले दो भी खेल सका दस भी खेल सका तो पछे कहता भाई अतरी दूरी पे मारनो वटे गिलो वटे मार तो आपाने दूरी बताता दस कदम दूर 15 कदम दूर वनी खिल्ली ने फेंकता हो निशान साधन अगर वह धरती में घच जाती तो आप जीत गया और वह पड़ जाती
1: तो आउट हो गया
0: तो आउट हो गया बच्चे दूसरा को नंबर
1: ना गीली मिट्टी में तो निशानो तो लागवा रोई से
0: लाग जावे पर कतरी बार कई का आपन निशानो डालती टाइम पे चूक गया तो आड़ी पड़ गई खिल्ली तो पछे बा क्या जाए
1: हां बातो बात सही है
0: तो रह जाते तो वे खेल याद आ गया कि आजकल तो टावर के सब खेल बंद हो गया
1: सब मोबाइल स्मार्टफोन रे वजह थी सब बंद हो गया मैं बच्चा टावर बारे खेले ही कोनी नहीं आप तो देख बारे इस पूरा दिन खेलता रहता स्कूल रो बस तो फेंकियो नहीं खेल बारी मस्ती
0: बिल्कुल सब बच्चा बच्ची बहाने जोर जोर चिल्लाता जाता खेल
1: थन याद है सितोलिया
0: अरे सितोलिया तो घना खेलता भाई याद
1: आवे अच्छा गेम तो वो
0: बहुत बढ़िया गेम आज भी यूं लागे खेला
1: हाँ बोलती एक दूसरा मारता पत्थर गिरावता जमावता कतरो अच्छो याद आवे जरे के पहला रो समय खूब अच्छो तो
0: सात पत्थर वेता भली तो चौरस भली गोल सब बड़ो पचे बेको छोटो पचे बेको छोटो एक दूसरा का ऊपर जमाता
1: सही है टीम बनाता टीम बनाया टीम वन साइड
0: पचे बोलू मारता वे पत्थर पड़ गया तो भाग जाता
1: जो जमावा आता
0: जो जमावा आता जैसे बॉल दूर पर हो गया तो फटाफट आप जमा लेता और बॉल जो पास में है तो चेटी भाग जाता वे आपने बॉल मारता ना आपने टच नहीं वे तो वे लेवा जाता जितने आप पत्थर ने जमा
1: देता ना ऊपर जीत जाता बहुत अच्छा गेम तो
0: आज भी एडी इच्छा होवे केड़ा गेम आप खेला पर अबे आप कठे जावा बालक के अत्र खुलो मैदान है ये नहीं खेल सक रहे और अबे आप आनी उम्र में खेला तो सब हंसे पर मैं तो यही कहूँ कंचन के खेलवा की और पढ़वा की कोई उम्र नहीं,
1: नहीं होती सही बात है
0: पर सब आपको ग्रुप होना चाहिए
1: ग्रुप पहनो अपने सामने मनक वे तो ओपे खेलो ही खराब बच्चों हाथे ओपे कीकन खेलो तो शर्म आवे
0: बच्चा का साथ में तो अच्छो को नहीं लागे
1: पर रतन मु तो खेलो मो बारिश गाम गई बच्चा बच्चा देखिया हमें ओपरो घर है ओपन कान नहीं शर्म आवे ओपरे बच्चा खेलता था खो खो खेलता था वे हारवा लागा मुंह नो टीम में घुस गई नोन जीता दीदा।
0: अरे वाह वाह भाई, तो तू तो होस जीता दीदा, तो तन तो बचपन याद आ गयो।
1: बचपन याद आ गयो ना, आवा तन वास्ते याद आई मने के थे कयो ने के हमें शर्म आवे तो खेलवारी कोई उम्र नहीं वेती।
0: नहीं यह सही बात है, पर तू क्यों ना कि भैया हर की कई साथ में नहीं खेल सकता।
1: वो तो
0: अपनो गांव अपना टाबर वा बात अलग,
1: वा बात अलग है, पर बारे कटे जाओ तो थोड़ो सोचनो पड़े। हाँ। पे नहीं खेल सकता
0: क्योंकि खो खो एडो गेम है कि मैं आपने दौड़नो पड़े।
1: हाँ।
0: और आखी नीचे टीम बैठी रहे।
1: हाँ।
0: पचे वाने गोल गोल आपने राउंड मारने आपने कराना बटे बैठनो।
1: हाँ।
0: इमे कम से कम 10-11 जना वे तो ही मजा
1: मजो आवे, ज्यादा संख्या।
0: हाँ,
1: तो
0: ज्यादा संख्या वे तो ही मजा आवे। और कोई कोई गेम हेड़ा है जो मैं आपा दो दो भी खेल सके, जैसे बैडमिंटन है।
1: बैडमिंटन
0: ये आज भी खेला तो कोई शर्म को नहीं।
1: बैडमिंटन तो थन बात को हमें बरसात में खेलवा रो और मजा आवे। मिट्टी एकदम जमे परी।
0: हाँ।
1: बैडमिंटन खेलो ने बरसात वेती वे तो और भी मजा आवे।
0: और ये मैं दो भी खेल सका। टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है।
1: हाँ।
0: ये आप दो भी खेल सका।
1: हाँ।
0: और टेबल टेनिस में तो घना सिस्टम है, टेबल वगैरह सब छावे, पर बैडमिंटन में का ये सिस्टम नहीं है। आपने जरूरी को ने नेट बंदी सकी वे तो यहाँ पर खेल सका दो।
1: यूं भी खेल सको। हाँ? मैं तो थन टायर थन लाइन खोचो इन खेलो, लाइन बाउंड्री बना दो।
0: हाँ।
1: अन पालम पड़े तो थारी, अन पालम पड़े तो मारी। हाँ, वाजी।
0: तो ये तो आज भी चालू है। पर एड़ा एड़ा गेम है जो भले स्कूल में नहीं चलता पर आपा खेल खेलन आनंद लेता।
1: आनंद
0: जैसे हगो क्यों, जैसे सितोलिया, और खबर है आपा मौसम भाई मौसम भी खेलता।
1: हाँ, मौसम भाई खेलता। हाँ, वही गेम बहुत पुराना है।
0: सही है, आमने सामने दो जना खड़ा
1: लाइन बनाता, नीचे वे निकलता। हाँ,
0: हाथ पकड़ है, पचे पूरी टीम लाइन बना नीचे निकलता
1: निकलता एक पकड़ लेता।
0: जो निकल गया जो पकड़ा गया।
1: हाँ, खूब अच्छा गेम था पहला। हमें तो बच्चा है गेम खेलता ही नहीं है, हम तो पूरा दिन फोन लेन बैठा रहे, बारह ही तो नहीं निकलता का खेले।
0: तो बात आप आनी वजह कर रहा कि जो आज का बच्चा मोबाइल में लाग गया सका है, ये पुराना गेम अगर ये भी खेले तो याने भी मजो आवे।
1: सही बात है।
0: देखो भाई, गेम खेलो शारीरिक विकास वेवे, मानसिक विकास वेवे, और अपना मन प्रफुल्लित रहे।
1: सही बात कह रही है रतन, पर हमें का करो, बच्चों ने की कण समझाओ, फोन लियो और आत्माई थी तो चिल्लावा लागे थे तो देखियो से।
0: वो सही है, पर अब कई तो करना पड़ी ना। वो कहे 10 बार बोला 100 बार बोला कटेक तो तीर लागी।
1: सही बात कह रही है। पर
0: अब देखो मोबाइल में कई शारीरिक विकास रुक जावे, मानसिक विकास रुक जावे, कई दर्द भरिया सीन में तो और मन उदास हो जावे।
1: उदास में
0: और आजकल तो देख भाई कंचन में थाने कई क्यों, मैं एक जगह पे घी ही जटे बच्चा वहाँ के 3 बच्चा है, 3 ही मोबाइल लेन बैठा। ठीक है, अब एक बच्चा जो 5 साल को वॉशरूम जानो भी कह, तो भी के मम्मी ने कह रहे मम्मी सुसु करना है। ओ। मम्मी सुसु करना तू चाल। और दिन को टाइम है बाथरूम वो रियो सामने ही दिख रहे हो।
1: हाँ।
0: तो भी के माँ डांट रही वो रियो बाथरूम चले जा तू ही।
1: हाँ।
0: मैं तो नहीं आऊ। हाँ। अरे मम्मी डर लागे।
1: हाँ।
0: क्योंकि आजकल ये कहीं मोबाइल में भी भूत कान कहीं का कहीं देखा।
1: हाँ। तू सच कह रही है रतन, मैं बच्चों ने देखूं यू सर्च मारे भूत की वाली वीडियो दिखाओ तो वे भूत वाली वीडियो देखे पसे डरे।
0: हाँ पसे डरे। अब ये कहूँ कई फायदा है,
1: कोई फायदा नहीं।
0: अभी ये टाबर ने क्या समझावा जो मने भी ठानी पड़ रही, पर मैं तो यो क्यों एक दिन रोवे दो दिन रोवे, एक दिन रोटियां नहीं खावे दो दिन रोटियां नहीं खावे मत खाओ कहीं नहीं बिगड़े, पर याने फोन देनो इस
1: नहीं देनो
0: कभी नहीं मिले फोन। अरे 5 साल का बच्चा डरवो कहीं होवे।
1: हाँ, वो भी
0: सही नहीं आवे, पहले आतो कहीं बताए।
1: पहले बच्चा लाइटो वगैरह रहता।
0: हाँ,
1: लाइट कटे थी पहले,
0: कटे कटे घूम घूम अकेला ही आ जाता, और आज एक बाथरूम में जाता बच्चा ने डर लग
1: रहा। सही बात कह रही,
0: कई विकास हुआ।
1: और अतन आ चीज तो मैं भी खूब बच्चों रे देखी कि अतरा अतरा बच्चा आजकल एन गली थी वन गली जाना ही उन्होंने भी आवे, एक रूम थी बीजा रूम में जाता ही डर लागे।
0: हाँ,
1: अंधेरा में नहीं जाए।
0: अरे केरो हॉल में बैठा सका है, जनरल बाथरूम है पास में ही है, 2 कदम जानो
1: तो ही डर लागे।
0: वो बच्चा ने डर लाग रहा, आखिरकार माँ ने जान भी ने सुसु कराना पड़ो।
1: सही बात कह रही है तू तो 5 साल का, मैं तो 10-10 साल का बच्चा ने देखी है जो डर है, लाइट चालू करे माँ बाप बारे उबा रहे तो वॉशरूम करवा।
0: हाँ हाँ,
1: वो डर तो है।
0: आज का बालक की एड़ी हालत है तो थोड़ा विचार तो आवे ही है ना कि ये देश का भविष्य
1: है। सही बात कह रही है,
0: देश का भविष्य के आज वर्तमान में यह हालत है तो वे कई बार नहीं आगे जान। अनिवार्य से जरूरी है बालक को मोबाइल छुड़ावो, और ये जो खेलवा को शौक है तो आप खेलो, एड़ा एड़ा गेम खेलो।
1: हाँ वन बात ने माँ बाप ने ही थोड़ो बच्चों ने कहनो जोजे, क्योंकि वे तो पुराना है, वने तो गेम खेली उड़ा है, तो उन्होंने नहीं कहनो जोजे बच्चों बाहर जाओ गेम खेलो, बाहर खेलवारा अच्छा अच्छा गेम है। हाँ आज रो टाइम थोड़ो एड़ो है कि माँ बाप बच्चों ने बाहर मिलता ही दरप लागे वनो, पर फोन मत दो।
0: हाँ
1: फोन देना कोई सुझाव
0: नहीं,
1: नहीं
0: देवा तो घर में उछल कूद करी तो सही।
1: हाँ पर माँ बाप ही कैडा वे थोड़े अदर रोवे तो के हाँ शांत वही तो फोन पास वो पकड़ा वे
0: वो तो यू ही वेग्यो के भाई आगे शांति माली मने।
1: हाँ
0: मैं आराम कर सकूं।
1: हाँ सही बात कह रही है तू,
0: ले ले तू फोन
1: यूज करे।
0: पर वाह भाई कंचन, चलो आप थोड़ा एक आछो गीत भी सुना ला और मैं मस्त घर में गरम नाश्ता बना लई हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ जो नाश्ता कर पाछा अपना श्रोता बंधु रूब रूब है।
1: ठीक है
0: तो सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वाह भाई, नाश्तो केड़ो लाग्यो कंचन?
2: मस्त रहता रो हमेशा नाश्तो तो बढ़िया ही फेवर।
1: तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुओं को स्वागत करा हा। और आपा बात कर रहा हा गेम्स की, मैंने तो आज देख भाई गीत भी याद आयो तो मैंने गेम्स भी याद आ रहा, मैंने स्कूल लाइफ याद आ गई।
2: हाँ वह तो है, स्कूल टाइम बहुत अच्छो तो पहला रा समय रा गेम वगैरह, स्कूल जानो आनो पूरा दिन यू शाम बैठी ने ओपे देखता के ओपरी सहेली बारे आई है तो बस खेलवा भाग जाता। हमें तो बच्चा डर पे लेट अंदर होवे नौ पे तो लेट लेट तक खेलता, डरता ही नहीं था।
1: अरे कोई आपने तो आवाज भी नहीं देता कि भाई मोड़ो घरे आओ, थे घर में आओ।
2: पहला रो समय अच्छो तो हमें समय अड़ो हुआ है कि माँ बाप 6 बजे बच्चों ने कहे घर में घुस जाओ।
1: अरे मैं तो क्यों 6 बजे 7 बजे तक बच्चा खेले तो भी बढ़िया ही है। और देख मैंने तो बचपन की बात याद आ रही, रेत का मंदिर अतरा बना था।
2: रेत मा पाँव गाले बनना मंदिर पसे पाल बना फूलों ती सजाता है।
1: फूलों ती सजाता अंदर आपा बल्ब लगाता, अगर बड़ो बनाता तो
2: खूब अच्छो,
1: और कोई बिगाड़ देता मंदिर ने
2: तो वन्नी आई बनी है।
1: आई बनी रोन आपा परेशान हो जाता।
2: पर ज्यादा तक है ना मोरे तो मोरे टाइम में है ना मैं लड़का लड़कियों साथ में से खेलता, मोने तो लड़का खूब परेशान करता। छोरा आता मोरा मंदिर यू पगती तोड़न चले जाता, घर बनावता पगती तोड़न चले जाता। पसे मैं चिल्लावता थारे मम्मी ने आवेन कहनो पड़ी तुम्हारा मंदिर तोड़े दी दो, पसे पास ही में छोरिया इकट्ठो में मंदिर बनाती। पर खूब आनंद आवतो। हाँ खूब अच्छो टाइम तो वो
1: टाइम भी बढ़िया हो और आपने कहीं कहीं नया करवा की इच्छा रहती। अच्छा आज मंदिर यू बनाए तो काले क्या बना
2: तो सीढ़िया बनाता। सीढ़िया
1: मंदिर में चढ़वा की सीढ़िया बनाता, बाउंड्री बनाता, गार्डन बनाता, आजू बाजू पूरी रेत ने फैलान रख देता। जिसकी रेत वेते वे चिल्लाता रहता और आप रेत में खेला करता और ऊपर कुद का कतरा मारता
2: तो पहला कहते ही नहीं तो कहता अब टाबर है खेलवा दो
1: खेलवा दो बस यूज कहता छोरा छोरी रेत मत बिगाड़ो।
2: हाँ बस रेत मत बिगाड़ो। हाँ वही कहता
1: यू कैन परा जाता पर यू स्ट्रिक नहीं हो रहा था क्यों बिगड़ो भागो टू असन क्या वाला कोई नहीं है।
2: कोई नहीं तो उन्होंने खुद ने ठाए बच्चा आए खेले रिया बस रेत मत बिगड़ जो बस रेत मत बिगड़ जो वो डायलॉग बोलता।
1: और मजा भी आता है सब मिलन क्योंकि आखिर रेत ने आप चोरी चोरी कर देता सब खेला करता कतरा जना मिलन खेलता कोई केड़ो मंदिर बना रहा कोई केड़ो मंदिर बना रहा पछे एक दूसरा का देखता ने एक दूसरा ने खिजोता
2: मारो अच्छो बणियो है मारो अच्छो बणियो। हां पहला रो समय
1: ऊपर रेत का आपा आखा ऊंचा ऊंचा चूनन पछे ऊपर कुदका भी मारता।
2: ऊपर ती कूदता।
1: हां ऊपर कूदता के भाई देखा कौन कतरा नीचे जा सके।
2: हाँ।
1: और कौन कूद सके कूदन बताओ तो बताता अपन बता, मुझे भी आता कोई लागती नहीं करती
2: कोई रेती में का लागती गिरता तो ही हाल तो क्या। हाँ कपड़ा थोड़ा गंदा होता मिट्टी में भराता घर जाए मम्मी डांटती है रेती रा वेन आया हो।
1: वो सही है पर अबे मम्मी भी डांटती पर जाने नहीं खेली तो झाई कटे है कई खेली बच्चा बच्ची है तो की करे। जो अपना टाइम का मैंने खेल याद आ रहा के देखो कटा आपा तो मौसम बाबा ये मौसम आपा खेलता जी ने कई बोलता मैं तो भूल गई या मैंने याद एक पोला जी की पोल खोलो पीछे देखे तो मार खाइयो ऐसा बोलता। हाँ लाइन बना इंजन की नान आता पचे माने पकड़ता हंसकी ने पकड़नो सामने ही सामने वाला ने पकड़नो सामने तीसरा नंबर वाला ने पकड़नो
2: जोरती पकड़ता है
1: और पकड़ में नहीं आता तो एक मुक्को मारता।
2: खूब अच्छा अच्छा गेम था
1: जो मने याद आवे के देखो आपा केड़ा केड़ा खेलता हा और खेल खेल में आपा ने कतरो सीखो मिल जातो। अपना टाइम में बड़ा ने रिस्पेक्ट करवो धोग लाग कटे भी जाता तो बड़ा बुजुर्ग का आपा धोग लाग जाता
2: लोग लगा में जाता। हाँ, सही बात है।
1: अब आज बालक कटे भी जाओ तो मोबाइल की बात ही वहां दिमाग में बस उड़ी। अरे मैं देखे एक जगह पे वे वहां का बच्चा ने माँ बाप को कोई दोस्त को नहीं माँ बाप कह रहा बच्चा आपा बहाने जा रहा तो दादा दादी के धोग लाग तो बच्चा तो बस धोग ही नहीं लागे
2: वो मोबाइल में मस्त।
1: हाँ माँ बाप धोग लाग रहा गले मिल रहा और टाबर ने क्यों बेटा धोग लागो दादा के दादी जी के तो कटी झुकवा की जरूरत ही कोई ना बाय बाय दादू
2: बस मोबाइल सीख है।
1: हाँ अब मोबाइल बोले माँ बाप संस्कार डालो छावे पर बच्चा पे हावी भी हो सको कहिए
2: मोबाइल
1: तो वे सीखवा ही नहीं चाहे
2: सीखवा ही नहीं चाहे। सही बात है
1: माँ पराने अगर डांट डपटाई माता पिता माने झुकावो छाए तो आधा झुकन लाग गया दो गया चल
2: बस अधूरा तो पूरा झुके ही नहीं
1: पूरा झुके ही कोनी वो भी मजबूरी
2: मजबूरी में वो मम्मी पापा मारी नहीं झुकिया तो
1: हाँ हाँ बाकी मोबाइल तो निकल ही जतरे वो गेम अरे एक मिनट बेचारा माँ बाप कह अरे भाई आपने टाइम हो रहा था रखो एक मिनट कारण दस मिनट ऐसा खींचे
2: दस मिनट ऐसा खींचे सही बात कह रही है
1: और मैं एक बार देखियो मैं ध्यान रखियो ये टाबर कई खेले देखू तो सही कि एड़ा कई हमें इंटरेस्ट है जो ये फोन का सिवा यानी दूसरों के जीवन ही नहीं
2: गेम एक तो मैं होबलियो है रतन पबजी एक तो बच्चा पबजी खेले आज तू अगर पाडला घर में बैठी है मुंह हटाती और एक बिचोरी आवाज हबला है एड़ा एड़ा गेम खेल है मुंह विचार करू कि एड़ा एड़ा फोन में बात करे के कई करे है तो गेम खेले रही है एड़ा एड़ा गेम
1: खेले और मैं तो चार साल की बच्ची ने देखे क्या कई कर रही अरे वो तो शॉर्ट्स देख रही धमाधम धमाधम शॉर्ट्स में कई आ रहे मैंने वो कई ठाको नहीं और बस वो शॉर्ट्स देख रही मैं क्यों इसमें क्या है मुझे नहीं पता और शॉर्ट्स देख रही अब बालक में मतलब माने खबर ही कोई नहीं कि मैं कई बेरो कई नहीं बेरो पर बस वो देख रही है कि मोबाइल में कहीं कहीं चालनो छाले
2: ओले देखो
1: वे हंसे जदी भाई हंसे
2: अरे
1: और वाको हंसो बन तो विको भी हंसो बन तो मन आश्चर्य हो गो हो अणि में तो कई है ही कोनी शॉर्ट्स में तो कई का कई बताता रेवे आपने कई मतलब है
2: सही है
1: पर अब बच्चा समझी कोई नहीं शॉर्ट देख देख कन खुश है का कि माने 3 साल का 4 साल का बच्चा ने गेम्स कतरे तो ये खुद ही ओपन कर करे कतरे यान डाउनलोड नहीं करता हुए तो बच्चे शॉर्ट्स देख क्या करे
2: सही बात है पहला टाइम अच्छो तो पहला तो बच्चों ने फोन रो था ही नहीं तो कोई लेना ना देना कोई मतलब नहीं
1: फोन छोड़न टीवी कटे
2: टीवी कटे में हाँ टीवी बाद में भी थी पर टीवी देखवा रो टाइम इच्छा ही नहीं रहती थी बस बाहर जाए गेम खेलना अच्छा अच्छा वन में पूरा दिन निकल जातो
1: अरे मैंने याद आवेगा अपना पड़ोस में दादी जी को पियर बॉम्बे तो वे बॉम्बे की बात आन करता छुट्टिया में तो जाता वे दादी जी कहता और बॉम्बे में तो एडी चीज चाली जिन्हें 100 जना बैठन भी देख सको तो आश्चर्य वे तो केडी कई चीज है अरे टीवी
2: टीवी
1: ने कतरा भी बैठन देख सको ना तो वे यू कहता तो मानो आश्चर्य हो तो एडी कई चीज है एडी कई चीज है 100 जना देख सके अरे अक्कल तो ही कोई ना तो पांचवी जटिम बना वाला कई अक्कल हो आश्चर्य हो तो एडी कई चीज है टीवी आई तो ठा पड़ी ओ इन्हें तो 100 देखो 50 देखो कतरा भी देखो
2: कतरा भी देखो
1: देख सको तो आश्चर्य वे तो हो विका बावजूद भी यदि टीवी घर में आई तो आपने हर चीज थोड़ देखवा देता
2: नहीं नहीं देखवा देता जिन्ने हाथ में रिमोट है वन्नो इक्को हाल है
1: और रिमोट देखो भाई पहले तो बड़ा बुजुर्ग भी कंट्रोल रखता समाचार चालू कर देता पचे काटे पहले तो रामायण महाभारत ये सीरियल
2: चलता
1: ये चालू और बस
2: पचे बंद बस
1: पुरानी पिक्चर आती तो कनिक टाइम पे
2: पुरानी पिक्चर मैं तो एडू देखी है रतन मैं तो बीजो अरे घरे जाए टीवी देखता
1: अरे तो घर में नहीं ही यदि आप यूज करता ना मोला बच्चा खबर है अपने बाजू वाले मोहल्ला में आई ही टीवी सब जान माँ को दरवाजा खकड़ा माने परेशान कर देता
2: पहला मन गुस्सा भी नहीं रहता था ने हमें करने घरे जानो विचार करना पड़े वो भी दंदरा जानो वो नींद आराम करतो वे वरना दरवाजो खटखटावनो
1: और अबे तो एक सुई मांगता भी यूं लागे अरे कौन मांगे
2: और
1: पहला तो कतरी चीजा भी मांग लेता टीवी देखवा तो वहां घर पहुंच जाता बानु साकल ने बजा बजा करता कतरी बार तुम्हारी सहेली है वेका दादी जी अतरा वे चिल्लाता सका आता ये छोरा छोरी माने तो नेम काम ही नहीं करवा देवे
2: टीवी आरु आई है
1: पचे कहता वो पिक्चर के लिए जाता बस 6 कदी बजे 6 बजे के बजे 5 बजे ही जान
2: वो अनाउंस वेतन आज ये पिक्चर 6 बजे आने वाली है तो टावर तो के आज पिक्चर सामरे 6 बजे आवे
1: तो 5 बजे वाके घर का बाने सब उबा भेजाता माने याद आवे यार आज अपना घर का बाने से उभर है तो अपन अजीब लागे
2: अजीब लागे अब मैं ओपे विचार करो तो याद आवे ओपे 6 बजे जैन बड़ा दरवाजा में खड़ा रहता
1: 5 बजे लाइन लाग जाता
2: तो
1: और वे परेशान हो जाता
2: तो
1: क्योंकि अब 18 जना उभर रहता तो दरवाजा खोलन बैठा देता और पछे एडवर्टाइजमेंट जो आती टीवी में आप देखता
2: उठे नहीं कोई नहीं जातू तो
1: कोई नहीं जाता कबानू चालू है
2: कबानू चालू है जितने पिक्चर खत्म नहीं होती 3 घंटा बैठे रहता बटे
1: 8 दिन में 1 दिन पिक्चर देखवा जाता हुए मैं भी अपने अच्छा खुश हो जाता भाई देखी पिक्चर
2: पिक्चर देखी
1: पर तो ही अपना माँ बाप कहता बस अनी अठवाड़े देख ले अबे अगली बार नहीं देखना तो भी आपने मना करता क्योंकि अनी बात ने माँ बाप समझता हाँ ये टीवी देखी तो टीवी में रुचि जाए या कोई शारीरिक मानसिक विकास रुक जाए घर का काम में फर्क पड़ जाए तो आदत नहीं बगाड़ता।
2: सही बात है
1: भाई, औलाद किन्ने प्यारी को ना, सब नहीं प्यारी है, पर इको मतलब यो थोड़े बच्चा ने जनी रस्ते जावे झावा देवे।
2: सही बात है।
1: तो समय का साथ में परिवर्तन आयो कंचन, कि आज बच्चा भी नहीं दरपे और माता पिता नहीं दरप लागे, अरे ये तो रोई, अरे ये तो
2: रोई। सही बात है,
1: बच्चा खानो नहीं खावे तो वहां मोबाइल बतावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसी आदत पड़ जावे, घना बच्चा मोबाइल देखता जावे खानो खावे।
2: खानो खावे, सही बात कह रही है, फोन बंद तो खानो बंद।
1: हाँ,
2: बंद खानो ही बंद। मैं तो उदो सिस्टम देखी हूँ, मैं तो मोर पास में एडो देखी हूँ, मोबाइल वे जितने बच्चों खानो नहीं मांगे न, मोबाइल बंद दू मम्मी भूख लगी है, ओ कैडो सिस्टम है मैं क्यूँ। कोई तो बच्चों खानो खाए जर मोबाइल चालू है, बच्चारो एडो सिस्टम है के मोबाइल चालतो रही जितने बने भूख प्यास कोई लेना देना नहीं।
1: वे केड़ा बच्चा जो 2-3 साल का वे ने वाके खानो खाते जानो मोबाइल देखते जानो।
2: हाँ।
1: बड़ा बच्चा के खानो कहीं लेना देना, वाके तो मोबाइल मिल गया तो वही कहूँ
2: सब
1: को एहसास ही नहीं
2: भूख को एहसास।

0: मोबाइल बंद हुए इन बच्चे तो भले रात के 11 भी बजे तो यहाँ भूख लगी।
1: हाँ,
0: सही है, यह तो सही कह रही है। तो खैर जो भी है, पर मैं तो यही कहो छाऊ आपका टावर ने फोन कम दे वो, और नहीं वह तो समय निकालन आप थोड़ा खेलो, आसपास का बच्चा ने भी भेल करो और माने सीखो पहले का गेम एड़ा खेलता भाई थोड़े आप 8 दिन मेहनत करा ना कंचन
1: तो वे रेगुलर खेलता
0: अच्छा वे रेगुलर खेलता वे जाए भाई आप सेरा की बात करा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में भी नीचे तो खेल के मैदान
1: मैदान होवे। हाँ
0: तो एक दूसरा माता पिता हूँ मिलनो बच्चा बच्ची का माता पिता हूँ कि देखो भाई अपना बच्चा एक घर की बात कोई ना कंचन घर घर में बच्चा सब एड़ा ही हो गया
1: सब रे एड़ा ऐसे। हाँ,
0: तो कहते भाई अपना बच्चा ने थोड़ा आपस में मिलन टाइम देवा या ना थोड़ा गेम सिखावा और या के मोबाइल की आदत छुड़ावा
1: छुड़ावा
0: तो शायद इको कई निष्कर्ष आ सके। तो आप तो अपनी उम्मीद में ही राम राम करा।
1: हाँ, सही बात है
0: क्योंकि टाइम भी हो गया है और बात तो वो करो जत्री ओछी है
1: अंत ही नहीं है।
0: तो बस अपना श्रोता बंधु अबानो तो राम राम करा अगली बार महिला तो आज पे कंचन हुई
1: ठीक है राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पे बातें की थी, तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है। कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह, और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं?
1: जी, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं, वो हमारे संस्कार ही हैं, वो हमारी आदतें ही हैं। और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही,
2: माइक थोड़ा आगे ले लो,
1: एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आदतों के आधार से ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं, और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं। लेकिन आदतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे, या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे। तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, जितनी भी साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन हुई हैं, तो उसका तो यही आधार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी, आनंद, शांति, प्यार, आराम। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति को पानी पीना प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है, वो ठंडा पानी चाहिए क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, ठंडा पानी के लिए क्या किया, बर्फ़ का आविष्कार हुआ। बर्फ पहले कारखानों में बनती थी, फिर मुश्किल लगा कि नहीं, कारखाने में जाना पड़ता है। फिर साइंसदान ने कहा नहीं, आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए, तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, फ्रिज खोल के अभी बर्फ़ डालनी पड़नी है, इसके लिए क्या बना दो, कूलर बना दो। तो अभी पानी डालो तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें हमारी आवश्यकता हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारी फिज़िकल बॉडी भी है ना। तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। वी हैव फिज़िकल नीड्स, वी हैव मेंटल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स, वी हैव स्पिरिचुअल नीड्स, वी हैव सोशल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फिज़िकल नीड्स क्या हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं, हमें शांति चाहिए,

0: कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सच्ची सुख शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया, इज्जत भी मुझे समाज से मिल गई, लेकिन वो केवल बाहर से है, लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले। तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को बनाने का।
1: जी राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है, जैसे हमें नीड हो जाती किसी चीज़ की चाहत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं। शायद आज से 50 या 100 200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पर बदलती है क्या?
0: हाँ, ह्यूमन नेचर भी बदलती है, क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम
1: मोल नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है।
0: चेंज, हाँ, ऐसी कुछ होते हैं जो अपने आप, जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं। उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए, लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सुबह उठने की आदत है, अमृत वेला उठने की आदत है, तो अमृत वेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सुबह आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा। तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए। माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो, लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस चीज़ की उस एज पे ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा, तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं। दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं भी होती, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संस्कार कई में होते हो नेचुरली, जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने बीटेक में टॉप किया था, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गाँव में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, उनके गाँव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था, लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था, इंटरेस्ट था, और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं। तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा, ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर, वो एक विधि है, वो एक तरीका है। लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के सम अपने आप सॉल्व तो करेंगे, ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे, क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन उसको बोलो कि, और वो मैथ में अच्छा नहीं है, उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ हमारे में होते हैं। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं, कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया तो

0: लीजिए, पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इस जन्म में अगर वो नॉन वेज फैमिली में बाई चांस चले गए तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बनाए होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं, और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाई चांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना है, और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपने आदतों में परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं और जब टीचर शुरू शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है, हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है, समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं, मना नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रायोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया कि 90% लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो ज़बरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता है, और जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स माना वापस आ जाते हैं अपने घर में, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पर?
0: देखिए, जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है, पहली बात तो ये कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसका कारण क्या है, क्यों वो ड्रग्स में गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहां पे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें, उनके साथ वो मिल सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए, अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज नहीं है। उनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, ताना मार दिया है, दुख हो गया है, किसी को गम पहुंचा है, या कोई किसी का हक मार लेता है, तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी चिंता को भूल जाएंगे, परेशानी को भूल जाएंगे। तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं। जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है, जिस मुश्किल का, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं, को उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें, उनका मन टूट गया। जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो दोस्त हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग। तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं। तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसिल करें, उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया या आपने सही नहीं अपनाया था, कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती, चिंता को दूर नहीं करती, परेशानी को दूर नहीं करती, बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे उनका असर खत्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे। तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी, जिस विधि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा, देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन प्यार तो अंदर से आता है, खुशी तो अंदर से आती है। तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, खुशी मेरे अंदर है, अगर किसी को गम है दुख है तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब का एक, जो हम कहेंगे जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, एक मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, राजयोग एक ऐसी विधि है जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम राजयोग मेडिटेशन भी, हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर है वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, उनके ऊपर विजिलेशन होती है, ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं, और उसके बाद उनको वो दवाइयाँ भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविजन छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनको लगता है कि मैं ड्रग लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अपने अंदर से वो खुशी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर से ड्रग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें, ध्यान सिखा दें, योग सिखा दें, रिलैक्सेशन सिखा दें, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा कर के उस खुशी को, आनंद को, प्यार को ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी
1: जी
0: कि हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं वो राजयोग को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स, काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से जब उनके जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं, तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो सकता है, और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे। और ये अगर उनको वहीं पे सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने रास्ते पे द्वारा वापस आ सकते हैं।
1: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है, और जैसे कि आखिरी में आपने डी एडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया, और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है, कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जाती हैं, ये भी आपने बताया। और साथ में राजयोग का अगर प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं, तो उनका जो वापस गिव अप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा, एक एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पता है मुझे खाना बनाना और खाना भी पसंद है।
1: मुझे खाना बनाना तो बहुत ज्यादा पसंद है, खाना खाना थोड़ा थोड़ा पसंद है। और शिवांशी तुझे?
2: मुझे तो बस खाना खाना पसंद है, बनाने में तो आलस आता है।
0: हम बनाएंगे और आप खाओगे।
2: हाँ, तुम बनाओ मैं खाऊंगी।
3: क्या खाने पीने की बातें हो रही है आज, तो लग रहा है सबको भूख लगी है यहाँ पे।
4: हाँ दीदी।
3: अच्छा, तो यानी कि सबको मुझे लगता है बहुत सारी वैरायटी पसंद है खाने की।
4: हाँ दीदी।
3: गर्मी की छुट्टी में तो और याद आता है ना, ये खाना है वो खाना है।
4: हाँ
5: दीदी। गर्मियों में तो और ज्यादा याद आता है।
3: क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं ना।
2: हाँ। बर्फ का गोला,
5: आइसक्रीम।
3: हाँ, तो चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज खाने पीने के बारे में ही बात करते हैं। इतना धीरे खाना नहीं खाया क्या किसी ने? हाँ, अब लगा कि नाश्ता करके आए हैं सब लोग। तो कौन कौन है आज हमारे साथ स्टूडियो में?
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6th में हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
7: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5th में हूँ।
8: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8th में हूँ।
9: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7th में हूँ।
3: ओके, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत सारे बच्चे, अब 5th क्लास में भी है, 6th में भी है, 10th तक है। तो खाना खाना तो सबको पसंद है, खाना बनाना किस किस को आता है?
1: दीदी मेरे को।
5: दीदी मेरे को।
2: दीदी आता तो है, बस बनाने में थोड़ा वो लगता है कि हाँ बनाना पड़ेगा। हाँ। बस खाना खाना पसंद है, बस हमें
3: पसंद ज्यादा खाना खाना है ना।
5: दीदी सोचोगे नहीं, जब हम खाना बनाने जाते हैं ना ऐसे करते हैं।
3: हाँ, पसीना आ जाता है
5: क्योंकि गैस एकदम ऐसी बवकरी होती है, उसमें खाना बनाते हैं।
3: तो और कुछ कहना चाह रही है हमारे साथ रूहानी भी, बोलिए।
8: दीदी मुझे तो खाना बना के दूसरों को खुश करना बहुत पसंद है।
3: ओके, वेरी गुड। और आप भी कुछ कहना चाह रहे हो शिवांशी?
2: दीदी हम तो बस खा के खुश होते हैं, बना के नहीं होते।
3: अच्छा,
0: हम बना के खुश होते हैं।
7: दीदी मैं भी बना के खुश होती हूँ।
3: अरे वाह। और शिक्षा?
6: मुझे तो खाना खाना पसंद है क्योंकि जब भी कुछ बनाने के लिए जाती हूँ ना तो कुछ बन जाता है।
3: हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ बनाने जाते हो कुछ और बन जाते, वो एक नई डिश का निर्माण हो जाता है ना।
5: पर दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ है, नई डिश का निर्माण हुआ है ना, पर वो घर वालों को सबसे ज्यादा पसंद आई है।
3: हाँ, ऐसा भी हो सकता है भाई। तो भाई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं खाने में, कुछ नया बनाते हैं, कुछ पहले से जो बना रहे होते हैं वही बनाते हैं।
8: दीदी मैं तो एक बार केक बनाया था, बहुत मस्त बना था केक, लेकिन बर्तन खराब हो गए तो दादी जी ने किचन में घुसना ही बंद कर दिया मेरा।
3: हाँ भाई, बर्तन को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आगे भी तो बताना है।
0: और फिर वो लोग बोलते हैं चल बर्तन तो खराब कर दिया पर खाना अच्छा बनाया है।
8: ये भी नहीं बोलती मेरी दादी, तो बोलती है तू खा ले खुद, मेरे को नहीं खाना।
3: हाँ, कई बार बड़ों को और बच्चों को जो पसंद होता है उसमें भी तो अंतर होता है ना। है ना, बड़ों को क्या पसंद होता है जो वो खाते आ रहे हैं, है ना, ट्रेडिशनल खाना। और कई बार हम बच्चों को क्या लगता है अच्छा कुछ नया नया बनाना, केक बनाना, ये बनाना है,
8: फास्ट फूड
3: पसंद होता है। अच्छा, आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है?
2: दीदी खाना खाना तो पसंद है, पर कई बार जब मूड होता है ना कि हाँ चलो आज बना लेते हैं, तब बनाते हैं। वो मुहूर्त कभी कभी आता है,
3: कभी कभी आता है वो मुहूर्त, जब घर वाले इतने लकी हो।

0: कुछ बना के खिलाया जाए, है ना?
1: जी हाँ।
0: ओहो,
2: एक बार तो मैं घर पे अकेली थी, तो मैं रोज एक घंटे के बाद मैं डिशेस बनाती जाती थी और खुद खा लेती थी क्योंकि जब घर में होता है तब कोई किचन में जाने नहीं देता मेरे को ज्यादा।
0: क्योंकि अभी हमें खाना बनाना तो आता है, लेकिन और कायदे से बर्तन रखना और चीजें रखना वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है।
2: वो मैं कर देती हूँ तब भी दादी जी कमियां निकालती रहती है, ये देख काला हो गया बर्तन, अब से पकाना मत इसमें,
0: काला हो गया होगा ना।
2: हाँ।
1: पर दीदी डांटते जरूर है पर वो अंदर से खुश होते हैं, बस बताते नहीं है। अगर ऐसे डांट मारेंगे ना, कमियां बताएंगे तो ही तो आगे उनको ऐसे सुधारेंगे।
0: को कमियां धीरे धीरे सुधर भी जाती है ना। अभी तो हम बच्चे हैं, है ना, धीरे धीरे करते करते। अभी से आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो तो बाद में तो कितना ही अच्छा करोगे। अच्छा, सबको क्या क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा, कौन बताएगा पहले? शिवांशी
1: दीदी, आलू के परांठे।
0: ओके
2: दीदी, मुझे छोले भटूरे।
0: शिक्षा को?
3: पाव भाजी,
4: आलू के पराठे।
2: मेरे को पनीर की सब्जी।
0: ओके
5: मुझे सब कुछ पसंद है।
0: कुछ फेवरेट नहीं है?
5: फेवरेट है क्या? पाव भाजी फेवरेट है।
0: तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। दो लोगों को आलू के पराठे, दो लोगों को पाव भाजी। हाँ
6: दीदी, आपको पता है भाजी मुझे पसंद है पर पाव से मैं दूर भागती हूँ।
0: क्यों?
6: पसंद नहीं, ब्रेड का होता है, अब ब्रेड मुझे पसंद नहीं।
0: तो फिर रोटी से खा लो।
6: घर में मिले अलग रोटी बनती है।
7: पाव तो घर में भी बनते हैं, मेरी बड़ी दीदी बनाती हैं।
0: हाँ, बना सकते हैं घर में भी। अनुष्का कुछ कहना चाह रहे?
8: दीदी मैं महाराष्ट्र गई थी तो मेरी मौसी ने बनाया था पाव भाजी।
0: बहुत अच्छा बना था। ओके सबसे अच्छा खाना अभी तक, मतलब खाना तो हमेशा ही अच्छा खाते हो, पर आपके घर में जो बनता है वो आपको क्या पसंद है, जो आपके घर वाले बनाते हैं बहुत टेस्टी जो लगता है? अमीक्षा से शुरू करते हैं।
5: मुझे मेरी नानी यहाँ के हाथ की आलू की सब्जी बहुत पसंद है।
0: ओके
2: मेरे को दो चीज पसंद है, एक कटहल की सब्जी, दूसरी पनीर की।
0: कौन बनाता है?
2: दादी जी।
0: अरे वाह।
4: मेरे को पराठे।
0: कौन बनाता है घर पे?
4: नानी।
0: अरे वाह, कितने लकी हो आप लोग।
7: मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बनाई हुई भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है।
6: दीदी मेरी मम्मी के हाथ के बने मुझे कटहल की सब्जी अच्छी लगती है, मेरी बहन के हाथ के बनाए हुए मोमोज अच्छा लगते हैं।
0: ओके शिवांशी।
1: दीदी मेरी मम्मी तो सब कुछ अच्छा बनाती है, जो बनाती है बस हम खा लेते हैं।
0: सबसे अच्छा लेकिन क्या लगता है?
1: मशरूम की सब्जी।
0: तो कभी मम्मी लोग को थैंक यू बोला नानी को दादी को कि आपने बड़ा अच्छा बनाया आज, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
2: हमेशा ही बोलती हूँ मैं।
1: दीदी बोलते तो है, फिर कहते मक्खन मत लगा, पता है कुछ और बनाने की बात होगी।
0: कुछ और बनवाना होगा।
6: दीदी आपको पता है मम्मी के हाथ का हर एक खाना अच्छा लगता है,
0: जो बनाते सब अच्छा लगता है।
6: और अब बहने बना दे दूर भागते नहीं, खाना अच्छा नहीं बनता था।
0: अमीषा
5: दीदी ये सब खाना सुन के मुँह में पानी आ गया
0: है ना। अभी तो एपिसोड पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही हुआ है।
6: दीदी सही बोला।
0: अब लेकिन बात शुरू हुई है तो आगे तो जाएगी, है ना। खाने के बारे में थोड़ी और बातें करते हैं।
2: जब मैं दादी को बोलती हूँ ना, दादी मेरी फेवरेट सब्जी बना दो, तो दादी जी बोलती है इसलिए तंग करती है मेरे को, नहीं बनाना जा। फिर मैं घर पे आती हूँ ना तब बना ही हुई रहती
0: हूँ। देखो दादी कितना प्यार करती है आपसे, है ना।
1: दीदी हमने तो अपनी फेवरेट डिश बता दी, आप तो बताओ।
0: मेरी फेवरेट डिश, मुझे भी पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, एकदम फेवरेट, है ना, आलू का पराठा।
1: कौन सा पनीर दीदी? शाही पनीर,
2: मक्खन पनीर, दाल मखनी,
1: आलू पनीर।
0: नहीं शाही पनीर, हम लोग बचपन में इतने वैरायटी पनीर तो नहीं खाते थे, शाही पनीर मोस्टली होता था, तो वो बहुत अच्छा लगता है।
6: दीदी किसके हाथ का शाही पनीर?
0: मम्मी के हाथ का। सबको मम्मी के हाथ का कुछ ना कुछ पसंद होता है। हमारी क्योंकि दादी और नानी जो थे ना वो दूर दूर रहते थे तो उनसे मिलना थोड़ा कम होता था, लेकिन आप लोग बहुत लकी हो क्योंकि जो दादी और नानी का प्यार मिलता है ना वो बड़ा स्पेशल होता है।
6: पर दीदी मेरी तो नानी भी नहीं है, नाना भी नहीं है, दादी भी नहीं है, दादा भी नहीं है।
0: हाँ कोई बात नहीं, जो भी बड़े हैं जिनको दादी नानी का मिलता है वो भी, मम्मी पापा का मिलता है वो भी, और बहनों का जब मिलता है वो भी।
6: वो तो दीदी बहुत अलग है,
0: भाई बहनों से लड़ाई भले होती है लेकिन देखो आपकी बहनें आपको बना के खिलाती है कि नहीं।
6: उनको मैं भी बनाती हूँ, बना के खिलाती हूँ, मेरे को बना के खिलाती है।
5: दीदी एक बार है ना मैंने ना आलू की सब्जी बनाई थी ना, तो मेरे भाई ने बोला कि मेरे को नहीं खानी, तूने बनाई है तो कड़वी बनाई होगी। मैंने बोला आलू की सब्जी कौन कड़वी बनाता है, तो बोले मैंने बोला नहीं खानी, तो बोला नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा वो तो नहीं खा रहा, मैं शाम को खा लूंगी। फिर मैं सो गई। फिर जब उठी ना, तब देखा मेरा भाई किचन के जो वो होता है ना खाना बनाने का, उस पर चढ़ के खा रहा था। बोला इतना बुरा तो नहीं बनाया।
0: भाई बहनों की तारीफ करना थोड़ा मुश्किल होता है ना।
1: दीदी ऐसे लगता है अगर तारीफ कर दी ना इज्जत कम हो जाएगी,
0: तो फिर तारीफ नहीं कर सकते ना। फिर कुछ अच्छा काम किया उसने तो क्या करेंगे फिर,
1: बस ऐसे कर दिया बस, और क्या बाद में चाहे सोचेगी हाँ अच्छा काम कर, उसके सामने नहीं बोलेंगे।
5: और दीदी बोलते हैं बस लगा लिया मक्खन और थोड़ा लगा ले,
2: अगली बार और बेहतर करता।
6: दीदी अगर हमने खाना चखा अच्छा लगा, तो अगर पूछती अच्छा लगा, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ले जाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा होता है तब भी।
6: हाँ बोलती है मेरे खाने की हमेशा ऐसी तारीफ करती है। मैंने बोला इज्जत नहीं कम करनी मेरे को।
0: फिर खाने को मिलता है कि नहीं
6: मिलता है ना दीदी,
0: है ना।
6: वो जाती है कहीं और, मैं उसको प्लेट को लेके बैठती हूँ खाना खाने।
0: शिक्षा
7: मेरी दीदी तो मुझे घर में बहुत सारी चीजें बना के खिलाती है, बस मुझसे कहती है तुम कब खिलाओगे।
0: क्या बनाती है दीदी?
7: दीदी फोन पे से देखती है तरीके तरीके की चीजें, मोमोज बनाती है घर पे, उन्हें पाव भाजी बनाई, पास्ता के नए रेसिपी ट्राई करते हैं।
0: अरे वाह।
7: और मैं कभी कुछ बनाऊं गंदा बनता है ना, तो अभी दीदी है ना बुरा नहीं बताते। और पापा तो अगर मैंने पराठा कच्चा भी सेका हो ना, वो भी खुशी से खा लेते हैं क्योंकि उसने ट्राई किया। और दीदी भी है ना कभी कुछ बनाती है मुझसे ही पूछती है, क्योंकि मैं ही उनका परफेक्ट बताती हूँ कि हाँ अच्छा है या इसमें नमक कम है ज़्यादा है। बाकी मम्मी पापा तो कभी कोई कमी नहीं निकालते
0: हैं। उनको लगता है कि बनाया तो अच्छा, इतना बनाया वो बहुत अच्छा ना, घर वालों को तो बहुत अच्छा लगता है।
5: ट्राई तो किया है,
0: ट्राई तो किया, बड़ी बात है बिल्कुल। और अच्छा बनता भी है ना, कभी थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है।
2: दीदी ऐसा हो तो हमारा घर ही स्वर्ग ना बन जाए।
0: तो वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना स्वर्ग घर को, है ना।
2: लेकिन कोई इतना सपोर्ट करे घर में
0: तो सपोर्ट आप करो सबको।
2: हाँ वो तो मैं करती हूँ,
0: है ना। बहुत अच्छी बात है। और बड़ों की तो डांट में भी प्यार होता है ना। हाँ, उसको तो सिखाने के लिए वो डांटते हैं हमको, असल में थोड़ी डांटते हैं। वो हमारा बुरा सोच सकते हैं क्या कभी? बताओ सच्ची में बुरा सोच सकते हैं कभी हमारा?
2: नहीं,
0: कभी भी नहीं। हाँ। और कितना प्यार करते हैं, जो फेवरेट फेवरेट चीजें बना के खिलाते हैं।
2: हाँ।
6: और दीदी अगर मान लो गुस्सा हो गए ना, फिर आके बोलते हैं ये तो मेरा प्यार था, तू क्यों गुस्सा हो गई।
1: ऐसे ही बोलते हैं क्या?
6: नहीं नहीं ऐसे नहीं, पर मेरी आवाज ऐसी है, ऐसे आएंगे मारेंगे फिर बोलेंगे ये तो मेरा प्यार था, तू गुस्सा क्यों हो गई।
0: हाँ असल में तो प्यार ही होता है वो।
6: दीदी आपको एक और बात बताऊं, देखो जो खाना बनाते हैं घर का वो मेरी मम्मी बनाती है, वो वैसे बनाती है। और जो बाहर की चीजें जैसे मोमोज, चाउमीन, पाव भाजी ये सब, ये मेरी बहना बनाती है, उसको हमारे घर का मास्टर शेफ बोलते हैं।
0: हाँ कुछ नई नई डिशेस देख के ट्राई करते हैं ना यूट्यूब से?
6: यूट्यूब से नहीं, उसको पहले से बनानी आती है।
0: उनको पहले से आती है। अरे वाह ये भी बहुत अच्छी बात है, खाना बनाना तो बहुत बड़ी आर्ट है।
1: मेरी मम्मी तो ना जब भी उनका मन करेगा कभी मोमोज बना देंगे कभी कुछ बना देंगे, बस उनकी मर्जी की बात है, हमारी मर्जी का कुछ बस नहीं चलेगा। जब उनकी मर्जी होगी हाँ आज अमृतचरी बड़े बनाना है तो अमृतचरी बड़े ही बनाना है, कुछ और नहीं बनेगा घर में।
0: उनको तो रोज सोचना पड़ता होगा ना आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है ना। घर में तीन टाइम बनाना और फिर प्लानिंग करना उसकी थोड़ी
5: और,
0: मुश्किल है।
5: और दीदी पूछते कुछ और है और बनाते कुछ और है।
0: ऐसा तो होता है।
1: एक बार ऐसा ही हुआ था, मम्मी ने पूछा था मोमोज खाएगी, मैं कहा हाँ हाँ बना लेते हैं बना लेते हैं। मैं जब शाम को फिर घर आकर देखती हूँ ना, मैंने क्या देखा, मम्मी ने नूडल्स बना रखे हैं। मैं कहा अब तो मोमोज बना रहे, कहते नहीं मेरा मन बदल गया।
0: हाँ।
1: मैंने इतने मूड बना रखा था कि हाँ आज तो मोमोज खाएंगे, सारा मूड खराब।
0: नूडल्स कैसे लगे फिर?
1: नूडल्स तो टेस्टी थे।
0: टेस्टी थे ना।
2: कभी कभी दादी जी पूछती है भिंडी खाएगी आलू, मैंने बोला भिंडी, तो उन्होंने बोला नहीं आलू ही बना लेती हूँ। मैं बोलती हूँ फिर पूछा क्यों।
5: पूछते कुछ और बनाते किचन में जाके कुछ और है, बोलते हैं मैं तो भूल गई।
0: और भी काम होते हैं ना बहुत सारे।
5: हाँ।
0: लेकिन वो लगता कैसे, लगता तो टेस्टी है ना।
6: हाँ। मम्मी के दादी के हर हाथ का खाना अच्छा ही लगता
0: सब
6: है।
0: सब अच्छा लगता है। अच्छा चलो अब अपने हाथ की बात करते हैं, आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मुझे ये बताओ अब तक घर पे। दर्शिवांशी
1: दीदी बना तो सब कुछ रखा है, बस वो कभी कभी बनता है।
0: क्या क्या बनाया? अच्छा एक एक चीज बताओ।
1: आलू के परांठे हो गए, केक हो गया, पिज्जा हो गया।
0: अरे वाह
1: होता नहीं तो बताने लगूंगी तो रात हो जाएगी ना।
0: सब कुछ बनाया है आपने खुद?
1: हाँ जी सब कुछ बनाया, बस वो कभी कभी बनता है कोई स्पेशल डे पे।
0: ओके वेरी गुड।
6: दीदी मैंने केक बना रखा है घर में, चावल बना रखे है, चावल का छौंक भी रखा है, दस पराठे बना रखे है और रोटी बना रखी है और चाय बना रखी है,
0: वेरी गुड,
6: और शरबत बना रखे है।
0: शिक्षा आपने क्या क्या बनाया?
7: मैं तो घर पे ज्यादा ज्यादा मम्मी मुझसे सेव भाजी बनवाती है, बोलती है तुम वही अच्छा बनाते हो, जब भी घर पे है ना सब्जी नहीं होगी कुछ तो मम्मी मार्केट से है ना सेव वाले नमकीन मंगाएंगे और मुझसे बोलेंगे तुम बनाओ जा। और जैसे कि भिंडी वगैरह हुआ ये चीज बनाते हैं ना, तो ये चीज तो मैं ही बनाती हूँ घर पे, क्योंकि बोलते हैं तुम्हारे हाथ से ही अच्छा लगता है ये टेस्ट।
0: भिंडी?
7: हाँ।
0: अरे वाह, सेव भाजी भी बहुत अच्छी डिश है ना।
7: हाँ।
0: बहुत अच्छी लगती है। और अनुष्का कुछ आपने ट्राई किया? अभी तो आप छोटे हो है ना।
4: हाँ, मैंने तो केक मेरे को ज्यादा बनाना आता है।
0: केक आता है आपको बनाना? बापरे, अच्छा किससे सीखा आपने?
4: नहीं, मैं खुद ही फोन में रील्स आती ना उसमें देख के बना सकती हूँ, उसमें बहुत सिंपल दिखा।
0: अच्छा, तो आपने बनाया है कभी केक या नहीं?
4: हाँ, एक दिन तो मेरे भाई के बर्थडे पे मैं बना रही थी, मेरा भाई ने बोला चल इतना भी अच्छा नहीं बनाएगी, नहीं बनाना। हाँ, वैसे कि वो बुराई निकालते लेकिन जब खाते तब अच्छा लगता है उनको।
0: ऐसे करते हैं ना भाई बहन, पहले तो ऐसे बोलते हैं और फिर खा लेते हैं चुपके से, कभी कभी तो सामने ही।
4: हाँ, चुपके से खाते हैं।
0: सब भाई बहन जैसे होते हैं,
6: फिर बोलते इतना बुरा तो नहीं बना।
0: इतना बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा, ऐसा नहीं बोलते ना।
6: हाँ। अगर दीदी ऐसा बोल दिया जिस दिन हमने बोल दिया वाह ऐसा बोला, बोलते इज्जत कम हो गई, नहीं बोलना तो मुझे।
0: हाँ, ये भाई बहनों के प्यार दिखाने का तरीका है।
1: जिस दिन ऐसे बोल दिया ना उस दिन तो धरती में स्वर्ग आ जाएगा।
0: और रानी ने क्या क्या बनाया?
2: मैंने केक बनाया, पिज्जा बनाया, पोटैटो नगेट्स बनाए, फ्राइज बनाए और शरबत भी बनाए बहुत सारे। और घर की चीजें तो आती है, दाल चावल सब्जी रोटी, मैं तो नई चीजें ट्राई।
0: हाँ, शरबत तो आपने यहाँ भी सबको पिलाया था, बहुत अच्छा आम पना बनाया था रूहानी ने।
2: हाँ।
0: है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और अमीक्षा?
5: दीदी मैंने नूडल्स बनाए, चाउमीन बनाया है और घर की चीजें तो मैंने सब्जी रोटी सब कुछ बनाया है। मैं नए नए फोन में से देख देख के बनाती हूँ, और चाउमीन और नूडल्स तो मेरे मासी ने सिखाए थे मुझे।
0: अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग तो बड़ी सारी चीजें बना लेते हो अभी से।
2: दीदी जब मैं छोटी थी ना मैं सोचती थी दादी जी को देख के कि इतने सारे मसाले दादी जी याद कैसे रखती है, कब कौन सा डालना है, मुझे तो समझ भी नहीं आता मसाले का नाम क्या होता है। फिर अब जाके पता चला सब एक साथ ही डालना है।
0: हाँ, लेकिन फिर भी कितना डालना है, कितनी क्वांटिटी, मम्मी लोगों को, दादी नानी को कितनी प्रैक्टिस होती है, बहुत एक्यूरेट डालते हैं कि नमक भी ठीक पड़ेगा, हल्दी भी ठीक पड़ेगी, है ना। एक्यूरेसी कितनी होती है। हाँ मीक्षा।
5: और दीदी एक बार तो मेरी नानी ने बोला गरम मसाला ले, मैं कोई और ही मसाला लेके आ गई। तो नानी ने बोला कि तुझे मसाले में अंतर नहीं दिखता, मैंने बोला नहीं मुझे सारे मसाले एक जैसे ही लगते।
0: एक जैसे लगते हैं। हाँ
1: दीदी जब मैं छोटी थी ना मतलब थर्ड फोर्थ क्लास में, तो मम्मी ने मेरे को बोला था गरम मसाला ले बाजार से, मैं बाजार में गई तो सिर्फ मसाला कहने दिया, मैं अंकल मसाला तो गरम ही नहीं है, गरम मसाला तो घर आके मम्मी को बताया। हाँ। कहते पागल गरम मसाला ना, मैं गरम नहीं होता
0: असल में, गरम नहीं होता। हाँ जब छोटे होते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कि क्या मतलब है ना
1: उस बात पे। अभी मेरे भाई बहन मेरे को चिढ़ाते कहते गरम मसाला लेके आती नहीं है तू,
0: ठंडा मसाला ले आई। हाँ। तो अब आप लोगों को सब दालों के नाम पता है, सब मसालों के नाम पता है सबको?
6: दीदी मेरे को पता है नमक, मिर्ची, गरम मसाला, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, राई, जीरा,
5: तो ये तो हमें याद है, हमें वो दाल होती है ना उसके नाम याद।
0: दाल तो कोई भी अच्छा पहचान में आ जाती है कौन सी दाल बनी है।
1: दीदी दालों के नाम तो याद नहीं रहते, कलर से याद करते हैं, ऑरेंज वाली दाल, येलो वाली दाल, ब्लैक वाली दाल,
2: यही होता है।
0: तो
2: बस खाने में टेस्टी होती है उतना बहुत है मेरे।
0: इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सारी दाल के नाम पता करके आना, कौन सी दाल होती है, अरहर की है कि मसूर की है ना, कौन सी दाल।
6: आपको पता है मेरे को दालों के नाम कैसे पता है? क्योंकि घर की दाल मैं ही लेके आती हूँ।
0: हाँ जो लेके आता है उसको तो पता ही है, लेकिन नहीं भी लाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पता करके आना इस बार, ठीक है सब लोग। हाँ बताओ
4: जी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है।
0: मेरी फेवरेट डिश जैसा मैंने बताया था वो भी पसंद है मुझे, और अभी के अगर डिशेस की बात करें तो अभी भी अच्छे लगते हैं, नूडल्स भी अच्छे लगते हैं, पिज्जा भी अच्छा लगता है, बहुत सही फेवरेट डिश है ना।
2: दीदी आपने कभी ट्राई किया क्या कोई डिश बनाने की?
0: हाँ बहुत कुछ, क्योंकि मैं तो काफी समय से अलग भी रहती थी, जैसे बाहर पढ़ाई करने गए तो हम खुद खाना बनाते थे अपना, तो समय दाल रोटी सब्जी ये सब तो बनता ही था, कचौड़ी तहरी नूडल्स वगैरह भी बनाते थे। आपने दाल की कचौड़ी खाई है?
1: हाँ जी दीदी,
0: है वो बनाते थे
5: दीदी, बहुत अच्छी लगती है।
0: है ना, बहुत अच्छी लगती है ना
1: दीदी, इतने वैरायटी के खाने सुन के ना सही में भूख लग रही है
0: अब। हाँ नाश्ता किया है थोड़ी देर पहले पर फिर भी भूख लगने लगी है ना।
5: दीदी मुँह में पानी आ रहा है,
2: पानी में मुँह आ रहा है।
6: तो पानी मम्मू कैसे आएगा?
2: हीरा पानी
0: तो चलो इस बार यानी समर्स में आप लोग कुछ और भी हेल्दी, इस बार एक काम करते हैं, एक थीम रखते हैं कि आप लोग जो हेल्दी डिशेस होती है ना, जिसमें बहुत फ्राई नहीं करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चीजें ऐसे यूज करके कोई हेल्दी ड्रिंक या हेल्दी डिश क्या बना सकते हो, वो कोई नई जो अब तक नहीं आती, जो अब तक सीखी नहीं है, वो सोच के या देख के आना, ठीक है? तो दालों के नाम याद करने हैं इस बार, और कोई हेल्दी डिश या ड्रिंक क्या बना सकते हैं और क्या खिलाई जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, वो तैयार करके आना है, ठीक है?
1: ठीक है,
0: तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग एक दूसरे के साथ वो रेसिपीज शेयर करेंगे, ठीक है? तो हेल्दी डिश की रेसिपीज और हेल्दी ड्रिंक्स की रेसिपीज भी अगर आपको जाननी है तो बच्चों की दुनिया में बने रहिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको बताएंगे बहुत नई नई इंटरेस्टिंग डिशेस, और उनकी दुनिया में भी हम सफर करेंगे और जानेंगे कैसी होती है बच्चों की दुनिया, क्योंकि भाई बड़े भी तो कभी ना कभी बच्चे थे, तो वो दुनिया तो हमारे अंदर भी हमेशा ही रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है लेने का इजाजत, तो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हम सभी आपको करते हैं गुड बाय।
2: बाय।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है, ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी।

ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। हम सभी घर के छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी। लोग कहने लगे कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्र और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे। वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है। दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ कि उनके द्वारा जो ये साक्षात्कार होते हैं वह कराने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव हैं। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम था रुक्मणी। वे हैदराबाद के एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर

के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाली मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उन पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतिंद्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजन एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है जो दुखी हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है, उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है, वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। दुखी वर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन अथवा संबंधी भी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था, वो भी उसके साथ सत्संग में आने लगी। अगर गोपी के विषय में बात करें तो वर्तमान समय उनके भाई बांधव करोड़ों रुपए का व्यापार चला रहे हैं और वह अब ब्रह्मा कुमारीज में बड़ी दीदी के नाम से प्रसिद्ध है तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका है। ओम बाबा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता कि जैसे वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हैं। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुध भूलकर स्वयं को आत्मा के रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान और अतिंद्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेका अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था, उसकी एक झलक ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी है। बचपन से ही मेरा यह संस्कार था कि जब भी मुझे संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख होता था। शादी से मुझे घृणा थी, मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरी अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अवचेतना में निर्विकार जीवन की उत्कट चाह थी। आखिर मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी न था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की तरह उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भाव पैदा नहीं हुआ था। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह के 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में ही शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन पर बहुत था। वह घर में इकलौता बेटा था और वह इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हो गई। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसलिए हमारे दुख की दास्तान हैदराबाद के काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। यह बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग में पहुंच गई। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो, जानती हो आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ संसार दुख रूप है या सुख रूप है? मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रकुटी में आत्मा अंकित कर दी। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
शरीर जल जाता।

आत्मा नहीं जलती है, वह एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वह हो? मैंने कहा, बाबा इस प्रकार से तो मैं आत्मा हूं। तब बाबा ने कहा, बच्ची आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात पर धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? क्या आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा कि बुद्धि को इस शरीर भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इस बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है। जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है, मुझे लगा कि अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी, तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फिर पूछा, आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूं, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने पूछा, संसार दुख रूप है या सुख रूप? मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा आज का पाठ पक्का करना और कल मैं फिर से दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय मेरा मन कुछ इस प्रकार गा रहा था, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया, तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया, जगाकर आत्मनिष्ठ बनाया, एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया, अहम आत्मा और मम प्रकृति, तख्ते ताऊस बिठाया, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन में रोती हुई आई थी और अब हंसते हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी, मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माता जी को कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांत स्वरूप है। माता जी को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती। वे मुझसे कहा करती कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनाया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा मैं उनके पास चलता हूं। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले, हमारी दुखी माता को शांति देने के लिए। हम वहां पहुंचे, आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देह भान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े बैठी ध्यान मग्न हो गईं। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल कर दिया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यहां मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं को कह रहे हैं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हूं, क्यों हो अधीर माता गुरुकुल में आ बसा हूं, संताप सख्त भारी अबला भी देख रहा हूं, अधर्म दूर करने सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निस दिन बरसा रहा हूं। दोस्तों फिर क्या हुआ यह आगे सुनिए।

हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के बोलना, हल्के हल्के बोलना, हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना, हल्के।

है इसको सुला दे, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

ना हल्के, बोल ना हल्के हल्के, बोल ना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल ना हल्के।

बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।

उलझे रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से

0: दोस्तों, अक्सर जब हम घूमने जाते हैं, हम कौन सी जगहों का सिलेक्शन करते हैं अपने लिस्ट में घूमने के लिए? या तो समुन्दर के किनारे जाना पसंद करते हैं, या जंगलों आदि में जाना पसंद करते हैं, या किसी ऐसे तीर्थ स्थान पर जाना पसंद करते हैं जहां पर मन की शांति मिले। ऐसे ही कई स्थानों में से एक होता है पहाड़ों पर जाना। मैं आपको क्या समझाऊं पहाड़ों पर जाने का सुख क्या होता है, क्योंकि आप तो स्वयं ही पहाड़ों की गोद में रहते हैं, माउंट आबू में रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो पूरा विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, हिमालय की पहाड़ियों की। और उन पहाड़ियों की गोद में बसा हिमाचल, हिमाचल के एक बहुत सुंदर से प्रांत में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है सिरमौर। जैसा कि नाम है, सिरमौर अर्थात सिर का जो मुकुट है, ऐसे ही संस्कृति के ताज में आज हम आपको लेकर के जाना चाहेंगे। ये सिरमौर जो है, ये भारत की संस्कृति का सिरमौर आज एक विशेष व्यक्ति की वजह से बना है। आज हम मिलने जा रहे हैं श्री विद्यानंद सरेख जी से, जो कि राजगढ़ के सिरमौर जिले से हैं, जो लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक नृत्य और लोक गीत को लेकर के अपने जीवन को उन्होंने ऐसा संजोया है कि आज उनका जीवन हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है और यशस्वी भारत कार्यक्रम का हिस्सा। आइए मिलते हैं विद्यानंद सरेख जी से, जिन्हें भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो विद्यानंद सरेख जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी, धन्यवाद जी। ओम शांति।
0: ओम शांति। कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। 85 साल पूरे होने को जा रहे हैं। ठीक है, वक्त ना हो आपसे बात करने का।
0: जी, हमें भी आपसे बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपके जैसा एक विद्या का पुजारी और पहाड़ों से आने वाला, जिनका हृदय बहुत साफ, कोमल और शुद्ध होता है, उनसे हमें बात करने का मौका मिल रहा है। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि रेडियो मधुबन भी पहाड़ों में ही बसता है, क्योंकि शांतिवन, जहाँ पर रेडियो मधुबन का केंद्र है, वहाँ और आसपास के माउंट आबू के जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, वो भी अपने साथ एक पहाड़ी दिल लेकर के चलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं। दुनिया भर में हर कोई कहता है कि पहाड़ लोग बहुत अच्छे होते हैं। और तो आज एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आवाज पहुंच रही है, ये देख करके बड़ा मजा भी आ रहा है और आपसे मिलने का अलग खुशी भी है हमें।
1: असल में इन पर्वतों में युगों की, सदियों की विरासत छुपी है। वो सांस्कृतिक परंपरा हो, धार्मिक परंपरा हो या सामाजिक दृष्टिकोण हो, लेकिन इन कुछ बची है और उसको विरासत में हम बरकरार रखने की देव परंपरा के साथ जुड़े हैं।
0: जी, तो विद्यानंद जी, मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर, आप पहाड़ों की कहानियां जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी कहानी हमें सुनने का मन है। हम सुनना चाहते हैं आपकी कहानी, आपकी जुबानी। जब आपने कहानियां सुनना शुरू किया, आपको कैसे उन कहानियों ने प्रेरित किया, आपका बचपन कैसा रहा, हम सुनना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। कैसे शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: असल में कहानी तो बड़ी लंबी है, और लेकिन ये जरूर है कि ये सांस्कृतिक परिवेश और परंपराओं से जुड़ा मेरा जीवन रहा है। 4 वर्ष से लेकर के मन संभाला है, और उसके बाद निरंतर शिक्षा काल में भी, और जब शिक्षा के बाद मुझे सरकारी नौकरी में अध्यापन का कार्य मिला उस वक्त भी, फिर जब सामाजिक कार्य में मैं 40 वर्षों से निरंतर रहा, उसमें भी निरंतर मेरा प्रयास रहा है, जिसमें मैंने कम से कम 35 पुस्तकें हिमाचल प्रदेश के, जो गिरी नदी बहती है, बड़ी पवित्र धारा है, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है, और सतयुग की ये नदी है, सतयुग में, और ये गाथा गीतों में है हमारी है। सतयुग में एक साधु स्वर्ग से गंगा जल लाया था, और वो यहाँ पर कोटखाई और युबल है, दो शिमला क्षेत्र के तहसीलें हैं, उनके मध्य एक ऊपर धार है। आज भी वहां पर गिरी गंगा का मंदिर है। मैं तो गिरी गंगा पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये वहां पर उसका कुमंडल गिर गया, और उस बड़ी आवाज आई कि गिरी गंगा, और गिरी गंगा नाम थी, गिरी गंगा गिरी थी। और वो अब वो कहानी तो ये है, ये फिर वो बहती हुई यमुना में डाक पत्थर में मिलती है, और इसके दोनों ओर हमारा सिरमौर जनपद है, सिरमौर का एरिया भी है, और आज शिमला, सोलन और कुछ ये आपका ठियोग का एरिया, ये सारा दूसरी तरफ ही है, गिरिवार और गिरिपार में ये दोनों ओर का क्षेत्र है, और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की को हम प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में विभक्त करते हैं। एक है ये गिरी गंगा का या महासुई क्षेत्र, और दूसरा है डोगरी बोली का क्षेत्र जो कांगड़ा हमीरपुर के क्षेत्र है, चंबा के क्षेत्र है, मंडी के क्षेत्र है, और तीसरा है वहां पर डोगरी का प्रभाव है, और तीसरा है भूटी बोली का प्रभाव जो लामाओं का है, वो है जनजातीय क्षेत्र किन्नर और क्या कहते हैं लाहौल स्पीति। तो इन तीन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश में हिमाचल प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की, वो जहाँ पर मैं हूँ और जहाँ मैंने लोक साहित्य पे, लोक गीतों पे, लोक नृत्य पे, लोक नाट्य पे और साहित्य पे के विभिन्न पहलुओं पे, उपन्यासों पे काम किया है, तो वो क्या कहते हैं एक धरोहर है। और शायद और फिर अनुवाद भी किए है, गीता का अनुवाद किया है, भर्तृहरि शतक का अनुवाद किया है, रविंद्रनाथ टैगोर की 51 कविताओं का गीतांजलि का अनुवाद किया है, और वो क्या कहते हैं अब मैं 4 वेदों का सिरमौरी में अनुवाद कर रहा हूँ। ये तो छोटे छोटे ऐसे काम है जो मेरे निरंतर चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ एक संस्था जुड़ी है जो निरंतर हम जो कुछ सोचते हैं, लोक संस्कृति की खोज करते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप देते हैं वो, और वो भी 22 साल से है, और वहाँ पर भी गुरु शिष्य परंपरा चली हुई है। उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन भी मैं भली प्रकार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से कर रहा हूँ, और इसी दौरान मुझे माउंट आबू आने का भी मौका मिला, और मैंने वहाँ हमें वहाँ पर मेरा बहुत सा जो सम्मान है वो यहाँ है, और मैं अत्यंत प्रभावित हुआ कि ऐसी संस्था है ये जो धार्मिक मतभेदों से, आपसी जिस तरीके से आज कष्टम कष्ट चली हुई है विभिन्न समुदायों में, धर्मों में, और क्या कहते हैं और कुछ उसका प्रचार का गलत वो व्यवस्था हो रही है, उसके लिए सही मूल्यांकित रूप से संदेश आज ये संस्था विश्व को पहुंचा रही है, ब्रह्म कुमारिया, एक एक दूसरा सौभाग्य हमारा। तो ये छोटी छोटी बातें तो ये है, लेकिन जहाँ तक लोक संस्कृति के माध्यम में लोक संस्कृति की, इसलिए इन इस गिरी नदी के किनारे ही क्या कहते हैं ये तो ये सौभाग्य हमारा कि इसी के किनारे महाराज बलि को, बलि सौवा ये एक ही राजा बलि था जो धर्म के रास्ते से स्वर्ग का स्वर्ग पर विजय पाना चाहता था, तो वो जब सौवा यज्ञ यहाँ मेरे गांव के नजदीक बलग गांव है, बलग बलि गया था जहाँ, तो वहाँ पर त्रिवेणी बनती है, उस वक्त की वास्तविक त्रिवेणी वो है, वो गिरी गंगा ऊपर से निकलती थी, पाताल नदी टूड़ेश्वर है यहाँ पर सबसे ऊंचा 12-13 हजार फुट की ऊंचाई का, वहां से पाताल नदी निकलती थी, और साथ में उसके साथ ही पारबलक के साथ 7 स्वर 7 पानी, ये नेचुरल बात कह रहा हूँ, 7 पानी निकलते हैं, वहाँ स्कूल भी है एक तुंगेश जगह में, वहां से 7 स्वर निकलते हैं और वो वहाँ बलग में मिलते हैं, और वहाँ ये बलग में उसने सौवा यज्ञ करना चाहा, लेकिन देवताओं ने कहा भी अगर ये राक्षस के हाथ में दिए, ऐसा है किंवदंती है हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो, लेकिन कहते हैं बामन अवतार वहाँ पर बामन बन के वहाँ आए और उन्होंने राजा बलि को पाताल का राज्य बलग में दिया है, और वहीं पर ये इसी गिरी गंगा के किनारे त्रेता युग में परशुराम जी का अवतार हुआ, हमारे क्या कहते हैं 24 अवतारों में, तो वो मार रेणुका और जमदग्नि की तपस्या के फलस्वरूप गिरी गंगा के पास ही एक बड़ा तालाब है जो माँ रेणुका का एक तपस्थली है और बिल्कुल मनुष्य के आकार का है उस समय, और वहीं ऊपर वो जामू का टीमा है, जमदग्नि वहां पर तपस्या करती थी, वहीं परशुराम जी ने एक शिला पर तपस्या करके त्रेता जीवन और संदेश दिए है। ये त्रेता युग की घटना भी इसके किनारे है। द्वापर में इसी गिरी गंगा के राह से, यमुना की राह से, कुरुक्षेत्र के मैदान से ये कौरव समर्थक सैनिक और पांडव समर्थक जो है सैनिक थे, शाठड़ और पाषण नाम थे, वो इधर आए और यहाँ की मूल जातियों पर अपना अधिक वो क्या कहते हैं अधिपत्य जमा करके यहाँ पर वर्षों तक उन पर आपस में भी लड़ते रहते, पहने तीरते, और उस काल की द्वापर काल के बाद की असंख्य गाथाएं गीते हैं उनमें ये सारी, ये गिरी गंगा का भी, देवताओं की उन लड़ाई की, हारूल बार साका पुआड़ा पडवायन रामायण, ये सारी ये मैंने संकलन किया है, और तो क्या कहते हैं, ये सारी लोक शैली की जो लोक परंपराएं थी हैं, और फिर नेचुरल इस गिरिगंगा के दोनों ओर असंख्य देवी देवता, शिरगुल हो, महातु देवता हो, गुग्गा पीर हो, ब्रजेश्वर हो, क्या कहते हैं, डोम देवता हो, मतलब ये सारे सैकड़ों देवी देवता आज भी असंख्य मंदिर है और उनके मंदिर है, और फिर प्राचीन वास्तुकला से आज भी यथावत विरासत में है। तो इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका मिला। खैर, मैं तो अभी और भी काम कर रहा हूँ, और लेकिन मैं इसके जो परम शांति के लिए जो एकाग्रता की पहल जो ये ब्रह्म कुमारियों ने की है, वहां मुझ पर, मेरे तो अपने बैठक में लगा हुआ, मैं नित्य रोज उसके सामने 2 मिनट के लिए शांति, क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं होगी तो कोई हम न ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, और क्योंकि हम भटके हुए हैं सभी लोग, तो ये एक छोटा सा ये जीवन है। अभी इसमें मेरी पुस्तकें में कुछ तो छपी भी है, लेकिन कुछ छपी नहीं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कोई ऐसा है नहीं, अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि शायद आने वाली पीढ़ी, मेरी बैठक में बैठे हैं ये पद्मश्री वगैरह, ये यहाँ लगा है जो कुछ, वो कई पुरस्कार मेरे बैठक में लगे हैं, तो डॉक्टर वाईएस परमार भी इस बैठक में कई बार बैठे, अब क्या कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन सब का प्रभाव, मेरा निरंतर प्रयास, मुझे नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मुझे मंजिल की ओर रास्ता लेते लेते जाते हुए आपके क्या कहते हैं मार्गदर्शन ऐसा मिला कि हमें क्या कहते हैं माउंट आबू में भी जाने का मौका मिला, और आज आप दोबारे मुझे माउंट आबू पहुंचा रहे हैं, मैं आपका आभार भी।
0: आभारी तो हम हैं आपके विद्यानंद जी कि आपने हमें अपने जीवन कहानी के बीच में आपने उस पूरे प्रांत की कहानी सुना दी, और साथ ही साथ हमें इतिहास और हमारे उन सांस्कृतिक धरोहरों की ओर हमारा रुझान आपने कराया, जहाँ जरूरी है कि आज के जमाने में जो लोग इतनी दौड़ भाग की जिंदगी जीते हैं, कभी बैठ करके इत्मीनान से जब ये कहानियां वो सुनते हैं तो जैसे सुकून मुझे महसूस हो रहा है, मैं समझता हूँ उन्हें भी ये सुकून महसूस होगा। लेकिन जब आप कहानियां कह रहे थे कि कैसे कमंडल गिरा और उसकी वजह से गिरी गंगा नाम आया, और कैसे राजा बलि की कहानी भी आपने इसमें जोड़ी, और भी कई सारी बातें, लेकिन मुझे जानना है विद्यानंद सरे की कहानी। जब वो बचपन में पैदा हुआ या जिस परिवार में पैदा हुआ, कैसा परिवेश था, क्या संस्कार थे, किन चीजों ने आज के विद्यानंद सरे को प्रेरित किया कि वो इस रास्ते पे निकले?
1: जी, मैं एक गरीब परिवार में, मेरे माँ बाप, एक माँ थी, बाप है, पिताजी, मैं 9वीं कक्षा में, मैं पहला यहाँ 3, 4, 5, 6 पंचायतों का एक युवक था जिसने पहली बार यहाँ मैट्रिक पास किया, फिर आगे ग्रेजुएशन भी, चलो वो तो एक बड़ी लंबी कहानी है। यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, फिर नहान जाना पड़ता था, 200 किलोमीटर या शिमला जाना पड़ता था, जो 100-150 किलोमीटर थी उस वक्त, ऐसी हालात थी। पिताजी जो थे मामूली सी सीने का काम करते थे, जमीन थी हमारे पास, जमीन पे काम करते थे, लेकिन मुझे वो पढ़ाना चाहते थे और डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बीच में मेरी शादी का उन्होंने नियत कर दी, मैं 9th में पढ़ता था जब, और उन्हीं दिनों 10 प्रविष्टि क्या कहते हैं चैत्र में उनकी, मैं वो 26 की शादी थी, 10 प्रविष्टि चैत्र में वो उनका स्वर्गवास हो गया। मेरा सारा सारी व्यवस्था जो उनकी शादी थी हो गई, वो क्यों अड़े रहे, क्योंकि शायद उन्होंने जाना था। फिर माता जी ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, हम दो ही रहे माँ बेटा, और फिर किस तरीके से शिक्षा हासिल की बलसन में जा करके, तिहा बलसन में जा करके, तो फिर आकर के 59 में सीधा जैसे ही मैट्रिक किया मुझे नौकरी मिल गई थी, 62-63 में मैं प्राइवेट पढ़ना शुरू किया ट्रेनिंग। ये तो बड़ी फिर लंबी कहानी है, लेकिन इस परिवेश में रह करके मेरा बचपन से ही नृत्य के लिए, माँ बाप के को भी रुचि थी संगीत से, और उनका प्रभाव, उनका आशीर्वाद भी मिला, और पहले तो अपने मनोरंजन के लिए क्या कहते हैं अपनी इसके लिए कि भाई उनको रिझाता था मैं नाच करके गा करके, जो जो फूटे फूटे गीत थे, लेकिन बाद में फिर मंच मिल गया गांव का, करियाला हमारा लोक नाट्य है, और वहां से वहां पर भी क्या कहते हैं सैकड़ों लोगों में मुझे वाहवाही मिलने लगी, और मेरा, और इसी तरह से मैं 57-58 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से मुझे गाने का मौका मिला, आवाज सुरीली थी, अब तो खैर आवाज भी खो चुका हूँ, लेकिन वहां पर सुप्रू हाउस में डॉक्टर केसरी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और परमार यहाँ से एमपी बन करके गए थे, क्योंकि 55 में यहाँ विधानसभा खत्म हो गई थी और उन्हें पार्लियामेंट में भेजा गया था। वो सप्रू हाउस में मुझे उनके सामने शिमला से ऑल इंडिया रेडियो से एक बड़ी टीम गई थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने डॉक्टर परमार ने मुझे हाथ पकड़ करके केसकर हाथ में दे, कहते मिस्टर केसकर विद्यानंद जो है हमारी कल की स्वीकृति की धरोहर है। खैर ये तो बड़ी लंबी कहानी है, मुझे तो मुसीबतें झेलनी पड़ी और लेकिन क्या कहते हैं जैसे तैसे आगे बढ़ते, फिर 17-18 साल की नौकरी भी छोड़ गया क्योंकि राजनीति वालों ने मुझे उकसा दिया, उससे भी सारा किया कराया खत्म, बच्चे थे 4-5 आधी दर्जन, वो कैसे पले, खैर जमीन है भगवान की कृपा से। ये सारी कठिनाइयां झेलते हुए मैं निरंतर लिखने का काम करता रहा और मेरे लिखने का कई बार पहाड़ी में मजाक भी होता था, ये विद्यानंद तो नाटियां लिखता है वो, और किसको पता था भी ये नाटियां भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री मुझे यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे, मुझे नहीं भी कैसे, मेरे मैंने ना अप्लाई किया ना मैंने कोई लॉबिंग की, तो ये लंबी कहानी। इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों प्रदेश के जिला के इसके और फिर विदेश में भी जाने का मौका मिला, हमने विदेश में भी अपने साथ जो हमारी टीम थी उनकी वो किया है। तो ये तो ये कहानी, लेकिन उसके साथ साथ हम साथ साहित्य को, लोक साहित्य को उभारते रहे और हिंदी में भी बहुत सारे लोक साहित्य, बहुत से विलुप्त हो रहे हमारे नृत्य, उनको हमने कोशिश की है कि हम उसको लिपिबद्ध किया जाए, क्योंकि यहाँ यहाँ जो है ये जो हमारा गिरी पार्क कहते हैं, हमारे ट्रांसगिरी एरिया ऑफ द गिरी गंगा, ये आज जनजातीय बन गया है, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार भाटी समुदाय है। ये सारा अनादिकाल से घुमंतू था और क्या आज भी गडरिये गर्मियों में टूरधार के जंगल में जाते हैं और सर्दियों में गर्म इलाकों में नोएडा बोलते हैं उधर को जाते हैं। तो उनके उनके कृतित्वों को, देवी देवताओं की विभिन्न परंपराओं को, उसको भी सजोना, फिर जो वास्तुकला है यहाँ की, घरों की, मकान की, देवताओं के मंदिरों की, उसका भी संकलन मैंने किया है और सुरक्षित रखा है ताकि वो परंपरा निहित रहे। कोशिश ये की है हमने कि उस परंपरा को, उस वास्तुकला को, मूर्तिकला को यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं मुझे बड़ा सम्मान देते हैं ताकि बने, क्योंकि हमारे हमारा जो जीवन है माँ बाप के संस्कारों से, वहाँ घर के परिवेश से, संस्कार से संस्कृति की ओर जाते हैं, संस्कृति सभ्यता को पैदा करती है और सभ्यता से हमारा आज का परिवेश बनता है। लेकिन जब उस सांस्कृतिक परिवेश में छाया पड़ती है पाश्चात्य, वो क्या कहते हैं जैसा आज पढ़ रही है धर्म पर पढ़ रही है, आज धर्म में साधु महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, कोई झिंगुर बाबा है, कोई कर रहा है, देश को जब सही रास्ते में ले जाना है वो नहीं, लेकिन हमारे लोग अभी भी आस्था रखते हैं, जब मंदिर के जो बात होगी उसको आदेश समझ करके हम अपनी उसका पालन करते हैं, वो चाहे शिव का मंदिर है, चाहे शक्ति का मंदिर है, चाहे काली का मंदिर है, लेकिन श्रद्धा से उसका पालन किया जाता है। ये ट्रांसगिरी एरिया जो है ना, क्योंकि सिरमौर जो मैं आपको बताऊं, ये कालसिया से लेकर के आके तरोज तक, उस गिरी गंगा के क्षेत्र से आगे तक, ये सिरमौर जो था ना, सिरमौर एक साम्राज्य था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका नाम सिरमौर, सिर का मौर्य, सिर का ताज रखा था, हिंदुओं ने उनका साथ दिया था पाटलिपुत्र विजय पर, तो तब से लेकर ये राज्य था। ये कोई छोटी रियासतें तो मुसलमानों के टाइम, हुनों के टाइम लेना देना, जब रियासतें आई और कंपनी के समय में, अंग्रेजों के समय में, लेकिन उस समय ये साम्राज्य सिरमौर था और आज भी सिरमौर जो है ना एक जिला जनपद के रूप में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को यथावत रखा है।
0: और आपने सिरमौर को सिरमौर बना के रखा है, क्योंकि सिरमौर का सिरमौर बने रहने के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर इन कहानियों को, इन धरोहरों को कोई सामने ही ना लाए तो जनमानस तक इन बातों को जानना, इनके बारे में रुचि रखना, इनको अपने जीवन में धारण करने की बात ये हो ही नहीं सकती। इसलिए जो आपका योगदान है, आपने बार बार कहा कि मैं बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ, बट हमारा दिल और आपका दिल जानता है कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को एक सवाल ये था कि जब आपने कहा कि बचपन में ही आपको नृत्य का और कला के प्रति रुझान था, अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं, या जो दोस्त आदि होते हैं, वो सब कुछ और प्रकार की विधवाओं को ज्यादा सम्मान या ज्यादा प्रेरणा देते हैं। अगर कोई कहे कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कोई कहे मैं टीचर बनूंगा, तो बोलते हैं हाँ ये भी अच्छी बात है। अगर कोई कहे मैं किसानी करूंगा, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, भले कर लो। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो सब कहते हैं अरे बिल्कुल मत करना, वहां तो कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारा तो घर ही नहीं चलेगा, आदि आदि बहुत सारी बातें होती हैं। आपको भी ऐसी बातों का सामना करना पड़ा होगा, या कैसा था आपका वो समय जब आप इस विधा की तरफ झुक रहे थे, या लोक संस्कृति, लोकगीत, इनको आप अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहते थे, तो वो कैसा था आपका सफर?
1: मैं आपको एक बात बता दूंगी, मैं प्रैक्टिकल आदमी, मैं तो खुद गाता हूँ, अगर लिखता हूँ तो खुद लिखता हूँ, किसी की चोरी नहीं करता, अगर नृत्य करता हूँ तो खुद नृत्य और अभिनय की जो ट्रेडिशन है हमारी, मैं ये आपको ऐसे नहीं बता रहा कि मैं वो क्या कहते हैं मतलब साहित्यिक तौर सिद्धांतिक तौर पर, तालों के बारे में जो हमारे लोक ताल है उस पर भी मैंने काल और ताल एक पुस्तक लिखी है और छपी तो है नहीं, लेकिन उन तालों को बजाना भी जानता हूँ और उनकी प्रस्तुति भी करना जानता हूँ और उसके पीछे क्या लॉजिक है हमारा वो भी, क्योंकि मैंने हर काम के डेप्थ पर जाकर के काम किया है। फिर अलग अलग विधाएं खोजी है, गायन की भी अलग अलग विधा, नाटी के भी 4 रूप हमने खोजे है, 8 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा और 6 मात्रा, ये हमारी यहाँ की परंपरा है। उसमें असंख्य गीतों को असंख्य तर्जों को किया और उसका संकलन किया है। तो कहने का तात्पर्य, फिर नाट्य की बात है तो नाट्य में अभिनय भी, नाट्य में अभिनय की निर्देशन भी और लिखना भी, तो बाल नाटक भी वो भी लिखे हैं, और कुछ मेरा एक जो यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा है, आपके राजस्थान में भी पवाड़ा जो है ना तो पवाड़ा नाम से है, हमारे यहाँ झांको अजबा का पवाड़ा ऐसा ऐसा ढांचा था जो सदियों पुरानी वैमनस्य था, 1866 राजपूत और 1818 उनमें युद्ध था, वो भी यही सिरमौर में गिरी गंगा के किनारे क्या कहते कोटला में एक सती झांको ने अपना बलिदान दे करके इसको खत्म किया। और इस गिरी गंगा के ही किनारे त्रिविधा नृत्य नृत्य नाट्य क्रीड़ा, एक छोटा नृत्य वो तीर कमान का, वो पैना तीर उन्होंने काट दिया, उन्होंने हार जीत खत्म कर दी, वो क्या कहते हैं उसने बोलो जी मेरा बलिदान जो है बराबरी के लिए होगा, और अपने आप वो अपने पति के साथ जल गए। ये बड़ी लंबी कहानी है, और तो ये ऐसे ऐसे गाथा गीत इनका संकलन किया है, और इस पर मैंने मेरा टेलीकास्ट रेडियो से भी क्या कहते हैं दूरदर्शन से भी जालंधर से दिल्ली से समाधान नाम से वो क्या कहते नाटक वो हुआ है। तो मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी कह रहा हूं मैं कि मैंने अगर छड़े की बात कही, एक युद्ध का होता था इनका, तो उन वहां जाकर के उसको देखा है उसमें क्या है, हर गांव में जाकर के, वो तो सौभाग्य ऐसा भी मेरी पोती PhD कर गई सिरमौर जनपद के गीतों में, मौसमों के अनुसार लोक नृत्य लोक संगीत का विश्लेषणात्मक अध्ययन भी उसका PhD पूरा हो गया, तो इस वजह से मुझे उसके वजह से भी जाना पड़ा। तो क्या कहते हैं बहुत से स्कॉलर आते हैं यहाँ पर, मैं इस प्राचीन संस्कृति को उभारने के लिए निरंतर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो ये धर्मांधता है हमारे कट्टरवादिता है, ये अब ब्राह्मणवाद तो कहेंगे नहीं इससे, और ये जो साधुवाद है इससे जरा थोड़ी सी परहेज करके मुझे आपकी जो ये संस्था है इससे लगाव हुआ है, कि कम से कम कोई संस्था तो ऐसी है जो निर्लेप है, और कोई संस्था तो ऐसी है जो समग्र सबके कल्याण के लिए बिना किसी कशमकश और रस्साकसी से, क्योंकि अगर आप ईसाई धर्म को लोग भी वहां भी प्रोटेस्टेंट और ब्लडी मेरी जैसे हालात हुए हैं, दुनिया के सभी धर्मों ने किया है, यहूदियों का वही हाल रहा है, तो कहने का तात्पर्य है भी प्लॉटिंग होती रही है वो, लेकिन एक ऐसी संस्था जो शांति और परम श्रद्धा के साथ लोगों को इकट्ठा करे और फिर ये सोचे कि हमारा जन कल्याण हो, ये हमारी सनातन धर्म की परिपाटता का सही रूप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस अनूठे प्रयास को पहचाना है और इसका आप सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी मैं आपको धन्यवाद कहूंगा कि आपने शरीर की आयु होते हुए भी आप अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं, आप रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, युवाओं के साथ गांव-गांव जाकर के उस गांव के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। ये करने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत धैर्य चाहिए। इतना धैर्य आप अपने अंदर कैसे लाते हैं?
1: मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मैं प्रैक्टिकल आदमी। मैंने बचपन से लेकर के मेरे साथ बड़ी गंदी सोसाइटी होती थी, नाच गाने वालों। मैंने कभी शराब का स्वाद नहीं लिया, ना मीट खाता हूँ। और पूरा परिवार मेरा ऐसा है कि ना मीट खाता है ना शराब पीता है। और कम से कम 30-35 आदमी का 3 बेटे हैं, उनके भी आगे पोते भी है, पड़पोती भी। कहने का तात्पर्य ईश्वर की कृपा है, लेकिन कहने का ये तात्पर्य ये है कि मैंने पहले अपने आप अपने चरित्र को, मैं सुबह 4 बजे उठ करके योगा करता हूँ, तभी लोगों को बोलता हूँ 20 मिनट योगा करके, और मैं तभी इस तरीके से जिंदा हूँ। मेरे साथ ही सब चूर की हड्डियाँ कीर्तन बोल रही है, मैं भागता हूँ, दूर जाता हूँ। आजकल तो मेरे ऊपर तो हम भीगे, एक जगह मैं चीफ गेस्ट था तो वहाँ भीगे, तब से मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया था, लेकिन आज सौभाग्य आपसे मिला और ऐसे स्थान से मिला कि हम जहाँ देख करके भी आया है, और आप विश्व में जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे राष्ट्रीय धर्म की सही एक विश्लेषणात्मक बोलो या अध्ययन पूर्ण बात बोलो या ये बोलो कि सही दृष्टिकोण है, और जिससे जो लोगों को भी कुछ ना कुछ पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपना जीवन यापन।
0: जो आपने ये बात कही कि आपने जीवन में संयम, नियम और अनुशासन को बहुत गहराई से जीवन में अपनाया है, और जो आपने बात कही कि केवल आज का नहीं, एक लंबे समय का आपने अभ्यास किया है इन तीनों गुणों का, जिसकी वजह से आज आप इतने स्वस्थ हैं और आज आप इतने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, थकान नहीं आपके शक्ल में, इतनी रौनक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सीखना चाहिए आपसे, सभी श्रोता साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि इन्होंने कहा, जीवन का एक नियम होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए और उसमें सततता होनी चाहिए कि हम रेगुलरली उस चीज को कर रहे हैं। आज किया कल नहीं किया, ऐसे उतार चढ़ाव में क्या हो जाता है कि हम खुद भी नहीं समझ पाते कि उससे कुछ परिवर्तन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम सतत करते हैं किसी चीज को तो उसका प्रभाव जीवन पे दिखता है, जैसे कि विद्यानंद सरेख जी के जीवन से दिखता है। उन्होंने न केवल साहित्य के साथ, कला संस्कृति के साथ जुड़े रहने को अपने जीवन का ध्येय बनाया, लेकिन उसको करते हुए उन्होंने कईयों के जीवन में उस संस्कृति का अलग जगाया है। क्योंकि मैं और आप दोस्तों जब शहर में जीने लगते हैं और शहर के दौड़ धूप में अपने को एकदम मत देते हैं, तब हमारे पास यही संस्कृति होती है जो हमें एक ठंडी छांव और एक ठंडी हवा का महसूसता कराती है। विद्यानंद सरेख जी, आपने बोला कि अब आप बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए आपकी आवाज भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कभी ना कभी आप गुनगुनाते तो जरूर होंगे खुद के लिए। क्या आज आप हमारे लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे,
1: क्या
0: कुछ आप गाना
1: बोला
0: चाहेंगे,
1: जी?
0: कुछ गुनगुनाना चाहेंगे?
1: तो बोलो कि तो मैं गालूंगा, एक भजन गा लेता
0: बिल्कुल,
1: हूँ।
0: हम चाहेंगे कि आप सिर
1: मेरा
0: आप
1: अपनी अपनी
0: कोई
1: आवाज
0: भी
1: और
0: ऐसा भजन गाएं जो कि उस उन पहाड़ों से निकल के आता हो।
1: वो दुखोरा ताना बना तो ए इशरा लाया रे, घड़ी पले माया ममते दा जीवना मान छोरा सजाया रे। दुखो दुखो रा तन रुबन हरी बांदरिए धरती है ऊंची गायणी दे तारे पे, हरी बांदरिए धरती है ऊंची गायणी दे तारे बे। नाचो तारो दे सात समुंदरो, नाचो तारो दे सात समुंदरो, नदी खाड़ो रे फवारे बे। पापी जी उठा दियो गवाए तेरे बद के माया रे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना तो ए इशरा लाया रे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना चंदो सूरजो चौधुरा के जोड़ू दुई ने हाथों बे। तेरी साइया कुण जी बोलिए लाऊ गुणोरी बातों बे, आखे देखो तेरे मुर तो कोई मने ना समाया बे। दुखो दुखो रा ताना रुबाना, ये तो धार्मिक, मैं आपको श्रृंगार श्रृंगार की एक
0: जी, इस गीत
1: जो
0: का थोड़ा सार भी अगर आप समझाएं, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन हमारे श्रोताओं को अगर आप सार में समझाएं तो भी बड़ा अच्छा होगा इस गीत का सार।
1: तो मतलब ये कि ये सुख दुख का ताना ही भगवान तैने लगा रखा है, और ये सारी संसार इस सुख दुख के ताने और बाने में, जो हमारा जैसा क्या नाम कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना लगाते हैं ना जी, तो उसमें उलझी हुई है। लेकिन और उसके साथ माया ममता के साथ ऐसा उलझा रहा है रखा है कि इंसान जो है ना अपने आप को भी भूल जाता है, कई बार घर को घर गृहस्थ को भी भूल जाता है और बहक जाता है दूसरी ओर भाग रहे, और यही कारण है कि पाश्चात्य की ओर नजर लगा करके हम अपने आप को बर्बाद करें। थोड़ी थोड़ी बातें है ना जी, ऐसी बहुत पहले लिखा, ऐसे मैंने धार्मिक भी लिखे, श्रृंगारिक भी लिखे, हास्य के भी लिखे और लिखे हैं, और वो अलग अलग वो पहलू है उन पुस्तकों का, तो लेकिन मैंने छपे इसलिए नहीं सके, मेरे पास साधन नहीं था, और कोशिश करता हूँ। गाए रेडियो से, मेरे बहुत से लोगों ने भी गाए, मैंने भी बहुत से रेडियो से गाए, मैं भी हाई था रेडियो का, ऑल इंडिया रेडियो शिमला का, तो क्या कहते हैं बहुत अरसे तक जब गला बंद हो गया तब क्या करना, तो पर अब यही एक उस वक्त
0: लेकिन
1: मीडियम था।
0: आज भी आपकी आवाज में वो क्या कहेंगे, एक ओरिजिनलिटी है आपकी आवाज में, वो एक अनोखापन है जो कि सुनते साथ ही मैं खुद को ऐसे अनुभव कर रहा था कि मैं हिमाचल की या हिमालय के किसी छोटे से गांव में बैठ करके चाय पी रहा हूँ, खिड़कियों से देखते हुए झरने नदी, मैं जैसे आपके वहां पहुंच गया था। आपकी आवाज में वो जादू है।
1: ये यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये हमें प्रेरणा देता है, इसको अध्ययन करके यहाँ ये देवी देवताओं का तभी पास है, और हजारों वर्ष के यहाँ प्राचीन मंदिर है, मेरे गांव में हजारों वर्ष पुराने मंदिर है, और मूर्ति कला का एक अनूठा वो है। अब उन्होंने किस आस्था से किस तरह से बनाया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें हमारे लिए ये प्रेरणा है कि हम आस्था से वहां बैठ करके श्रद्धा से अब एक एकाग्रता वहां पर अपनी जता करके और ये सोच करके चलते हैं कि हम उस प्रभु जो क्या कहते हैं जिस जो निराकार है, निर्विकार है, निराधार है, उसकी आराधना किस तरीके से हम करें। चलो ये तो बहुत लंबा वो है, लेकिन आज मैं मुझे मुझे तो पेंशन भी कोई नहीं मिली, और ना मैंने कभी भगवान ने चला रखा है जैसा काम घर का चला रखा है, मेरा भी चला रखा है, ये सारे परिवार का भी चलता है, बाग बगीचे लगे हुए, अब तो खैर भगवान सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने आर्थिक दृष्टिकोण को देखा नहीं, तब तो मैं अच्छी खासी नौकरी ना, मैं भी डिप्टी डायरेक्टर तो रिटायर हो ही जाता, इतना मुझे पता था, लेकिन 17-18 साल की नौकरी छोड़ करके मुझे ना पेंशन मिली ना कुछ मिला, और भटक भटक पर ये 40-50 साल मुझे पड़ाव पर लाए। आज मैं प्रसन्न हूँ, मुझे बेशक नहीं मिला, लेकिन मैं आनंद आप जैसे लोगों का सहयोग आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे प्रेरणा मिले।
0: तो विद्यानंद जी, जैसे आपको प्रेरणा मिल रही है, मैं समझता हूँ पूरे देश भर में भी जब आप जाते हैं अलग अलग जगहों पे जाकर के आप अपनी कहानियों को आगे रखते हैं, अपने कला संस्कृति के अनुभव को आगे रखते हैं, तो कई युवा भी आपसे प्रेरणा लेते होंगे। युवाओं के लिए आप क्या समझते हैं, अभी क्या जरूरी है उनके लिए, आपका कोई संदेश है उनके लिए, या आप क्या देखते हैं उनमें, उनकी क्या जरूरतें हैं आज?
1: जी युवा पीढ़ी आज भटक चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना ये संदेश है युवाओं को कि वो माँ बाप पिता गुरु अपने अपनी जो प्राचीन हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं धरोहर है उस पर आस्था रखते हुए आगे बढ़े। इस पाश्चात्य जो प्रभाव हम पर पड़ता रहा उसकी नकल छोड़ करके सीधे अपने जो अपना सनातन धर्म है, जो हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, उनका अनुसरण करे, उस पर चले, और तो अपना भविष्य उनका सुधर सकता है, और क्या कहते हैं यही नहीं पूरा परिवार खुशहाल हो सकता है। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है कि भाई मैं 30-35 आदमी के परिवार में कोई किसी किस्म का बुरे व्यसन में नहीं है, तो मेरे लिए तो गौरव की बात है कि हमसे उसकी भी है, मैं इतना तो कर सकता हूँ, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग वो मेरे से चुप करके जो करते भी है, चुप चोरी छुपेगी नहीं, गुरु जी आ रहे हैं अब जरा हम बोतल को दबा करके रखें तो खैर इतना भी एक बहुत बड़ा है। तो युवा अगर भटक गए हैं उनके लिए भी मेरे निरंतर प्रयास है, मैं किसी भी मंच से, किसी भी पत्रिका में, किसी भी इस तरीके से जो जो जहां पर भी बातचीत होती है वहां पर यही संदेश देता हूं कि आइए पहले तो खुद को अपने आप को सुधारिए, क्योंकि गांधी जी गुड़ खाते थे और उनके दांत में दर्द होती थी, पर एक औरत आई कि मेरा बेटा जो है ना उसके दांत में दर्द हो रही है, 8 दिन बाद आना, फिर वो 8 दिन बाद ही, तो आज अब बता दूं क्या है कि आपका बेटा गुड़ तो नहीं खाता, बोलो हाँ तो अब गुड़ नहीं खाने देना, तो 8 दिन पहले बता देते, बोलो उस वक्त मैं खुद गुड़ खाता था, मैंने भी गुड़ छोड़ दिया। तो असल में ये छोटी सी बात है, लेकिन आदर्शों को पहले खुद आपके आपको अपने व्यक्तित्व को हमको अपने व्यक्तित्व को इतना सबल बनाना है, तभी हम जो है दूसरों को के लिए आदर्श बन सकते हैं। नहीं तो आज सर्वनाश हो रहा है, धर्म का विनाश हो रहा है और कर्म का विनाश हो रहा है, आर्थिक राजनीति खत्म हो चुकी है, लोग भटक चुके हैं और हम पश्चिम की ओर इस तरीके से दौड़ रहे हैं, भाई पैसा ही कमाना है। वो कह रहे हैं, हमने देखा, मैं आपको एक बात बता दूं, बुल्गारिया में हम एक जब आ रहे थे तो वहाँ की जो डायरेक्टर थी कृषि विभाग की, वो हमें छोड़ने थी ऑफ करने, फिर हमने वहाँ से मैसेडोनिया जाना था। तो हमारे लड़कों ने कहा कि गुरुजी ने एक गीत लिखा है पहाड़ी का, यहाँ वो क्या कहते हैं, हमारे साथ बुल्गारिया की एक नौजवान लड़की थी बड़ी खूबसूरत, उसके ये इनके हमारे शाबरे बाल बोलते हैं, इसके जो इनके पेड़ बाल होते हैं ना अंग्रेजों के, तो मैंने लिखा है था उसमें, उनको सुना दिया मैंने, क्या बोलो मुर्गा जो रही बुलगार किए तेरे शाबरे बाल हो रहे, ताई देखियो दाढ़ी ये जियो दे चोटिये बाल हो रहे, तेरे को देख करके मन उबल गया, अब क्या करने। तो वो हंसने लगे सभी, बोलो आप लिखते भी है, उसने हिंदी में बोला उस लेडी ने। मैंने कहा आप हिंदी आ? और हमारे बीच वो साड़ी पहन करके आती थी, कहते आपको मैं बता दूं, मैंने सूरदास पर गोकुल वृंदावन में PhD की है, और क्या कहते 2 साल लगा करके वहां पर अध्ययन करके मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और मुझे भारतीय संस्कृति से प्यार है, इसीलिए ये आपके बीच ये साड़ी पहन करके, ये लड़कियां आपकी शालीन है, पर्दे में हया है, इनको शर्म है, हमारे तो नग्नता है। तो कुछ आदर्श भी होते हैं जीवन के, और उनको अपनाना जरूरी है, और ये हमारी नकल से सीख रहे हैं बाहर के लोग, और हम अपने आप को भटक रहे हैं। मैं नौजवानों की बोलता, आइए अपनापन, अपना अस्तित्व, अपनी खुददारी और देश की क्या कहते हैं ताकत देते, अपने आप को सुधार करके आप अपनी बात को दुनिया के सामने मनवाने की कोशिश, जो विवेकानंद ने की, जो भी आप लोग जो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, और वो उन लोगों को भी पता लगता जा रहा है कि भाई हाँ वाकई वास्तव में ये जीवन का सही रास्ता।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को जरूरत है अपनी संस्कृति पर निश्चय होने की, कि इस संस्कृति पे जब मेरा निश्चय होगा तो ही मैं एक खुददार नागरिक कहलाऊंगा देश का। अगर मैं अपनी संस्कृति पे निश्चय नहीं रखता हूँ, उसको अपने जीवन में अवलंबन नहीं करता हूँ, तो मेरी खुददारी भी कम हो जाती है, और फिर ऐसा नागरिक देश को कैसे यशस्वी बना सकता है। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जब आप भारत के अलग अलग विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, तो या फिर देश के बाहर भी आप जब जाते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा चीज देखने को मिलता है जो आपको केवल भारत में ही देखने को मिलता है, बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलता?
1: हमें तो जब भी गए, हम जब वो क्या कहते हैं बुल्गारिया में एक कॉन्सुलेट के यहाँ एट होम थे ना जी, तो उसने मुझसे पूछा हिंदुस्तान ने दुनिया को क्या दिया है। मैंने कहा गीता, रामायण, बड़े बड़ी तारीख है, आपको नहीं पता जो विश्व को दिया, जिस पर विश्व आज खड़ा। तो मैंने कहा आप बोलो, कहते जीरो किसने दिया। देखिए वो लोग अध्ययन करते हैं कि जीरो का वो कहते हैं रिसर्च करने वाला भारत है, और आज सारा इंटरनेट लेना देना जीरो पर, वो अध्ययन करते हैं, और हम जो है ना हम उनके पीछे लगे हुए, उन्होंने सारी हमसे सीखा है। और आज आप लोग जो पहुंचा रहे हैं ये परम शांति और मोक्ष की बात कहते हैं वहां जाकर के, तो उनके दिमाग में सही रास्ता निकलता नहीं, तो वो लोग भटक चुके हैं अपने।
0: तो ये जो आपने बताया कि भारत की विशेषता रही है कि हमेशा दुनिया को दिशा दिखाने की, ऐसे भारत में भी जब आप अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है, और हर प्रांत अपने को दूसरे से ज्यादा बेहतर मानता है। शिमला वाले कहेंगे हम ज्यादा अच्छे हैं, और हिमाचल में कोई और शहर वाला कहेगा नहीं हम ज्यादा अच्छे हैं। हर एक को अपना देश, अपना प्रांत ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन जब आप पूरे देश में घूमते हैं या पूरे देश में जाते हैं, कोई एक बात ऐसी जरूर आपने देखी होगी जो पूरे देश को एक

0: ये मानो धर्म नहीं तो हम ये तुम धर्म नहीं है, तुम तो कर। तो शांति का एक ऐसा, परम शांति का एक रास्ता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके मन से बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं प्रभावित हुआ हूँ और बहुत सा समय भी देखा है हमारे सामने। हमने 1947 में जब यहाँ लोग गुज्जर लोग आए, लोगों ने उनको खत्म किया, हमारे गांव में भी ऐसे ने उनकी हालात देखी, उनको यहाँ लोगों ने कपड़े वगैरह दिए, तब उनकी वो दिन में आज भी बड़ी दर्दें भी इस तरीके से हुआ, उनको बचाया, यहाँ खाना दिया लोगों ने। यहाँ के लोगों में श्रद्धा और प्रेम रही है, ऐसी बात नहीं, वो बरकरार रहे तो ठीक है। धर्म का झंडा लेकर के ही इंसान किसी देश को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर उसकी कृतत्व अच्छे है, उसका समर्पण अच्छा है, श्रद्धा अच्छी है और वो सेवा भाव है और सबसे मिलकर के काम करके अपने साथ जोड़ने की व्यवस्था है, तो शायद हम बच सकते हैं। तभी इसलिए कह सकते ज्यादा कह को।
1: ये आपने बहुत सुंदर बात कही कि धर्म का झंडा या व्यापार का झंडा या किसी एक विधा का झंडा पकड़ के व्यक्ति आगे बढ़े तो उससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर सत्यता होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, अपना मानवीय जो धर्म होता है वो बहुत जरूरी है। और जो आपने एक और बात कही कि पूरे देश में जो आपने एक चीज देखी जो पूरे देश को जोड़ता है, वो है शांति के प्रति लोगों की आस्था या शांति के प्रति लोगों का जो लगाव है, रुचि है, हर कोई शांति पसंद करता है। तो इन बातों को सुनते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक भारत देश में आपके जैसे बेटे और बेटियां होंगे तो भारत देश यशस्वी तो बना ही रहेगा। आपके हिसाब से भारत को यशस्वी बनाने वाला कौन सा एक बात है, ये भी आपने बताया कि भारत ने विश्व को दिया है हमेशा से, शून्य से लेकर के संस्कृति तक हर चीज का ज्ञान भारत ने विश्व को दिया है। तो ये जो देने की कला है, ये मैं समझता हूँ भारत को यशस्वी बनाता है, जो कि मैं आज के एपिसोड से आपसे सीख रहा हूँ कि हमें हमेशा देने का अभिप्राय रखना चाहिए। कभी भी लेने वाली अगर भावना होती है तो शायद कहीं ना कहीं हम छोटे हो जाते हैं, और अगर हमारे अंदर देने की भावना हो तो हम अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो विद्यानंद जी, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, और हमारे सभी श्रोता साथियों को एक लगभग दशक, कई दशकों का जो ज्ञान है, संचित ज्ञान, वो आपने कुछ ही मिनटों में हमारे सामने रखा। और ये दशकें जो थी वो आपके आयु से जुड़ी हुई थी, लेकिन आपने उससे भी आगे चल करके पुरातन काल और सनातन काल की कहानियों को भी आपने आज हमारे साथ इस एपिसोड में जोड़ा, जिससे मैं समझता हूँ केवल माउंट आबू में सुनने वाले श्रोता नहीं, लेकिन कहीं भी देश के किसी भी कोने में सुनने वाले श्रोताओं को सिरमौर से जुड़ने का जरूर अवसर मिलेगा। उनके अंदर रुचि जागेगी कि सिरमौर के बारे में थोड़ा हमें और जानना चाहिए, कि सिरमौर को चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरमौर कहा था, लेकिन उस सिरमौर को सिरमौर बनाए रखने में कैसे लोगों का हाथ है, विद्यानंद सारक जी जैसे लोगों का हाथ है। जाते जाते अगर विद्यानंद जी आप अपनी आवाज में फिर से कुछ गुनगुना दे हम सबके लिए और उसका थोड़ा सार भी बता दे तो बड़ा अच्छा होगा।
0: पहाड़ी की सुनना चाहेंगे, हिंदी की क्या करूं
1: पहाड़ी
0: या
1: पहाड़ी
0: भारत?
1: पहाड़ी ऐसा कोई गीत जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपका सबसे प्रिय गीत है।
0: मैं एक श्रृंगार का एक गीत सुनाता हूँ। आप आखुटी आखुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो करी बात बताई जा। आखुटी बता आखुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पे वो करी बात बताई जा। कोसरी ध्यान कोसरी जाए, ठाणी बाणी रा तू मुंदरे आए, इने नखरे तू हम न खाए। आकुटी मलाई जा, भाव टलाई जा, अपने पेओ कहरी बात बताई जा। एक युवक को युवती खूबसूरत मिलती है, वो उसको ये बोलता है कि तू आंखें तो मिला ले, तू तिरछी नजर से देख रही है, तू तू दौड़ रही है, मैं तेरे पीछे दौड़ रहा हूँ, तू ये तो बता किसकी ध्यान है, किसकी बेटी है और किस तेरा माता पिता कौन है, ताकि मैं समझ सकूं और क्या क्या कहते हैं, और मेरे तेरा पीछा करने का मुझे भी फल मिले। मतलब ये तो श्रृंगार का मैंने आपको धार्मिक का भी था। इसी तरह से नाटी के कई रूप हमने यहाँ पर उभारे हैं और एक शीर्षक से चारों विधाओं को पेश किया है। एक एक शीर्षक से उसका जैसे ढाठू है ना, सिर में स्कार्फ पहनती है ना हमारे, तो ढाठू को लेकर के आठ मात्रा की घी गाल्टी नाटी है, उसको घी कहते हैं हमारे, और मुंजरा बोलते हैं हमारे घरों में अंदर नाटी का

0: एक सबसे छोटा रूप है, वो उसको आपको बता रहा हूं। निखाए घाले पिमड़े ढाटुए, बोलो तो ही जो माटुए, जवानी दूरी जणू ढब कुण निरी जा माइए, सावण भी जणू ढब कुण निभी जा माइए। हो निखाए घाले पिमड़े ढाटुए, कहते इस पीले ढाटू ने तेरे हमारे को तबाह कर दिया है। तू ये बता, जवानी में कौन निरीझा, कौन ठंड बढ़ के नहीं चलता, और जवान वो ऐसा कौन आदमी है जो बरसात में नहीं भीगता? तो ये जवानी के बाद बरसात आती है, इसमें भी जो भीगा नहीं है वो भी इंसान, उसने वर्ष के मौसम को समझा नहीं है। कहते निखाए घाले, लेकिन तेरे काले, तेरे जो पीले ढाटू ने मुझे तबाह कर लिया। निखाए घाले माटू पुता बोला बांका जवानो, माटू माटकू था बड़ा बांका जवान था वो, माटकू था बोलो बांका जवानो, लाल होठड़ू पांदे गूंज रे छानो, गूंज समझ रहे मूंछों की, लाल होठ थे उसके, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया है। एक ही दिन से भी मुजरे आया, पिवड़े ढाटू है हाड़ो दा पाया, एक दिन वो मुजरे में आया, महफिल में आया, और पिवड़ा ढाटू जो उसका खूबसूरत लड़के देखा, हाड़ मतलब जैसे सैलाब हो पानी का, ऐसा वो उसके सिर पर, उसके जीवन पर ढल गया और वो बेसुध होकर। ये तो आठ मात्रा की गीत है। इसी इसी क्रम में हमारी दूसरी विधा है, वो है बारह मात्रा की। ये थेवड़ा ताल पर, रौद्र ताल पर है, और रौद्र ताल पर हमारे ठोडा जो है ना, तीर कमान खेलते हैं, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। और ढाटू है, ढाटू तेरे मुंडो दा पिउड़ा ढाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, तेरे मुंडो दा पिउड़ा ढाटू, मेरे मुंडो दा टोपा, टूटी तलना समझ रो आया जमाना कोटा। कह युटी जरूर तेरे सिर पर पीला ढाटू बड़ा सज रहा है, और मेरे सिर पर भी ये जो है ना हिमाचली टोपी है बड़ी अच्छी लगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ही जरा सोच समझ करके कदम देना है। आजकल जमाना पार गंवारी है ध्यानिए, आया जमाना कोटा। ये बारह मात्रा की बंदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक, ये बड़े धमाके से और दिल खोल जाता नृत्य करने वाला का जब इसको इसको गाते। ये बारह, अब सोलह मात्रा की बंदिश बताऊंगा, लेकिन ढाटू याद रखना है। मैंने ढाटू ऐसे ढाटू पर, गले पर, आंखों पर, ओठों पर, पलकों पर, पतली कमर पे, बहुत से वो मैंने कोई साठ सत्तर अस्सी गीतों का संकलन अलग कर रखा है, अलग अलग लेकिन अलग अलग तर्जों में। अब ये सोलह मात्रा की बंदिश है, ढीली नाटी है हमारे, ये बड़ी मशहूर है। ढाटू बिस राणा, ढाटू रखना याद, ये ढाटू जो है ना हमारे सिर की में औरतें लगाती है। ढाटू बिस राणा, किसके चाली दाढ़ी है बोला मस तुए, तेने ढाटू बिस लिया वो, अब तू तो नंगे सिर से जा रही है। ढाटू बिस तलटा घिसरा, टलता हमारे दुपट्टे को बोलते हैं, कहते दुपट्टा भी भूल दिया, ढाटू तो भूला ही था, दो भी भूल दिया। माथे तमको टीका बिरे, माथे में तेरा टीका जो है ना, जो चमकदार बिंदी है वो चमक रही है। गोरा तेरा बोलो मोटा दाड़िए, आए पड़ो सुर जो फीका बिरे, ढाटू बिस, कहते गोरा तेरा मुंह देख करके अब वो ढाटू भी निकल गया, दुपट्टा भी निकल गया, टीका सामने नजर आ रहा है, तेरे तेरे चेहरे को देख करके क्या कहते हैं, सूरज भी फीका पड़ता जा रहा है। तो पूरा वर्णन इसमें है, चलो कह रहे सुंदरता का। तो क्या कहते हैं, ये सोलह मात्रा की बंदिश है, ये टन टन टन टन टन टन टन टन नृत्य करना का भी इसका, मैं इस नृत्य भी करता हूँ, और इसका एक बड़ा अंदाज है ढीली नाटी का। बहुत सी नाटियां हैं, लेकिन मैंने अपनी संकलन की है, यहाँ ट्रेडिशन में भी बहुत सी नाटियां गाई है कई लोगों ने। तो अब ये सोलह मात्रा की, अब छह मात्रा की बंदिश आपको बता रहा हूँ। भाभी ये तेरा ढटकू, भाभी ये तेरा ढटकू काला, सो मेरे जियो रर बाला, तू भी टंग मेरा ताला दाड़ी, मेरे जियो रर बाला। ए भाभी तेरा ढटकू जो है मेरे मन को बहलाने वाला है, मेरे मन के लिए बहलावा है। क्या, और तू तो अनोखी औरत है, आकर्षक है, सजीली है, सुंदर है, क्या कहते हैं, इसलिए मैं तेरा वर्णन कर। तो ये छह मात्रा की चार किस्म की नाटियां मैंने आपको बता दी। ये हमारी यहाँ की सिरमौर की जो नाटी है और जिसका उदय ही सिरमौर में हुआ है। और ये नाटी आपको ये भी बता दूं, ये नाटी जो है मेरी टीम ने विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में 11 बार फर्स्ट आने पर विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में डाली है। जोगिंदर हाफी मेरे शिष्य है, तो उन्होंने 11 बार ये नाटी कंपटीशन में फर्स्ट आने पर विश्व में, और इसका जो नाटी का उदय है वो सिरमौर से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। हमने सारा कोशिश की है कि हर चीज के डेप्थ पे जा करके हम काम करें और लोगों को बताएं कि हमारे संस्कारों से जुड़े ये पहलू क्या है और हम उनको क्यों झुठला रहे हैं, क्यों भूल रहे हैं। लेकिन हमारा जब आदर्श और हमारा जब चिंतन, जब हमारा जब सामने आप जैसे लोगों का प्रदर्शन हो, तो मन में सुकून मिलता है और आगे बढ़ने का रास्ता।
1: मैंने कहा विद्यानंद जी, आपकी आवाज में आज भी वो जादू है कि सुनने वाला खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगा, जैसे कि आप खुद नृत्य करते हैं, सामने वाला सुनते हुए नृत्य करना शुरू कर देगा। लेकिन आपका जो भाव है या जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, वो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंबॉलिक है, बहुत ही प्रतीकात्मक है। क्योंकि अगर मैं सोचूं तो वो हिमाचल की या हिमालय के एरिया की प्रकृति को भी दर्शा सकता है। जो सूर्य की बात हो रही है, जो लालिमा की बात हो रही है, जो सनराइज सनसेट हम हिमालय में देख सकते हैं, वो कहीं और नहीं देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक जो भी नाटी आपने सुना है, उनमें वहां की प्रकृति का सौंदर्य भी झलकता है।
0: कि हर गीतों में कथा और कथानक होना चाहिए। हमारे यहाँ गीतों में भी आर्सगार है जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन चाहे वो धार्मिक बात हो, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण की हो, या कोई संदेश हो जन जागरण का, या और पहलू हो सामाजिक एकता का, ऐसे असंख्य गीत है जो मैंने उसी हिसाब से कथा और कथानक को लेकर के सस्वर लिपिबद्ध किए हैं। और कोशिश करो, जब कभी भगवान समय देगा तो तभी तो है, तो ऐसा है।
1: जी बिल्कुल, आपके पास जो भी समय है और जितना भी समय है उसको आपने सफल किया है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरा भारत देश आप पर नाज करता है। आज आप भारत के एक ऐसे यशस्वी रतन है जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं, क्योंकि आपने भारत की संस्कृति को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आपसे मिलकर के न केवल मैं, लेकिन हमारा पूरा रेडियो मधुबन का परिवार, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता साथी भी आते हैं, आज बहुत खुश हो रहे हैं कि आज रेडियो के माध्यम से, रेडियो मधुबन के माध्यम से और यशस्वी भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंच गए सीधा सिरमौर, और आपने अपने घर में, अपने बैठक में हमें स्थान दिया। आपने हमारे साथ बातचीत की, अपने जीवन की कई सारे पन्नों को आपने खोला हमारे सामने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुभकामना करेंगे कि आप
0: एक जी सिरमौर एक ऐसी है जिसके सिर पर चूड़धार की 12,000 फुट की ऊंचाई है, और आगोश में गिरी गंगा बहती है, असंख्य नदियां बहती है, खूबसूरत वादियां हैं बीच में, और इन वादियों में असंख्य देवी देवताओं के मंदिर है, और मन में सुकून मिलता है जब वहां जा करके कुछ बचा हुआ है, तब लगता है कि है ये यहाँ कुछ। तो ये अंत में आपको कहना चाहूंगा, इन्हीं के धन्यवाद।
1: जी विद्यानंद जी ने इतने सुंदर तरीके से कहा कि सिरमौर में आध्यात्म का सिरमौर है, और यहाँ पर जो बस्तियां हैं, जो देवताओं की श्रृंखलाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो प्राकृतिक धरोहर है, इसके बीच में कभी अगर आने का मौका मिले तो जरूर लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आकर के अपना समय जरूर यहाँ गुजारें। रेडियो मधुबन के समस्त परिवार की ओर से, जिसमें कि हमारे प्यारे श्रोता भी आते हैं, उन सभी की ओर से विद्यानंद सरेख जी, आपका और आपके परिवार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज आपने हम सबके लिए इतना समय निकाला और अपने बातों के जरिए, अपने सुरों के जरिए आपने हमें सीधा सिरमौर पहुंचा दिया। आपका दोबारा हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और ईश्वर के आगे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके जीवन के जरिए कई जीवन को अलग संस्कृति की अलग जगाने में जरूर मदद करते रहें आपको, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपका फिर से रेडियो मधुबन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, अब तक आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड के मेहमान। मेहमान क्या कहेंगे, घर वाले ही कहेंगे, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर आवाज जा रही थी। हम माउंट आबू से सुन रहे थे और सुनाने वाले थे विद्यानंद सरेख जी, जो कि सिरमौर हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश से आते हैं। विद्यानंद सरेख जी भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। इसके पूर्व उन्हें राज्य सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। कारण, कि उन्होंने अपने प्रांत की जो पहाड़ी सभ्यता है, सिरमौर जिस जगह से वो आते हैं उस जगह की सभ्यता में उन्होंने न केवल उस जगह की लोक संस्कृति को उजागर किया, लेकिन जो मूल धारा है, जो प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि हमारे शास्त्र हैं, हमारी गीता, भागवत, पुराण, रामायण आदि, इनका भी उन्होंने अनुवाद किया सिरमौरी में। साथ ही साथ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी 51 कविताओं का अनुवाद किया। ऐसे कई चीजों का उन्होंने अनुवाद किया ताकि जनमानस, जो उनके आसपास के लोग हैं, मूल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ सके, और जो मूल धारा के लोग हैं वो किसी भारत के किसी कोने की आवाज से जुड़ सके। उन्होंने एक ब्रिज का काम किया दोस्तों, जहां पर उन्होंने अपने प्रांत की आवाज पूरे देश तक पहुंचाई और पूरे देश की आवाज को अपने प्रांत तक लाया। मैं और आप भी ऐसे एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, एक सेतु का काम कर सकते हैं। मेरे आसपास जो हो रहा है उसमें अगर मैं अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको जोड़ सकूं तो उस चीजों को मैं निखार सकता हूं और पूरे देश को यशस्वी बनाने में अपना एक अहम भूमिका निभा सकता हूं। उम्मीद करेंगे कि आप भी ये अहम भूमिका जरूर निभाएंगे और निभा भी रहे हैं। आगे चल करके आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। यशस्वी भारत कार्यक्रम में हम लाएंगे एक और नए मेहमान को, जिनसे जानेंगे हम उनके जीवन की कहानी उनकी जुबानी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन 107.8।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत एक ऐसी सर्व इंद्रिय सुखानुभूति है जो मानव मन के अंदर में धीरे धीरे प्रस्फुटित होता है। जैसे सागर की गहराई में जितना जितना जाएंगे तो ढेर रत्नों का खजाना मिलता है, वैसे ही संगीत के सागर में जितनी गहराई में हम जाते रहेंगे तो सुर के रत्न भी मिलते हैं जो कभी भी कम नहीं होता है। संगीत रहस्यपूर्ण भी होता है। एक संगीत पिपासु की कभी भी कितना भी सुनने के बाद न दिल भरता है और प्यास भी बढ़ती रहती है, कितना भी सुनने और उसको सीखने की आश बनी रहती है। तो आइए, इसका रहस्य क्या है ये जानने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी, उनसे ही आज जानते हैं इसका रहस्य। तो हम पहले उनका स्वागत करते हैं। श्यामली जी, संगीत की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं भी दिल से सबको नमस्कार करती हूँ।
0: श्यामली जी, हमने कहा कि एक संगीत पिपासु जो संगीत सीखता है और उसको अपनाता है, उसके बाद भी उसकी हमेशा ही प्यास बनी रहती है और सीखे और उसको अपनाएं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: हाँ जी, ये जैसे इंसान की प्रेम होता है
0: जी,
1: जब आपस में प्रेम होता है, कभी वो प्रेम कभी बुझते नहीं, प्यास बढ़ती जाता है तो संगीत भी ऐसी चीज है। संगीत बिना जिंदगी एकदम सुना सुनापन
0: जी।
1: अब देखिए, जब नींद नहीं आते हैं, संगीत सुनो नींद आ जाते हैं। कभी बच्चा रोते है उसको थोड़ा संगीत सुनाओ, वो एकदम हंसते रहे। तो इसमें जो प्रेम है, जो संगीत को जो प्रेम करते हैं, उसको तो प्यास बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मैं भी एक संगीत प्रेमी नहीं, इसलिए मैं अनुभव से बता सकती हूँ। संगीत ऐसा चीज है कि उस सीखते सीखते भी मैं सोचती हूँ और भी सीखना चाहिए,
0: माने इससे दिल कभी भरता नहीं,
1: दिल कभी भर नहीं आता। जो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सोचो वो खत्म हो गया।
0: अच्छा,
1: मतलब कुछ भी शिक्षा लेने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक प्यास बुझ जाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्यास जब तक रहेंगे तब तो सीखते रहेंगे और भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
0: सीखने के लिए हमको पूरा नहीं होना चाहिए,
1: जो उसमें हम जान सकते हैं, लेकिन तब भी आ जाना
0: जी।
1: हम जान सकते उसको जैसे है ना, तो अभी भी रहस्य है उसके अंदर और क्या है। कोई नए राग या रागिनी हम सीखते हैं, हम सोचते हैं इसमें क्या नया कुछ है
0: जी,
1: ये तो रहस्य है। कोई भी फिल्म देखो, आपको तो मालूम नहीं हो फिल्म क्या है, रहस्य है। अगर उसके बाद पता लगे, जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद पता लगता है कि ये फिल्म ऐसी है, तो संगीत भी ऐसी चीज है कि वो भी रहस्यपूर्ण है।
0: जानकर अनजान बनकर उसको सीखते रहो।
1: हाँ जी
0: जी। श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए हो?
1: आज जो राग है बहुत सुंदर राग है, नाम है तिलक कामोद।
0: तिलक कामोद, अच्छा।
1: जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देश राग सिखाया था
0: जी,
1: देश राग जैसे है, इसके साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है।
0: ओके।
1: खाली इसको चलन जो है अलग है। जैसे देश राग भी खंबा स्टार्ट की है, तिलक कामुद भी खंबा स्टार्ट की है। इसको बादी स्वर जो रे है, समवादी पा है। तिलक कामुद में भी बादी स्वर रे है, पा समवादी है। केवल जो कभी कभी इसको सा भी बादी स्वर कह सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इसका जो चलन है जाने का, जैसे देश राग की औरव संपूर्ण जाति का है, और ये है सारव संपूर्ण या संपूर्ण संपूर्ण।
0: ओके।
1: हम बताएंगे कैसे होता है, तब जाके पता लगता है, क्योंकि जाने के टाइम सारव संपूर्ण, इसलिए जाने का टाइम नी यूज होता है, नी। अच्छा, इसमें सब सर शुद्ध है, कोमल नी नहीं है, लेकिन देश राग में तो कोमल नी है ना। अच्छा। तो उसमें सौंदर्यता था वो कोमल नी में, जाने के टाइम शुद्ध नी, आने के टाइम कोमल नी, जैसे खंबा स्टार्ट किया है। लेकिन तिलक कामुद में भी ऐसे नहीं है। तो लेकिन इसका जो चलन है, गा जो है वक्र, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि इसका समय जो है एक ही है, रात्रि दूसरा पहर है, रात की दूसरा पहर 9 से 12, देश राग भी 9 से 12 है। तो इसलिए ज्यादा से आप सुनोगे तो सोचोगे कि ये देश राग के जैसे मिलते जुलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका प्रकृति भी चंचल प्रकृति का है, आरोहण अवरोहण पकड़ करके सुनाते हैं
0: जी।

इसलिए इसमें जो चलन है सानी हमने किया है, मतलब मा पानी सानी दा पा, हमने ऐसे नहीं बोलकर, अगर ऐसे बोलता है सा

0: इसमें भी सर ज्यादा से ज्यादा मंद्र सर या मध्य सर में ज्यादा होता है, ज्यादा तार स्वर में नहीं होता है, जैसे देश की तार स्वर में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं यूज होता है।
1: ये डिफरेंस है,
0: डिफरेंस है, थोड़ा चलन के अलग है।
2: अच्छा,
0: तो ये है, हमने आरोहण अवरोहण पकड़ किया है, समझाया। तो आप ही क्या करते हैं, थोड़ा स्वरलिपि देते हैं
1: जी,
0: अगर लिसनर जो है किताब पेन से लिख लेते हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो ये जो ताल जो है तीन ताल की है, फाग से शुरू होता है। रे गा रे पा मा गा रे नी सा, ये जो नी है नीचे नी मंद्र सर की है, फिर से नी पा नी सा सब मंद्र सर की है, रे गा नी सा ये मंद्र सर की है, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा। नेक्स्ट लाइन रे मा पा धा मा पा सा सा, ये जो सा है तार स्वर की है, पा धा मा मा गा रे नी सा, ये जो नी है मंद्र सर की है। फिर से बोलती हूँ, रे गा रे पा मा गा रे नी सा नी पा नी सा रे गा नी सा, रे मा पा धा मा पा सा सा पा धा मा मा गा रे नी सा। तो हम ये करके सुनाते हैं
1: स्वरलिपि।
0: हाँ, स्वरलिपि स्थायिका।
1: श्यामली जी, स्वरलिपि की बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे, उसके पहले ले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और हमारे श्रोता मित्रों को सुनाते हैं एक सुंदर सा तिलक कमोद के संबंधित एक मीठा सा गाना। आप सभी श्रोता मित्रों इसका आनंद लीजिए और हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने तिलक कमोद राग के बारे में श्यामली जी से सुना, उसकी स्वर लिपि, और आगे हम बढ़ रहे थे कि हमने आपको एक प्यारा सा गीत भी सुनाया। श्यामली जी, आपका भी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आगे आप क्या सुनाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी स्वर लिपि तो आपने दे दिया है
0: जी।
1: तो वो करके सुनाते हैं।

0: ये हमने स्थाई का दे दिया। अभी अंतरा जो होता है, तो अंतरा में थोड़ा थोड़ा अलग से है कि इसलिए कि सोम से शुरू होता है।
1: अच्छा,
0: बंदिश का जो चलन है इसमें सोम से सुता है। जैसे रेगा रेपा हमने फाक से शुरू किया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, रेगा रेपा मा गाड़ी नी सा तक करेंगे, उसके बाद हम अंतरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो लिसनर स्वर पे लिख लेते हैं तो अच्छा है। मामा मामा पापा नीनी सा सा नीनी सा सा नी सा, ये जो सा है तार स्वर की है और नी जो है मध्य स्वर की है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन रे रे सारी जो है सब ऊपर की है, तार स्वर की है। रे रे सारे गा नी सा सा, गा जो है ऊपर की है। पानी सारे ऊपर की है। नी सा आ पा पा धा मामा गरे गरे नी सा, फिर से बताती हूँ। मामा मामा पापा नीनी सासा नीनी सासा नीसा रे रे सारे गा नी सासा पानी सारे नीसा आपा पाधा मामा गरे गा नीसा। ठीक है
1: जी,
0: मैं करके सुनाती हूँ।

0: ये बंदिश थोड़ी सी लंबी थी ऐसा हाँ, लग रहा है।
1: नहीं ऐसे लंबी नहीं है, खाली 8 मात्रा ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमने क्या किया, वो जो 8 मात्रा मुखड़ा किया है उसके बाद अंतरा थोड़ा 8 मात्रा ज्यादा किया है। इधर 8 मात्रा ले लिया, उधर 8 मात्रा और भी दे दिया, मतलब कि 16 मात्रा कंप्लीट
0: अच्छा,
1: हो गया। हमारा जो करना है 3 ताल के अंदर करना है, 16 मात्रा के अंदर करना है। अगर ऐसे करते तो 16 मात्रा के अंदर आ जाते हैं। 8 मात्रा अगर स्थाई का मुखड़ा करते हैं, स्थाई का कर लेते, उसके बाद 8 मात्रा जोड़ देते हैं
0: जी,
1: अंतरा की 8 मात्रा एक्स्ट्रा है जोड़ देते हैं। फिर हम जाके वो जैसे सागर में नदियां मिलते हैं, ऐसे अंतरा की लास्ट लाइन में जाके फिर स्थाई से मिलते
0: मिल
1: हैं,
0: जाते हैं।
1: हाँ,
0: जी,
1: मिल
0: जी।
1: जाते हैं। तो इसमें अगर आ सहयोग में करेंगे, पहले तो नया राग है ना, थोड़ा चलन भी अलग है, बहुत सुंदर राग है, तो थोड़ा इसमें ना ज्यादा शास्त्रीय संगीत नहीं बनती है।
0: अच्छा।
1: ज्यादा भजन गीत मॉडर्न सॉन्ग या कुछ होता है, तिलंगा मध में ठुंगरी भी हो सकता है, बहुत सुंदर राग है। मॉडर्न सॉन्ग भी ज्यादा होता है, भजन भी होता है, बहुत सुंदर भजन भी है।
0: आपने कहा ना कि ये तो चंचल प्रकृति का राग है,
1: चंचल प्रकृति का है, बहुत सुंदर राग है,
0: इसीलिए मॉडर्न सॉन्ग हो सकता है।
1: नेक्स्ट एपिसोड में हम बंदिश करेंगे, तब जान जाओगे कितना सुंदर है राग।
0: जाते जाते श्यामली जी, आज आप हमको क्या सुनाने वाले हैं?
1: आज हमने बहुत सुंदर एक गीत है, उस्ताद रशीद खान साहब की है।
0: अच्छा,
1: बहुत सुंदर उनका जो कंपोजिशन था, गीत गाए हुए थे। मैं कोशिश कर सकती हूँ। आओगे जब तुम ओ सजना, बहुत सुंदर है। ये तिलक कामत के ऊपर राग आधारित है, उन्होंने बहुत अच्छा से पेश किए हैं
0: जी।
1: तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है
0: जी।

0: वाह, सच में प्रकृति में भी फूल खिल गए, कुदरत का नजारा बदल गया।
1: अस्ता जी, जैसे पेश किया मैं तो कोशिश किए हैं, शायद कुछ गलती हो जाए तो ऑडियंस सुनते हैं ना, ये हमने जो गीत हमने कोशिश किया है हम पंडित जी को अर्पण किया है
0: जी, जी।
1: क्योंकि हमने बहुत बार सुने हैं, उसके प्रोग्राम भी अटेंड किए थे।
0: अच्छा,
1: हम नहीं सीख पाए उनके पास, लेकिन इतना अच्छा उन्होंने निभाया है ये गीत, मैं तो सोचती हूँ मैं एक अंश कर सकती हूँ।
0: क्यों, ये कलाकार सारे सच में उन्होंने इतनी मेहनत और अपनी लगन से
1: इतना, उसको भाईस में मिठास ना
0: जी,
1: आप सुनने के बाद आपको नींद आ जाएंगे। अब तो गीत ये सुन लिया ना
0: जी,
1: कितना सुंदर गीत का जो भाव जो है, भावना
0: बहुत सुंदर। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत, हम पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत से संबंधित, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी जीने का नाम है। जिंदगी क्या हर पल एंजॉय की जा सकती है? क्या जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? कितने सारे सवाल आते हैं ना मन में, लेकिन उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे धीरे धीरे अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल माउंट आबू से। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, साथ साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से डायरेक्ट मिलकर उनसे बातें करके, अपनी बातें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
1: दीदी, मुझे ना एक गाने की लाइन याद आ गई थी और उसमें कहते हैं कि बताना भी नहीं आता और छिपाना भी नहीं आता। कई बार भावनाओं के साथ ऐसा ही होता है कि समझ में नहीं आता कैसे एक्सप्रेस करें, और कभी कभी हमें लगता है हम बड़ा अच्छा छुपा ले रहे हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से एक्सप्रेस होके बाहर आ जाती है। और हम लोग भावनाओं के बारे में ही, इमोशनल अवेयरनेस के बारे में पिछले कुछ एपिसोड से बातचीत कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक प्रश्न आया था मेरे सामने, वो मैं आपसे पूछती हूँ। उन्होंने ये बोला कि उनको जब एक्सप्रेस करने का वक्त आता है, वैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है, लेकिन कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरी भावनाएं अगर मैं किसी के भी सामने ले आऊंगी तो वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि नोबडी विल अंडरस्टैंड। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल सही समझा उन्होंने अपने आप को, कि एक तो होता है भावनाओं को समझना कि मेरी क्या फीलिंग है। मैं खुशी फील कर रही हूँ, मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं उदास फील कर रही हूँ, मैं जेलस फील कर रही हूँ, मैं कंपटीशन फील कर रही हूँ, दूसरे के साथ कंपैरिजन की फीलिंग मुझे है, मुझे क्या मेरी भावनाएं हैं, इसको पहचानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम उन भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तब हमें एक अडल्ट होने के नाते फिल्टर लगाना होता है ना?
1: Okay.
2: हाँ, फिल्टर क्यों लगाना है कि अगर हम एज इट इज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे तो लोगों को वो शायद समझ में भी नहीं आए और शायद पसंद भी ना आए। ये भी हो सकता है ना?
1: जी।
2: सो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक छोटा बच्चा 9 साल का मेरे पास आता है। उसके माँ बाप उसको लेकर आए इसलिए कि आप इसे थोड़ा सुधारिए। ये जब बड़ों से बात करता है, बड़े कुछ भी पूछते हैं, तो ब्लंटली जवाब देता है। जो उसकी फीलिंग है वैसी ही वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहन ने उससे पूछा कि कैसे हो आप, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। सो अब उसको सवाल समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, क्यों नहीं दिखाई दिया, आप इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं आपकी, क्या आपको दिखाई? सो उसके जवाब बहुत ब्लंटली होते हैं, फिल्टर किए बिना वो किसी को भी जवाब दे देता है। तो उसके पेरेंट्स को ये चिंता है कि ये एज इट इज अपनी फीलिंग्स या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर देता है, जो कभी कभी सामने वाले को
1: अनकंफर्टेबल होते हैं,
2: अनकंफर्टेबल। किसी बच्चे से हम इस तरह के जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं।
1: जी।
2: तो आजकल वो रोज बच्चा मेरे पास आ रहा है। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया, ही इज वेरी ऑनेस्ट विद हिमसेल्फ। वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें वो समझता है, सोचता है, लेकिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातें समझने में वो उसमें दिमाग नहीं लगाता है।
1: ओके।
2: वो जिस तरह से समझता है वैसे ही जवाब देता है, उसमें वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। लेकिन अगर कोई किताब में से उसको कोई बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, उसका वो एज इट इज एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बारे में बताएगा, वो बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। पढ़ाई में होशियार है, हर चीज में, लेकिन उसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि व्यवहार में कैसे जवाब देना है। सो हम सभी ने डिस्कस किया, उसके पेरेंट्स और हम सभी ने मिलके सोचा कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये बिना फिल्टर के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसे टाइम देना चाहिए।
1: ओके।
2: जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि जवाब कैसे देना है। सो वो समझ रहा है इस बात को, और उसके लिए हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि एक कहानी मुझे याद आती है, किसी साइंटिस्ट की है। तो वो साइंटिस्ट बहुत बड़े रिसर्च करते थे, तो जिस कमरे में वो रिसर्च करते थे वहां एक बिल्ली थी और एक बिल्ली का बच्चा था, है ना। सो वो देखते थे कि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के लिए आने जाने का रास्ता उनको बनाना था। तो रिसर्च में इतना बिजी रहते थे कि उस छोटी सी बात को सोचने के लिए उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने सोचा मेरे पास दो बिल्लियां हैं, तो मुझे दो होल्स बनाने हैं, एक बड़ा होल और एक छोटा होल।
1: ओके।
2: तो उन्होंने दो होल बना दिए, एक बड़ा होल एक छोटा होल। सब लोग आके पूछते थे ये आपने दो होल क्यों बनाए हैं। कहा बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा होल, छोटी बिल्ली के लिए
1: छोटी बिल्ली के लिए छोटा होल।
2: बट वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ सके कि अरे बड़े होल में से छोटी बिल्ली भी जा सकती है ना, उसके लिए अलग होल बनाने की जरूरत
1: नहीं है।
2: तो जब कई लोग एक अलग लेवल पर, एक जीनियस लेवल पर होते हैं, तो वो कभी कभी छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते,
1: क्योंकि ब्रेन कहीं और ज्यादा इन्वॉल्व होता है।
2: इन्वॉल्व।
1: तो जैसा आपने बताया, वो बच्चा भी बहुत शार्प है, इंटेलिजेंट है, तो और बहुत ऑनेस्ट भी है, जैसा आपने कहा अपनी फीलिंग्स के साथ। उसे वही फील हो रहा था तो उसने वही कह दिया। ओके। यहाँ मेरे पास एक और सवाल आता है।
2: नहीं, आपका सवाल में से मुझे लगता है कि मैंने एक आधा जवाब दिया।
1: जी जी।
2: जो सवाल था आपका, उसमें आपने कहा कि कोई मुझे समझेगा नहीं।
1: हाँ जी, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते।
2: नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेस करो या नहीं करो, लेकिन एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी।
1: ओके, कैसे?
2: मेरी किस तरह की फीलिंग है, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी इस समय कौन सी भावना है, अगर मुझे अच्छी तरह से पता हो। और मैं किसी के सामने इसलिए नहीं व्यक्त करती हूँ कि वो मुझे नहीं समझेंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त जरूर करना है। वो कैसे हो सकता है? आप कोई चित्र बना दो।
1: ओके।
2: हो सकता है आप कहीं किसी डायरी में लिख डालो ना, लिखना सबसे अच्छी एक्सप्रेशन है। हो सकता है आप गार्डनिंग करते समय पेड़ पौधों को वो बात सुना दो, जैसी है वैसी, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे आप, है ना। या फिर हम जो करते हैं मेडिटेशन में, हम जब ईश्वर से बात करते हैं, परमात्मा से बात करते हैं, या यूनिवर्स से बात करते हैं, तो हम अपनी बात एज इट इज यूनिवर्स को सुना देते हैं।
1: ओके।
2: क्योंकि
1: इंटरेस्टिंग है।
2: हाँ, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको पलट के जवाब नहीं देगा, केवल सुनेगा, है ना, और एक्सेप्ट भी करेगा। परमात्मा भी ऐसे ही है, जो आपको जज नहीं करते हैं, जो आपको रिमार्क नहीं देते आप ऐसे हो आप ऐसे हो, जो आपको गलत नहीं समझते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, जैसे कहा जाता है ना लेटर टू गॉड, हम ये प्रैक्टिस भी करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ।
1: okay.
2: कि राइट अ लेटर टू गॉड, गॉड इज योर फादर, सो राइट अ लेटर टू गॉड। उसमें शिकायत हो सकती है, उसमें अपने दिल की बात हो सकती है एज इट इज, एंड वो इतने उदार दिल है कि वो कभी भी आपकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस, हमको एक्सप्रेस करना जरूरी है।
1: ओके। तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि भले हम लोगों से शेयर करने में अभी अनकंफर्टेबल हैं एट प्रेजेंट, तो हम ऐसे भी खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
2: कर सकते,
1: बट एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, भावनाओं को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है।
2: एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट वर्ड है सप्रेस। तो क्या होता है, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परिवेश में हम देखते हैं कि महिलाएं और गर्ल्स, फीमेल है, फीमेल्स है, उनको अक्सर कहा जाता है कि चुप रहो, बोलो मत। या कोई बहू है, बेटी है, या किसी भी रोल में है फीमेल्स, तो उनको दबाया जाता है, उनकी फीलिंग्स को शेयर कर

0: खा लेते हो तो क्या होता है, उल्टी हो जाती है,
1: वॉमिटिंग हो जाती है।
0: वॉमिटिंग हो जाती है, या आपको वॉमिटिंग करनी पड़ती है, वो हजम भी नहीं हो रहा है और मैंने ओवर ईटिंग कर लिया है। तो वो उल्टी करना एक्सप्रेशंस के साथ भी ऐसा ही होता है, फीलिंग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। दबा दबा दबा दबा के, सप्रेस कर कर करके, फिर एक टाइम आता है कि आपको उल्टी करना पड़ता है। तो वो अगर उल्टी ना हुई, निकला नहीं आपके दिमाग से वो बातें, तो फिर वो आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाए। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं के साथ रिपीट करते रहोगे उन थॉट्स को, उन विचारों को,
1: और वो बिल्कुल भी अच्छा दृश्य नहीं होगा। जैसा आपने कहा, इट इज लाइक सब कुछ एकदम से बाहर आना, हैंडल भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो शायद इतना कुछ एक साथ डील भी नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, जो बहुत बार होता है सच में, हमें से बहुत लोगों के साथ होता है, एट एनी पॉइंट शायद हुआ है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मिलता जुलता ही था ये सवाल, लेकिन मैंने सोचा आपसे थोड़ा अलग से पूछती हूँ, क्योंकि एक डिफरेंट केस था। उन्होंने ये कहा कि वो एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा उनसे फाइनेंशियल स्टेटस में अलग है, एंड उसमें उनको कई बार ऐसा लगता है मैं अगर ओरिजिनली एक्सप्रेस करूंगा तो थोड़ा मजाक उड़ाया जाएगा या ऐसा कहा जाएगा, जो उनके साथ एक दो इंसिडेंट्स हुए भी हैं। एंड उन्होंने ये कहा आई एम ट्राइंग टू चेंज, तो मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, एंड आई विल वन डे, अभी मुझे थोड़ा सा हाइड करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीजों को, मैं अभी थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ, बट मैंने ये प्लान किया है कि मैं अपने आप को इतने समय में एक न्यू मी बना लूंगा, एक नया मैं बन जाऊंगा, जो बाकी लड़कों की तरह है, जो कॉन्फिडेंट है, जो मस्ती मजाक करता है ज्यादा, अभी वो वैसे नहीं है, बट ही सेड कि वो उनका प्लान है, तो इस बारे में क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी इन चीजों से गुजरी हूँ। जब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चे आते हैं, तो हम तो मुंबई के स्कूल में थे, तो हमने देखा हमारे स्कूल में गवर्नर के बच्चे भी थे, तो बड़े बड़े घरों से बच्चे थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके पास पैसे होते थे, वो रिसर्च में जाकर कुछ खरीद कर खा लेते थे, परंतु उनके बीच में रह के हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं होती थी। तो जो हमें उनके साथ रहते हुए भी गिल्टी फील नहीं कराता था या लो फील नहीं कराता था, वो चीज थी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट।
1: ओके,
0: हाँ, सो वो कैसे बना, तो मैं आप एक उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे ही बचपन का उदाहरण है। सो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जीवन का काफी अनुभव था उन्हें, पुराने लोगों को था जीवन का अनुभव, तो एक घटना के माध्यम से उन्होंने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। तो एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र थी, 4-5 साल की, और सभी आसपास पड़ोस के दोस्तों ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से थोड़े थोड़े पैसे लेके आ जाओ, हम बहुत अच्छी चॉकलेट्स लेंगे, और हमारी वो छोटी सी चॉकलेट पार्टी होने वाली थी। दोपहर का समय था, मैं भी अपने घर में गई, देखा सब लोग सो रहे हैं, अब मुझे तो पैसे चाहिए थे, तो मैंने देखा कि टेबल पर कुछ चिल्लर पड़ी है, हमारे जमाने में 10-5 पैसे हुआ करते थे। और वो 25 पैसे का वो कॉइन होता था
1: जी।
0: तो वो चिल्लर मैंने उठाई और मैं चॉकलेट खा के खत्म भी कर लिया, मतलब एंजॉय किया हमने वो दोपहर में। अब शाम हुई तो मम्मी पापा ने देखा कि इधर पैसे कुछ थे वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, तो सबको अनाउंस किया गया कि किसने लिए, क्या यहाँ कहाँ गए पैसे, तो मैंने आगे आके कहा कि ये मैंने लिए और मैंने चॉकलेट्स खाए। सो मम्मी पापा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब लोग इधर उधर हो गए, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे पूछा आपने पूछा था किसी से पैसे उठाते समय, तो मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने पहली शिक्षा दी कि देखो चाहे आपके घर की चीज है, चाहे आप पड़ोस में खेलने जाते हो, उनके घर में कोई चीजें पड़ी है, छोटी है बड़ी है, पैसे है, चीज वस्तु है, कोई भी चीज आपको पूछे बिना हाथ नहीं लगाना है ना, किसी की भी परमिशन लिए, क्योंकि आपकी नहीं है ना, तो आपको परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं करना है। उसी का मौका लेकर उन्होंने दूसरी बात समझाई, देखो बच्चा हमारी जो हैसियत है उसके अनुसार हम आपको सब कुछ देना की कोशिश करते, तो आपको उस बात की खुशी होनी चाहिए जो हम देते हैं उसमें आपको खुश रहना है। जब आप पड़ोस में देखते हो कि उनके मम्मी पापा उनको अच्छी अच्छी गुड़िया देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी पुरानी है, थोड़ी छोटी है, आपको वही

0: अच्छी लगनी चाहिए, आपकी नजर उनकी चीजों पर नहीं जानी चाहिए और अपने आप को आपको कम नहीं समझना चाहिए। जो आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ एक बहुत सुंदर गिफ्ट है, उसके लिए आपको थैंकफुल रहना है, लेकिन दूसरों की चीजों को देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ये जब उन्होंने कहा तो उन्होंने और एक बात कही कि इस समय हम आपको जो बता रहे हैं बातें वो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप इसको याद रखना और इसी को यूज करना। सो उस छोटी सी उम्र में वो बात याद रह गई कि दूसरों के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना। उनकी सोने की चैन होगी, स्टील की होगी, पीतल की होगी, लेकिन मुझे उस पर नाज होना चाहिए। उनके कपड़े बहुत ब्रांडेड होंगे, बहुत फैशनेबल होंगे, मेरे सिंपल होंगे लेकिन स्वच्छ होंगे, मुझे उस पर नाज होना चाहिए। सो वो चीज दिमाग में इतनी बैठी थी। तो इतने बड़े घरों के लोग होने के बावजूद भी हमें कभी अपने लिए गिल्टी फील नहीं हुआ या कम फील नहीं हुआ, हम उनके साथ उतना ही कॉन्फिडेंस से बात करते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना और अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखना, वो बहुत पैसे खर्च करते थे लेकिन हमारे पास जो थोड़े होते थे उसमें से हम थोड़ी चीज लेते थे और हम शेयर करके खाते थे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब मुझे ये पता चला कि वो बड़े घर के बच्चे मेरे टिफिन से खाना खाते थे और उनको मेरे घर का खाना अच्छा लगता था, तो मैंने पूछा ऐसी क्या बात है जो आपको मेरे घर का, तो वो कहते थे आप हमारा टिफिन ले लो, आपका हमें दे दो। तो मैं कहती थी मेरा तो इतना सिंपल है, आपको मेरा क्यों अच्छा लगता है। कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुम्हें तुम्हारी मम्मी कितना प्यार से बना के दे रही, उसका टेस्ट हमें पता है, इसलिए तुम्हारा टिफिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब मुझे महसूस हुआ कि अपने छोटे से घर में उन्हें ले जाने में मुझे शर्म नहीं आई।
1: प्यार मतलब उससे भी ऊपर है। कई बार हम भावनाओं को कम रख लेते हैं, पैसों से कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर जब ओरिजिनलिटी रहती है तो ओरिजिनली लोग पसंद करने लगते हैं। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया दीदी आपने, और मुझे लगता है कि ना प्रैक्टिकल है ये।
0: लोग क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कपड़ों से, अपनी बातों से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों? आप जो हो जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट रहो, तो वो भी एक भावनाओं की सच्चाई जो है
1: जी,
0: वो सामने वाले के दिल को छू जाती है।
1: ये जो न्यू मी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैंने ये वाला शब्द सुना उनके मुंह से न्यू मी, तो ये न्यू मी बनने के लिए क्या हम अपनी भावनाओं को फेक करना या फिर कुछ और बनने के लिए अगर कहीं हमें जो चीज सही नहीं लग रही है वो भी फील करना, जैसे उन्होंने बताया ग्रुप में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी का, तो उनको इनिशियली वो नहीं होता था उनसे क्योंकि शायद उनको गिल्टी लगता होगा, ये वर्ड तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बाद में वो कोशिश करने लगे कि मैं भी उड़ाऊ मजाक थोड़ा, मैं भी उस प्रकार से करूं। तो ये अपनी भावनाओं को खुद ही हम कुछ और समझ रहे हैं कि क्या कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है ऐसा लग रहा है।
0: देखिए एक मजाक उड़ाने की जहां तक बात है
1: जी,
0: तो मुझे आप बताओ उनको ये पूछना चाहिए हमें कि आपको किसी का मजाक उड़ाते हुए अच्छा लग रहा है क्या?
1: वो इनिशियली नहीं लग रहा था, बट उन्हें लगा कि ठीक है नहीं लगना चाहिए मुझे गिल्टी बिकॉज ये ऐसा ही कूल होता है या
0: ग्रुप में अच्छा शामिल होने के लिए हम भी मजाक करना शुरू कर देते
1: जी,
0: है ना कि मुझे उस ग्रुप में शामिल होना है। कई बार है ना पीयर प्रेशर इस तरह का होता है कि जैसे कुछ बच्चे गलत काम करते हैं, कहीं चोरी करना, कहीं कुछ सिगरेट पी लेना, कहीं शराब का घूंट लगाना, तो जो ऐसे लोग होते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको ये पसंद भी नहीं है, वो अपने आप को उस ग्रुप का हिस्सा बनाने के लिए उनकी जैसी आदतें डालने की कोशिश करते हैं,
1: अपनी फीलिंग्स को ही नेगलेक्ट कर देते हैं।
0: यस यस, ये फेक मी है,
1: इसमें से न्यू मी नहीं है।
0: ये न्यू मी नहीं है, ये फेक मी है, और ये फेक मी के साथ लंबा समय जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो असली मी को समझना, न्यू मी करो बट वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। सो यहाँ हम नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स, जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई करना सीखते
1: हैं
0: हमें कि नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, कि किसी के बारे में मुझे ईर्ष्या होना, उसको देख के मुझे अपने आप में कमी महसूस होना, ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना,
1: मुझे अच्छा फील नहीं कर, अच्छा बुरा लग रहा है, डाउन लग रहा है, लो लग रहा है,
0: लोग बड़े बड़े शौक रखते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं रख सकती ये सब। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सो हमें लगता है कि मुझे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये कंपैरिजन होता है। हाँ, कुछ लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिर हम सोचते हैं मैं क्यों नहीं हूँ। तो क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ फोकस जो है खुद से निकलकर दूसरों के अराउंड घूमता रहता है ना। तो अब अपने सेंटर ऑफ फोकस को जब मैं अपने पास वापस ले आती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अरे उनमें अगर ये चीज अच्छी है तो मुझ में ये चीज अच्छी है, वो ये काम कर सकते हैं तो मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करते हैं वही मैं करूँ।
1: सेम जरूरी नहीं है,
0: नहीं है। मुझे जो आता है, मेरी जो फीलिंग्स है, मैं उसके साथ चलूं, उसके साथ जिंदा रहूं, वो है रियल एंड न्यू मी।
1: बहुत सुंदर डेफिनेशन है। और कई बार हम सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स डिपेंडेंट ही रहती हैं। सेम ही बनना चाहते हैं, वैसे यूनिक बनना चाहते हैं पर फीलिंग्स सेम करना चाहते हैं किसी ना किसी के साथ, ग्रुप के साथ, आइडेंटिफाई जिनके साथ हम करते हैं। बहुत सुंदर है। मेरे मन में और भी सवाल है, मुझे लगता है अभी तो हमें समय इजाजत नहीं देगा, लेकिन आने वाले एपिसोड में आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि और हम पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ कैसे जाएं, या फिर कई बार हमें रॉन्ग स्टिमुलस यानी मान लीजिए किसी को चिढ़ा कर या गिरा कर अगर स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, तो फीलिंग तो मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बट उसके लिए मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो एक्शन और फीलिंग में क्या रिलेशन है, ये भी थोड़ा आपसे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है दीदी कि कुछ अगर आप मेडिटेशन या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कराएं जो हम अपनी पॉजिटिव फीलिंग से और अटैच हो पाए और मी, जो हम न्यू मी या रियल मी की बात कर रहे हैं, उसको रियली रखें।
0: जी, सो मैं चाहूंगी अपने श्रोताओं से कि वो 2 मिनट के लिए अपने आप को कहीं सेटल कर ले, किसी एक शांत स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं, रिलैक्स करें अपने माइंड और बॉडी को, गहरी और लंबी सांस लें और उस सांसों को ध्यान लगाते हुए, सांसों पर ध्यान एकाग्र करते हुए इमेजिन करें कि आप अपने आप से अलग हो रहे हैं। आई एम डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम मी। मैं थोड़ा सा दूर जाकर दूर से अपने आप को देख रही। गहरी और लंबी सांस ले और देखिए कि मुझे एक जो शरीर मिला है, इस शरीर के साथ मैं हर जगह पर एक अलग अलग रोल प्ले कर रही। घर में मेरा रोल बेटी का है, बेटे का है, भाई या बहन का है। सो देखिए अपने आप को उस रोल में प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए 10 सेकेंड्स के लिए देखिए अपने आप को रोल प्ले करते। मैं अपने हर रोल में ओरिजिनल हूं, रियल हूं। मैं एक बेटा या बेटी के रूप में माता पिता के साथ अपने ट्रू रियल एक्सप्रेशन से प्रेजेंट हूं। माता पिता के प्रति मैं कृतज्ञ हूं, शुक्रगुजार हूं। गहरी और लंबी सांस ले। स्कूल कॉलेज में अपने रोल को देखी, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ अपने रोल को दूर से ऑब्जर्व करें और उसमें रियलिटी डालें। आप जो है, जैसे है, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करें। उस ओरिजिनलिटी के साथ लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए अपने आप उस रियलिटी के साथ, लोग आपकी पहचान करते हैं। चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, होशियार है, कम होशियार है, एवरेज है, आप जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। लोग सच्चाई की, ईमानदारी की, रियलिटी की कद्र करते हैं, इसलिए गहरी और लंबी सांस लें, अपने आप से वादा करें मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे अपने आप को बहुत लाइक करती हूं। अपनी अच्छाइयां और कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। मैं अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे ही प्रेजेंट करती हूं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच दीदी। मुझे लगता है कि रियलिटी चेक है ये हमारे लिए, और अपने आप को वो करते देखना जैसा मैं हूँ वैसे ही पेश करना। अगर अभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कर लेंगे, पर उसके लिए मैं ना बदलूं। बहुत सुंदर आपने एग्जांपल्स के साथ हमें प्रैक्टिकल एक हमारी वर्जन की ओर लेके गए। आशा करती हूँ हमारे दोस्तों को बहुत फायदा हुआ होगा इससे। दोस्तों, अगर आप कभी भी थोड़ा भी लो महसूस कर रहे हैं या परेशान लग रहा है आपको कि मैं अलग हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, तो दोस्तों बस ये कहना चाहेंगे कि आप अकेले रहिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफर में, इस कार्यक्रम में। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें गाइड करने के लिए।
0: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का। मुलाकात होगी लव यू जिंदगी की अगली कड़ी में। तब तक आइए दिल खोल के कहे लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम, आ
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलिथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था।
0: जी,
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेके देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेके भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं इकल्ला अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि तो जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते हैं तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है, पॉलिथीन बीनना, इको ब्रिक्स बनाना और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरी टीम के कुछ मेंबर थे तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके इको ब्रिक्स बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो इधर उधर कॉल पे फोन लगा के और वो क्यों नहीं भैया, मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: जी बहुत एक सरल और एक सिंपल कार्य है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे। पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलीथिन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलीथिन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलीथिन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: कि किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलीथिन, सिंगल यूज जो पॉलीथिन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलीथिन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल
0: प्लास्टिक।
1: जो, हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के जितने प्रकार के रेपर, उन सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े एको ब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे आप घर
0: जी
1: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है, मतलब मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे उपयोग कर सकते
1: तो अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक से
0: यस
1: जो 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको टोस्ट टोस्ट के भर लिया अपन ने, वो उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बॉटलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने के एक मुर्दा बना सकते हैं। हमने बनाया अभी एक मुर्दा उसको बैठने के लिए,
0: तो
1: तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: की दुकान में भी अपन
0: लेकर
1: काम कर
0: के ढक
1: सकते हैं। हाँ
0: के। जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समान
0: बाद
1: सही,
0: उसको चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या
1: हाँ
0: ऐसे ही ढक के उसको स्टूल बना सकते हैं।
1: ये कवर बना के उसका बढ़िया अच्छा है जी,
0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे जो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहां पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई, तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े जुनून भी था, तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें, तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में, बढ़िया रहा। पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है पर्यावरण
0: जी
1: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया, जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बॉटल से इको ब्रिक्स बना के इनको अंदर बॉटल के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है, तो लोग उसको देखने गए, उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने, तो
0: जी
1: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
0: जी क्या बात है सर। जी, ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके
1: ये
0: साथ
1: मेरा
0: महिलाएं
1: जी,
0: भी मिल रहे हैं अभी। जी बताइए सर,
1: मतलब
0: आप
1: मैं ऐसा सोचना है मेरा कि ऐसा कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
0: यस, बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर, आपके साथ महिलाएं भी शामिल है, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
1: जी
0: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को, तो उस पल का
1: जी
0: अनुभव कैसा था?
1: वो क्या इतना एक आत्मविश्वास में था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का, वो तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावनाओं को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
1: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
0: जी बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है आप बता सकते हैं?
1: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या, एक मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है, एक पिंकी दीदी करके। तो
0: जी
1: मेरा क्या है, जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उन्होंने की भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है। तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने किसको क्या, मैंने कि इसको इकोब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
0: क्या
1: वो
0: बात है
1: लेके
0: जी,
1: आ, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आ, जैसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इकोब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं। मैं तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
0: जी
1: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना है महिलाओं का, तो 15-20 महिला सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है कि लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई, तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी है, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है। वो
0: जी
1: अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इकोब्रिज की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्हें उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
0: जी
1: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
0: क्या बात है सर जी,
1: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है।
0: राइट।
1: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ती गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
0: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
1: जी
0: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से, तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं ये भी हमारे श्रोताओं को।
1: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवाहा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
0: जी
1: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है,
0: जी
1: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने फिर ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा, तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका, पॉलिथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
0: जी
1: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकिल क्लीन कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
0: जी
1: इसका
0: सर
1: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
0: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये पेन बॉक्स भी, ये हमने इसका तख्ते का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
0: जी
1: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल, अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
0: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
1: बहुत अच्छा
0: वो किस
1: प्रश्न।
0: आइडिया कहाँ से आया?
1: ये क्या
0: जी
1: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, तो बाटल कहाँ से लेके आएंगे? तो मैंने कहा बाटल को कलेक्ट करने के लिए, को हम देखते हैं हमारे शहरों में, बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे गए, वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। पर मैंने कहा रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने कहा एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। तो लोगों को बताया, वहां के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे वो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि ये कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक पर कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भाई सर ये क्या है बोतल बैंक? मैंने बोला ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है, ये एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500 हजार वर्षों तक ये धरती पे पड़ी रहती है, अपन
0: जी
1: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया, 3 4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको उस बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
0: जी सर
1: और
0: ग्रेटफुल
1: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों को माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर।
0: ग्रेट सर ग्रेट सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
1: ये हमने बनवाया, मतलब तो बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से सेफ देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
0: जी
1: सब लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हैं, कोई नहीं जाता।
0: जी सर बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
1: हाँ वो जो बोतलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया, जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं तो ढक्कनों को भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में। हमने कहा आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को, तो
0: जी
1: अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया हमारी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
0: आपसे इंस्पायर होके।
1: जी
0: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
1: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी बाटल इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना, मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं। तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम।
0: जी
1: तो धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया हैं, काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा, तो फिर इसे विचार चला, काला ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवा दिया अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई। तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं, बढ़िया तो ये बढ़िया एक सेल्फी
0: जी
1: पॉइंट हो जाएगा। तो वो बढ़िया हो गया, तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव ब्यावरा हमारे लिए बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
0: एब्सोल्युटली जी सर,
1: जी
0: बहुत खूब सर। सर आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
1: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है, शादी है या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाएं, और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाएं, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि कुछ
0: जी
1: चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
0: जी सर,
1: इसलिए बर्तन
0: तो
1: बैंक का
0: बर्तन
1: शुभारंभ।
0: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
1: वो क्या है उनको मान लो ऐसे 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन टीम के ले जाना, जो उनको आवश्यकता है मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच जैसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, तो गिन के ले जा वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके उनको दे जाते हैं।
0: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल लोग
0: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं फिर वो वापस आपको रीयूज करने के लिए
1: वापिस।
0: देते
1: जी
0: हैं। जी बहुत खूब। तो सर अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
1: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी करके आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे
0: ओके
1: स्तर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इको ब्रिज का एक बढ़िया, मतलब किसी को गांव में करना है तो बढ़िया, जो भी अब गांव में छोटे 50 को परिवारों की एक बस्ती रहती है तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गांव में।
0: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
1: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को, और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं, तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई तो जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, आवश्यकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
0: जी सर, सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
1: हाँ
0: करके
1: कर
0: ये
1: सकते
0: कार्य
1: हैं
0: कर सकते हैं?
1: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना एमआरएफ प्लांट होता है, इंजीनियरिंग मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते, वो नगर
0: जी
1: पालिका भी
0: सर,
1: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
0: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंके, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
0: जी बिल्कुल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं। ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े। आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़ें, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं, श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनवाइटी मेंबर हैं, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं। गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बहन।
0: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया

0: स्वच्छता की, किसी का शोषण ना करके प्रगति जो करना
1: जी,
0: वो सही है
1: जी,
0: तो प्रयोग किए
1: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नज़दीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को ही पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
0: देखिए हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
1: जी,
0: आर्थिक मानसिक शारीरिक सभी प्रकार से
1: जी,
0: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
1: जी।
0: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
1: जी।
0: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
1: जी,
0: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे ऐसा प्रार्थना कीजिए
1: जी जी,
0: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
1: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
0: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
1: जी,
0: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है, फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
1: अच्छा,
0: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
1: जी।
0: तो आधा दूध ही हम लेते आधा बच्चे को पिलाते हैं
1: जी।
0: तो उसका शोषण नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं उनका भी शोषण नहीं करना और धरती माता का भी, फिर जो आया वो प्रसाद है
1: जी।
0: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
1: जी।
0: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो, और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा सबकी नजर ऊंची नीची होगी, हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
1: अच्छा,
0: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है, वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है, तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
1: जी।
0: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं की बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है, 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महा औषधि है वो
1: जी।
0: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
1: जी।
0: तो पौधा अनमैच रिस्पॉन्ड कर रहा है, अतुलनीय परिणाम मिल रहा है, खाली उसको पाच्य स्वरूप में देना जरूरी था, वो हमने पद्धति तैयार करी है गौ कृपा अमृतम माध्यम से। तो बिल्कुल बहन मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा कि किसान मित्रों ये मैं जो बोल रहा हूँ वो महसूस करने के लिए आप यहाँ पे आइए ब्रह्मा कुमारीज में भी और हमारी गौशाला में, तो दोनों जगह से मिलके हम लोग टीम वर्क करके आपके घर पे वो सुखाकारी कैसे आए, क्योंकि आप जो किसानी काम कर रहे हो दुनिया का श्रेष्ठ कर रहे हैं, शहर जितना आर्थिक व्यवस्था आपके खेत में कैसे हो जाए ये वो पद्धति है
1: जी। आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं या वो ट्रेनिंग की प्रक्रिया अगर आप कुछ और बताएं जो किसान सुन रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, किसान मित्रों बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, 1 दिन का ही प्रशिक्षण है, 1 दिन में तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है, यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है कि नए काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पे देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है बहन और भाई जो संभालते हैं उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है, तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों इसका जरूर लाभ लीजिएगा, आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए।

0: आने वाला समय कृषि का है, तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे।
1: जी क्या बात है। नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है?
0: जी जब से ये कार्य लिया है तो दिनचर्या का अता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
0: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी।
0: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे हैं, नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
0: तो 10 रोग है जिन्हों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं, स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी GMP लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
0: उसी का उपयोग हम करके
1: जी।
0: तो गाय का उपयोग जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं, दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो, दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे, पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापिस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
0: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाएं निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका pH 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में, वो भी निकला, और नैनो फॉर्म में और 5 स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ अकेला, हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, घी बनाने की परंपरा
1: जी।
0: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपए लीटर Omega-3 Omega-6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है, 1,00,000 रुपए बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देसी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी।
0: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं, और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं। जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इंबैलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना, इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है
1: जी। क्या बात,
0: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
0: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए, पहली एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू कर देगा। तो जितना करे सही करे और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जैक्ट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदी घर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी, नंदी घर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने
1: जी।
0: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा 1 नंदी निशुल्क जाता है।
1: अच्छा।
0: और 25 सेंटर में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है
1: जी।
0: तो 1 नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकते, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन कि तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत 1 ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है, हमें डबल ट्रिपल तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए। वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है। किसान मित्र आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी क्या बात है, तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। जी कोई और संदेश जो आप गांव में जो भी है, बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों आप सही में प्रोडक्टिव काम कर तो आपको सम्मान मिलना चाहिए। और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको दो हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके ही रोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है। कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने।
1: जी
0: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, एक बार पधारिए गौशाला।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। हर शनिवार को हम लोग शाम इस कार्यक्रम को सुनते हैं, जिसमें खास युवाओं को टारगेट करके हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में खास करियर इन जर्नलिज्म के बारे में बातें की थी, और उसके पहले हमने करियर इन एजुकेशन के बारे में बातें की थी। तो निश्चित तौर पे आप सोच रहे होंगे आज इस बार भी कुछ नया टॉपिक लेकर ही आप बात करेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम लोग करियर इन होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में किस तरह से हम युवा साथी एंटर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और क्या क्या चीजें इसमें हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर रही है। तो आइए, हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर शेलके संदीप शेलके सर जुड़े हैं औरंगाबाद से, जो होम्योपैथिक डॉक्टर भी है, काउंसलर भी है और एग्जामिनर भी है। तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको जो है होम्योपैथी से रिलेटेड करियर के बारे में बातें बताने वाले। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर शेलके जी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: ओम शांति रमेश भाई, बहुत बढ़िया है, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी,
2: और
1: जी,
2: बढ़िया चल रहा है सब।
1: बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आपका इस होम्योपैथी में कैसे एंट्री करना हुआ, किस तरह से आप इस मेडिकल फील्ड से जुड़े, वो थोड़ा सा आप बताएं हमें।
2: जी जी, तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए काफी एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को कम मार्क्स मिल जाते हैं, या कभी आजकल तो आप जानते ही है कि काफी कॉम्पिटिशन है। जैसे अभी MBBS का अगर आप कटआउट लेते हैं, अभी 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है, तो लगभग 700 में से 630 मार्क के ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, 630 या 650 मार्क तक। तो और अगर समझो आपको 600 मार्क है तो आपको सेमी गवर्नमेंट में मिल सकता है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चे, और फाइनेंशियली भी काफी इम्पोर्टेंट होता है कि भाई आपको फाइनेंस कैसा है आपका। तो दूसरी ये बात होती है कि भाई कुछ बच्चों को फिर भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें फिर एक 2-3 अल्टरनेटिव मेडिसिन रहता है, जो कि आयुर्वेदिक कॉलेज होता है और होम्योपैथिक कॉलेज होता है। तो एडमिशन में ऐसा होता है कि अगर आपको MBBS के मार्क्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपके इंटरेस्ट के अनुसार कुछ बच्चे आयुर्वेद में जाते हैं और कुछ होम्योपैथी में। तो जैसा थोड़ा बहुत अगर स्कोर कम होता है अगर और आप अगर डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी में आ सकते हैं। जी
1: जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वर्तमान समय में क्या सिनेरियो है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं किस तरह की बातें होती हैं, ये आपने बताया। तो मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर संदीप शेलके, आपकी बचपन की कुछ यादें हमें ताजा कराइए कि आपका पढ़ाई और कहाँ पर हुआ, किस तरह से आप कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बारे में बताइए।
2: जी, तो सबसे पहले तो मेरा जो बेसिक एजुकेशन था, जो कि होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक, वो जालना में हुआ। उसके बाद 11वीं 12वीं जालना में हुआ। और मैं खुद MBBS के लिए एडमिशन चाहता था, लेकिन उस समय मेरा जो परसेंटेज था मेरे हिसाब से 88% थे, शायद 90 पे क्लोज हुआ था। थोड़ा निराश होने के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अभी डॉक्टरी नहीं करना है। और पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज और सिम्बोसिस में एडमिशन लिया और फर्ग्यूसन में लिया कि भाई चलो अभी MPSC UPSC करते हैं। एडमिशन लेने के बाद फिर मेरा जो एजुकेशन था माँ बाप से दूर हुआ है, तो मेरी मम्मी के जो चाचा थे, जैसे मेरे ग्रैंडफादर ही बोल सकते हैं, तो उनके पास था। तो मेरी जो मौसी है वो भी होम्योपैथिक में ही थे। तो फिर उनका कॉल आया कि भाई आप MPSC UPSC मत करो, दोबारा यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, अच्छे सीट मिल जा रही है औरंगाबाद में। तो फिर उन्हीं के कॉलेज में मैं होम्योपैथिक कोर्स को ज्वाइन किया।
1: अच्छा।
2: फिर होम्योपैथिक कोर्स 4.5 साल का होता है, उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, के बाद ये हो गया ग्रेजुएशन, के बाद हमने MD किया।
1: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपको जो है मेडिकल फील्ड में एंटर करने का मौका मिला, और उसके पहले क्या चीजें हुई वो भी आपने बताया। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आज के समय में डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है या आसान है, वो थोड़ा सा बताइए। मुश्किल क्यों है और आसान क्यों है वो बताइए।
2: जी दोनों चीज पे हाईलाइट करते हैं। आसान तो कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है कि आजकल के जो पीढ़ी हर एक को क्या है डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है तो इतना आसान नहीं है। अब जब होम्योपैथी में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो सबने समझ लेना चाहिए कि उसका परसेंटेज कम है। और मेडिकल फैकल्टी में जैसा आप सिलेबस की बात करते हैं वो होम्योपैथी हो आयुर्वेदा हो या फिर आपका MBBS हो सब में लगभग 90% सिलेबस सेम है। जैसे कि एनाटॉमी आता है फिजियोलॉजी आता है और पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इसमें किताबों में कोई कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अगर बच्चा होम्योपैथी में आता है तो उसको MBBS की किताब पढ़ने के बाद होम्योपैथिक शास्त्र की भी किताब पढ़ना है या वो आयुर्वेदा में जाता है तो MBBS की किताब भी पढ़ना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके साथ आयुर्वेदा का भी पढ़ना है। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जैसा कम परसेंटेज वाला बच्चा है तो हमने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में काफी लो रिजल्ट लगता है और थोड़ा डिफिकल्ट जाता है होम्योपैथी और आयुर्वेदा। तो जो जिसमें पढ़ाई की लगन है उन्होंने ही डॉक्टरी फील्ड में आना चाहिए। और आजकल क्या हो गया है कि काफी ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं और हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कंपटीशन भी काफी है और काफी डॉक्टर्स भी है तो इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। और दूसरी एक चीज अगर आप एनालाइज करते हैं तो जैसा मेडिकल ग्रेजुएशन ये 5.5 साल का तो लगभग 6 साल का होता है और उसके बाद PG करना है जो कि MD करना है तो लगभग आपको 9 साल पढ़ाई करने के बाद आपका करियर चालू होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड आप लेते हैं जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल का ग्रेजुएशन है और 2 साल तो 6 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है और बाकी जगह पे भी अगर समझो इंजीनियरिंग करता है पॉलिटेक्निक वगैरह तो कम टाइम में एक कोई भी अच्छा ऑक्यूपेशनल कोर्स लेकर वो जल्दी से उसका सेटलमेंट हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो उस हिसाब से जो मेहनती बच्चे है और जो कुछ उनको डॉक्टर ही बनना है उन्होंने ही ट्राई करना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर संदीप शेलके सर। मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत इसके बाद फिर से होम्योपैथी एज ए करियर कैसे हम लोग चुन सकते हैं इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर संदीप शेलके जी हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं, अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे हैं और खास होम्योपैथी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से, सीधा तरीका क्या है, सिंपली वो किस स्टेप्स को फॉलो करें वो बताइए।
1: तो अभी कैसा है कि मेडिकल एजुकेशन में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहता है उसमें तरीका एक ही है कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रोसेस होती है, एक महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट होती है या जो भी स्टेट में जो बच्चा है, एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। तो जो जिस तरह उसका मेरिट आएगा उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है और कट ऑफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जैसा MBBS का सपोज आप ऐसा पकड़ लो कि MBBS का हो गया है 590 पे क्लोज होता है गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद फिर शुरू होगा 590 से नीचे तक जब भी कॉलेजेस है, जितने जितने सीट है। तो फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में 1500 सीट MBBS की है, तो इस 1500 सीट भरने के बाद उसके बाद होगा सेमी गवर्नमेंट MBBS, उसके बाद डेंटल की सीट भरी जाएगी, उसके बाद आयुर्वेदा की सीट भरी जाएगी। अच्छा, और उसके बाद आएगा होम्योपैथी की सीट। तो आप ये समझ लो कि सपोज अभी इस वक्त महाराष्ट्र में लगभग 58 होम्योपैथिक कॉलेजेस है। 58 इंटू सपोज आप एक ऐसा पकड़ लो कि एक 70 सीट, कुछ कॉलेजेस में 100 सीट है, कुछ कॉलेज में 50 सीट है, तो लगभग आप 15 × 5 × 5 = 25, तो लगभग 3-4 हजार सीट महाराष्ट्र में होम्योपैथिक है। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको करना है, जिस जैसा भी आपका मेरिट आता है तो आपको मेरिट कॉलेज का नाम डालना है, 2 या 3 कॉलेज के प्रेफरेंस डालना है, और फिर जैसे जैसे राउंड होते हैं उस हिसाब से आपको कॉल आएगी। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपने कॉलेज सही चुनना है, उसका पिछला कटआउट देखना है, और उसी प्रकार से थोड़ा ऑनलाइन में अलर्ट रहना है और एडमिशन होना है। अभी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना ही एक मेडिकल एजुकेशन का फिलहाल का तरीका है जी।
0: अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि कई बार हम लोग जो है कॉलेज ढूंढ लेते हैं, एडमिशन के लिए हम लोग चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो सिस्टम है उसके बारे में आप
1: जी सर।
0: तो ये गवर्नमेंट के लिए है या फिर प्राइवेट के लिए भी है?
1: जी अभी गवर्नमेंट और प्राइवेट का बताता हूँ। मोस्टली होम्योपैथी में गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है। अगर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी पूरे प्राइवेट कॉलेज है। अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भोपाल में है। तो एक हर स्टेट में लगभग अभी एक ही कॉलेज है महाराष्ट्र में। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसका भी जो है ना कि कट ऑफ मार्क्स आपको देना है, और वैसा प्रिफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो अभी 99% गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, सब पूरे प्राइवेट ही कॉलेज है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी जो आपने करंट सिनेरियो के बारे में बताया। और इसके साथ में चलिए एडमिशन हो गया, उसमें एडमिशन होने के बाद किस तरह से हमें जो है आगे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे हम लोग ध्यान दें पढ़ाई पर, होम्योपैथी में क्या चीजों का बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें समझना है।
1: मान लो कि आपका एडमिशन हो जाता है, तो अभी एडमिशन होने के बाद ये जो कोर्स होता है 4.5 साल का होता है, जो मेडिकल में सभी कोर्सेस 4.5 + 1 रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप, 4.5 साल का कोर्स, तो उसमें 1.5 साल फिर एक साल, तो ऐसा 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ठीक है, पहला साल होगा 1.5 साल का, दूसरा साल 1 साल का, तीसरा साल 1 साल का, चौथा साल 1 साल का, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप। और MBBS में जो होता है कि 3 ही साल होते हैं 1.5 साल के। तो एडमिशन हो जाए आपकी, उसके बाद फर्स्ट ईयर की एग्जाम आएगी आपको। और अभी जो है एक नया तरीका या चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, अभी आ रहा है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो काफी जो एडमिशन की प्रोसेस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हो गए, सिलेबस में भी चेंजेस हो रही है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि काफी चीजें उनके पास लेके थोड़े रिफॉर्म्स ला रही है। इसके कारण क्या होगा कि थोड़ा एक सिस्टम आ रहा है अच्छी तरह, टीचिंग सिस्टम चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हुआ है, और प्लान ऑफ टीचिंग भी बदल गया है। तो इससे थोड़ा एक एजुकेशन में बेहतर चीज आएगी। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल में आयुर्वेदा होम्योपैथी का जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्टैंडर्ड कम है, तो अभी गवर्नमेंट खुद उसमें ख्याल दे रही है। तो टीचर्स का भी अपग्रेडेशन हो रहा है, स्टूडेंट्स का भी अपग्रेडेशन हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो प्रिंसिपल मीटिंग थी उसमें भी मैं भोपाल में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो वो खुद मैं अटेंड किया हूँ।
0: अच्छा,
1: तो गवर्नमेंट के काफी अच्छे प्लानिंग्स है, और अगर बच्चा चाहे कि अच्छी, देखिए अगर सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए होम्योपैथी में एडमिशन ना ले, अगर वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में भी काफी जिसे जो पुरानी बीमारियां होती है, कैसा है कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है, एक्यूट स्टेज में आप सर्जरी केस में एमबीबीएस का छात्र अच्छा काम कर सकता है, लेकिन 90% जो बीमारियां है वो जटिल बीमारियां होती है, पुरानी बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, और इसी में जहाँ जहाँ तक अंग्रेजी दवा का इलाज है वो टेम्परेवरी होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म परमानेंट इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बच्चों ने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भाई ये पैथी कम है या वो पैथी कम है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, आज 23 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं मेडिकल कॉलेज में भी आज प्रोफेसर हूँ, एचओडी हूँ, और काफी बोले तो कोई रिजल्ट्स के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, और बच्चे में एक हुनर होना चाहिए और पढ़ाई करने की जिद होना चाहिए। तो वो एडमिशन होने के बाद अगर वो फोकस करता है, प्रॉपर पढ़ाई करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई पैथी के बारे में कोई प्रॉब्लम आएगा। जी
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर साहब। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने बताया कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें, तो इसका क्या भाव अर्थ है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए।
1: हाँ, तो जनरली क्या होता है कि काफी लोग डॉक्टर बनने के बाद वो कोई जनरल प्रैक्टिशनर बन जाता है, और वो होम्योपैथी पढ़ने के बाद भी एलोपैथी प्रैक्टिस करता है। ये जो सिनेरियो है 80% स्टूडेंट्स यही करते हैं, हालांकि उसे जो पढ़ाया जाता है वो पूरा होम्योपैथिक शास्त्र पढ़ाया जाता है या आयुर्वेदा का शास्त्र पढ़ाया जाता है। तो जो छात्र आयुर्वेदा में पढ़ता है उसने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहिए, जो छात्र होम्योपैथी में पढ़ाई कर रहा है उसने होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फास्ट रिजल्ट और जल्दी पैसा कमाने के बच्चों को लगता है, इसके कारण वो शॉर्टकट प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और वो जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर होम्योपैथी का जिसको अच्छा नॉलेज है, जिस छात्र को अच्छा नॉलेज है, वो होम्योपैथी में अगर फोकस करे तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है, और उसी में इसे कमाई भी अच्छी हो सकती है और सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होगा। जी
0: जी जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताया, क्योंकि कई बार चीजें जो है हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ने का जो जुनून है वो शायद ढीला ढाला ही रहता है।
1: yes.
0: ये आपने थोड़ा सा बताया, इसलिए मैं भी चाह रहा था कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट करें आप। आगे हम लोग बातें करेंगे कि होम्योपैथी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: करे सारे ग ग प ग ध प ग ग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग जीवन विकास नाम से भी इस कार्यक्रम को करते हैं, जहां पर व्यक्ति के जीवन को एक नया मोड़ दे, एक उनका विकास हो, उनका व्यक्तित्व में विकास हो, नाम कमाए, काम करे, अच्छा काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, उनका पूरा ऑलराउंड हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, इसलिए हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी ने बहुत ही आत्मदृष्टि की बात कही कि सिर्फ डॉक्टर बनना है इसलिए होम्योपैथी में एडमिशन ना लें, आपको प्रॉपर डॉक्टर बनना है और अच्छे डॉक्टर बनना है, सोसाइटी में एक नाम करना है, होम्योपैथी का भी नाम करना है, ये अगर मकसद लेके आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। कि कोई भी फील्ड छोटा नहीं है, आप हर फील्ड में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और लोग आपके नाम से होम्योपैथी को पहचानेंगे, तो इसीलिए आप होम्योपैथी के एम्बेसिडर बनते हो। सिर्फ एडमिशन लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एडमिशन के बाद ही आपका काम शुरू हो जाता है, तो इसीलिए किसी भी फील्ड को छोटा ना समझे और जो भी फील्ड है उसको पूरे ईमानदारी से आप करें। आइए डॉक्टर संदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप होम्योपैथी में जब एंटर किए तब क्या सिचुएशन था और अभी होम्योपैथी में क्या क्या नया चेंजेस आए हैं और सरकार इस पे क्या काम कर रही है, जो आपने बीच में थोड़ा सा हिंट दिया उसको और स्पष्ट की।
3: जी, तो काफी अच्छा सवाल है आपका रमेश जी। तो सबसे पहले जब मेरा जो एडमिशन था होम्योपैथी में 1996, तो उस समय सिनेरियो काफी डिफरेंट था कि एडमिशंस इजीली हो जाते थे, प्रोसेस डिफरेंट थी और लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। आज के डेट में लोग या जो भी पब्लिक है बाय चॉइस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को आती है। सबसे ये डेवलपमेंट हो सकता है होम्योपैथी के बारे में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि करियर ऑप्शंस क्या होते हैं होम्योपैथी में। तो सबसे पहले करियर ऑप्शंस क्या है कि जब भी आप, कुछ लोग कैसा है कि BHMS जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथी का खुद का एक छोटा क्लिनिक चालू करके वो पेशेंट को सेवा दे सकते हैं। ये होगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करना, जो कि MD होता है, जो 3 साल का कोर्स होता है। जब भी कोई छात्र MD करता है तो उस शास्त्र के बारे में उसको डिटेल मालूम होती है और वो और अच्छी सेवा दे सकता है। अगर MD करने के बाद उसके जॉब ऑप्शन भी बढ़ते हैं। काफी लोग ये भी करते हैं कि BHMS हो गया, MD हो गया, तो प्रैक्टिस के अलावा आप मेडिकल कॉलेज में टीचर या प्रोफेसर बोल के ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको शिक्षक बनना है होम्योपैथी में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है वो है MD, और उसके बाद आजकल उसके आगे भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो PhD कर सकते हो। अभी MD करने का सबसे मेन फायदा जो होता है कि काफी लोगों को या पेशेंट भी सोचते हैं कि भाई अगर मुझे ट्रीटमेंट लेना है तो कम से कम डॉक्टर MD होना चाहिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी उसको फायदा होता है और उसका नॉलेज अपग्रेड होने के कारण उसको सही मात्रा में, सही दिशा में वो ट्रीटमेंट दे सकता है। इसके बाद जैसा आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप MPSC UPSC से भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स, अभी आज पूरे महाराष्ट्र में मैं पढ़ाता हूँ, ऑल इंडिया में मैं जाता हूँ, तो काफी स्टूडेंट्स ने अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में HR मैनेजर हो गए या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। कुछ बच्चे इमरजेंसी कोर्सेज करते हैं होम्योपैथी के बाद। कुछ बच्चे जो है ना कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस करते हैं। और कुछ छात्रों ने हमने ये भी देखा है कि खुद के क्लासेस शुरू किए जो होम्योपैथी पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट ऑप्शन है। अभी मेरे काफी स्टूडेंट्स है जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो अगर आप में कुछ करने की चाहत है तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र, जैसा आपने बताया कि छोटा या बड़ा है, तो काफी स्कोप है। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों ने ऐसा समझना चाहिए कि मुझे, मेरा होम्योपैथी में एडमिशन हुआ है या एलोपैथी में एडमिशन हुआ है तो प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने खुद बाय चॉइस होम्योपैथी सिलेक्ट करके इसमें आगे शिक्षण लेके बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हुआ हूँ। जी,
4: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। इसके साथ में मैं चाहूंगा कि सरकार होम्योपैथी को लेकर किस तरह से जागरूक है और क्या नया कुछ करने वाली है इस फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: जी, आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि अभी पहले जो था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी कम थे, अगर आपको एग्जाम्पल देना तो महाराष्ट्र में तो था ही नहीं, तो अभी एक नया कॉलेज जलगांव में चालू हुआ है, फिर काफी जगह में जाता हूँ, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, केरला में है, हैदराबाद में है, उसके बाद भोपाल में है, तो अभी इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसा कि हर गांव में एक सिविल अस्पताल होता है तो या तुम्हारा आरोग्य केंद्र होता है, तो हर जगह पे मेडिकल ऑफिसर की जगह निकलने के बाद अभी फिलहाल तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इतना स्कोप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 4-5 साल में हर हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी एक मेडिकल ऑफिसर या जिसको RMO कहते हैं, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, इनके लिए जगह निकलेंगी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो एक सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई छात्र चाहता है तो आगे चल के उसको नौकरी मिलने के एक 30% चांसेस है जी।
2: हाँ, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे कि हर टाउन में, छोटे छोटे टाउन में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वो राजस्थान सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है सारे, तो ऐसा क्या हो सकता है इन फ्यूचर के होम्योपैथी हॉस्पिटल्स भी जगह जगह खुले और वहां पर होम्योपैथिस्ट बैठे? तो चलिए, मैं चाहूंगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सरकार अगर चाहे तो कर सकता है, जैसे राजस्थान में आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल हर जगह मिलेंगे आपको और वहाँ बेकायदा डॉक्टर भी बैठते हैं और मेडिसिन भी लोगों को फ्री दिया जाता है।
3: मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसा कोरोना पीरियड में होम्योपैथी में जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि एक आर्सेनिक एल्बम नाम की दवा है तो हर किसी ने लेना चाहिए और खाना चाहिए, तो उस समय दवा का रिजल्ट तो था ही था, काफी हद तक कोरोना कंट्रोल करने में हेल्प हुई, लेकिन इससे ये पता चला गवर्नमेंट से कि उनको भी पता चला कि होम्योपैथिक दवा अच्छी तरह काम कर सकती है और लोगों में जो जागरूकता थी होम्योपैथिक बारे में, होम्योपैथिक बारे में जागरूकता बढ़ी, उनका विश्वास बढ़ा और डेफिनेटली काफी हद तक होम्योपैथी ने कोरोना कंट्रोल करने में मदद की, तो इस तरह लोगों की जो आज होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी काफी प्रैक्टिस भी बढ़ी और लोगों का उसमें विश्वास कायम रहा, तो ये चीज होती है कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा एक पहल लेती है तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उस दिशा में सोच रही है, जैसे कि योगा है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, ये एक पिलर्स कह सकते हैं आप कि इससे ही इसके कारण देश में सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और जैसे कि बीमारियां कंट्रोल करने में, जटिल बीमारियां कंट्रोल करने में डेफिनेटली होम्योपैथी काफी काफी मदद कर रही है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
2: जी। जी जी, एक बात और पूछना चाहूंगा, होम्योपैथी में जैसे कि जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और वो व्हाइट कलर के गोलियां
3: जी
2: है ना
3: जी जी,
2: तो ये जो ये कॉन्सेंट्रेशन बनता है ये कैसे बनता है, हर्ब से बनता है या तो इसमें अल्कोहल की मात्रा भी होती है, तो कितना
3: जी,
2: होती
3: जी,
2: है थोड़ा सा डिफाइन कीजिए।
3: जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन का जैसा बताना चाहता हूँ कि इसमें केमिकल कोई होता नहीं है, अगर आपको अभी एग्जाम्पल लेना पैरासिटामोल जो क्रोसिन गोली आती है उसको अगर बनती है तो पूरी एक पाउडर फॉर्म में बनती है, उसमें केमिकल होता है। होम्योपैथिक में अगर दवा जो होती है इसका मेन सोर्स होता है हर्बली सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है, मिनरल सोर्स होता है, तो जितनी भी चीज धरती पे पाई जाती है, एग्जाम्पल के लिए अगर बता जाओ तो नमक से भी दवा बनती है, हल्दी से भी दवा बनती है, तुलसी से भी दवा बनती है, और जितने भी आयुर्वेद में जितने भी झाड़ या जितने भी सोर्सेस बताए गए उसी सोर्स से ये दवा बनती है, लेकिन आयुर्वेदा से भी जो होम्योपैथी में जो दवा होती है उसकी मात्रा बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी जैसा एक नैनो पार्टिकल जैसी होती है। जैसा कि अगर आपको एग्जांपल देना है तो अगर तुलसी के इससे दवा बनाना है तो तुलसी का एक बूंद लेना है दवा का जो जूस का, और उसको क्या करना है कि एक 100 ml फॉर एग्जाम्पल एक 100 ml अल्कोहल में डालते हैं, अल्कोहल में डालने के बाद उसमें से फिर एक एक बूंद लेना है और उसको एक 100 stroke मारना है या 100 झटके मारना है, तो उसके बाद ये 1 power की दवा होती है। तो अगर आपको 30 power की दवा होना है फिर दोबारा उसको क्या करेंगे, 100 ml अल्कोहल में डाला जाता है, फिर उसमें से एक बूंद लेने का, फिर उसको 100 stroke मारना है, तो ये हो गई 2 power की दवा। तो ऐसा कंटिन्यू 30 बार हर इसमें से वो जो हर बार एक एक ड्रॉप उसमें से लेके 100 ml में डाला जाएगा और ऐसा 30 बार किया जाएगा तो वो हो जाएगी 30 potency की दवा। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दवा जो है इसमें नाम मात्र होती है और ये अल्कोहल बेस्ड होती है, तो शरीर में पाई नहीं जाती है, लेकिन इसकी जो पावर है वो काफी अच्छी होती है। इसको डायनेमिक पावर बोलते हैं, वाइटल पावर बोलते हैं। और हम जब ये शरीर में दवा देते हैं तो ये स्टिमुलेशन का काम करता है, और वो स्टिमुलेशन होने के बाद वो बीमारी जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करता है। जी सर।
2: तो इसमें अल्कोहल का कोई परसेंटेज भी होता है कि नहीं होता है?
3: अल्कोहल लगभग 99% होता है, लेकिन ये जो होता है कि जो मार्केट में अल्कोहल पाया जाता है ये डिफरेंट, ये मेडिसिनल अल्कोहल होता है। और ये जो है ना, आपको एक या दो ही बूंद दिया जाता है दवा के अंदर, तो इसी से शरीर को कोई हानि नहीं होती। और दूसरी बात जो थी, आपने जो बताया कि जो गोलियां होती है वो सफेद सफेद गोलियां जो होती है, मीठी मीठी गोल, जैसे होम्योपैथी को सब उसी के नाम से पहचानते हैं, तो ये जो गोली होती है सबसे पहले तो बहुत मीठी होती है, तो छोटे बच्चे काफी आकर्षित होते हैं गोली खाने के लिए। अब ये गोली जो है वो दूध और शक्कर से बनती है, जनरली बकरी का दूध, बकरी के दूध से एक पोटेंडाइज मेथड से इसको बनाते हैं और छोटी छोटी गोलियां बनती है, और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है इसमें, तो डायबिटीज के पेशेंट भी इसको आसानी से खाते हैं। जो शुगर, इससे डायबिटीज की शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ती, बढ़ती तो बहुत अच्छी प्रकार से बनती है, स्टेराइल रहती है और आसानी से। मैं सबको, दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे आसान, इजीली जो दवा आप खा सकते हैं वो होम्योपैथिक है। आयुर्वेदिक में भी काढ़ा होता है या कड़वी दवा होती है, होम्योपैथी में ऐसी कोई चीज आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं दवा खा रहा हूँ। जैसे एलोपैथिक दवा भी आप खाएंगे तो खाने के बाद थोड़ा रेस्टलेस होता है पेशेंट या कोई साइड इफेक्ट होता है, तो ये ऐसा कोई चीज होम्योपैथी में पाई जाती नहीं, इसीलिए ये बच्चों में, बूढ़ों में और सब लोगों में काफी लोकप्रिय है।
2: डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि होम्योपैथी कैसे बनता है और क्या क्या चीजें उसमें होती है और उसके पावर्स के बारे में आपने स्ट्रोक के साथ समझाया। इसके साथ में क्या होम्योपैथी में लिक्विड्स भी, जैसे एलोपैथी में सिरप्स होते हैं, वैसे होम्योपैथी में सिरप्स भी बनते हैं क्या?
3: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो अभी जैसी एलोपैथी में जैसी कंपनियां है, वैसी होम्योपैथी में भी काफी कंपनियां है। कुछ नाम बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि SBL है, लॉर्ड्स है, श्वेबे है। तो आजकल कैसा है कि ये इस प्रकार के मेडिसिन भी होम्योपैथी में उपलब्ध है, इसे पेटेंट मेडिसिन कहा जाता है। जैसे कि कफ सिरप होता है, टॉनिक होता है। अब होम्योपैथी में अगर कहा जाए तो नाम के लिए एक बताता हूँ, अल्फा अल्फा टॉनिक आता है, कफ सिरप भी काफी आते हैं। तो सभी प्रकार की होम्योपैथी में भी लिवर टॉनिक, अल्फा टॉनिक, कफ सिरप, डायबिटीज के ड्रॉप, सब प्रकार के दवा अवेलेबल है और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां है जो अच्छा बिजनेस भी कर रही है और अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो पेशेंट्स को आजकल कुछ डॉक्टर्स इस गोलियों के साथ, अगर खांसी की दवा है, टॉनिक है, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट को क्या लगता है कि सिर्फ ये गोली ठीक नहीं करेंगी, ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट में एक धारणा होती है। तो इसी कारण कुछ कंपनियां अच्छी दवा लेकर आई है और काफी लोग सक्सेसफुली ये जो एलोपैथी जैसी दवा होम्योपैथी में भी उपलब्ध है और वो दे रहे हैं।
2: जी जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो युवा साथी हैं या जो सुन रहे हैं उन सभी को काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके साथ में एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, होम्योपैथी में अगर हम समझो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो वो और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं क्या? इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर कौन कौन सी जगह पे काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताएं।
3: काफी अच्छा सवाल है आपका। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो कोई मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, इनमें भी वो जाके पढ़ा सकते हैं। इसके बाद वो पर्सनल कोचिंग चालू कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जैसा मैंने बताया आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 90%, जैसा भी औरंगाबाद में भी आप मुझे पूछते हैं, तो जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है तो हर जगह हमारे ही स्टूडेंट्स, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स काम करते हैं एज अ असिस्टेंट डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, और काफी अच्छी तगड़ी कमाई भी करती है, अच्छी उनकी पगार भी होती है और काम भी अच्छा करते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि भाई सिर्फ MBBS करने के बाद ही हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और अपनी जैसी चर्चा हुई है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी है, तो 10-20% है, स्लोली स्लोली वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शन है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग एक छोटे छोटे कोर्सेस करते हैं, कोई कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करता है या कोई एचआर मैनेजर का कोर्स करता है, और एक नया कोर्स करते हैं सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो होम्योपैथी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद भी कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स में, जैसे कि काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे कि जो हॉस्पिटल में भी अच्छी तरह हॉस्पिटल संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है, तो ये बच्चे ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शंस हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। और जो नए बच्चे होम्योपैथी में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप एक मैसेज के तौर पे, संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे अभी?
3: संदेश में यही बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बनना है तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कोई पैथी छोटी या बड़ी होती नहीं है। आप अगर अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, या MBBS या एलोपैथी हो, आपका निश्चय मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रांग है, आपका विश्वास अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा डॉक्टर बनने में कोई रोक सकता है। और अगर आप में सेवा भाव सेवा करने की रुचि है, तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर बनने के लिए ही इस धरती पे जन्म लिया है। तो मुझे लगता है कि आप होम्योपैथी में आइए, विस्तार कीजिए होम्योपैथी का, और लोगों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।
4: चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया होम्योपैथी के बारे में, छोटी छोटी बातें आपने सुनाया है, और निश्चित तौर पे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल है, और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं मेडिकल में, खास होम्योपैथी में, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर संदीप जी से सारी जानकारी करियर इन होम्योपैथी के बारे में लिया। अगर फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला ऐसा लगता है, तो आप रेडियो मधुबन पर मैसेज कर सकते हैं 9414151415, इस नंबर पे अपना नाम के साथ आप मैसेज कीजिए, तो आपको फॉलोअप करेंगे और आपको जवाब भी देंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ अपना और देश का नाम रोशन करें, ऐसी शुभ इच्छा के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति
3: ओम शांति।
4: सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद भोगवाद ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद भोगवाद के कारण।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में। तो आज हम चाहे गुणंतर 70 साल के हो गए तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और आज के आपके फेवरेट शो को लेकर आया हूँ फिर से आपके बीच। और शो का नाम है जुनून, और आप मेरी आवाज पहचान ही रहे होंगे। मैं आपका दोस्त और आज के शो का होस्ट शरद, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। और आप इसे सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। और मेरे साथ हैं आज एक फिर से एक नए जुनून के साथी, और उनका जुनून है रूरल डेवलपमेंट, उनका जुनून है ट्राइबल वेलफेयर, उनका जुनून है रेडियो कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ उनका जुनून है कि वो कैसे अपने जीवन के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो बादल फिल्म का गीत आपको याद है ना, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तो वही बात है। और ऐसे ही जुनूनी जो इस गीत को सच्चा साबित करते हैं, हमारे साथ हैं विनोद। विनोद, आपका स्वागत है हमारे रेडियो शो में। आप तो जानी बानी आवाज हैं और मुझे लगता है श्रोता आपको जानते भी होंगे। जी विनोद
1: जी, बिल्कुल, रेडियो मधुबन से मेरा पुराना रिश्ता है और मेरी शुरुआत जो है वो रेडियो मधुबन से ही हुई है, क्योंकि रेडियो मधुबन में से ही मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में भी अपनाया, और अब अपनाते हुए जो है वो मेरे अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ।
0: जी, आपसे शुरुआती दौर की बातचीत में मालूम चला, और साथियों बता दूं कि दुनिया के नक्शे में जब कोटड़ा में भूख से कुछ मौतें हुई थी कुछ पिछले सालों में, और इसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया, सरकारें जागी, प्रशासन चेता, और लोगों को मालूम चला कि क्या हमारे देश में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना पिछड़ा हुआ है। कोटड़ा उस तहसील का नाम है जहाँ से विनोद आते हैं, और कोटड़ा की आबादी आदिवासी आबादी है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसके बारे में हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधान किए, और इन विशेष प्रावधानों के बावजूद आजादी के इतने सालों बाद भी उस इलाके का विकास ना हो पाना, उसका ह्यूमन इंडिकेटर उसके पीछे रह जाना, हम सबको सब सोचने पर मजबूर करता है। और विनोद से हम चर्चा करेंगे इस इलाके के बारे में, आदिवासी जनजीवन के बारे में और ग्रामीण विकास के बारे में, विनोद की क्या योजना है। तो विनोद, आपको ये जुनून कैसे लगा कि आप आदिवासी समाज में काम करना चाहते हैं, आदिवासी समाज के मानव इंडिकेटर्स से, ह्यूमन इंडिकेटर्स से उनके विकास

0: की बात करते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये जुनून कहाँ से आया?
1: जी, वो कहते हैं ना कि स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे होते तो आसपास बहुत कुछ दिखता है, और मेरी जो पढ़ाई है वो आधी गुजरात में हुई और आधी राजस्थान में। तो 10 तक जब मैं पढ़ रहा था गुजरात में, मैंने 11, 12 जो है वो आबू रोड में एडमिशन हॉस्टल में लिया, जो कि रेडियो मधुबन के थोड़ा सा सामने ही है, और उसी के जरिए मैं रेडियो मधुबन से भी कनेक्ट हुआ 2011 के बाद से, जब मैं 12वीं में या फिर 11वीं में था तब जुड़ा था, और वहीं से फिर मुझे लगा। और मेरे अंदर ये और बहुत सारी कविताएं हैं, गीत है या फिर जानकारी है, वो इकट्ठे करने का शौक था और इकट्ठी करके जानकारी रखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसको मैं करूंगा क्या या फिर बाद में काम आएगी, केवल यही एक मुझे लग रहा था मन में। लेकिन रेडियो मधुबन के टीम जो है वो हमारे हॉस्टल में स्कूल में आते थे, तो उन्होंने जो कार्यक्रम वहां पर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई रेडियो में आकर बोलना चाहता है तो बोल सकता था। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि रेडियो में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब मैं पहली बार गया तो फिर मुझे बताया गया, और उस समय मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे पास प्रस्तुत करने के लिए कविताएं थी, कहानियां थी, और जो जानकारी अखबारों में आती है वो इकट्ठी कोई वो थी जो मैंने प्रस्तुत की थी। और फिर धीरे धीरे रेडियो मधुबन से जुड़ा, और उस समय मैं अपने गांव में नहीं रहता था, मेरा एक घर गुजरात में भी है जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो गांव में नहीं रहता था, तो जब मैं गांव में नहीं आता था, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ा तो गांव में आ गया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हमारे गांव में जो है वो बिजली नहीं थी, और गांव के अंदर बोर्ड लग चुका था कि विद्युतीकरण हो चुका है, तो फिर मुझे लगा कि बिजली लाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सरपंच को लेटर लिखा कि हमारे गांव में बिजली नहीं है लेकिन बिजली का बोर्ड लग गया है, तो वो बिजली आने चाहिए। और फिर सरपंच ने कुछ नहीं किया, 7 दिनों के बाद फिर मैंने वो जो लेटर है उसको अटैच करके विकास अधिकारी के नाम से लिखा बीडीओ को, बीडीओ ने भी 7 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर सीधा मैं कलेक्टर के नाम से लेटर लिखा, और वो सरपंच वाली विकास अधिकारी वाली वो एप्लीकेशन ले जाकर कलेक्टर ऑफिस में दी। लेकिन कलेक्टर ऑफिस में उदयपुर जब मैं गया मिलने के लिए, तो उधर पहले लिख के देना पड़ता है पर्ची में कि मिलने के लिए कौन कहां से आया है, तो जैसे ही वहां पर जो पियोन या फिर जो भी होगा उन्होंने देखा कि कोटड़ा से आया है, तो मुझे फिर कलेक्टर से मिलने दिया। और उस समय कलेक्टर से क्या बात ये मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ महीनों के बाद जब मैं वापस आबू रोड चला गया था, लेकिन मुझे फोन आता है कि गांव में बिजली का काम शुरू हो चुका है। तो वो एक पहली शुरुआत थी, गांव के अंदर बिजली नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दिन में काम करना पड़ता है, रात को अगर पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सके, तो वो एक पहली शुरुआत थी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बिजली लाने की स्टार्टिंग की, और उसके बाद फिर हैंडपंप के लिए भी प्रयास किया, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था लाइफ का, काम का। और उसके बाद फिर रेडियो से जुड़ने के बाद तो बहुत सारे कई जो प्रोजेक्ट रेडियो के थ्रू भी चले। और एक और चीज की, मैं भील समाज से आता हूँ, तो मेरी अपनी भाषा तो मैं जानता था, भील भाषा में बात करना, और आबू रोड एरिए में ग्रासे समुदाय के लोग रहते थे, उनकी भाषा हालांकि मिलती जुलती लेकिन अलग थी। तो मुझे वहां के रेडियो मधुबन की जो दीदी है कृष्णा बहन जी, उन्होंने कहा कि आप अगर यहाँ की लैंग्वेज में लोगों के साथ बातचीत करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर जब गांव में जाकर लोगों से, ग्रासे भाषा मुझे उस समय नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने वो सीखा और स्टार्टिंग की लोगों के साथ बातचीत करना, और लोगों को भी लगा कि ये हमारा ही एक अंदर समाज का है और हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं, और लोगों को भी अपनापन लगने लगा। तो जैसे स्कूलों में जाता था, स्कूलों में रिकॉर्डिंग करना, गांव में जाके लोगों से उनकी खेती के बारे में बातचीत करना, उनके जीवन के बारे में, वो लोग कैसे रहते हैं, या फिर उनका जो भी गांव की जैसे समस्या है, सड़क की है, पानी की हो गई, बिजली की हो गई, तो जब वो लोग अपनी भाषा में बातचीत करके रिकॉर्डिंग करवाते थे तो उन्हें एक अलग खुशी होती थी। समस्या का समाधान तो शायद सेकंड नंबर पे था, पहला तो उन्हें ये लगता था कि कम से कम हमारी बात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, और जब वो लोग शाम को सुनते थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी होती थी, और इस वजह से वहां के लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ, जो कि वो जो जुड़ाव तब हुआ था वो जुड़ाव आज तक है। और केवल वहां नहीं, आबू रोड में, मेरे अपने कोटड़ा में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, और एक अलग ही पहचान छोटी सी उम्र में, और मुझे उस समय इतना ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि जब मैं रेडियो में था तो अपनी एक अलग पहचान बनी थी, और वही पहचान आज भी मेरे बहुत काम आती है। और उस रेडियो में ही रहते हुए मैंने साइकिल चलाना सीखा, जो साइकिल चलाना तब सीखा जो कि आज भी मैं साइकिल ही चलाता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। उधर के गांव में साइकिल चला के जाके लोगों के बीच रिकॉर्डिंग करना ये होता था, और यहाँ के कोटड़ा के तो लोग ये बोलते हैं कि साइकिल वाला आया, साइकिल वाला लड़का, मतलब वो खुशी ही अलग है
0: जी।
1: आज भी मुझे अंदर लगता है कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि जीवन होना तब सफल होता है जब आप कुछ कर पाते, एक तो है कि सोच कर कुछ करना और ऑटोमेटिकली आपके सामने कुछ हो रहा है और आप करते जा रहे। मेरे साथ वैसे हो रहा था, और कभी लगा नहीं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब बस अपने जीवन को जी रहा हूँ और जो जरूरी लग रहा है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है ऐसा कभी ये नहीं कि मतलब मैं बदलाव के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो रहा, बदलाव की जरूरत है और मैं कर रहा हूँ ऐसा
0: जी। ये बदलाव कैसा था, कि जुनून किस तरह के बदलाव के लिए
1: है? वो जो बदलाव है कि जैसे लोगों की एक प्रॉब्लम है कि अगर पानी की समस्या है तो रेडियो में लोग अपनी बात रख पा रहे हैं मेरे जरिए, और मुझे ये लगता था कि हाँ रेडियो में बात जाएगी, प्रशासन तक जाएगी, कहीं ना कहीं तो समाधान होगा ही। और जैसा कि गांव के अंदर सरपंच से भी तो मुलाकात होनी ही है, अगर गांव के लोग बता रहे कि ये समस्या है तो सरपंच भी समस्या के समाधान के लिए शायद कुछ प्रयास करेगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन उसी समय या ऑन द स्पॉट या फिर बाद में भी हो पा रहा था, क्योंकि सरपंच को भी पता चल रहा था कि लोगों की समस्या है, अगर रेडियो पे जा रही है तो गांव की एक अच्छी इमेज या कैसी इमेज जाएगी अगर समस्या रहती है तो
0: जी। देखिए मैं ये सोचता हूँ कि जो विकास का बदलाव की जो बात आपसे हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव किस दिशा में है, अगले 20 साल बाद आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं अपने इलाके में
1: जी। मैं हालांकि एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, हालांकि लाइफ में अब थोड़ा सा मुझे अभी जून महीने में ही एक वर्कशॉप कहूँ या फिर कार्यशाला कहूँ संविधान प्रचारक की हुई, उसको मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद थोड़ा एक और नजरिया बदला है। उससे पहले मेरा नजरिया ये था कि जहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय हैं, और एक और पॉइंट ये था कि जो पीड़ित लोग हैं उनको जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो मिले, लेकिन मुझे ये लगता है कि भारत के जितने भी लोग हैं और जिन लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है वो सुविधाएं उन्हें मिल पाए, क्योंकि उन सुविधाओं को दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में और उनके साथ जितने भी संविधान निर्माण करता आए थे या फिर जो भी उनका सहयोग करने वाले थे उन लोगों ने इतना प्रयास किया कि संविधान बने हुए जितना टाइम हुआ है 1950 में बना, लेकिन आज भी उन संविधान में इतना कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, और वो जो सारे नियम और वो सुविधाएं लोगों को अब भी अगर कहा जाए तो अगर वो सारी सुविधाएं मिल जाती है तो बेहतर होगा। और वो सारी सुविधाएं, एक तो मूलभूत सुविधाएं जो है रोटी कपड़ा मकान, इसके अलावा एजुकेशन है, क्योंकि जितने अधिकार संविधान में दिए हैं वो सारे इंसान की अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। केवल मैं पहले ये सोचता था कि आदिवासी समुदाय और पीड़ित पक्ष, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि भारत के वो सारे लोग जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो कि एक व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होनी चाहिए वो मिल पाए
0: जी। तो युवाओं को जब आप चलते हैं कि आपने जब एकला चालों को थामा है तो एकला चालों के आपकी गति के साथ और लोग जुड़े हैं आपसे, युवाओं ने कैसी प्रतिक्रिया दी आपको अपने क्षेत्र में?
1: हाँ, जैसे कि आपने एकला चालों की बात की, तो जब मेरे अपने खुद के कोटड़ा टाइम्स की मैं बात करूँ तो जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम भी कुछ और था कि आदिवासी क्षेत्र की जो खबरें वो लोगों तक पहुंचे, और मैं अकेला ही जहाँ कहीं कुछ घटना हो जाती है खुद चले जाता रिकॉर्डिंग करता। कई बार तो लोग ये भी कहते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारा कुछ गलत कर दोगे, तो खतरे जैसे भी डर लगते थे, क्योंकि अगर कहीं पर हमारे आदिवासी क्षेत्र में एक मौताना नाम से प्रथा है और अगर किसी का मर्डर हो गया तो फिर वो लाश जो है वो बहुत दिनों तक रहती है, और जब तक उस लाश का फैसला नहीं होता वो रहेगी ही। और अगर मैंने एक पक्ष की बात रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे चला दिया और दूसरे पक्ष की बात को रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर ऐसा भी हुआ है कि एक जगह पर मैं गया हूँ तो वहां पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम अपनी बात नहीं रखना चाहते, लेकिन उन लोगों को मैंने समझाया कि अगर आपकी बात को मैं रखूंगा तभी तो लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हुआ था, और उसके बाद फिर मैं दूसरे पक्ष के पास भी गया और उनकी भी बात को रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से जो शुरुआत हुई तब मैं अकेला था, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं हम भी इनके साथ जुड़े, और वो भी फिर अपने क्षेत्र की खुद की जो खबर है वो देने लगे। और एक और मैं बताऊं तो मेरे साथ एक मेरा साथी था प्रकाश डामोर करके, तो पहले वो मेरे साथ काम करता था, कुछ कारणवश डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वापस जिस तरीके से मैं अपना खुद का चला रहा हूँ फोटोडा टाइम्स, वैसे उसने भी अपना खुद का चैनल स्टार्ट किया और वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे गुजरात के दांता तहसील करके वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि जो यूथ मेरे साथ जुड़े थे वो पहले केवल मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वो अब एक साथ 3-4 मीडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। केवल गांव की जो खबरें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसके अलावा वो दूसरा भी काम करते हैं जिसके जरिए उनकी अपनी इनकम भी होती है। और जो लोग कोटेडा टाइम्स के साथ जुड़े थे वो सारे वॉलेंटियर थे, और वॉलेंटियर इसलिए थे क्योंकि मेरी अपनी जो सोच थी वो ये थी कि आदिवासी समुदाय जो है वो अपना खुद का विकास कर सके, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो लोगों तक पहुंचा सके। और इसको शुरुआत करने के पीछे एक कारण ये था कि हमारी जो अपनी खबरें हैं मैं अगर दूसरे मीडिया को देता हूँ मेन स्ट्रीम को, तो वो उनका मन होता तो या तो आगे उनको जगह मिल पाती तभी वो खबरें छपती थी, और इस कारण क्या होता था कि वो खबरें प्रशासन तक भी नहीं पहुंचती थी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए खुद का ही होना चाहिए ताकि मैं उसको अपने मेन स्ट्रीम में डालूं। और आज ऐसा टाइम है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं वो मेरे पास न्यूज मांगते हैं कि आप गांव की अपनी जो खबरें हैं वो हमें भेजिए।
0: तो आपके इस टाइम्स आपके अखबार में, क्योंकि कहते हैं ना कि यदि लोगों तक पहुंचना है तो अखबार निकाल, तो ये बात है। और गांधी जी ने तो कितने सारे अखबार चलाए, भगत सिंह जी ने काफी सारे अखबार निकाले, तो हर क्रांतिकारी का अपना अखबार रहा है। आपके अखबार में कितने लोगों की टीम है और क्या छपता है?
1: मेरा अखबार तो नहीं है, कोटेडा टाइम्स जो है वो एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है और यूट्यूब चैनल है कोटेडा टाइम्स के नाम से। और शुरुआत में इसमें 11 लोग थे, सारे वॉलेंटियर थे। अभी कुल 5 लोग हैं, वो वॉलेंटियर हैं और अपने अपने क्षेत्र की न्यूज भेज रहे हैं। और फ्यूचर में तो ऐसा भी प्लान है कि जो कोटेडा टाइम्स यानी कि उसके अंदर केवल कोटेडा की न्यूज नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे आबू रोड हो गए, जितने भी आदिवासी क्षेत्र आसपास के हैं, करीबन 6-7 तहसील और 4-5 जिले हैं, उनको मैंने शामिल किया हुआ है।
0: आप इस कम उम्र के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं विनोद जी?
1: मैं शुरुआत रेडियो मधुबन की बात से करना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो मधुबन में रहते हुए ही बहुत सारे जगह ट्रेनिंग में भी गया, उस दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सीखा और समझा है। और रेडियो में रहते हुए ही मैंने कैसे लिखना है, कैसे ऑडियो एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, ये सब कुछ सीखा था। अगर रेडियो मधुबन नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, अपना खुद का चैनल बनाया है और लोगों का इंटरव्यूज ले पा रहा हूँ। और मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि बड़े पोस्ट पर व्यक्ति का इंटरव्यू लेना सामान्य होगा, लेकिन आज मैं आराम से अगर कोई भी बड़े पोस्ट का व्यक्ति है तो उससे मिलके उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया, तो रेडियो में रहते हुए जितने जो प्रोजेक्ट थे जो कि आदिवासी समुदाय को लेकर भी कुछ बनाए थे, एक तो पेशा एक्ट की जानकारी वाला था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, और उसमें टोटल 11 शक्तियां थी और उनके ऊपर आदिवासी भाषा में गीत, आदिवासी स्टोरीज बनाई गई और आदिवासी नाटक उसमें कार्यक्रम के लिए शामिल किए गए। और इसके अलावा जो है वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए बाल विवाह के ऊपर भी काफी सारे कार्यक्रम किए थे। और उसके बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप की जागरूकता, तो आबू रोड में और कोटेडा में दोनों जगह आदिवासी समुदाय भील और ग्रासिया दोनों में ये देखने में मुझे उस समय लगा था, अब भी है लेकिन अब थोड़ा वो कम हुआ है क्योंकि एजुकेशन बढ़ा है इसीलिए, तो तब उसकी जागरूकता की कोशिश की गई थी। और इसके अलावा जो है वो एक जो सामाजिक कुप्रथा है उसको लेकर ही पूरा एक अभियान चलाया गया था, जैसे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात की लिव इन रिलेशनशिप, कुप्रथा, नशा मुक्ति और बाल विवाह तो नहीं होते थे, लेकिन अगर हो भी रहे हो तो उसकी जानकारी जो है वो लोग जो है वो प्रशासन तक पहुंचाए ताकि उसे रुकवाया जा सके
0: जी।
1: और इसके अलावा हमारी आदिवासी समाज की जो संस्कृति है वो बची रहे उसको लेकर रेडियो मधुबन में सिंगिंग का कार्यक्रम हुआ था, मेरी आवाज ही पहचान नाम से। तो फिर मुझे खुद को भी लगा कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो तो हिंदी गीत का हुआ है, तो हमारे आदिवासी गीतों का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो उस समय रेडियो मधुबन की टीम और हम सब लोगों ने मिलकर मुझे लगा, तो वो हम लोगों ने डिजाइन किया कि आदिवासियों के गीतों का कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिशन होना चाहिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो उस कार्यक्रम का नाम रखा था मेरी आवाज आदिवासियों की पहचान, इस नाम से था और वो पूरा आदिवासी भाषा में ही था। और उसके जो गीत है वो उस समय रिकॉर्डिंग किए गए थे और कई बच्चों को कैसे गीत बनाने हैं उसकी भी जानकारी नहीं थी, मुझे खुद को भी नहीं थी क्योंकि मैं भी गांव में ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन मैंने खुद ने भी फिर गानों को सीखना शुरू किया और लिखना शुरू किया। और फिर जो बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट हुए फिर राउंड में आए, उनको फिर मैंने देशभक्ति गीत है, संस्कृति का गीत है, प्रकृति का गीत है, वो सब कुछ कैसे लिखना है वो उन्हें गाइड करके करवाया और फिर ये कार्यक्रम किया। और वो कार्यक्रम जब मैंने रेडियो में किया तो उसके बाद जैसे ही मैं रेडियो से 2017 में गांव लौट जाता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने ही क्षेत्र में यहाँ की स्कूलों के साथ एक दूसरा नया कार्यक्रम डिजाइन करके करवाना शुरू किया था। हालांकि कोरोना आने की वजह से फिर वो बीच में ही अटक गया था, लेकिन शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। और वो कहते हैं ना कि जब एक रास्ते पर चलते हैं तो चुनौतियां तो आती ही है, और उन चुनौतियों के बीच में जो है वो प्रयास जो है वो जारी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जारी रहते हैं। तो हालांकि काम तो उस समय सिंगिंग का ये सब कुछ रुक गया, क्योंकि मैंने एक ये भी सोचा था कि हमारे जो आदिवासी अपने गीत है वो ये जो टैक्सी वगैरह चलती है उसमें भी बजने चाहिए। तो उस समय मेरी कल्पना थी और मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि वो टैक्सियों में गीत बजेंगे, क्योंकि जब भी मैं टैक्सियों में गुजरता था तो हिंदी गाने, गुजराती गीत यही बजते थे। और आज ऐसा समय है कि आबू रोड में भी और हमारे इस एरिया में भी और गुजरात का भी जो आदिवासी एरिया है वहां पर हमारे आदिवासी कलाकारों के जरिए आदिवासी गीत जो है वो प्ले हो रहे म्यूजिक वाले। तो वो भी एक बदलाव मेरी वजह से तो नहीं आया लेकिन आया है, ये मैं देख पा रहा हूँ।
0: जी, मेरे रेडियो के साथियों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM, और हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी विनोद। और विनोद ने अपनी यात्रा, अपने जुनून के बारे में भी कुछ कुछ बातें हमसे की हैं, लेकिन हम उससे उसके बारे में विस्तार से समझना चाहेंगे विनोद से। और विनोद से जानना चाहेंगे, विनोद, आदिवासी समाज में कौन सी कुरीतियां हैं जो अभी भी युवाओं के मध्य हैं, और उनके विकास में क्या महत्वपूर्ण बाधा आपको लगती है, और सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है?
1: तो मैं अपने जितने भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मोहताना जो है वो आदिवासी समाज में बहुत पहले से चलती आ रही एक ऐसी परंपरा है जिसके कारण लोगों को अपने घर बार छोड़ के चले जाना पड़ता है। और इसका अर्थ ये होता है कि मौत का मुआवजा, यानी कि किसी की मौत हो गई है तो उसका मुआवजा देना, यानी कि जब तक उस मौत का मुआवजा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी। और मौत होने का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी है, डिलीवरी हो रही है उसकी और अचानक उसकी मौत हो गई, तो उसके पीर पक्ष के जो लोग हैं वो उसके पति से पैसे की मांग करेंगे, और जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो जो लाश है वो या तो अंतिम संस्कार के लिए नहीं लेके जा सकते हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी नहीं होगा। इसके अलावा इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खेत में है खड़ा और सांप ने काट लिया और वो खेत किसी और का हुआ, तो जिसका खेत है उसको मौत का मुआवजा भरना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमारे एरिया में एक केस हुआ था जिसमें जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु बिजली के संपर्क में आने से हुई, बिजली लगने से, तो उसका जो मुआवजा है वो सरकार से मांग की लोगों ने, और सरकार को उसका मुआवजा भी देना पड़ा। तो तब तक कुछ नहीं होता है जब तक लाश को उठाया नहीं जाता। ये है मोहताना, और ये जो परंपरा वो पहले से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और इसे रोकने के लिए समाज के जो जागरूक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वे भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन इतनी सफल नहीं रही। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं रेडियो में था तब कोटड़ा SDM कार्यालय से मुझे इसी के लिए सम्मानित किया गया था, मोहताना की कुप्रथा को हटाने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है इसीलिए, और मैं अभी भी ये देख रहा हूँ कि ये अभी भी लग रही है। तो वो सम्मान मुझे नहीं लगता है कि सही था, और क्योंकि केवल प्रयास करने से ये नहीं हो रहा है, हर एक इंसान के अगर ये अंदर ये जागरूकता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जागरूकता कुछ नहीं आई है। अभी जैसे एक रिसेंटली केस मैंने बिजली वाला बताया, तो एक केस ऐसा है जिसमें बाइक और टैक्सी का एक्सीडेंट होता है जिसमें टैक्सी वाले ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो दूसरा परिवार होता है वो सामने वाले पक्ष को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, और उनसे वो बात करता है कि जो बीमा राशि है उसके जरिए इसका समाधान किया जाए। क्योंकि अगर मोहताना की बात भी होती है हमारे समुदाय में तो केवल इतना होता है कि 1,50,000 या फिर 50,000 केवल राशि दी जाती है, बाकी अगर 14-15 लाख या 3 लाख की बात भी होती है तो वो राशि टुकड़ों में बटती है, लेकिन जो पीड़ित परिवार होता है उसको नहीं मिलती है। एक और बात ये कि मोताना में ऐसा भी होता है कि अगर किसी दूसरे गांव के व्यक्ति का मामला है तो दूसरे गांव के जो लोग हैं वो उस गांव पे जाके चढ़ाई भी करते हैं, यानी कि पूरा गांव खाली भी हो जाता है। उस गांव के अंदर जो परिवार होता है वो परिवार या फिर उस परिवार के अंदर भी जो उसी जाति के लोग होते हैं, उन लोगों को पूरा अपना घर बार छोड़ के चला जाना पड़ता है, दूसरा पक्ष आके लूटपाट करता है, घर बार तोड़ देता है। और रिसेंटली ऐसा ही केस गिरवर में 1 महीने पहले देखने को मिला है, पुलिस भी वहां पर थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया था। तो बदलाव की काफी जरूरत है, ये जो एक प्रथा है वो अभी भी चल रही है।
0: तो इसके लिए आपने क्या अभियान शुरू किया और कैसे आपने युवाओं को जोड़ा इस प्रथा को रोकने के लिए?
1: स्टार्टिंग में जब किया था तो गांव में जाकर मीटिंगें करते थे और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते थे, और सामाजिक संस्था के साथ भी मिलकर इसके लिए प्रयास किया। और प्रयास ऐसे थे कि उसमें हम लोगों को इकट्ठा करके केवल हम नहीं बात करते थे, लोगों से ही पूछते थे कि अगर ये चीजें घट रही है तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, और उन बातचीत में लोग ये भी बताते थे कि कैसे एक गांव पूरा खाली हो जाता। मैं जहां रहता हूं वहां पर तो गांव के अंदर बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है, लोग गए हैं 10-10, 12-12 साल से और उनकी पीढ़ियां भी निकल गई, वो दूसरी जगह बाग की खेती में जाकर रह रहे हैं, तो ऐसी भी घटनाएं हैं। और जो आपने पूछा युवाओं को जोड़ने की बात, तो युवा उस समय जुड़ा था और वो युवा जुड़ा था जो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, और वो सारे युवा उस समय मेरे साथ मिलकर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अपना खुद का दुकान थी, बिजनेस था, वो भी मिलकर साथ में जागरूकता का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिर मैं पीछे हटा, और पीछे हटने के पीछे कारण ये था कि मेरे अपने परिवार में भी मेरे पापा की तबीयत खराब हुई, तो फिर मुझे घर आना पड़ा और फिर मैंने एक कदम पीछे लिया, तो फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि सबकी अपनी एक जिंदगी होती है और जो युवा जुड़े हुए थे वो खुद का अपने बिजनेस नौकरी में भी चले गए। अभी इस प्रथा के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो कुछ संस्थाएं काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा है कि जो सरकार की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी लोगों में जागरूकता लाने के लिए बैठकें आयोजित कर रहा है और कोशिश ये करता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना स्थल पर पहुंच कर लोगों को समझाइश करता है, और जो भी मुआवजे वाली बात होती है वो बीमा के जरिए उन्हें दिलवाने की कोशिश की जाती है, ताकि जान हानि एक तो हुई है लेकिन दूसरी ना हो।
0: जी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक लॉजिक क्या है, मतलब इस बात को लेकर, इस परंपरा को इतने सालों तक लोग चला रहे हैं, मुआवजे का अपना एक स्थानीय कानून बना रखा है, जबकि देश दुर्घटना बीमा है, उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, न्यायालय के माध्यम से क्षतिपूर्ति भी होती है, इसका लॉजिक क्या है, इतने सालों से ये कैसे चल पा रहा है?
1: लोगों के चलाने के पीछे का लॉजिक यही है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, अगर हमने सामने वाले पक्ष को जवाब नहीं दिया तो ये और ऐसी घटना कर सकता है, केवल इतना सा लॉजिक है, और लॉजिक जो है वो पहले से चलता आ रहा है। और इसमें ऐसा भी हो रहा है कि अगर मैं कोटड़ा रहता हूँ तो मुझे स्वरूपगंज जाना है या फिर कहीं भी जाना है, तो अगर कुछ उस समुदाय के लोग बीच में रहते हैं तो वो पूरा रास्ता भी बंद कर देते हैं, कहीं आने जाने भी नहीं देते, ये भी हो रहा है। और लॉजिक बस इतना सा ही है कि अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारे और किसी व्यक्ति को ये मार सकते हैं, जैसे राजा महाराजाओं का बदला लेने की जो भावना रहती थी, वो भावना मतलब अभी तक जितना मैंने रिसर्च किया है उससे समझ पाया हूँ।
0: तो ये परंपरा, ये व्यवस्था, ये पूरे क्षेत्र में है या कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का समुदाय के साथ ये समस्या है? ये परंपरा
1: केवल समुदाय में नहीं, अगर दूसरे समुदाय का भी व्यक्ति है तो उस समुदाय के व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जाता, कि हालांकि होता यह है कि उसमें पुलिस का हस्तक्षेप रहता है जिस वजह से वो दूसरे समुदाय को समुदाय नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन ऑन द स्पॉट तो उस व्यक्ति को वो लोग नहीं छोड़ेंगे कि जो तुमने किया है उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, हालांकि जान हानि का नहीं करते लेकिन पैसों की बात जो है वो पहले रहती है। और इसमें ये जो परंपरा चल रही है इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो यहाँ के पंच है उन्हें उसमें 2 पैसे मिलते हैं और पंच अपनी रोजगारी चलाने के लिए भी इसको चला रहे हैं। ये भी देखा गया है।
0: तो ये जो विवाद है ये पंचायत में का निर्णय लिया जाता है, पंचायत का समझौता करवाया जाता है, या ये है कोई भी पक्ष इसमें पक्षकार होता है?
1: पंचायत में इसका निर्णय नहीं होता है, ये जो है वो गांव के सरपंच होते हैं, और गांव का सरपंच को हालांकि उसमें शामिल जरूर किया जाता है, लेकिन उस गांव के जो दूसरे लोग होंगे, उस परिवार से भी हो सकते हैं और उस गांव के भी लोग हो सकते हैं, वो लोग और दूसरे गांव के लोग, वो दोनों आपस में मिलकर इन बातों को समझाइश करते हैं। एक पक्ष बात करता है, फिर दूसरे पक्ष को सुनाने जाता है कि उस पक्ष का ये कहना है, और आपस में पूरे दिन चर्चा चलती है, पूरे दिन भी चर्चा हो सकती है, और ऐसा अगर एक दिन में चर्चा नहीं हुई तो 10 दिन भी चर्चा चलती है, और तब तक जो लाश है वो नहीं उठाई जाएगी ना पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी तो पुलिस क्योंकि लाश ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, इसीलिए इसका निपटारा करने की कोशिश जो वो है वो जल्दी करती है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस कई जगह पर अगर एक्टिव नहीं होती है तो लाश जो है वो करीबन एक एक महीने तक भी रहती है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे मुद्दों को अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचा है, जहां पर करीबन 41 दिन तक लाश बर्फ की पेटी में रखी जा रही है, क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, सामने वाले पक्ष पे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा भी हो रहा है। और जब इन सब चीजों को चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, तब प्रशासन को लग रहा है कि नहीं इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, तब जाकर प्रशासन जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो अभी तक अगर ये परंपरा चल रही है तो प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि लोगों की भागीदारी उसमें नहीं रहती है। और यहाँ के प्रशासन की बात की जाए तो फिर प्रशासन जो है वो दोनों पक्ष से निपटारा लोगों से ही करवाती है और उसका अपना बेनिफिट भी निकाल देती है, वो यही सच है। और फिर इस वजह से परंपरा जो वो चली जा रही है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती कि परंपरा खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी है वो भी खत्म हो जाएगी। और ये एक्यूरेट बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली चल भी रहे हैं, और अगर कोई नया व्यक्ति आ गया पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो थोड़े दिन प्रयास करेगा कि ये बंद हो जाए, लेकिन फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ की यही परंपरा है और इसे ऐसे ही चलाना होगा, तो फिर वो चलते ही रह रही है।
0: तो इस विकृत परंपरा को लेकर सरकार ने कोई कानून बनाया है या इसके लिए प्रशासन ने कोई नियम बनाए हैं जिससे कि इस पर रोक लगाई जाए?
1: प्रशासन ने तो नियम बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी अपनी परंपरा है और उनके अपने नियम है। एक तो रूढ़िगत परंपरा जो कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जिसका वर्णन है और पेश एक्ट में भी जिसका वर्णन है कि उनके अपने निपटारे जब वो खुद करेंगे तो पुलिस भी हस्तक्षेप करती है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती क्योंकि उनके अपने कायदे हैं। हालांकि समुदाय नहीं जानता है, उसके बावजूद भी उसके अपने निपटारे वो खुद करता है और इसीलिए ये नहीं रुक रहा है, और पुलिस ने भी कोई नियम जो है वो लागू नहीं कर पाती है।
0: आपको क्या लगता है पूरे इलाके में जिसमें आप काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल स्थानीय समुदायों की क्या चुनौतियां हैं?
1: स्थानीय लोगों की चुनौतियां तो अगर देखा जाए तो हालांकि आबरूड क्षेत्र में जो है वो एजुकेशन जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ की अधिकतर स्कूलों में टीचरों की कमी नहीं है। और कोटड़ा एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर कई स्कूल ऐसे है जहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, केवल जो पंचायत सहायक है उनके जरिए स्कूलें चल रही है, और स्कूल भवन नहीं है, बच्चे आ रहे तो वो किसी और भवन में बैठ रहे हैं, एक से लेकर करीबन 4-5 क्लासेज जो है वो एक साथ बैठ रही है, रोजाना जो पीरियड होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे। तो एजुकेशन की अगर ये हालत है तो कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो वैसे ही मैं जिस एरिया में रहता हूँ कोटड़ा एरिया में, यहाँ पर बांध बनाकर यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के प्लान भी चल रहे हैं। प्लान विस्थापित करने के हैं, ये यहाँ के लोगों को लग रहा है और सरकार को लग रहा है कि वो दूसरी जगह के लोगों को डैम बनाकर पानी बचाकर रोक कर पानी पिलाना चाहती है। तो ये भी एक यहाँ पर चुनौती देखने को मिल रही है, और इसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ काम भी कर रहे हैं कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे। और जो बांध वाली बात की तो उसको लेकर मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो अभी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि डैम जो है वो यहाँ पर नहीं बने, क्योंकि दो डैम बनने से करीबन 10-12 पंचायत के बहुत सारे लोग प्रभावित होने वाले हैं विस्थापित, और उनके पुनर रखने की वापस जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं की गई है। हालांकि उनको जमीन दिखाई गई है, लेकिन जिस तरीके से लोगों से वापस अनुमति भी लेनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चुनौतियां तो यहाँ पर ऐसी है कि लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को ही मतलब कंप्लीट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दूसरी चीजें तो उन्हें मिलने से ही रही। क्योंकि कई गांव में ऐसा कहा जा रहा है कि बिजली पहुंच गई है, लेकिन आज भी गांव के कुछ घरों में बिजली नहीं है, और कुछ बड़ी पोस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के पास से, हालांकि कहने का मेरा भावार्थ यह है, कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज भी चलाई थी उसको लेकर, कि एक सरपंच है उनके घर बिजली कनेक्शन जा रहा है, लेकिन जहां से कनेक्शन जा रहा है उसके वायर ऊपर से जा रहा है लेकिन नीचे वाले घर में बिजली नहीं है। तो ये भी एक तरह से देखा कि सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही है, या तो लोग उस सुविधाओं को लेने का तरीका नहीं जान पा रहा है, या फिर उनको सुविधाएं जो है वो नहीं दी जा रही है।
0: इस पूरी यात्रा में विनोद भाई आपने बताया कि आपने किस प्रकार से लोगों को जोड़ा है, मोहताना की जो परंपरा है, जो कुरीति है, उसको लेकर आपने अभियान अपने इलाके में चलाया है, आपने पुलिस और प्रशासन का भी साथ लिया है, लेकिन इस पूरे अभियानों के साथ आपने एक संविधान प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं, और आप एक फेलोशिप की आपने कई प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? आपको लगता है ये सारे प्रोजेक्ट निरंतरता में हैं, या इनको हम ये एक दिशा में चलने वाली प्रक्रिया है जिससे कुछ बदलाव होने का संभव है?
1: जो प्रोजेक्ट है वो निरंतर अगर चलाया जाए तो चल सकते हैं, और उन्हीं के जरिए बदलाव भी हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति के अपने टर्निंग पॉइंट आता है। जब तक मैं एक्टिव था, कुछ काम कर रहा था, तब तक यूथ भी जुड़ा हुआ था, वो भी करने के लिए प्रयासरत था। अभी मैं अगर अपनी जीवन की बात करूं तो मेरा पूरा जो शेड्यूल है पहले से अब चेंज हो चुका है। मुझे अपने समुदाय में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपनी खुद की एक अपनी शॉप है, सुबह स्कूल जाना, शॉप पे रहना, लोगों का ऑनलाइन कुछ काम है तो वो करना, और अगर मेरी अपनी लाइफ बदली है तो लोगों की अपनी लाइफ भी बदली है। और जो लोग पहले सोचते थे कि कुछ बदलाव होना चाहिए और कर रहे थे, तो वो जो बदलाव है वो मैं अभी सोच भी रहा हूँ, करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। पहले प्रोजेक्ट के रूप में हो रहे थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि सिस्टम में आना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ बदलाव होंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूँ, उनको बेसिक, मैं 8, 9, 10 के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं संविधान प्रचारक की जो कार्यशाला थी उसमें जाके आया, मुझे खुद को समझ में आया कि संविधान जो है वो बहुत सरल है और हमें आसानी से समझ में आ सकता है और हमारे जीवन के लिए है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया था कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के लिए है, मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे केवल यही लगता था कि संविधान में हमारे अपने अधिकार है और कर्तव्य है, और कर्तव्य का ये मतलब है कि मुझे किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और अधिकार का मतलब है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। लेकिन संविधान के अंदर तो मुझे कैसे जीना है उसका भी वर्णन है, और मैं किसके साथ कैसा व्यवहार करूँ ये भी वर्णन है। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर मेरा व्यवहार लोगों के साथ बदल रहा है तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी समझ में आएगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और अगर संविधान के मूल्यों को, वैल्यू को, लोग ऐसा नहीं कि संविधान के मूल्य इसीलिए उन्हें करना है, लेकिन अगर वो खुद उन चीजों को समझेंगे कि मुझे सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबको अगर कोई चीज मिल रही है बेनिफिट तो मुझे जितना मिल रहा है उसको भी उतना मिलना चाहिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे इसका समाधान किया जाए ताकि किसी को ठेस नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे। तो प्रोजेक्ट जो पहले थे वो हालांकि सीमित थे, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को अगर वापस भी स्टार्ट किया जा सके, लेकिन उनमें वैल्यूज को शामिल करके, वैल्यू के साथ साथ ये है कि लोग उसको महसूस कर सके, क्योंकि पहले केवल ये था कि चीजें खत्म हो रही है, संस्कृति खत्म हो रही है, इसलिए कार्यक्रम स्टार्ट किया सिंगिंग वाला, या फिर समाज में कुछ कुरीति है और वो बदलनी चाहिए इसीलिए कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन नहीं, लोगों को अपना जीवन एकदम सुंदर बने उसके लिए अगर ये सोच बना के अगर वापस ये सारी चीजें स्टार्ट की जा सकती है तो बदलाव होंगे। और ये मैं अपने से शुरुआत, जब से मैंने ये समझा है तब से मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, क्योंकि शॉप में रहता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ मेरा व्यवहार एक समान सा, या फिर वो लोग अगर दूसरे तरह का व्यवहार भी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जानकारी वैसे देना ताकि वो जो व्यक्ति दूसरा उसे नहीं दे पा रहा है उससे भी वो उससे व्यवहार में बातचीत करके उसको ले पाए, ताकि कुछ गलत ना हो, सब प्रेम भाव से समझ पाए।
0: तो आपकी आगे क्या यात्रा है? अब आप अपने जीवन में क्या देखते हैं? आप कैसे और इस बदलाव को परिपक्व करने, पल्लवित करने और इसको स्थायी करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं?
1: ट्राई करने के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी अपनी छोटी बच्ची है, अगस्त में उसके 3 साल पूरे होने वाले हैं, और मैंने खुद से भी मतलब सोचा कि एक छोटे बच्चे का जो मैसेज है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, वो और मैं हम दोनों मिलकर कैसे लोगों तक एक जो संविधान की जानकारी है, अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, और इस तरीके से हमारे अपनी स्वतंत्रता है, या फिर जो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता, या फिर हमारे समुदाय में भी जब किसी की

0: तो मुझे लगता है कि मैं अगर इसकी शुरुआत अभी कर दूं तो जो अभी तक नहीं समझ पाए वो लोग भी इन चीजों को समझ पाएंगे। और समझने का मतलब यही है कि अगर मेरे ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है तो मैं भी सीधा उस पर गुस्सा करूंगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, ऐसी चीजों के ऊपर भी मैं काम करने का सोच रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे टॉप है तो कैसे, मतलब ऐसी कुछ चीजें वहां पर रहे, क्योंकि विजिटिंग तो रहता ही है, तो बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं तो चीजों को देखकर भी उसको केवल पढ़ते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, ये चीजें करने का प्लान है। और अपनी खुद की वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल यूट्यूब, तो उसमें अपनी जो न्यूज चला रहा हूँ मैं, उसमें भी उन मूल्यों को शामिल करो ताकि समस्या के साथ मूल्य जाए, कौन से अधिकार का हमारे हनन हो रहा है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी समस्या है ये।
1: जी, कोटड़ा में बताते हैं कि कोटड़ा में कई सालों पहले सड़क भी नहीं पहुंचती थी, और कोटड़ा में आज का जो जनजीवन है वो अब विकास की जो मूलभूत संरचनाएं हैं वो उनका विकास हुआ है, कुछ विद्यालय भी बने होंगे, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बने होंगे, लेकिन फिर भी जो ये बुराइयां हैं ये सामाजिक चेंज और सामाजिक आंदोलन से ही होगा, और सामाजिक आंदोलन के लिए किसी एक व्यक्ति को ही आगे आना होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो बुराइयां हैं लगभग सभी समुदाय में वहाँ एक जैसी बुराइयां हैं, तो इसका क्या कारण है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो, और ये पंच पटेल जो है समाज के वो तो लेकर आगे क्यों नहीं आते।
0: जैसा कि मोहताड़े के ऊपर बदलाव करने के लिए मैंने इस पे जब रिसर्च किया तो देखा ये कि मोहताड़ा जो है वो शुरू करने के पीछे उद्देश्य अच्छा था, लेकिन समय के साथ इसका जो उद्देश्य है वो पूरा बदल चुका। केवल इतना ही था कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए वो बदले की भावना थी। और उस समय कुछ और, यानी कि मौत का मुआवजा यानी कि पैसे की बात नहीं थी, ताकि व्यवहार जो है वो बना रहे, और अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा मिले, इस उद्देश्य के साथ पहले का था। लेकिन वो समय के साथ बदल गया, अब केवल बदले की भावना रह गया। और अभी के जो पंच पटेल की बात करें तो उनका इतना ज्यादा बदलाव को लेकर नहीं है, लेकिन आज की जो युवा है वो इससे काफी प्रभावित है। प्रभावित होने का मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि नहीं बदल रही है, इसलिए वो अपना खुद का पैसा सेविंग करके अपना खुद का घर नहीं बना पा रहे, क्योंकि घर बनाएंगे कुछ घटना घटे उन्हें घर बार छोड़ के चला जाना पड़ेगा। और इसको लेकर हमारे कोटड़ा में भी कुछ जो युवाएं हैं उनका अपना ग्रुप बना के वो बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं। और अगर आबू रोड क्षेत्र की बात करो तो वहां पर भी ये चीजें प्रचलन में है, तो वहां पर भी वहां का जो आदिवासी ग्रुप है वो अपने खुद की अपनी टीमें बनाकर अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम भी कर रहा है, उनकी अपनी मंथली मीटिंग भी होती है, पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और अपनी संस्कृति भी बची रहे, साथ साथ में जो परंपराएं समाज को आगे बढ़ने से रोक रही उन्हें रोका जा सके। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एजुकेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकतर आदिवासी समुदाय के लोग गए हैं।
1: लेकिन एक बात तो है कि इस सबके बावजूद क्या जो नए कानून है या जो हमारे मुआवजे का कानून है या बीमा कंपनियों के से मुआवजा प्राप्त करने का जो कानून है, दुर्घटना बीमा का प्रावधान है, तो ये सब बदलते समय के साथ जो नई वित्तीय सेवाएं सरकार ने शुरू की हैं और एक व्यवस्था बनाई है, एक जिला न्यायालय बनाया है, जिला पंचायत बनाई है, तो क्या इस सरकार के नियमों को फॉलो करने की आदिवासी समाज तैयार है?
0: आदिवासी समाज तैयार है मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, अगर उनके साथ, आज की पीढ़ी ही नहीं बल्कि जो अभी का यूथ है या उनके माता पिता है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी अपनी शॉप है और स्टेशनरी भी है, तो दिन में करीबन 10-12 लोग रिपोर्ट के जो पेज होते वो खरीदने के लिए आते। इसका मतलब यह है कि अगर गाँव में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो मामला पुलिस तक जाना चाहिए, पुलिस तक जाने से उसका समाधान जल्दी हो सके, ये सोच लोगों में आई है, क्योंकि गांव से उसका निपटारा नहीं हो रहा है। और गांव से निपटारा नहीं हो रहा है ये भी है, प्लस गांव के लोग गांव की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो लोग भी अब चाहने लगे हैं कि समाधान जो है वो प्रशासन के पास जाए और उसी तरीके से हो, कानून के दायरे में रहकर हो।
1: एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे कि जो लिविंग की परंपरा है, इसके क्या ऐसे फायदे थे जो ये एक प्रचलन में आया कुछ समुदायों के बीच, और ये क्या सभी समुदाय में है या किसी व्यक्तिगत या किसी पर्टिकुलर समुदाय में ही ये परंपरा देखी गई है?
0: लिव इन रिलेशनशिप बाकी समुदाय का तो मैंने अध्ययन नहीं किया है।

0: लेकिन मेरे अपने आदिवासी समुदाय में और जहाँ मैं रहता हूँ और आबुरुड क्षेत्र की मैं बात करूँ तो पहले बहुत ज्यादा था कम उम्र का लिव इन रिलेशनशिप, अब भी जो है लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है लेकिन 18 या फिर उससे प्लस में। और इसके पीछे के जो कारण है वो ये भी है कि समुदाय के पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो उसकी जो शादी है वो तुरंत करवा सके, और इसीलिए कुछ समय तक लोग जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर जो लड़का होता है वो खुद ही अपने पैसे कमाता है और फिर पैसे इकट्ठे होने के बाद शादी होती है। और अगर कुछ शादी हो भी जाती है तो फिर उसकी ये भी वजह रहती है कि लड़का और लड़की साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले अगर वो रहते हैं तो उसके बाद शादी करनी है या नहीं करनी वो भी उनके माता पिता को समझ में आता है और लड़के लड़की उन्हें भी समझ में आता है कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं। जितना ये मैं समझ पाया हूँ ये अपना मेरा विचार है, लोगों का अपना अलग विचार हो सकता है, और मुझे लगता है कि मेरी इस बात से शायद मेरा अपना समुदाय वो ये भी सोच सकता है कि मैंने ऐसी क्यों बात की, तो मेरा अपना ये विचार है, मैं ये समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने देखा है। अगर किसी को ठेस पहुंचे हो तो इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ।
1: नहीं जी, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो भी अपनी तरीके से सोचने के लिए आजाद है, लेकिन बात यह है कि हमें सोचना होगा संविधान के दायरे में और समाज की बेहतरी के लिए और समुदाय की बेहतरी के लिए। तो अभी शिक्षा को लेकर या नौकरी को लेकर या सरकारी नौकरी को लेकर क्या एक चेतना विकसित हुई है आदिवासी समाज में, उदयपुर के इलाके की जो आदिवासी समाज है उसके अंदर?
0: जी बिल्कुल, जागरूकता आई है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनजीओ भी काम कर रही है जो कि केवल शिक्षा का नहीं समुदाय के बीच में जाकर भी। और रिसेंटली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी बात में यहाँ बांध बनने का जिक्र किया था और उसे रोकने के लिए यहाँ का समुदाय काफी विरोध कर रहा है। इसकी घोषणा जो है वो 2022 में हुई थी, 2026 हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन डैम बनने की शुरुआत अभी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध के पीछे यही है कि विस्थापित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते हैं ये। और मैं अपनी बात करूँ तो इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बनी रहे और सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, और वो ऐसे किया गया है कि जब घोषणा हुई थी तब भी किया गया और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। और सूचना के अधिकार के तहत ही लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसको बनाने को लेकर कहां कहां से अनुमति ली गई है और कौन से प्रावधान के तहत क्या मुआवजा मिलेगा या फिर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे चलने वाला है। ये जो सब बातें हैं वो सूचना के अधिकार के तहत जो डिपार्टमेंट है उनसे मांगी है लोगों ने। और सूचना के अधिकार को भी मैंने समझा तो मेरे साथ के कुछ युवा है वो भी समझ रहे, उनके खुद के नाम से RTA लगा रहे, और यही जो बात है वो एजुकेशन पर भी लागू होते है क्योंकि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने खुद के नाम से RTA लगा के कि कोटड़ा में आखिर शिक्षकों की जो कमी है या फिर स्कूल भवनों की कमी है वो क्यों, मतलब पूरी करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर अभी चर्चाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चा खुद सूचना के अधिकार को जानेगा तो वो अपने अधिकारों के लिए जवाब मांग सकता है, और जवाब मांगेगा तो उसे जवाब मिलेगा, और जवाब मिलेगा तो फिर उसे क्या करना है और कैसे अपनी बात को लोगों के बीच में रखना है ताकि लोगों की जागरूकता भी बढ़े, लोगों की एकता भी हो और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। प्रयास जारी है।
1: हाँ, कोशिश करने वाले की हमें और प्रयास जारी रहना चाहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपको फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, बहुत ही रुचिकर और आनंददायी बात चल रही है, हमको गहराई में समझने को मिल रहा है एक समुदाय एक क्षेत्र के बारे में और एक युवा जीवन के बारे में, एक जुनूनी के बारे में जिनका एक जुनून है कि वो अपने समुदाय को विकसित करना चाहते हैं और विकसित भारत 2047 के सपने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो हम से जानना चाहेंगे कि अब उनकी क्या कार्य योजना है और संगठन को तैयार करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं।
0: मेरे आगे की जो योजनाएं हैं वो संविधान को लेकर ज्यादा है क्योंकि संविधान के मूल्य लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए मेरी अपनी जो कोटला टाइम्स की टीम है मैं उसके साथ भी इस पे चर्चा कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में क्योंकि केवल एक कार्यशाला अटेंड करने से मुझे ये समझ में आया कि संविधान से ही मेरा जीवन है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ शायद मैं वहां नहीं होता, जितना मैं कर पा रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाता। और एक इंसान की जिंदगी जो अभी चल रही है उसमें संविधान का अपना रोल है, और वो रोल लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि संविधान है तब हम है, और तभी मैं पढ़ पा रहा हूँ, तभी मैं नौकरी जा पा रहा हूँ, तभी मैं गाड़ी में सफर कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुली हवा ले पा रहा हूँ। क्योंकि जब संविधान नहीं बना था तब की परिस्थितियाँ कुछ और थी और अब की परिस्थितियाँ कुछ और है। तो आगे का जो मेरा खास भविष्य में सोच रहा हूँ वो संविधान की अवेयरनेस को लेकर ही ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे अभी 32-33 ईयर्स चल रहे हैं, 33वें साल में मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया कि ये मेरे जीवन से है, तो वो लोगों को भी समझ में, लोगों को समझ में नहीं मतलब लोगों को एहसास हो, और वो मैं एहसास दिलाने के लिए युवाओं के साथ, गांव के लोगों के साथ फील्ड में, हालांकि जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन कैसे भी मुझे वो टाइम निकालना है। क्योंकि सप्ताह में अगर मैं 1-2 घंटे भी समुदाय के बीच जाता हूँ तो इससे यही होगा कि मैं उनके साथ बातचीत कर पाऊंगा और जान पाऊंगा। और मेरा तरीका ये नहीं है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि संविधान ने हमें ये सब कुछ दिया है, केवल मेरी नॉर्मल बातचीत में वो सब कुछ आए और लोग समझ पाए।
1: जी, चलते चलते आपसे विनोद जी जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा क्षेत्र है कोटड़ा का और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं आबू रोड पे, अभी आधारभूत संरचनाएं जो है उसके विकास की क्या स्थिति है, और सरकारों ने क्या सफलतापूर्वक अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को कर पाया है?
0: आधारभूत संरचनाएं तो जो गवर्नमेंट की कहे या फिर क्षेत्र की कहे, जो थी पहले वो बदल रही है, और गवर्नमेंट भी जो है वो अपना देखा जाए तो 100% देने का पूरा प्रयास कर रहा है। क्योंकि गांव के अंदर शिविरें हो रही है, और जो शिविरें है वो करीबन 3-6 महीनों में, और उनके अधिकारी जो है, चाहे सरपंच हो, पटवारी हो, विकास अधिकारी हो या तहसीलदार, SDM, सबका अपना रोल जो है वो गांव में, क्योंकि हर पंचायत में कैंप लगाकर लोगों तक सुविधाएं पहुंचे उस पर प्रयास चल रहे हैं, और लोग वंचित ना रहे उसके लिए उससे जुड़े जो लोग हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है, चाहे वो पटवारी हो या फिर उससे नीचे के जो अधिकारी हो उन्हें भी। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं सारी मिल पाए, और सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि कौन से दिन कैंप है, कौन से दिन क्या कुछ हो रहा है। पर सरकार का जो प्रयास है वो पूरा चल रहा है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है तो वो जागरूक युवाओं की बनती है, जिन तक मैसेज पहुंचता है कि सरकार की ये योजनाएं हैं और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है, वो युवा के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचे। तो और जितना मैं देख पा रहा हूँ तो बहुत कम युवा जो है वो इसमें प्रयास कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत कम युवा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे दूसरे युवा उसमें जुड़ेंगे, और जुड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो युवा नहीं जुड़े हैं उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसका लाभ कैसे लेना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि वही युवा एक पुरुष बन रहा है, अपना परिवार बना रहा है, क्योंकि उन्हें भी उन अधिकारों की जरूरत है, वो जानेगा तो फिर उसके जरिए लोगों तक भी पहुंचा सकता है।
1: जिम्मेदारी युवाओं की है, और ये आपकी फाइनल बात, ये हम लेते हैं आज का टेक अवे हमारे श्रोताओं के लिए, और ऐसे ही चुनौनी के साथ फिर मिलते रहेंगे। विनोद जी, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आम जन तक अपने विचार और अपनी बात आपने पहुंचाई, और एक विशेष समुदाय जिसके लिए संविधान ने भी विशेष प्रावधान किए हैं उनके साथ किए गए छोटे से विशेष प्रयासों पर की चर्चा, और ये आज का हमारा जुनून था। फिर मिलेंगे ऐसे ही साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुँचाने के लिए सरकार का जो मंशा है बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुँचाए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका हुनर जो टैलेंट है जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज एक मंच मिलेगा। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चे को जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो बच्चे करते हैं और माँ बाप तो खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप को कोई तंग नहीं करते और विद्यालय में आते हैं तो माँ बाप भी अपना गृह काम में लग जाते हैं। तो आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों के साथ हम रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था प्रधान भी सहयोग देते हैं। एक इशारा में आज राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू में पहुंचे। मोडू का बच्चों का आवाज़ बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में जाते हैं और बच्चों को एक मंच एक स्टेज देते हैं। बच्चे अपना हुनर को भी सबका सामने रखते हैं और इस कार्यक्रम को हमारा आसपास का गतिविधि जन जन तक पहुंचाते हैं। बहुत खुशी लग रहा है और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा सांस्कृतिक प्रभारी मैम को भी धन्यवाद देते हैं। सबको एकत्रित कि मैम अपना परिचय देंगे, बच्चों को थोड़ा वार्म अप हो जाएगा आपका आवाज़ सुनकर, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ, ओम शांति। मेरा नाम है शोभा ग्रासिया, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू से हूँ।
0: शोभा जी, आप कितने साल से इस स्कूल में?
1: मैं 8 साल से।
0: लगातार अपना घर से बच्चों को वो भी एक घर से समाज से आते हैं और बच्चों को अपना भाषा से प्रस्तुत करते हैं। तो पहला प्रस्तुति हम सुनेंगे एक प्रार्थना के रूप में और सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुबह आज तो सुबह बढ़ाएंगे, अभी तो बढ़ा दिए। प्रार्थना पहले करेंगे, इसका बाद दूसरा गीत करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करते तो प्रार्थना से शुरू करते हैं माँ सरस्वती से। और सुबह मैम बच्चों को वार्म अप कर दिए, पहले एक बार मैम आए थे हमारे रेडियो कार्यक्रम में, याद है?
1: जी जी, जी, जी।
0: अभी भी बच्चे को याद है, तो चलिए एक प्रार्थना सुनते हैं।

0: बच्चों को ताली चाहिए और इस तरह कार्यक्रम में बच्चे जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उनका आवाज ही उनका पहचान होता है, क्योंकि जब उनका आवाज सुनते हैं तो अपना नाम बताएंगे कौन सा क्लास में और कहाँ से।
1: चट्टी।
0: नाम क्या था?
1: आरती।
0: आरती, अरे वाह।
1: आठवीं कक्षा जयंती कुमारी, बसंती कुमारी, कक्षा आठ शोभा, कक्षा आठ सुमित्रा, कक्षा आठ ज्योत्सना, कक्षा सात कमला कुमारी, चट्टी दुर्गा कुमारी।
0: दुर्गा, कमला, सभी दोस्त को धन्यवाद देते हैं इस तरह तोतली तोतली आवाज में पहला प्रस्तुति दिया, लेकिन बहुत सुंदर रूप में स्वर और लय का साथ। शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, ग्रामांचल बच्चे, आदिवासी बच्चे, गरासिया बच्चे भी कम नहीं है, और सभी ऐसे शुद्धता शुद्ध मन से अपना प्रस्तुतियाँ देते तो बहुत अच्छा हो जाता। और हमारा मैम शोभा मैम इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, और हमारा और एक मैम भी है तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रस्तुति आवाज का दुनिया में सभी का आवाज जब सुनते हैं तो हमें खुशी होता है। जब इस तरह आकाशवाणी में बच्चे आते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो गांव का, शहर का और सभी का नाम रोशन होता है, विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आदिवासी गीत हो तो हमें कैसे लगेगा आदिवासी गीत में? तो मैम, आदिवासी गीत में बहुत मिठास होता है और शुद्धता होता है, भोलापन भी होता है। तो आप भी आदिवासी संस्कृति में आते, तो आदिवासी जो शुरू से बास करते उसको कहते आदिवासी। तो आदिवासी का ऊपर में क्या जानते हैं?
2: आदिवासी जो पूर्व से जो निवास करते हैं, जो कोई ऐसी भी जातियां हैं जो कहीं से आती है, किसी देश से आती है, लेकिन हम जो है वो पूर्व से यहीं पे है। हाँ, हमारे जो पूर्वज है उसके भी पूर्वज स्टेट से यही है, यही जो निवास है उनका निवास स्थान यही है।
1: इसलिए आदिवासी जब नाम सुनते पूरा गर्व महसूस करते हैं। हाँ। कोई भी बच्चा बोला मैं आदिवासी हूँ।
2: हाँ।
1: तो इसका आदि से जो शुरू से जो बात करते हैं।
2: जी, शुरू से हम जो निवास है वो आदिवासी है, जो लगभग जो 80% तो पहाड़ों क्षेत्रों में ही रहते हैं। और हमारा जो है ये पशु है, इनको पालन करते हैं यही है, और खेती बाड़ी करते हैं ये हमारी आजीविका है। अब थोड़ा शिक्षा की और बड़े हैं तो शिक्षा में भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो है मगरेज जो भी मिलता है उनको बेचा करते हैं, पशुओं को रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, ये आजीविका है।
1: तो क्योंकि आबू रोड आबू सिरोही जिला खासकर टीएसपी एरिया है।
2: हाँ।
1: और सभी आदिवासी बच्चे बहुत नामांकन में वृद्धि होता है।
2: हाँ।
1: तो और एक आदिवासी गीत प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए वेरी गुड, शुरू हो जाए बच्चे, रेडी?

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदिवासी अंचल में जो जाते हैं, आदिवासी जो गीत में जो भजन में जो मिठास है, जो शुद्धता देखने को मिलता है, तो आज बच्चे मोड़ू का बच्चे भी कम नहीं है, सब तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

कार्यक्रम का अगला कड़ी में बच्चों को पुनः स्वागत करते हैं। एक मंच के लिए जो तरसते हैं, आज वो मंच मिल रहा है। आज तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम बच्चों का, आज नो बैग डे जैसे कोई पढ़ाई नहीं, पूरा मनोरंजन। उधर भी गीत चल रहा है, इधर भी नाच चल रहा है और इधर गीत चल रहा है। तो सभी भागीदारी को धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति के लिए रेडी शुरू।

0: सही में बेटी तो दो कुल को उधार करती है, एक कुछ कुल को उधार कर देती है। बेटी एक पराया धन नहीं है, बेटी सबके लिए धन है, मान है, धन है, तन है। तो बेटी पराया नहीं है और अपना है। जहाँ बेटी यहाँ रहेंगे वहाँ तो साफ स्वच्छता, परिवेश, पर्यावरण सब कुछ मिलता है, क्यों बेटी के पास इतना शक्ति है, क्योंकि शिव शक्ति कहते हैं बेटी को। क्या कहते हैं? शिव शक्ति, शिव का शक्तियाँ है ना। बेटी हमारा गुड़िया बहुत परिया है और सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद। ये था राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय का नन्हे मुन्ने बच्चों का बेटियों का ऊपर में एक कविता जो कि सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और अपना मन का बात गीत के माध्यम से बोलते हैं। तो ये ग्रुप कम नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सभी बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई मैडम बनेंगे, है ना। क्या बनेगी तुम?
1: पुलिस।
0: देखो पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना है, कोई चोरी करेगा तो उसको जेल दंड दे देंगे, है ना। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

हम बच्चों का गीत सुन रहे थे बेटी का, ऊपर में बेटी सभी को उद्धार करती है और घर का रोशनी बढ़ाती है। एक प्रेरणादायी गीत सुनेंगे तो हमारा सभी गुड़िया उपस्थित है एक प्रेरणादायी गीत के लिए, रेडी हो रहे सेम ग्रुप? ओके।

इतना सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है। इस तरह बच्चे को जो मंच का आवश्यकता था आज वो मंच मिल गया, जिसका चलते एक का बाद एक पूरा गाड़ी चल रहा है और सजा रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया। एक एक फूल को लेकर गुलदस्ता बनता है, तो एक एक आवाज को लेकर, एक एक गीत को लेकर एक आवाज का दुनिया में आवाज सुन पा रहे, हमें बहुत खुशी है। तो इस तरह बच्चे जब सच्चे मन से गाते हैं तो उनका माँ बाप जब सुनते हैं, उनका दोस्त लोग जो सुनते हैं, तो उनको खुशी लगता है। ये हमारा विद्यालय का आवाज है, हमारा गुड़िया का आवाज है, और एक आवाज में ही उनको खुशी मिलता है।

0: इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सुनेंगे बच्चों का तुतल तुतले आवाज से। तो हमारा साथ क्या नाम बोले?
1: शोभा
0: शोभा
1: बसंती
0: बसंती और शोभा इस गीत को प्रस्तुत करेंगे।
1: दया।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: चलिए कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और कविता भी सुनेंगे, लेकिन पहले कविता सुन लेते हैं। कविता सुनेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा हमारा गुड्डा आया है तो अपना प्रस्तुति देने के लिए, बहुत खुशी लग रहा है। तो ए सिंगल प्रस्तुति के लिए नाम बताएंगे?
1: अमित।
0: अमित
1: जी।
0: और कौन सा क्लास?
1: सातवीं।
0: और बड़ा होकर क्या बनेगा अमित? डॉक्टर, इंजीनियर ना मास्टर?
1: टीचर।
0: टीचर बनेंगे, बहुत अच्छा। तो अमित के लिए धन्यवाद देते हैं और छोटा सा प्रस्तुति देने के लिए आया है, तो सुनाएंगे क्या कविता? देखिए सुनाओ।
1: रणबीर चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराल था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ियावा को पाला था, गिरता ना कभी चेतक रहे तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा था हरे मस्तक आसमान पर घोड़ा था, जो तने कवा से बागली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा के पुतले फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल निकलाया ढालों में उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह ढालों में चरपट दौड़ा करवालों में, यह ही रहा अभियान नहीं वह वही रहा वह नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं इस अरे मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, वीर का राल बर्ज में बादल सा अरियो की सेना की गहर गया, बाला की गया गिरा निसंग यह टापो से खन गया, अंग वीरे समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग गया।
0: चेतक नाम सुनते हैं तो कितना खुशी लगता है, चेतक का वीरता, चेतक का पूरा साहस। मैम अपना परिचय दीजिए, और खासकर चेतक नाम सुनते तो राजस्थान का जो चेतक राणा प्रताप का चेतक घोड़ा, और चेतक का जो वीरता जिसका साहस जो प्रभु का मालिक थे उसका बारे में थोड़ा बताएंगे, पहले अपना श्रोता मित्र को और हमारा बच्चों को।
2: चेतक हैं जो महाराणा प्रताप हमारे जो थे मेवाड़ के जो राणा, उनके जो घोड़े का नाम है चेतक, उनकी वीरता, उन्होंने अंतिम सांस तक अपना साथ अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, उनकी टांग कट गई फिर भी उन्होंने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, और इसीलिए यहाँ उनकी साहस और वीरता की ये जो कहानी है कक्षा 6 की है, और चेतक की वीरता इसके बारे में बालक ने बताया कि चेतक जो कैसा था उसकी वीरता के बारे में उसने छोटी सी कविता सुनाई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अंतिम प्रस्तुति देंगे शोभा वासंती एंड पार्टी, और ये कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं, और सभी ने अपना बात को रखें, ये कम बात नहीं है। तो चलिए शोभा एंड पार्टी को स्वागत करते हैं, और सभी बच्चे इनको साथ देंगे, ये पहले करेंगे शोभा और वासंती, इसका बाद बच्चे साथ में करेंगे, सभी साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं, और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज़।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भारत का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम जा रहे हैं और बच्चे इस तरह देशभक्ति में, हर बच्चा एक देवी का प्रतिमा है। मैंने पहले भी बोला था बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं और बच्चे देवी का प्रतिमा होते हैं, क्योंकि भारत का जो मिट्टी है, भारत देश महान है, इसलिए सभी देश से भारत हमारा श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, क्यों भारत माता कहते हैं। कोई भी देश को माता शब्द नहीं बोलते, किन्तु माँ का प्यार, माँ का ममता, माँ का त्याग कभी भूल नहीं पाते, इसलिए भारत हमारा सबसे श्रेष्ठ है। और खुशी लग रहा है सभी इसका आवाज़ लिए हमारा, और एक मैम अपना खाली नाम बताएंगे और कौन सा विषय पढ़ाते।
1: मेरा नाम रवीना मंडावरिया है, मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ और मैं मोडू स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ।
0: मैम पढ़ाने में आपको खुशी मिलता है ना?
1: हाँ, पढ़ाने में खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है।
0: बहुत खुशी मिलती है। बच्चे मैम के लिए ताली बजाओ, क्योंकि खुशी मिलना सबसे बड़ी बात है। पैसा देने से भी खुशी नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलता है, क्योंकि कच्चा मिट्टी होकर बच्चे आते हैं और उसको मूर्ति बना देते हैं, जैसे रूप चाहेंगे, जैसे हम उनको बनाना चाहेंगे, जिस तरह उनका विशेषता गुण चरित्र बनाना चाहेंगे मैम बना देंगे। और इसलिए तो बच्चे स्कूल में आते पढ़ने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए। पढ़ाई का महत्व तब होता है जब हम चरित्रवान बनेंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे गीत के माध्यम से आप बच्चे सब सुनाएं, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर बच्चों का साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन द्वारा प्रस्तुतिकरण, जो कि जैसे मैंने सुबह मैम को बताया भाई आप थोड़ा शुरुआत कर दो, बच्चे आपका आवाज़ को देख कर ही उनका आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे और एक का बाद एक प्रस्तुति दिए। तो कैसे लगा सुबह मैम?
2: बहुत अच्छा लगा, आप आए, हमको हमारे बच्चों को मौका मिला कुछ गाने का, कुछ प्रस्तुति देने का, अपने मन के अंदर जो है उनको अभिव्यक्त करने का, अच्छा लगा। और आते रहना और सीखेंगे बच्चे हमारे, और कुछ आपको सुनाएंगे अगली बार।
0: धन्यवाद, तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।
3: अभी बजे हैं शाम के 8, स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें। शाम

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज बहुत लंबे अरसे के बाद हाजिर हूं आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है मन की आंखों से। श्रोताओं, आप सब जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे साथियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कोई खास मुकाम हासिल किया है और आज उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है किसी न किसी रूप में। साथ ही साथ वो अपने तरीके से समाज को भी जागृत करने का, प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक साथी देश की राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनकी खास बात यह है कि ये भारत के पहले ऐसे दृष्टिबाधित हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। तो कौन है ऐसे साथी, चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। मोहम्मद कैश सर का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया।
0: कैश सर, मैं चाहूंगा कि अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आप हमारे सुनने वालों को बताएं, कैसे आप विजुअली चैलेंज्ड हुए और कहां से आपकी जीवन की यादें शुरू होती हैं।
1: जी, जब मैं 2 साल का था, ऐसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि उन दिनों मेरे बॉडी में जो खसरा या इस तरह का जो बातें, एक डिजीज होती हैं जो दाने निकल आते हैं, वो ऐसा हो गया था। और उस जैसे उसका जो दाना है वो बॉडी के अलावा आंखों में भी, उनका कहना कि हो गया था। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है विजन का वो शुरू हुआ मेरा। और जब धीरे धीरे स्कूल का समय आया, पढ़ने का समय आया, तो फिर हम लोग गांव से थे तो शुरू किया कि ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे बच्चे को कहाँ पढ़ाया जाए। इस खोज में माता पिता, जैसे सभी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए इलाज के साथ साथ आगे जीवन कैसा रहे उसकी खोज करते हैं, इस तरह खोज करते हुए गांव से दिल्ली की तरफ आए और अपना कामकाज भी प्रारंभ किया और मेरे इलाज के लिए भी ध्यान दिया और साथ में पढ़ाया कैसे जाए, कहाँ ऐसे बच्चों का स्कूल होता वो ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते हुए इलाज होते हुए मुझे बताया गया कि पेरेंट्स को कि मुझे लेकर के आर के पुरम 5 में नेशनल असिस्टेंट फॉर द ब्लाइंड के नाम से स्कूल है, जो कई साथी इस नाम से अवगत होंगे, दिल्ली में है।
0: जी, आर के पुरम में है ना। जी जी,
1: तो यहाँ पे जाके मिले, बताया ये सारी बातें कि ऐसे दिक्कत है। तो वहाँ पे जो टीचर्स मिले उन्होंने बहुत अच्छा से हमारे पेरेंट्स का साथ दिया और बताया कि पॉसिबल है इनका एडमिशन, लेकिन कुछ कुछ कागजात चाहिए। तो ये सारी दिक्कत जब हो गई तो कागजात के लिए फिर सोचा गया कि आप कागजात में क्या क्या चाहिए, तो जो भी जरूरत होती है एडमिशन के लिए वो सब लेके बुलाया गया। और फिर मुझे वहाँ पे एक प्रैप स्कूल चलता है, नैप के अंदर कई सारी एक्टिविटीज अलग अलग डिफरेंट टाइप की है, जो नैप से कनेक्टेड होंगे या जो नहीं भी है तो ये बताएंगे कि यहाँ पे प्रैप स्कूल है। फिर यहाँ पे ब्रेल या शुरुआत कह सकते हैं स्कूल का होता है बच्चों का, उससे होते हुए बच्चे दूसरे जनरल स्कूल जो डीपीएस है, स्प्रिंडल्स है, सरस्वती बाल मंदिर है, ऐसे स्कूलों में भी जाते हैं। और फिर जब स्कूल से लौट के आते हैं तो फिर शाम की क्लास होती है, जैसे ट्यूशन हम घरों में बच्चे जाते हैं वैसे 2 बजे से 7:30 तक या 6:30 तक शाम की क्लास होती है, होमवर्क के किया जाता है। तो वहाँ पे एडमिशन हो गया और वहाँ पे रहते हुए ब्रेल सीखा मैंने, ब्रेल के अलावा जो भी टेलर फ्रेम है या इस लाइन के बच्चे जो भी।
0: कौन से साल में एडमिशन हुआ आपका कैश सर?
1: मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि काफी समय में रहा हूँ गांव में भी। ये एक और बात इम्पोर्टेंट जो मिस हो रहा था, जो अभी ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि गांव में रहते हुए मैंने मदरसे जो बोला है कि मुस्लिम बच्चा मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसे मुझे भी मौका मिला मदरसे में पढ़ने
0: का, तालीम लेते हैं जी,
1: रहा वहाँ का। और उस विषय पे भी लास्ट में जिक्र करूंगा उस मदरसे को, अभी शुरू में बता दिया और लास्ट क्या हुआ वो करूंगा आगे। तो मदरसे में पढ़ने का मिला, तो लेकिन मदरसे में पढ़ने समय मेरे चाचा जो हैं वो छोटे अबू बोलते हैं हम लोग, वो खुद इलाहाबाद में, तो उन्होंने देखा कि इनको आंखों की दिक्कत है और कुरान पढ़ना या याद करना या ऐसे इस लाइन में थोड़ा जीवन तकलीफ होगा डिसेबल कारण, तो उन्होंने किया कि मदरसे से स्कूल की तरफ भेजा जाए।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद ही स्कूल शुरू हुआ ढूंढना और ये दिल्ली आना। तो जो लेट हो गया, मैं नैब में, मुझे जो अंदाजा है कि 97 या 98 में मैं नैब के तरफ आया था, ऐसा मेरे कुछ है, मतलब एग्जैक्ट सन 95 के बाद ही आया हूँ मैं नैब के अंदर, या वो 96 हो सकता है 97 हो सकता है।
0: जी जी जी,
1: तो इन दोनों नैब में जब एडमिशन हो गया तो वहाँ पे प्रैप क्लास में कुछ दिन पढ़े एक साल के आसपास, जिसका टारगेट था कि ब्रेल सिखा देना, और एज ज्यादा थी, छोटे बच्चे तो नहीं थे उन दिनों, लेकिन जब ऐसे बच्चे लेट विजुअली इम्पेयर्ड या लेट एडमिशन होता है तो उनको तैयारी करके, और जैसे पांचवी का तैयारी कर दिया, छठी का तैयारी करा दिया, और उनको डायरेक्ट स्कूल में जो दूसरे स्कूल होते हैं जिसमें सुबह जाते हैं उस स्कूल में जाके एडमिशन करा दिया जाता है, ये नैब का टारगेट होता है। तो उसके बाद मेरा जो एडमिशन हुआ नैब में एक साल रहने के बाद, वो उसका नाम था सरस्वती मंदिर, और उसी को ही सरस्वती लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आर के पुर 6 में हुआ करता था।
0: अच्छा।
1: मैंने पांचवी क्लास और छठी क्लास कंप्लीट किया रेगुलर
0: जी।
1: उसके बाद कहा गया कि अभी भी जो उम्र है वो ज्यादा हो रहा है, पांचवी छठी के लायक नहीं है अभी भी उम्र। फिर देखा कि आप क्या कर सकते हैं, तो नैब ने एक और शुरुआत किया था उन्हीं दिनों, ये 2000 की बातें हैं, ये NIOS जो होता है, नेशनल ओपन स्कूल, अगर सबने आपने सुना हो
0: जी,
1: तो वहाँ पे जिनका एज ज्यादा हो या जिसकी पढ़ाई बीच में रुक गई हो फिर करना चाहे, ऐसे बच्चों का या ऐसे कैंडिडेट वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और अपनी 12वीं की पढ़ाई को करते हैं। तो वहाँ टीचर मेरे बोले कि आपका उम्र ज्यादा हो रहा है, तो आप बेहतर है कि आगे दिक्कत रहेगा तो आप NIOS को ज्वाइन कीजिए। आप फिर मेरा ट्रेनिंग हुआ रेगुलर स्कूल से 2003 में NIOS में, जो नैब में ही, और वो 10वीं 12वीं करने के बाद फिर आगे जैसे और बच्चे या अपने जॉब के तरफ या आगे डिग्री करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ फोन किया, तो मेरे माइंड में था कि मुझे साथ में पढ़ाई भी होना चाहिए और जॉब भी करना है। तो दो कारण, तो एज छोटे बच्चों वाली नहीं थी पहला नंबर, दूसरा कि घर की भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम रेगुलर पढ़ाई करें या फिर जॉब ढूंढें। तो उसी वजह से हमने नैब को भी एक रिक्वेस्ट दिया कि हम अगर जब नैब के स्टूडेंट रहते हुए, जैसे मैंने बोला कि NIOS के पढ़ाई किया नैब से या बाहर स्कूल पांचवी छठी किया, तो उन्हीं दिनों रहते हुए कोर्स भी मैं साथ साथ करता था गर्मी की छुट्टी में
0: जी,
1: कोर्स सिखाता
0: जी
1: समर वैकेशन वाला, उसको सीख करके फिर मैं नैब को मैंने अप्रोच किया जब 2005 में 12वीं क्लियर NIOS से, तो मैंने नैब को ही कोशिश किया कि नैब में ही मुझे काम करने का कुछ मौका मिले, जिससे हमें कॉलेज का फीस या और भी चीजें जो है वो हो सके। अच्छा। तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, इसके अलावा मेरा एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका मिला, मिरांडा हाउस कॉलेज है
0: जी,
1: जिस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकली थी।
0: अच्छा।
1: पोस्ट के लिए मैंने भी अप्लाई किया और भी मेरे साथी थे, और वहाँ पे 2006 के अंदर मेरा ऑफर लेटर मुझे

0: मौका मिला। एक नवंबर को पांडा हाउस को ज्वाइन किया मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन कॉन्टेक्ट बेसिस पे।
1: जी
0: यहाँ से जीवन का शुरुआत जॉब की तरफ हुआ और मिरांडा में रहते हुए मैंने एडमिशन ले लिया था 2005 में एसओ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है।
1: जी
0: जॉब करते हुए वहाँ से पढ़ाई करते हैं या उसमें भी यही बात है जैसे एनआईएस में बताया कि जिनकी उम्र ज्यादा हो जाए या आप काम भी कर रहे हैं और पढ़ना भी चाहते हैं ऐसे कैंडिडेट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आज भी चल रहा है और काफी समय से चल रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का भी। तो वहाँ मौका तो अच्छा रास्ता रहा कि आप कॉलेज भी करना है और जॉब भी मिल गया। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था और 6 महीने के लिए मिला था तो जो मेरी मेहनत थी काम का लगन था उसको देखते हुए उन्होंने मुझे कंटिन्यू 1.5 साल करने को कंटिन्यू रखा उन्होंने। और उसके बाद फिर मिरांडा मौका मिला कि एक एड आया था और उन दिनों लाइब्रेरी अटेंडेंट का
1: जी
0: तो रिसोर्स पर्सन पे रहते हुए मिरांडा में 1 नवंबर से काम किया मैंने। बच्चों को कंप्यूटर सिखाया वहाँ पे ब्रेल की किताबें कुछ 20-25 रखी हुई थी वो जो तरीका नहीं रखना चाहिए था ब्रेल का दबा के एक दूसरे के ऊपर रख करके रखा हुआ था उसको सिस्टम को ठीक किया मैंने। तो जैसे एंडिंग पोजीशन में लाइब्रेरी का नियम है कि इस तरह रहेगी जाके ताकि बच्चों को दिख सके कि कौन सी किताब है ये नाम दिख सके उसका नंबर दिख सके ऐसे ही मैंने भी ब्रेल की किताबों को लगाया और वो सब काम मुझे लगता है कि उन दिनों की जो प्रिंसिपल वहाँ पे रही उनको अच्छा लगा मेरा ये सब सिस्टम का तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लाइब्रेरी स्टाफ बना करके आपको हम कंटिन्यू परमानेंट करते हैं।
1: वाह क्या बात।
0: आप परमानेंट हुए वहाँ पे 2 जून 2008 में इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। अच्छा तो ये तो मेरा इस तरह करते हुए मिरांडा में कंटिन्यू रहे। फिर श्यामा प्रसाद गए वहाँ पे 5 महीना 8 दिन रहे। उसके बाद 2017 में लक्ष्मीबाई कॉलेज में आ गए। आज के डेट में हम यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए लेटर वगैरह या ऑफिस का नियम क्या होता है वो सब फॉलो करवाना देखना और साथ में कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर लैब जो यहाँ पे है वो मुझे क्योंकि मिरांडा की एक आदत था कि मुझे कंप्यूटर सिखाना है वो मेरे अंदर नहीं रहा था तो मैंने यहाँ भी बच्चों को मैंने प्रिंसिपल से बात किया कि लैब इसको चालू रहना चाहिए। किसी वजह से 2020 के बाद थोड़ा बंद हो गया था तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करा दिया और आज भी बीच बीच में एक क्लास एवरीडे बच्चों की ले लेता हूँ यहाँ पे और जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो सिखा देता हूँ। मेन लक्ष्य यही है कि मेरा कि बच्चे जब ग्रेजुएशन करके निकले तो वो बच्चे किसी पे निर्भर ना रहे कि मेरा कोई एप्लीकेशन लिख दे या वो जब जॉब में जाए तो उनको कंप्यूटर चलाने का कोई कमी ना रहे जीवन में। इस बात को बच्चों को मैं समझाता हूँ और बच्चे भी बहुत अच्छे से आके सीखते हैं। तो ये तो जॉब प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं अपने की तरफ जहाँ से मेरा परिचय शुरू हुआ। तो के अंदर
1: यहाँ पे लेकिन एक सवाल था मेरा कि बेसिकली आप इलाहाबाद प्रयागराज से हैं?
0: नहीं बेसिकली मेरा जो गांव है बिहार में दरभंगा जिला है।
1: अच्छा बिहार से हैं आप।
0: हाँ
1: वहाँ से निकल करके आज दिल्ली की शान बने हुए हैं।
0: हाँ ये ऊपर वाले का कर्म है कि उन्होंने मुझे चुना और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे चुना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ धन्यवाद करता हूँ ऊपर मालिक का जो मुझे मौका दिया हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे अपने ईमानदारी से और अपनी मेहनत जो भी मिले जीवन में काम उसको कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा इसी तरह से।
1: बहुत कम तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है कैंसर या थोड़ा बहुत दिखाई देता है?
0: मैं लो विजन हूँ मेरा 2% लॉस विजन है और 10% है तो मैं लो विजन में आता हूँ।
1: अच्छा अब ये बताइए कि ये ताइक्वांडो की शुरुआत कैसे हुई या फिर पहले किसी और खेल की तरफ गए थे फिर इधर आए ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई?
0: वो शुरू हुई कि जैसा मैंने बताया कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले माता पिता ढूंढते थे कि कहाँ एडमिशन होना चाहिए। इसी सिलसिले में एक मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर का नाम अभी लेना चाहूंगा और वो डॉक्टर सुधा रानी कुंडू।
1: अच्छा
0: उनसे हुआ मुनीर का DDA में मेरे माता पिता से और उन्होंने देखा कि इस तरह की इनको दिक्कत है तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और शी इज राइट नाउ 89 ईयर ओल्ड। उन्होंने बुलाते जैसे छोटे बच्चों को खा ABCD सिखाते हैं ऐसा शुरुआत किया तो उन्हीं को मैं आज भी पहले टीचर जीवन का मानता हूँ।
1: क्या बात
0: नहीं है वो मेरे लेकिन पहले टीचर
1: वही बिल्कुल
0: अपने घर पे बुलाया और जब मैं उनके घर पे शाम को 4 बजे के करीब 3 बजे के करीब बुलाती थी शी इज ऑल्सो डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर टीवी के डॉक्टर रही तो घर पे रहती थी मुझे बुलाया कि आप आना है यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी और उन्होंने पढ़ाया मुझे सिखाया। उन्होंने ही खोज करी थी मतलब नैप की खोज मतलब मेरे लिए के लिए नैप का खोज किया कि इस बच्चे को पढ़ा तो दिया इस घर में रख करके, लेकिन इसको क्लास कैसे आगे बढ़े, ये बात उनको था। और फिर उन्होंने ढूंढा, इधर उधर गए तो नैब उनको नेशनल एक्शन फॉर द ब्लाइंड का जानकारी मिला, और मेरे पेरेंट्स साथ वो जाकर के उन्होंने एडमिशन कराया मेरा वहाँ। तो मैं उनके घर पे जाता था शाम को ट्यूशन पढ़ने, तो मुनीर का गांव में मैं रहता था, और मुनीर का डीडीए जाने में बीच में एक ग्राउंड होता था, है अभी भी, उसमें एक ताइक्वांडो की क्लास होती थी।
1: अच्छा, साइटेड बच्चों की होती होगी वो? तो
0: साइटेड बच्चों की होती थी वो,
1: ठीक है।
0: तो मैं घर से निकल के जब जाता था उनके घर पे, तो मैं उनके घर पे जाने में लेट इसी वजह से हो जाता था कि मैं उस क्लास को देखने लग जाता था थोड़ी देर के लिए रुक कर।
1: आपका ध्यान मतलब एक तरह से उस खेल से हट नहीं पाता था?
0: हट नहीं पाता था, और मैं वहाँ लेट होता था, ये सच्चाई है। तो और वो मुझे पसंद आता था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे लात मार रहे हैं, ऐसे गुस्सा मार रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं मैं देखता रहता था। लेकिन वहाँ अंदर जाना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसी से पूछा या मैं जाऊँ कैसे जाऊँ, मैं मन में चलता था छोटे बच्चे के जैसे हिसाब में। तो धीरे धीरे वो चीजें ना जहन में रहा, और जब मेरा नैब में एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के बाद नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल ने एक ताइक्वांडो का शुरुआत 98 में किया था बच्चों को सिखाने के लिए अपने।
1: अच्छा,
0: अब जब मुझे पता चला, जब मेरा एडमिशन मैंने बताया कि 97 या 98 में हुआ था, उन दिनों जब मुझे पता चला कि यहाँ पे क्लास शुरू हो गया,
1: आपको वो क्लास का जो दृश्य है वो याद आ गया एकदम फिर से?
0: और मुझे याद आया, मुझे मैंने सोचा अब करना ही करना है इसको, कैसे भी करना है। तो वहाँ पे ट्रैप में रहते हुए या इस तरह से स्कूल जाते हुए, वहाँ पे जाकर के मैंने सर से मिला, उनका भी मेरे गुरु हैं, जिनका नाम श्री परमजीत सिंह है।
1: परमजीत सिंह, अच्छा,
0: जो पहले मेरे ताइक्वांडो के टीचर नैब में मिले।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: उनसे शुरू किया और उन्होंने बेसिक पूरा कराया, कलर बेल्ट सारा सिखाया उन्होंने, कलर बेल्ट जैसे स्कूल होता है पढ़ाई के लाइन में, और उसके बाद कॉलेज जाते हैं तो डिग्री मिलता है, इस तरह ताइक्वांडो के लाइन में कलर बेल्ट होते हैं, जिसको आप क्लास बोल सकते हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 ऐसा बोल सकते हैं, मान सकते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसको क्लास वहाँ कलर बेल्ट बोलते हैं। जैसे मैं अगर मैं पहचान बताऊँ तो, अगर शुरू कर रहा हूँ तो व्हाइट बेल्ट हूँ, फिर टेस्ट दूंगा तो येलो, ऐसे बेल्ट बदलते रहते हैं।
1: अच्छा, यानी एक तरह से आपके आपके स्टेप बदलते रहते हैं, आपकी जो लर्निंग है बदलती रहती है।
0: तो ब्लैक बेल्ट से पहले रेड एंड ब्लैक बेल्ट होता है, ये तो मैंने नैब से और जो मैंने सर का नाम लिया श्री परमजीत सिंह सर, उनसे कर लिया था, और इतने होते होते मैंने 12वीं भी पास कर ली नैब से। तो 12वीं के बाद तो नैब में आ नहीं सकता था, क्योंकि दो कारण थे, मतलब वैसे तो परमिशन लेता तो मुझे नैब अलाउ कर देते, लेकिन मेरी समस्या उन दिनों जॉब लग गई थी मिरांडा में, तो नॉर्थ कैंपस आना होता था मुनिरका से, पूरे दिन ड्यूटी, या फिर नैब की तरफ नहीं जा पाता था। फिर मुझे लगा कम्प्लीट करना है, क्योंकि वो तो मेरा दिल का
1: एक ड्रीम था, वो तो आपका सपना था वो तो।
0: फिर मैंने खोज किया आप कहाँ से करूँ आगे, तो फिर दौरान ढूंढते हुए मैं पहुंच गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि मुनिरका में मैं रहता था, और वहां पे किसी ने बोला कि वहां पे यूनिवर्सिटी में ताइक्वांडो होता है शाम के टाइम। तो मैं मिरांडा से ड्यूटी के शाम को जब 7 बजे पहुंचता था या 6:30, कोशिश करता था जल्दी से जल्दी जाऊं वहां तक, तो वहां जाके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक सर से फिर मुलाकात हुई, उनका नाम है दौलत सिंह बिस्ट सर।
1: अच्छा, दौलत सिंह जी सर जी,
0: उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने अपनी बात बताई कि मैं यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ नैब का, और ऐसे ऐसे मुझे आंखों में तकलीफ है और मैं आता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो ऐसे बच्चों को नहीं सिखाए कभी, और ना हम जानते हैं ना तरीका जानते हैं, तो दिक्कत तो मुझे तो पता नहीं क्या
1: हर जगह की जो समस्या है, हर जगह की
0: प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो मैंने उनको बोला जो मैंने सीख रखा है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना आप कराएंगे उतनी मेहनत मैं करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आना 1-2 दिन के बाद और फिर हम देखेंगे। तो मैंने 1-2 दिन के बाद जब बुलाया उन्होंने, तो मेरी और इच्छा जगी कि जो पुरानी प्रैक्टिस उसको मैं करके जाऊंगा, और वहां से निकलना नहीं है, वहां से एंट्री लेना मुझे कैसे भी करके। वहां के प्रैक्टिस करी, जो पुराना भूल गया था वो भी सारा याद किया, और पहुंच गया उनका टेस्ट देने के लिए, जो ट्रायल टेस्ट था कि उनके यहाँ एडमिशन में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो उन्होंने देखने के बाद मना नहीं कर पाए, पता नहीं क्या उनको लगा या मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा,
1: वो इम्प्रेस हो गए ना फिर उसके बाद।
0: हाँ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया, और फिर जाके मैंने ब्लैक बेल्ट का जो पहला टेस्ट होता है उन्होंने ट्राई किया। ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिल्ली ताइक्वांडो के अंदर एसोसिएशन है, दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन, उनके अंडर में करना होता है। ये कनेक्टेड है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से, और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कनेक्टेड है वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो कि साउथ कोरिया में हेडक्वार्टर है। तो इस हुआ है, वहां से ब्लैक बेल्ट की डिग्री लेनी होती है साउथ कोरिया से। तो जब मैं सर हैं जवाहरलाल नेहरू में जो सर मिले दौलत सिंह बिस्ट सर, उन्होंने कॉन्टेक्ट, और दिल्ली ताइक्वांडो के जनरल सेक्रेटरी है हर्ष प्रिया सर, एडवोकेट हैं वो, तो बात किया कि मेरे पास एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका मैं ब्लैक बेल्ट का टेस्ट दिलाना चाहता हूँ, उनको आंखों में तकलीफ है। उनको लगा कि पहला टेस्ट हो रहा है, पता नहीं कैसा टेस्ट करेगा। अच्छा, टेस्ट का नियम यह है कि एक ग्रुप में टेस्ट होता है, परफॉर्म करना होता है, और उस ग्रुप का कमांड मिलता है और एक साथ परफॉर्मेंस चल रहा होता है। जैसे मान लो हम पंच कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो एक जैसा सब चाहिए। अगर कोई डिफरेंट किया तो दूसरे बच्चे भी शायद देख के उसको गलत करने लगे। तो मेरे जो टेंशन हो रही थी इस बात की कि अगर ये बीच में खड़ा हो गया जो जीत कर रहा है कि मैं सबके साथ ही दूंगा, अगर इसने गलत किया तो इसकी वजह से दूसरे का ना नुकसान हो जाए। तो बोला कि हर्षप्रिया सर के द्वारा, जनरल सेक्रेटरी ताइक्वांडो के द्वारा दिल्ली के, कि इनको ऐसा करता है अलग से टेस्ट ले लेंगे। मैंने सर मुझे नहीं करना है, मुझे तो साथ ही करना है, जैसा आप सबका ले रहे हो वैसे करना,
1: वैसे करो, सही है,
0: अलग से नहीं चाहिए कुछ भी। तो फिर जैसा भी उन्होंने डिसीजन लिया, सबने मिलकर के मेरा टेस्ट हुआ। और बाद में जनरल सेक्रेटरी जो ताइक्वांडो के थे दिल्ली के, उन्होंने बोला कि आप उस लड़के को लिया जिसको तकलीफ आंखों में। तो सर कहने लगे हो तो क्या, उनका टेस्ट हो गया। जब सर ने मुझे बताया कि बताओ अगर ऐसा ऐसा करते हो, और
1: वो लड़का तो आपके सामने खड़ा है, पास भी कर चुका है।
0: हाँ, कह रहा हो गया इनका सेकंड राउंड जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि राउंड 10-12 का ग्रुप बना करके राउंड चलता है कि एक राउंड दो राउंड ऐसे टेस्ट होता रहता है। तो वो टेस्ट क्लियर हुआ और वहां से मेरी शुरुआत जीवन का, और खूब अखबारों में। उन दिनों में मिरांडा में कॉन्ट्रैक्ट पे ही मुझे ध्यान है, साथ में 2006-07 में किया था ताइक्वांडो का मेरा ब्लैक बेल्ट जो हुआ था पहला वाला, क्योंकि ताइक्वांडो जो होता है पहला ब्लैक बेल्ट को डैन, साउथ कोरिया में डैन बोलते हैं, DAN डैन 1 बोलते हैं। ऐसे ही डैन 2, डैन 3, डैन 4 चलता रहता है। तो जो पहला डैन ब्लैक बेल्ट का, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ब्लैक बेल्ट बोल देते हैं, उसका आगे कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, मर्जी अपनी, आगे करें या ना करें, आगे इस लाइन में जाना है तो करना चाहिए, मास्टर भी बनते हैं इसमें। तो 2007 में जब ब्लैक बेल्ट हुआ था तो पूरे दिल्ली के न्यूज में, अखबारों में, इंडिया टीवी पे, डीडी न्यूज पे, न जाने कितने न्यूज पे, कितने अखबारों में कटिंग मेरा आया था उन दिनों के मूवीज वाले इंपायर ने ब्लैक बेल्ट लिया है। और उन दिनों मैं मिरांडा में था, जॉब कर रहा था कॉन्टेक्ट पे, तो प्रिंसिपल भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि काफी न्यूज वाले आ जाते थे, नहीं आ जाते थे मुझे इनका सीन लेना है। कई बार मैं लेट आता था घर से, घर पहुंच जाते थे कि आपने कहाँ रह के पढ़ाई किया, कहाँ रह के आपने प्रैक्टिस किया, ऐसी चीजें जो आमतौर पे लोग कुछ अच्छा अचीव करते हैं।
1: जनरली जो ऐसे केस होता है, मीडिया कवरेज जो होता है जनरली,
0: तो उस वजह ड्यूटी पे मैं लेट हो जाता था, क्योंकि अगर सुबह 9 बजे आ जाते थे तो उनको अगर मैं अपना शूट कर किया तो फिर 1-1.5 घंटा लग जाता था घर पे, उधर ही कहीं पे। तो ड्यूटी आने में लेट हुआ तो उन्होंने इतना इजाजत ले लिया न्यूज वालों ने कि मैडम ने कह दिया कि जब तक इसका आप लोग ले रहे हैं, इसको रिलैक्स कर रही हूँ मैं, और ये अपना थोड़ा सा लेट आ सकते हैं करके, और ये भी हो सकता है कि आप मिरांडा आ करके अपना इनका शूटिंग कर लीजिए। तो मेरे लिए 2-3 मेरा हुआ है वो मिरांडा, जिसमें इंडिया टीवी का, डीडी न्यूज का, और एक ईटीवी उर्दू भी आए थे, तो सब मिरांडा के अंदर का शूटिंग हुआ था। तो तरह से करते हुए, और जो मेरा सिखाने का बच्चों की तरफ एक रुचि बढ़ा कि मैं जो सीखा हूँ, जो समस्या मुझे लेके हुआ था कि हम ऐसे बच्चों को कैसे सिखाएंगे, गलत दिक्कत होगी, सीखेंगे नहीं सीखेंगे, ये जो मैंने झेला है जीवन में, उस ऐसी चीजों को हो सकता है दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हो, उनको तकलीफ हो रहा हो सीखने के लिए। फिर मैं जाहिर करी कि मैं आप ताइक्वांडो भी बच्चों को सिखाऊंगा, और शुरुआत मैंने BDF लग, जिस ग्राउंड में मैं देखता था इस क्लास को होते हुए, पहली क्लास मुझे उसी ग्राउंड में बच्चों को सिखाने के लिए, छोटे बच्चों।
1: क्या बात है, वाह, बहुत खूब,
0: वहाँ
1: बहुत ही यादगार जर्नी है ये तो।
0: हाँ, मुनिका में सिखाया, डीडी मुनिका, डीडी का ग्राउंड है उसमें, जिसको मैं देखता था और रुकता था कि मुझे भी सीखना है ये चीज, उसी ग्राउंड में सिखाया पहला क्लास में। और वहाँ से आरकेपुरम सेक्टर 9 में संगम सिनेमा, उसके पीछे एक ग्राउंड है, आरकेपुरम के बच्चों को वहाँ सिखाया है। वहाँ से होते मिरांडा के जो बच्चियाँ हैं उनको बहुत समय तक, कई 3-4 साल वहाँ पे मिरांडा में सिखाया ताइक्वांडो। और वहाँ सिखाते हुए एक आश्रय फैमिली होम है कराला में, चलता था पहले, वहाँ सिर्फ थी, उनको मौका मिला। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अपना मेरा स्कूल है आरकेपुरम में, उसमें अभी आज भी संडे उधर ही रहता हूँ। नैब इंडिया सेंटर फॉर द वुमेन हौस खास में है, वहाँ पे कई सालों से मैं कनेक्टेड हूँ, और ये हर संडे को वहाँ पे जा करके जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराता हूँ। तो ताइक्वांडो जो है सिर्फ ताइक्वांडो खेल के मकसद से ना हो करके, अपना बचाव कैसे जीवन में करना है, किसी मुसीबत में अगर हम आ जाएं तो अपने हाथ पैर को चला करके, अपनी आवाज को निकाल करके, अपने सेफ कैसे हम कर सकते हैं, ये ताइक्वांडो के अंदर भी एक सेल्फ डिफेंस के पार्ट को सिखाया जाता है। तो हम जो नेशनल एसोसिएशन फॉर हौस खास जो है वुमेन के लिए, उसमें जो आते हैं इस मकसद के लिए, हर संडे को मेरी क्लास वहाँ पे हो रही है।
1: बहुत खूब। यहाँ पर दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं कैश साहब।
0: जी जी सर।
1: एक तो ये कि जैसे आपने डैन 1 बताया, तो आपने भी क्या डैन 2, डैन 3 ये सब आगे और किया है?
0: हाँ, मैंने अभी अभी के टाइम पे जो मेरा क्वालिफिकेशन है ताइक्वांडो के अंदर वो डैन 2 है, और साथ में रेफरी कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, और उसके अलावा डैन 4 के लिए मैं ट्राई किया हूँ, लेकिन अभी उसका सर्टिफिकेट मेरे तक नहीं आया है, इसलिए अभी हम उसको बोल नहीं सकते।
1: अच्छा,
0: बीए के बाद ऐसे उसमें मास्टर।
1: अभी डैन 4 का आपका सपना बाकी है एक तरह से?
0: करना है, सपना है मेरा सर वो आगे का।
1: बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत जरूर होगा पूरा। दूसरा मेरा सवाल ये कि आप केवल जो ब्लाइंड बच्चे हैं या लड़के लड़की हैं उन्हीं को सिखाते हैं, या साइटेडों को भी कभी, मुख्य धारा के जो लोग हैं उनको भी कभी सिखाने का मौका मिला आपको?
0: पहली क्लास जो मुझे मिली मुंडिका में वो जनरल बच्चे थे जिनको कोई तकलीफ नहीं था, फिजिकली चैलेंज नहीं थे वो।
1: अच्छा, वो सब वो सामान्य बच्चे थे एकदम।
0: और वही बच्चे आरकेपुरम में जो मैंने सेक्टर 9 में बोला वो जनरल बच्चे थे। मिरांडा में, जब मिरांडा में विजुअली इम्पेयर्ड भी बच्ची मिली और जनरल बच्ची भी मिली, दोनों को कॉम्बिनेशन करके सिखाया। और वहाँ पे बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मुझे लग रहा है कि 2010 में जो शेरा उसमें कॉमनवेल्थ में जो घूम रहे थे अलग अलग अपने एड के लिए, वो मिरांडा में भी आए थे और उनके सामने भी मेरा परफॉर्मेंस हुआ था मिरांडा के अपने ऑडिटोरियम में। तो उसमें दोनों बच्चे थे, विजुअली भी थे और जनरल बच्चे थे।
1: तो कैसा, कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आई कि जैसे मतलब फीमेल को सिखाने में, जैसे कई बार होता है ना कि फीमेल ही होनी चाहिए, या ऐसा कई खेल में होता है, तो ऐसा कोई इशू आपके साथ नहीं आया?
0: नहीं, देखिए इशू नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि उसका इशू थोड़ा बहुत हुआ होगा, और उसका रास्ता निकालना ही कोच के हाथ में ही होता है। जैसे मान एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर और भी 2-3 क्लासे हुई हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, बताऊंगा अभी आपको, जिक्र करूंगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे फीमेल है तो जाहिर है कि मेरे पास एक से ज्यादा फीमेल होंगी, तो कहीं अगर मुझे करना किसी का किसी बॉडी को पार्ट को टच करना है या बताना है कि ऐसे करेंगे, तो मैं खुद वहां पे ना होके वो फीमेल को खड़ा कर देता हूँ जो दूसरी उसकी फ्रेंड होती है।
1: अच्छा,
0: तो मैं बताता रहता हूँ और वो कर देती हैं कि आप आपस में करिए। कोई भी जो प्रैक्टिस है इस तरह, हमारा जो गेम है वो दो लोगों के बीच में ही होना है, या वो फाइट है, प्रैक्टिस है, ट्राई है, तो ये तो दो लोगों के बीच की बात है। तो मैं फीमेल को फीमेल के साथ करा दिया, मेल को मेल के साथ करा दिया, और प्रैक्टिकल जो है वो मैं अपने हाथों से बताता रहता हूँ खुद ही कि यहाँ टच, यहाँ ऐसे पकड़िए, अगर ऐसे पकड़ रखा तो कैसे छूटना चाहिए। तो वो चीजें मैंने फीमेल को फीमेल के साथ और मेल को मेल के साथ करा दी, तो दिक्कत नहीं आई। थोड़ी बहुत हुई तो ये एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फ्लाईओवर के जैसा वो ब्रिज बनते हैं, चक्रासन योगा में बोलते हैं के उसको एक्सरसाइज, हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हवा में वो ऊपर उठाते हैं, वो देखने में फ्लाईओवर सा लगेगा, 2 पिलर पैर का, 2 पिलर हाथ का बनके ऐसे ऊपर हवा में। ऐसा करने के लिए आपको होता है कि बच्चों को मैं बोलता था बच्चे उठा नहीं पा रही है, तो फिर मैंने बच्चों के क्या बोला, बोला कि आप ऐसा कीजिए, तो ताइक्वांडो में बेल्ट बांधते हैं कमर में, वो एक पट्टी सी होती है, उस बेल्ट को कमर के नीचे फंसा के, और उस बेल्ट को मैंने पकड़ा, और फिर मैंने बच्चे को बोला आप अपनी ताकत लगाओ, मैं हल्का सा हेल्प करूंगा उठाने में, और जरूरी नहीं कि हम बॉडी ही पकड़े, वो बेल्ट है। जैसे मैंने बोल दिया अगर बेल्ट नहीं है तो बच्चों के पास अपना दुपट्टा होता है उसका इस्तेमाल किया, तो इस तरह की चीजें का इस्तेमाल, जो वहाँ पे चीजें सुविधाएं उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला कि जो और जो क्लासे मिस हुई है वो आरकेपुरम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 5 में है, उसमें भी 3 महीने का बच्चों, जो बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ कर रखी है, कई जगह सिखाते हैं, वहाँ पे मैं खुद भी गया हूँ, मेरी जो मेरे से जो बच्ची सीखी है वो भी जाके सिखाया है, तो वहाँ भी बीच बीच में मौका मिलता रहता है सिखाने के लिए, वहाँ पे सारी जनरल बच्चे।
1: नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि अब तो आपसे हजारों बच्चे सीख चुके होंगे, तो जो लोग आपसे सीखे हुए हैं क्या वो भी अब क्लासेस ले रहे हैं कहीं अलग अलग देश के अलग अलग शहरों में या दिल्ली में कहीं भी?
0: अभी दो तीन बच्चों का जिक्र करूंगा। एक बच्ची रिसेंटली इसी सेशन में ज्वाइन किया है, अदिति महाविद्यालय जो कि बवाना में है, खुशबू नाम की बच्ची है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस करा रही है। बच्ची है जो कि इंडिया में भी और इंडिया के अलग अलग स्टेट में जा करके उनको मौका मिला, वो दूसरे उसमें डिपार्टमेंट में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो गई हैं, जहाँ पे वो आती हैं, जोशी का नाम है उस बच्ची का। ये दोनों जनरल बच्चे तरह से, एक और बच्ची है उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, नहीं निशा नाम है वो, जो इंडिया से बाहर अभी गई हुई है और ब्लैक बेल्ट है, वो नर्स की ट्रेनिंग कर रही है। तो और अलावा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट छूट रहे हैं, वो है सौरभ पाठक नाम है उनका।
1: अच्छा सौरभ जी,
0: उनका स्टोरी ये है कि वो दिल्ली हाट में जॉब करते हैं, वहाँ पे उनका सर्विस है, और उनके जो प्रॉब्लम है वो मेरे से जैसे हटके है, उनका आंखों का नहीं, उनका दोनों हाथ की प्रॉब्लम है।
1: अच्छा,
0: और उनको भी मेरे जैसा ही एक जहन में था, दिल में था कि ताइक्वांडो प्लेयर बनना है, जो वो मेरे से उनके जब मन में आया और वो जब ढूंढना शुरू किया कोच कि कोई मुझे सिखाए, तो उनको भी ऐसे मना करते गए और ढूंढते ढांढते उन्होंने किसी ने बता दिया कि ऐसा करो, आरकेपुरम जाओ, नैब है, वहाँ पे एक कोच है जो कि विजुअली को सिखाते हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट करो, आपको कुछ हेल्प कर दे। और ढूंढते हुए खोज करते हुए मेरे से मुलाकात की आर्क्योप्रोम में और बोले कि सर मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ। मेरे से हालांकि कुछ एक दो साल बड़े भी हैं शायद वो, मुझे जहां तक लग रहा है, लेकिन जो इस कोच या टीचर के आगे कोई आते हैं तो उसका बच्चा हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है वो, कई बार लगता ही नहीं कि वो अपने बड़े के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई शब्द निकल रहा हो तो मैं माफी चाहूंगा कि ऐसा कभी बोल दिया सौरभ जी ही, मैं बोलता हूँ
1: है ना।
0: तो वो आए और बोले कि मैं ताइक्वांडो सीखना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि हाँ मैं सिखा दूंगा। तो उनका एक सवाल था कि सर मैं जितनी जगह गया जब मुझे देखा तो मुझे बोला आपको ताइक्वांडो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, दिक्कत होगा या कई तरह की बातें हुई, आपने मेरे भले ही बाद में सिखाना, मुझे इतना बता दो कि आपने मेरे अंदर क्या देख लिया कि बोल दिया कि मैं सिखा दूं, मतलब एक सेकंड वो क्या देखा यहाँ इसका आंसर क्या। और बिल्कुल सही आंसर है जो ताइक्वांडो लाइन से होंगे समझेंगे, ताइक्वांडो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्स एंड हैंड्स टेक्निक इन राइट वे है। तो ताइक्वांडो बात ही पैर से होता है और उस बच्चे के पास पैर था उस समय, मैंने देखा हाथ की सिर्फ दिक्कत थी, तो ताइक्वांडो हिंदी में पैर पैतरा बोलते हैं
1: जी,
0: जिसमें जिगर मूवी में इस्तेमाल किया गया है शब्द का
1: पैर जी, अजय देवगन वाली
0: जो मूवी है उसमें बोला कि पैर पैतरा का खेल हो रहा है, ऐसा कुछ शब्द है वहाँ कुछ
1: जी।
0: तो हिंदी में भी पैरों का जिक्र है, ताइक्वांडो कोरिया में अगर मीनिंग देखेंगे टीएई ताई का मतलब ही है किक विद लेग। तो जो मैंने स्टूडेंट को मैंने बोला सौरभ पाठक जी को कि आपके पास जो चाहिए वो है और जो नहीं इतनी जरूरत भी नहीं है, तो आप चिंता ना करें आप सीख जाएंगे। और फिर मैंने उनको सिखाना शुरू किया और सीखते सीखते वो आज ब्लैक बेल्ट हैं और दो इंटरनेशनल खेल के आए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड मेडल लेके आए और एक जाकर के साउथ कोरिया में जब गए तो वो फिसल गए थे किसी वजह से सीढ़ी पे, तो उनको अनफिट कर दिया गया तो वहाँ वो खेल नहीं पाए थे साउथ कोरिया में। तो हम कह सकते हैं कि अपने ब्लैक बेल्ट होने के बाद वो दो इंटरनेशनल के लिए भी जा चुके हैं जिसमें एक में साउथ कोरिया में।
1: तो मिलाके बच्चे मतलब इस ताइक्वांडो में विदेश में भी जा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, है ना
0: जी। अब जो हम लगे हुए हैं कि ताइक्वांडो को विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इंटरनेशनल लेवल पे काम हो, अब जाके सौरभ पाटिल जी को ही एक मौका मिला, वो कहीं के अभी चेयरमैन बने हैं ताइक्वांडो लाइन में ही, और वो मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि कोच बहुत बड़ी सफलता मिली है मुझे, चेयरमैनशिप मिली है और मैं अब चाह रहा हूँ अब आपके साथ कनेक्ट करके और अपने आप को और आगे बच्चों के लिए हित में काम करेंगे। मैंने बोला
1: क्या बात है,
0: होगी आपकी जहाँ मुझे सिखाना पड़ेगा मैं पूरे
1: एक गुरु के लिए इससे बड़ी और सफलता क्या हो सकती है कैश सर, की देखिये आपके सिखाए हुए पाठक साहब जो है आज चेयरमैन भी बन गए हैं।
0: जी जी जी, बहुत खुशी होती है कि और ताइक्वांडो लाइन के ही बने हैं उनका, मतलब मैं जो अपने दिल की बात सोचता था कि मैं सीखूंगा ऐसा सपना उनकी आंखों में देखा था, इस वजह से ही मैंने उन पे ज्यादा मेहनत किया और उन्होंने भी बहुत मेहनत, मतलब ये सोच सकते हैं कि हम दोनों संडे मिलते थे, संडे उनकी ड्यूटी भी होती थी वहाँ पे अपने ऑफिस में दिल्ली हाट में, ड्यूटी खत्म करके मेरे पास आ जाते, सर्दी का दिन था वो, और 7:45 बजे वो नैब आते थे, 7:45 बजे शाम को हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते थे और वो जाके 8 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे, चप्पल निकाल के जूता निकाल के जुराब निकाल के नहीं सर कुछ, मैंने उनको सर्दी लग रही कुछ नहीं लग रही आप कराइए। तो ऐसी लगन जब मैंने उनमें देखा ना तो मतलब हो ही नहीं सकता कि वो ना सीख पाए, ऐसा मैंने सोचा कि नहीं 100% आगे बढ़ेंगे और सफलता मिली उनको।
1: वाह बहुत खूब। तो कैसे सर अभी जैसे आपकी तो गवर्नमेंट जॉब भी है अब तो?
0: जी सर गवर्नमेंट,
1: और आप क्लासेस भी लेते हैं, तो अब ये जॉब करते हुए क्लासेस मेंटेन कर लेते हैं आप, और कितनी क्लासेस दिन भर में ले लेते हैं आप?
0: मैं सर अभी तो थोड़ा कम कर दिया क्योंकि कारण ये कि मैं संडे सैटरडे ही इस काम को दे पाता हूँ थोड़ा।
1: अच्छा,
0: और कहीं पेमेंट मिलती है कहीं नहीं भी मिलती है, ये भी सच बात। अभी भी आर्क्योप्रोम मेरा नैब जो है वो लगता है, उनको लगता है कि कई बार उनका टीए के रूप में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई पेमेंट वो नहीं आता है मेरे आगे ट्रेनिंग में कि पेमेंट की वजह से कोई बच्चा ना सीख पाए, या नैब ने जैसे जिक्र किया कि क्या अभी तक हम आपको कर रहे थे पेमेंट, अब कोविड आ गया, कोविड में जो स्पॉन्सर थे वो नहीं रहे, तो क्या करें, हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं रहे तो हमने भी नैब का तो इतना नमक खाया है कि जीवन भर में सिखाऊंगा फ्री में तो नहीं अदा हो पाएगा।
1: क्या बात, और वैसे भी ये खेल अब आपका जुनून है एक तरह से।
0: हाँ, तो अब तो मुझे ये कि इनको और ज्यादा बच्चे सीखें अच्छा लगता है
1: जी। एक प्रश्न ये है मेरा कैश सर कि ये जो खेल है ताइक्वांडो ये केवल सामने रह करके ही किसी को सिखाया जा सकता है या ऑनलाइन भी इसको सिखाया जा सकता है या किसी और रूप में, जैसे अभी आपने सेल्फ डिफेंस की बात की तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन सिखाते हैं ऑलरेडी या अभी शुरुआत नहीं की है इस चीज की?
0: ऑनलाइन हम कर चुके हैं कंडक्ट, नैब ने फिर कोविड के टाइम पे डिसाइड किया कि हम कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए बच्चों के लिए क्योंकि सभी बच्चे घर पे रहते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग ने ऑनलाइन का शुरुआत किया और कोशिश किया, ट्राई किया, सब कामयाबी मिली। ऐसे हमें भी मौका मैप के थ्रू ही एक 3 महीने का करते हैं, और कोविड के या तो 2021 रहा होगा या ना 21 में, मुझे लग रहा है कोविड थोड़ा रिलैक्स

0: तो 21 में हम लोगों ने प्रशांत सर है वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, बहुत
1: जी
0: अच्छे
1: प्रशांत वर्मा सर जी
0: वर्मा सर हैं और
1: जी
0: मेरे बहुत शुभचिंतक हैं। जब भी परेशानी में फंसता हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे सलाह दे देते हैं और समस्या से ही निकाल देते हैं मुझे।
1: क्या बात
0: और
1: है, वाह।
0: दो और व्यक्ति हैं मेरे जीवन के, एक डॉक्टर क्या नाम है उनका, दीपेंद्र मनोचा सर
1: मनुचा सर सक्षम वाले जी,
0: वाले, और उनके साथ में ही श्रीमती क्या नाम है उनका, हम तो रमी मैम बोलते हैं, मैं अगर ऐसे रमी सेठ मैं उनका नाम है, इनका बहुत बढ़िया बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं उनका नाम अभी लेट ले रहा हूँ, लेकिन ताइक्वांडो सीखने में और जब मैं कलर बेल्ट सीखता था तो उन दिनों टेस्ट देने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, और
1: अच्छा
0: उन्होंने मेरे टेस्ट का भरा है वो सक्षम के थ्रू दिया है, उन्होंने टेस्ट
1: अच्छा
0: दिया, मैंने मुझे कलर बेल्ट के सारे टेस्ट के पैसे उन्होंने दिया, बोला कि मेरा नए में उन दिनों जब मैं स्टूडेंट था तो मोहम्मद नाम से सिर्फ मैं जाना जाता था, कैश बहुत
1: अच्छा
0: लोग इतना सीखने
1: अब जी जी
0: करेगा
1: जी जी
0: तो
1: जी जी
0: चेक
1: बढ़िया।
0: हो टेस्ट का पैसा हो सब रमी मैम ने
1: वैसे
0: मुझे
1: भी
0: पता।
1: कैश जो है ना, वैसे कैश आपके नाम में ही रह गया, अब कैश का काम भी खत्म हो गया, सब ऑनलाइन हो गया आजकल।
0: थोड़ा जो स्पेलिंग जो है वो KAISH कैश मेरा है, और
1: जी
0: जो मीनिंग भी अलग है, और वो वहां पे जो है कैश का वो जो पैसों का है वो अलग।
1: वहां पे आई नहीं होता है।
0: हाँ तो सुनने में थोड़ा सा उच्चारण में लग रहा है वैसा। जी, तो
1: अच्छा कैसर, आपकी बात सुन के एक बार प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, तो क्या ये खेल खर्चीला है ताइक्वांडो?
0: नहीं खर्चीला जैसे आप हर चीज का, तो आप जैसे पढ़ते भी हैं ट्यूशन पढ़ते हैं तो आप तो फीस तो किसी ने रूप में देंगे ही, टेस्ट देंगे तो उसका टेस्ट का तो पैसा होगा ही, तो खर्चीला बहुत ज्यादा नहीं
1: अच्छा,
0: कह सकते, लेकिन एक नॉमिनल के आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट भी
1: मतलब
0: होगा।
1: फिर भी थोड़ा बहुत जो लगता है वो नॉर्मल वो खर्चा है।
0: हाँ वो खर्चा है बिल्कुल। अब मान लो कोई प्राइवेट कहीं पे ग्राउंड में कोई कोच सिखा रहे हैं तो वो महीना भी लेंगे, फिर बच्चा टेस्ट देंगे तो उसका कलर बेल का टेस्ट भी होगा, उसका फीस जमा होगा आगे तक।
1: अभी थोड़ी देर पहले आपने कैसर बात की थी कि टाइक्वांडो क्या होता है, उसके बारे में आपने बताया था,
0: जी
1: तो यहाँ पर उसी से जोड़ते हुए मेरा एक और प्रश्न है, और उसको आप इसमें और अच्छे से क्लियर करेंगे, कि कोई इंसान आपको सुन रहा है, अभी इस प्रोग्राम को सुन रहा है, और उसको ताइक्वांडो का नॉलेज नहीं, लेकिन अब उसकी इच्छा मन में जाग रही है कि ताइक्वांडो सीखना चाहिए,
0: जी
1: और इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं जिसके लिए कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा बच्ची लड़का लड़की ताइक्वांडो सीखने के लिए तैयार हो, क्या ऐसे कारण हैं?
0: हाँ कारण देखिए, जीवन के किसी भी उम्र में और कहीं भी क्षेत्र में आप रहेंगे तो ऐसा अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए कि जीवन के किसी भी समय आप पे कोई दिक्कत आए, आपको कोई परेशान करे, परेशान ना भी करे, मान लो आपको चोट लग जाए तो आप पैर पकड़ के या हाथ पकड़ के या सिर पकड़ के बैठ ना जाए एकदम से, हाय मैं अब गया अब दवाई लाओ जब भी उठूंगा। तो ये सब
1: जी
0: चीजें जो खेल ऐसा है शारीरिक खेल है, इसमें क्या है कि आप जब सीखते हैं कई बार लग जाते हैं फिर कोच उठा देता है, नहीं बेटा कुछ नहीं होगा चलो फिर से प्रैक्टिस करो, तो एक अंदरूनी
1: जी
0: ताकत सी अंदर से हिम्मत आने लगती है। इसमें सीखने के बाद आप ऐसा फील नहीं करेंगे, हल्का सा आप किसी चीज से टकरा भी गए चोट भी लग गया तो आप बैठ जाएंगे कि आप नहीं खेलूंगा, फिर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये जो चीजें अंदर से जो पावर एनर्जी आती है वो इसको प्रैक्टिस करने के वजह से, और दूसरा कि आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप कहीं निकलना चाहते थे कि निडर हो जाते हैं टाइप, कि आप आपके अंदर एक रहता है कि नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि मैं अपना हाथ पैर तो चला ही सकता हूँ, अपनी आवाज तो निकाल ही सकता हूँ कम से कम, जो चीज अच्छी नहीं लग रही है जैसे कोई आपको टच कर रहा है वो चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप डर के मारे सुकड़ न जाए, आप जाके उसका विरोध करें, अपनी बात रख सकें किसी के आगे, वर्बली भी बोलें डांटे भी, अगर डांट से काम नहीं बन रहा तो एक हाथ पैर भी चला के दिखाएं उनको कि हाँ मेरे से दूर रहिए अपने दायरे में रहिए, ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के रूप में मौका मिलता है कि सीखते हैं, और इससे मुझे लगता है कि लोग इसके तरफ आकर्षित होते हैं कि वो बच्चा हो वो यंग एज में हो या वो सीनियर सिटीजन हो, हर स्टेज में अपने बचाव करने का या अपना बात का किसी का विरोध करने का होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए, तो इस वजह से हम सिखाते हैं। हालांकि ये सब चीजें तो चलो अभी आया, लेकिन हमारे भारत के कानून में जब 1860 में IPC जब बना था उन दिनों ये सेल्फ के प्रावधान का फैसिलिटीज का जिक्र है, जिसमें पुराने कानून में और नए कानून में भी जो आया है उसमें भी डाला गया है, इसको हटाया नहीं गया, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर नुकसान करता है तो उसका किस तरह विरोध करना है, कितना विरोध करना है, क्या हम ताइक्वांडो या ब्लैक बेल्ट हो गए तो क्या हम बात बात पे किसी की पिटाई कर दें वही ताइक्वांडो माना जाएगा, ऐसा नहीं है, उनके दायरे में रह करके आपको अपना विरोध करना है या अपने आप को बचाना है, हर जगह
1: जी
0: अपने देश के कानून को फॉलो करना है पहला पॉइंट, ठीक है ना,
1: बिल्कुल
0: जहां पे लग रहा है
1: बिल्कुल
0: कि आप तकलीफ हो रही है तो आप अगर आवाज से वो चीज हट सकता है तो आवाज ही लगाना है, ना कि चाटा लगा देना सीधे या मुक्का मार देना या लात मार देना। तो ये भारत के कानून करते हुए अपने आप को आगे जीवन जीना।
1: किस उम्र तक लोग इस ताइक्वांडो को सीख सकते हैं?
0: देखिए इसमें क्या है कि एक एक्सरसाइज है साथ साथ में, ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस है, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज को जितना फिजिकल फिट रहना चाहते हैं जिस उम्र तक भी अपना कर सकते हैं, अलग अलग हो जाता है वो अलग बात है उम्र के अनुसार। जो अभी बच्चा वही हम 45 या 60 साल से नहीं कराना चाहिए, उनको थोड़ा सा दूसरे टाइप का एक्सरसाइज करा देना चाहिए। एग्जाम्पल के छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि जब सीनियर एज हो जाता है तो घुटने में तकलीफ शुरू हो जाती है।
1: अच्छा।
0: तो वो धीरे धीरे जब हम घुटने की एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा माना जाता है, एक्सरसाइज करने वाले समझते भी और ऐसा है भी कि वो जिस उसमें एक्सरसाइज में अपने बॉडी को ढालते हैं वैसा वो ढल जाता है। तो नी का जो एक्सरसाइज अगर हम बिल्कुल ना करें तो आगे जाकर के घुटने की दिक्कत या दर्द महसूस रहता है, और उसको हम टर्न करते रहे धीरे धीरे इस तरह एक्सरसाइज के रूप में तो वो उतना तकलीफ है, क्योंकि ऐसा साइंटिफिक माना जाता है कि इसका अंदर का जो ग्रिस सिस्टम है या चिकनापन है ऑयलिंग है वो कम होने की वजह से हड्डी में टचिंग होता है आपस में और वो दर्द के रूप में दिक्कत करता है या साउंड करता है। तो ये सब चीजें एक्सरसाइज के जरिए ठीक किया जा सकता है। खत्म तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमें तकलीफ ही रहेगा, रिलैक्स हो जाता है। हर चीज के लिए दवाई पे ही डिपेंड ना रहे, थोड़ा अपना जैसे सांस का एक्सरसाइज करते हैं, माना जाता है कि जुकाम कम होता है, बाबा रामदेव जी समझाते हैं जब, तो ये सब चीजें एक्सरसाइज का पार्ट है हमारा
1: जी। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब कि गवर्नमेंट का क्या रवैया है इस ताइक्वांडो को लेकर के, कितना सपोर्ट है गवर्नमेंट का, और खासकर अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें या अवेयरनेस की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, तो इसमें आपने क्या महसूस किया, क्योंकि अब आप तकरीबन 20 साल आपको हो गए हैं।
0: जी उससे ज्यादा
1: 25 साल हो गए हैं आपको जी।
0: हाँ इतना हो गया। तो इसमें ये मैंने देखा कि ताइक्वांडो जैसे हम जानते हैं कि ओलंपिक में सन 2000 में आ गया, उसके बाद आज के डेट में देखेंगे तो लगभग स्कूलों में ताइक्वांडो को लेकर जागरूक है, या वो केंद्रीय विद्यालय हो या वो DSSB का स्कूल हो, जो मैंने बोला सीनियर सेकेंडरी आरकेपुरम सेक्टर 5 में स्कूल है वो DSSB का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, वहाँ पे सिखाने का मौका मिला। तो इसका मतलब है कि स्कूलों में भी गवर्नमेंट फंड दे रही है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चियों को सिखाया जाए, इसलिए फंड दिया जाता है। और उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का मैंने जिक्र किया, ऐसे ही हम चले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मैं शुरू किया था मिरांडा हाउस में 2007 8 9 में 11 में सिखाता था, उन दिनों ऑफिशियली मुझे नहीं लगता ताइक्वांडो नहीं था इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी और लोगों को जरूरत महसूस हुआ तो आज के डेट में कई पहले दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसने भी ताइक्वांडो को खेल के रूप में अपने कॉलेजों में सिखाना शुरू कर चुके हैं। तो ये धीरे धीरे जागरूक होने की बात है कि कितने लोग इस चीज से देखा हुआ है, फेमिलियर है या महसूस करते हैं। तो गवर्नमेंट मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज को महसूस करते हैं कि अपना सुरक्षा हर व्यक्ति के जीवन का पार्ट होना चाहिए और सभी सुरक्षित रहे ऐसा सीखना चाहिए।
1: यानी कि आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से भी रिकॉग्निशन मिल रहा है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। अगर हम सेल्फ डिफेंस के रूप में लें, कई जगह कई स्कूलों में कई डिपार्टमेंट में सेल्फ डिफेंस के नाम पे सिखाया जाता है।
1: मुझे ऐसा लगता है कैश सर कि ये बड़े शहरों तक ही शायद अभी है इसका चलन, स्टेट में या छोटे शहरों में अभी इतना लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को।
0: हाँ नहीं, इस चीज को समझ रहे हैं लेकिन वो पुराने नाम से समझ रहे हैं। जैसे
1: अच्छा,
0: आज अगर मैं अपने पुराने लोगों को गांव में जाके या दादी को मैं बोलूं कि मैं ताइक्वांडो सीख रहा हूँ तो शायद वो नहीं इस बात को समझे, पता नहीं क्या कर रहा होगा ये। लेकिन वही मैं कराटे सीखता हूँ तो बहुत अच्छे से, मेरी दादी जब जीवित थी और 2018 में उनका वो हो गया ध्यान, तो
1: बेसिकली मेरा यही क्वेश्चन था यहाँ पर केश सर, जो आप बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कराटे जूडो और ताइक्वांडो ये आपस में क्या जुड़े हुए हैं या फिर अलग अलग हैं?
0: सब जुड़े हुए हैं, सबका जो लक्ष्य है वो एक ही है, सब में ही अपना बताओ एक गेम सीखते हैं, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे हमारा टेक्नोलॉजी या जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में नया चीज आ रहा है, ऐसे ही कराटे के पुराना नाम को लेकर के अगर सोचेंगे तो वहां से निकलते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे नया नया नाम और नई नई टेक्निक्स इसमें ऐड होती जा रही है। आज जाकर के ये ताइक्वांडो का रूप लिया या अलग अलग गेम, वो पुराने गेम भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया या वो खत्म हो गया है। कराटे भी आज के डेट में है, कुंफू भी है, जूडो भी है, ताइक्वांडो भी है,
1: आने आपस में मतलब ये सब भाई बहन ही है, मतलब कुल मिला के है।
0: अब इसको कह सकते हैं कि हम ये मार्शल आर्ट है, ये
1: मार्शल आर्ट है जी,
0: किया जाए अपने कला दिखाया जाए अपने शरीर से कला किया जाए, ये उसी का ही पार्ट
1: आता है जी। कराटे में तो हाथ का भी काफी प्रयोग होता है, हाथ से भी लोगों को मतलब कंट्रोल में करना आना चाहिए ना।
0: मैं जो अगर सौरभ पाठक जी का शब्द अगर याद ध्यान होगा तो हाथ का है ताइक्वांडो जो शुरू है, वो पैर और हाथ मिल करके सही दिशा में मारना ताइक्वांडो।

0: वो शुरू किया था। और एक चीज मुझे आज तक याद है, वो बस मैं नहीं भूला हूं, बाकी सब भूल गया, वो था लास्ट विद के। वो क्या था, थोड़ा कुछ बताएंगे आप?
1: लास्ट विद के
0: हाँ, चिल्ला करके बोलना, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने।
1: साउंड होता है, वो होता क्या है, साउंड को
0: जी
1: बहुत पार्ट माना गया ताइक्वांडो के अंदर या इस खेल के अंदर या
0: अच्छा।
1: कुंग फू के अंदर साउंड को। अब साउंड है, साउंड को पहला बोला गया कि जो हमारा सेल्फ डिफेंस कोई व्यक्ति सीखता है उस व्यक्ति को माना गया सेल्फ डिफेंस के रूप में, कि सेल्फ डिफेंस वो व्यक्ति जानता है जो आवाज निकालना जानता है। मतलब पहला
0: अच्छा
1: सेल्फ डिफेंस का आवाज है। एग्जाम्पल के
0: जी
1: लिए, आप
0: जी
1: मुझे परेशान करें या मैं आपको परेशान करूं, कोई भी करे,
0: जी
1: दूसरे को, मान लो कोई दो व्यक्ति आपस में अगर परेशान किया, तो
0: जी
1: जिसको परेशान किया उस व्यक्ति को भारत के कानून के अंदर ये नहीं कि दम से चाटा मार दो आपस, उसमें
0: बिल्कुल
1: बोला
0: सही
1: गया
0: है।
1: है कानून में कि आप पहले आवाज लगाओ, आवाज दो। क्या कर सकते हैं वहां पे, चलो दो नटो, क्यों मेरे नजदीक हो, क्या देख रहे हो, क्यों खड़े हो यहाँ पे। ऐसा अगर आपने किसी को शब्द इस्तेमाल कर लिया तो वो हो सकता है आपसे दो कदम दूरी बना ले, कि भैया खामा का पिटवा देगा किसी से या मार देगा, मेरा तो मकसद ही नहीं इसके आसपास रहने का, ही तो मैं खड़ा हूँ किसी वजह से, लेकिन वो गलत महसूस कर रहा है। तो ऐसा आवाज देना यानी सेल्फ डिफेंस का पहला स्टेप आवाज है। अब आवाज को ही कंटिन्यू हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल और देते हैं कि जितने भी मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जैसे वजन उठाने वाले, गड्ढा खोदने वाले, हार्ड वर्क जितने हैं, वो जब कर रहे होते हैं तो आपने या कई मेरे साथी ध्यान देंगे कि उनके मुंह से एक आवाज आ जाती है।
0: आती
1: वो
0: है, बिल्कुल
1: आवाज को
0: आती
1: जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं कि वो
0: है।
1: आवाज निकालेंगे तो गड्ढा जल्दी हो जाएगा या वजन अपने आप उठ जाएगा या उस वो उसकी एनर्जी जो लगती है, ताकत जो लगता है, उसकी वजह से मुंह से आवाज निकल जाती है। तो
0: निकलता है जी हाँ,
1: यहाँ यानी कि आप जो ताकत वाला मेहनत वाला काम करेंगे तो आपके मुंह से आवाज निकलेगा। यहाँ ये दो लॉजिक
0: बिल्कुल
1: हुआ। तीसरा लॉजिक कहते हैं कि जैसे कोई शिकार, शेर जो अपने शिकार पे हमला करेगा तो एकदम से चुपके से शिकार पे हमला कर दिया तो वो शेर नहीं, वो गीदड़ कहलाएगा।
0: वो दहाड़ के हमला करे
1: हाँ, ऐसा करेगा, चुपचाप नहीं करेगा। तो
0: जी।
1: यहाँ उस्ताद ताइक्वांडो के अंदर ये भी एक लॉजिक हम बोल सकते हैं कि अगर आपको फाइट खेलना है तो आप सामने वाले को वार्न करके खेलिए, मारिए, अगर उसमें बचने की क्षमता होगी तो बचेंगे भी, और उसमें आपको मारने की क्षमता होगी तो मारेंगे भी। तो ये आवाज जो यहाँ यहाँ कई जगह की जो मैंने एग्जाम्पल दी है, इसके लिए जो ताइक्वांडो जब हम किक करते हैं जिस टाइम या पंच करते हैं उस टाइम, ताइक्वांडो के खेल के अंदर कंपल्सरी है कि आप साउंड निकालेंगे, कुछ भी आवाज निकालेंगे, वो खेया, होया, शेया, हु, हा, ऐसे
0: अच्छा,
1: शब्द,
0: ओके
1: इस तरह के शब्द होते होंगे वो जो आप कहना चाह रहे हैं।
0: ओके ओके ओके ओके ओके
1: उसे कई जो मैंने ये सब एग्जांपल दिया कि आप जब आवाज निकाल के मारेंगे तो आपका ज्यादा फोर्स लगेगा उस चीज वहां पे, और आप अपने आप को बचाते समय पहला आप हमला ना करके एकदम से आप अपना रिएक्शन ना देकर के आप आवाज से भी रोक सकते हैं किसी को। दूसरा शेप एग्जाम्पल दे दिया, तो ये सब उसी से कनेक्टिविटी करके ताइक्वांडो के अंदर ये खेल साउंड को कंपलसरी किया गया।
0: जी बहुत खूब।
1: और इससे हमारा फायदा क्या होता है, इसका फायदा मैंने कहा लिया, जब विजुअली इम्पेयर्ड की, दो विजुअली इम्पेयर्ड की फाइट कराते हैं हम लोग, तो जो साउंड निकालना कंपलसरी है ताइक्वांडो फाइट में, जब एक बच्चा मार रहा है दूसरा बच्चा आवाज किया तो सामने वाला सुन के उस पर वार कर देता है, ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए फायदा हुआ है।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ऐसा बात करते करते काफी शानदार जानकारियां आज इस ताइक्वांडो के बारे में आपके माध्यम से जानने को मिली, और जाहिर है हमारे श्रोताओं को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ ऐसा है जो इसमें अभी छूट गया है, एक वो मदरसे वाला भी कुछ जिक्र करना चाह रहे थे आप, चूंकि अब कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में हम लोग आ गए हैं।
1: हाँ, एक जो डिटेल रह गया थोड़ा सा, जो आपने बोला कि ऑनलाइन क्या हम इसको सीख सकते हैं, इसको पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मैं चाहूंगा, मैंने बोला कि हम 3 महीने का ट्रेनिंग कर चुके हैं, इसमें अलग अलग स्टेट से बच्चे कनेक्ट हुए थे और बहुत अच्छा कामयाबी मिला हम लोगों को। और जो बच्चे दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, किसी वजह से भी, रहने का वजह हो या उनका कोई मकसद ना हो दिल्ली में रहने का, ऐसे बच्चे को दूर रह के जब सिखाया, एक बच्चा नासिक में है, ऐसे अलग अलग स्टेट से जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, तो वो बच्चों ने बाद में जब फीडबैक दिया तो बोला इसको और आप कराते तो और अच्छा रहता, और इसके आगे सिखाइए। उनको अच्छा लगा कि दिल्ली में ये चीज, जैसे आपने बोला कि ये सब चीजें सीमित शहरों में है, तो क्या हम शहरों से ऑनलाइन करते हुए बाहर भी बच्चों को, जो बच्चा नहीं आ सकता दिल्ली में, हर व्यक्ति तो नहीं आ सकते यहाँ रहने के लिए या पढ़ने के लिए या किसी, तो ऑनलाइन को दे सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं, फिर वो बातें उनको पता चलेगा कि अच्छा ये फायदा है, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन को और आगे इस लाइन में लगाए या सीखे। तो ये रह गया। अब जो अंतिम समय जो मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को किसी भी खेल में एक तो खेलना चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ताइक्वांडो वाला हूँ तो आप ताइक्वांडो सीखो, आपकी जैसी इच्छा हो पढ़ाई करिए, खेल के लिए कोई भी आप एक खेल को अपने जीवन में रखिए, और खेल भी ना करिए तो एक्सरसाइज को रखिए कम से कम, जिससे आपका शरीर एक्टिव रहे और आप जहां मर्जी उछल कूद, बैठना जल्दी से, खड़े हो जाना जल्दी से, ऐसा शरीर आपका एक्टिव रहे कि किसी मुसीबत में आप कहीं फंसे तो वहां से आप निकल सके आसानी से।
0: बहुत खूब। और कुछ ऐसा जो रह गया हो?
1: और

0: स्पेशल तो खैर कोई नहीं है मेरे पास तो, या फीमेल हो या मेल हो, किसी भी एज के हो, अगर उनको अपना बचाव लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि अगर ये ऐसा कंपलसरी ना होता है या सभी के लिए अच्छी चीज ना होता, तो हमारे भारत के कानून में 1860 में इसको ना डाला गया होता कानून के रूप में, या आप सीधा नुकसान हो जाए तो आप कितना नुकसान, किसका, आप कोई नुकसान करा तो आप कितना कर सकते हैं, तो कानून के दायरे में जो मैंने बोला रहते हुए कि आप पे अगर कोई किसी ने हमला किया तो ऐसा नहीं कि उसने पैर से हमला किया तो आप उसको उठा के चाकू मार दोगे या डंडा मार दोगे, उसका सीन बकायदा लिखित में है कानून के अंदर। आपसे अगर किसी को ज्यादा नुकसान हो जाए तो उसके कानून में क्या प्रावधान है, किस स्थिति में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने ताइक्वांडो सीख लिया तो हम किसी के पेट में लात मार दें और वो अस्पताल चला जाए तो हम बोले कि हम बचाव कर रहे थे अपना, ऐसा नहीं है। जो भी गेम इसके ताइक्वांडो के अंदर सेल्फ डिफेंस या गेम खेलेंगे, एक अपने दायरे में रह के, एक कानून के दायरे में रह के ही करना है, सीखना, इसका स्पेशल ध्यान देना है बच्चों को।
1: जी तो बहुत खूब कैश सर, और श्रोताओं आज रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं मोहम्मद कैश सर को, जो कि दिल्ली से हैं, और ताइक्वांडो के बारे में बहुत ही शानदार जानकारी उन्होंने दी, क्योंकि वो खुद भारत के पहले ऐसे ब्लाइंड पर्सन हैं जिन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है ताइक्वांडो में, और बहुत लोगों को अब तो वो सिखा भी रहे हैं और उनके सिखाए हुए बच्चे खूब कमाल भी कर रहे हैं। आप भी अगर सीखना जी
0: अगर टाइम है तो
1: जी
0: ताइक्वांडो के साथ साथ, जैसे मैंने बोला कि जब मैं मिरांडा ज्वाइन किया था तो मैं रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ कई साल तक वहाँ पे, मतलब हम कह सकते हैं 1 नवंबर 2006 से लेकर के 29 मार्च 2017 तक मैंने कंप्यूटर सिखाया मिरांडा के गर्ल्स को जो कॉलेज में पढ़ती थी, आई एम थी। अब कई लोग ये कहते थे कि आप एक ताइक्वांडो का जिसका हाथ पैर हार्ड, चलाने का अलग तरीका, ऐसा शरीर लेकर के आप सॉफ्ट काम को कैसे कर लेते हैं कीबोर्ड चलाना, कई लोग विश्वास नहीं करते थे कि भाई एक व्यक्ति है जो ताइक्वांडो के अंदर हाथ पैर भी चलाना सिखाते हैं। और फिर मेरी क्लास मिरांडा में होती थी, सुबह 7 बजे से लेकर के 2 घंटे 1.5 घंटे क्लास होती थी, और उसके बाद 9 बजे के बाद फिर उसी बच्चियों को कंप्यूटर सिखाना या जो भी प्रिंट आउट है या ऐसी सुविधाएं देना जो कॉलेज में अवेलेबल है उसको। तो कई लोग सवाल, कंप्यूटर आपका बिल्कुल सॉफ्ट काम है वो, तो हाथ की उंगलियां बहुत
1: सॉफ्ट है ना, हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का काम करते हैं।
0: हाँ तो ये छूट गया था, ये जानकारी
1: नहीं। और एक चीज और मुझे याद आ गई इससे कैसे सर, कि आपको अब तक क्या क्या सम्मान मिले हैं, कहाँ कहाँ पहचान मिली है आपको इस ताइक्वांडो से, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए।
0: तो ताइक्वांडो के वजह से, एक तो मैंने बताया कि जब मैं ब्लैक बेल्ट किया तो कई सारे मीडिया में कवर हुआ ये आया, और साथ साथ अभी 2-3 जगह तो हुआ है रिसेंटली, जो हुआ 2023 में नैब जो हमारा दिल्ली है आरकेपुरम सेक्टर 5 में, उन्होंने मुझे एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का दिया, वो कई जिसमें सर्विस एक विजुअली इम्पेयर्ड या प्रॉब्लम होने के बाद अपने जीवन को कैसे चलाते हैं वो सब भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, और साथ साथ मैं सोशल वर्क जैसे मैं सिखाता हूँ ताइक्वांडो रिवर, कई चीजों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने एक्सीलेंस 2023 का अवार्ड दिया, जो कि तालकटोरा नहीं है, ये है सेक्टर 1 में एक वो है तमिल संगम है उसमें मिला था मुझे
1: जी।
0: और साथ में स्विमिंग करने का मुझे मौका मिला, मैं नेशनल स्विमर भी हूँ वहाँ पे ग्वालियर में, और मुंबई में स्विमिंग भी किया है जिसकी प्रैक्टिस मैंने तालकटोरा स्टेडियम में, इंडोर जो स्टेडियम है उसमें स्विमिंग की प्रैक्टिस किया
1: जी।
0: तो स्विमिंग है, क्ले मॉडलिंग है मेरा अपना, जो क्ले होता है उससे कुछ कुछ बनाना चीजें, जब स्कूल में हमने कोई भी चीजें सीखा है, क्राफ्टिंग सीखा है, कागज जो कलरफुल कागज होता है उससे फूल बनाना। न्यू ईयर पे मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था नैब का, तो मुझे जब अपने टीचर को कुछ देना होता था फूल के रूप में, तो मैं बाहर मार्केट से खरीदता नहीं था, मैं कागज मार्केट सेक्टर 4 में मार्केट है हरकेपुरम में, वहां से जाके स्टेशनरी के दुकान से कागज लेता था कलर वाला, और उसको कमल का फूल, गेंदे का फूल, इस तरह के फूल बना के बना करके अपने टीचर को देता था, एक गुलदस्ता बना करके नए साल पे। ये सब स्टूडेंट लाइफ का पार्ट था मेरा।
1: बहुत बढ़िया कैश सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश है आपका?
0: जी तो सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुना, और आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने आप सब लोगों से शेयर किया है अपने जीवन का, उसको अगर आपको कहीं महसूस हो कि आपको भी कुछ सीखना है या तो संपर्क कर सकते हैं, सर से भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि आप सबको अच्छा लगा होगा ये चीजें, अच्छा महसूस करेंगे, सेल्फ डिफेंस जब सीखेंगे आप तो अलग ही टाइप का आपके अंदर एक जुनून रहेगा और हिम्मत रहेगा कि आप किसी टाइम भी कहीं जाएंगे तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ जाना है तो हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं जाने की, ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के अंदर बताया जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि भले आप कुछ दिनों का सीखिए, जरूरी नहीं कि आपको ब्लैक बेल्ट ही बनना है या टीचर ही बनना है, सबका अपना अपना पसंद होता है, तो ऐसे भी आप सबका भी पसंद होगा। और यही है कि मेरी जब आपको मौका मिले, भले ही दो महीना तीन महीना एक महीना का, जरूर आप सीख के देखिए कि इसमें क्या बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कैश साहब आज समय देने के लिए और इतनी शानदार जानकारियां हमारे श्रोताओं को देने के लिए। और उम्मीद करते हैं जो भी आपका सपना है वो जरूर पूरा हो और यूं ही देश विदेश में आपकी ख्याति फैलती रहे, ताइक्वांडो आप सिखाते रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और आज के इस विशेष कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

0: is classical gem, beautifully rendered by लता जी. समय से परे कुछ गीत जो हमें उठ खड़े होने में, अपने आप को संभालने में, फिर से रिफ्रेश होकर चलने में मदद करते हैं. रेडियो मधुबन 107.8 FM पर शुरू हो चुका है संगीत का वो सफर, संगीत का वो काफिला, जिस पर चलने के लिए हम सब उतावले रहते हैं. आइए फिर से मतवाले मौसम में मतवाले बनकर चलते हैं एक नई दिशा की ओर. इस दिशा में भी आपके लिए कुछ न कुछ इंतजार कर रहा है. फ्रेंड्स, हम सभी को आगे बढ़ने के लिए सही दिशा चुननी है और आज के इस सफर पर हमने चुने हैं आपके लिए टाइमलेस क्लासिकल जेम. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम है गुलदस्ता. मैं हूँ इस कार्यक्रम की शो होस्ट स्वर्णलता.
1: आप हबरेरिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो.

0: मन मोहन मन में हो तुम्हें, और हमारे मन में कौन है? हमारे मन में है आज के गीत जो बजने वाले हैं और जो बज चुके हैं। टाइमलेस क्लासिकल अर्थात समय से परे सदाबहार, कभी भी सुनो न्यू लगता है। म्यूजिक जो सभी को भाए, आज के गीतों में अपने मन को रमाए रखें, आज के गीतों को दिल से सुने। क्लासिकल म्यूजिक के स्वर जब तन मन में छा जाए, जो मूड को चेंज कर दे, वही गीत आज हम सुन रहे हैं। वैसे हर एक में क्या परिवर्तन आता है इन गीतों को सुनकर, यह वही बता सकता है ना। हम किसी के मन में झांक कर तो नहीं देख सकते, पर हाँ, हम अपने मन के रास्ते को बदल सकते हैं इन सुरमई गीतों को सुनते हुए, मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन पर आप सभी का फिर से स्वागत है, और स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: द बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
2: अरे, ये तो देख भी नहीं सकते, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
1: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
3: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
4: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: हृदय में सरगम गूंजने लगते हैं, हृदय में तान उमड़ने लगते हैं जब ऐसे टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक को हम सुनते हैं। टाइमलेस का अर्थ है कालातीत, टाइमलेस का अर्थ है समय से परे, सदाबहार, चिरस्थाई। इसका तात्पर्य उस वस्तु विचार या शैली से है जो समय के प्रभाव से पुरानी नहीं होती और हमेशा प्रासंगिक या सुंदर बनी रहती है। हाँ जी हाँ साथियों, ऐसे गीत जो हैं वो हमेशा हमारे दिलों में गूंजते हैं, चिरस्थाई बने रहते हैं। चाहे समय का कितना भी परिवर्तन होता हो, समय फैशन के कारण, समय मौसम के कारण, समय हमारे मन के विचारों के कारण परिवर्तनशील है, पर ये गीत परिवर्तनशील नहीं है। ये गीत हमारी पसंद नापसंद से परे हैं। इन गीतों को पसंद करना ही होता है म्यूजिक लवर्स को। कहते हैं गूंजे दिशी दिशी मृदंग, गूंजे दिशी दिशी मृदंग, प्रतिपल नवराग रंग, रिमझिम के सरगम पर छिड़े तान। ऐसे तरानों को, ऐसे मन भावन खुशनुमा गीतों को आज हम सुन रहे हैं और तरोताजा अनुभव कर रहे हैं। अनुभव मूर्त बनाने आती हूँ हर सप्ताह रेडियो मधुबन पर, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है।

0: ओ जीवन नैया के खेवन हारे, ओ जीवन नैया के खेवन हारे, हे परमेश्वर तुम्ही तो प्रेम की ज्योति जगाते हो, तुम्ही तो स्नेह सिखलाते हो। ऐसा कहकर हम सभी ने उस परमात्मा को बहुत ही अपने दिल के करीब बुला लिया। जय रघुनंदन, जय सियाराम। रेडियो मधुबन पर आज आप सुन रहे हैं टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें वैरायटी भी है। वैरायटी क्लासिकल है, एक भजन आपने सुना जिसमें क्लासिकल म्यूजिक जो है दिखाई दे रहा था। आप सभी को आज हम लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुर तान और सरगम की मेला दिख रही है। दोस्तों, भजन जिसमें शास्त्रीय संगीत का असर है, प्रभाव है, संगीत की शैलियों में एक है क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें हम इन सुर तान और संगम की मेला देख सकते हैं। तो अभी आपने एक भजन सुना जिसमें शास्त्रीय संगीत का असर देखने को मिल रहा था। तो ऐसे ही वैरायटी गीत आज आप सुन रहे हैं, लेकिन रहेगा टाइमलेस क्लासिकल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तक अगर आप जुड़े नहीं हो कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: विरह रस से भरा एक गीत हम सभी ने सुना और आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा कि इसमें भी क्लासिकल म्यूजिक का असर है। का करूं सजनी आए न बालम, यह गीत हम सभी ने सुना यशुदास जी की आवाज में। ऑल टाइम फेवरेट गीत है साथियों, बहुत साल बाद हमने इस गीत को प्ले किया आप सभी के लिए रेडियो मधुबन पर, जहां पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और मुझे उम्मीद है कि जो श्रोता अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो अभी जुड़ चुके हैं। कहते हैं सरगम कुदरत की देन है, कुदरत को ध्यान से देखकर कला रसिकों ने सरगम और सरगम से रमणीय गीतों की रचना की। एक गीत को बनाने के लिए भी सही विधि और नियम का अनुकरण और अनुसरण करना होता है। किसी भी गीत को जैसे तैसे हम नहीं बना सकते। इस जिंदगी में जो भी कार्य हम करते हैं सभी में कुछ न कुछ विधि अपनानी पड़ती है, वैसे ही गीतों के निर्माण में भी विधियों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सब हैं हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक को हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्लासिकल म्यूजिक समय और मन दोनों पर ही परिवर्तन ले आता है। यह परिवर्तन हम देख सकते हैं इन गीतों को सुनते हुए। वैसे एक होता है स्थूल समय, घड़ी का समय, और वह समय परिवर्तन के साथ साथ हमारे कार्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मॉर्निंग के समय में हम सब उठते हैं, अपने कार्यों को करने में लग जाते हैं, और रात्रि में हम कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही मौसम के परिवर्तन से मन में एक अजीब किस्म की खुशी होती है, और जब सुर ताल सरगम में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, वह मन पर भी और समय पर भी असर करता है। तो यह समय जो है, यह बहुत कुछ हमारे भीतर परिवर्तन ले आता है। रेडियो पर आप सब हैं स्वर्णलता के साथ, और अभी हम दो ऐसे गीत सुनने वाले हैं जिसमें परमात्मा को प्रीतम कहकर पुकारा गया है, और प्रीतम की याद में हम यह विरह गीत सुन रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के विरह में भी लोग गीत रचना करते हैं, और इन रचनाओं में आप क्लासिकल संगीत का, क्लासिकल म्यूजिक का असर देख सकते हैं।
1: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं तो प्रेम दीवानी प्रीतम दरस दिखाओ, इन दोनों गीतों में हमने विरह रस को देखा और उसमें क्लासिकल म्यूजिक की जो एक निशानी थी वह भी हमने देखी। तो रेडियो पर आज हम क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी वैरायटी के क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं। आज की जो कलेक्शन है इसमें भजन के साथ भी हमने क्लासिकल म्यूजिक को देखा, फिर विरह गीतों में भी क्लासिकल म्यूजिक को देखा, और आज के गीतों में फिल्मी सॉन्ग भी है, गैर फिल्मी सॉन्ग भी है। तो है ना, वैरायटी से भरपूर आज का कार्यक्रम। तो देर न करते हुए आइए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में राग मालकोस पर बहुत ही सुंदर एक गीत। इस गीत को सुनकर आप भी अपने आप को जो है यही कहेंगे, अखियन संग अखियां लागी।

0: फेवरेट टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक आज हम सुन रहे हैं। और अभी हमने रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गीत सुना, यह गीत भी बहुत दिनों बाद हमने पेश किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है क्लासिकल संगीत के रूप में, और खासकर बॉलीवुड के जो गोल्डन एरा के गीत हैं, यह मिस हो रहे थे काफ़ी दिनों से। तो आज के प्रोग्राम में उन श्रोता बंधुओं को बहुत अच्छा लगा होगा जो पुराने गीतों के शौकीन हैं, जो ऐसे वैरायटी गीतों के शौकीन हैं। तो वैरायटी थीम के अंतर्गत आज हमने सुना टाइमलेस क्लासिकल सॉन्ग म्यूजिक। सफ़र पर साथ चलने में मज़ा है, सफ़र पर साथ चलने में मज़ा है, और साथ मंजिल तक पहुंचने में दुगुना मज़ा है। तो आज के सफ़र में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज स्वर्णलता को इजाज़त दीजिए, फिर से सुरीले सफ़र पर हम चलेंगे और ऐसे ही मंजिल तक हम साथ साथ चलते रहेंगे। दो गीत बैक टू बैक सुनते हुए हम विदा लेंगे आज के प्रोग्राम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम,
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलिथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलिथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था।
0: जी,
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको जो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेकर देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेकर भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं इकल्ला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते हैं तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, एक वृक्ष बनाना और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके एक वृक्ष बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भाग जाते थे वहां से। तो इधर उधर काल पे फोन लगा के, और वो क्योंकि भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रही, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई, और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे, पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: कि किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलिथीन, सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल
0: प्लास्टिक।
1: जो, हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े इकोब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे आप
0: जी
1: घर पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईट की जगह उपयोग कर सकते हैं इसका, जिससे प्लास्टिक मुक्ति भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है, मैंने मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे उपयोग कर सकते
1: बिल्कुल, अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुद्रा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक्स
0: यस
1: की 2 लीटर की बॉटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने, उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बॉटलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
0: जी,
1: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने के एक मुद्रा बना सकते हैं। हमने बनाया अभी एक मुद्रा उसको बैठने के लिए, तो बढ़िया
0: वेस्ट कपड़े
1: फर्नीचर
0: को
1: के
0: लेकर
1: उपचार में भी अपन
0: के
1: काम कर
0: ढक के।
1: सकते हैं। हाँ
0: जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
1: हाँ
0: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
1: समझ
0: बाद उसको
1: सकते,
0: चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या
1: हाँ
0: ऐसे ही ढक के
1: ये
0: उसको स्टूल बना सकते हैं।
1: कवर बना के उसका बढ़िया, अच्छा है देखो,
0: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
1: हमने पहला एक हमारे जो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई, तो
0: जी
1: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े एक जुनून भी था, तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें, तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में, बढ़िया रहा। पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण
0: जी
1: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बॉटल से इको ब्रिक्स बना के इनको अंदर बॉटल के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की कैरी बनाई है, तो लोग उसको देखने गए, उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने, तो
0: जी
1: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
0: जी क्या बात है सर। जी, ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है।

0: है, आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
1: मेरा
0: महिला
1: जी,
0: भी है अभी। जी बताइए सर,
1: मतलब मैं सोचना है मेरा कि ऐसा कोई सा काम बड़ा नहीं होता। अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करें करते रहेंगे उस काम को तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
0: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर आपके साथ महिलाएं भी शामिल है, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
1: जी
0: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
1: जी
0: अनुभव कैसा था?
1: वो क्या इतना एक आत्मविश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का, वो तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावनाओं को, कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
1: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उसी काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
0: जी बहुत बढ़िया सर, आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है, आप बता सकते हैं?
1: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या, मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है एक टीम की दीदी बनते। तो
0: जी
1: मेरा क्या है, जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उनकी भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट दिया आपसे। तो उन्होंने कहा बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने कि इसको क्या, मैंने कि इसको इको ब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
0: क्या
1: वो
0: बात है
1: लेके
0: जी,
1: आया, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आया, जैसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इको ब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले में, तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
0: जी
1: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना महिलाओं का, तो 15-20 महिला सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है कि लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी है, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है। वो
0: जी
1: अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
0: जी
1: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैं आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
0: क्या बात है सर जी,
1: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है।
0: राइट,
1: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ती गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
0: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
1: जी
0: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से, तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को।
1: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास दो मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवा, तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है, क्योंकि क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी, तो जब हम रोज
0: जी
1: जाते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, और वो ढेर लगने लगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है। तो
0: जी
1: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
0: जी
1: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का, तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की, तो बोला भाई साहब आपके पास
0: जी
1: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकिल क्लीन कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा, तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
0: जी
1: इसका
0: सर
1: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
0: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
1: ये पेन बॉक्स भी ये हमने इसका तख्ती का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
0: जी
1: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
0: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक
1: बहुत
0: बोलेंगे, तो
1: अच्छा
0: वो
1: प्रश्न था
0: आइडिया कहाँ से आया?
1: ये क्या
0: जी
1: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, अब बाटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने क्या बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं, तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने क्या रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। तो लोगों को बताया, वहां के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी पानी वगैरह बोतल बेचते थे, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि भैया कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक पर कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भाई सर ये क्या है बोतल बैंक। मैंने बोला ये बोतल को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है, ये एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी म्याद कम से कम 500 1000 वर्षों तक ये धरती पे पड़ी रहती है, अपन
0: जी
1: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया 3-4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको उस बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
0: जी
1: और
0: सर ग्रेट
1: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं अभी 6 महीनों के अंदर।
0: ग्रेट सर ग्रेट सर, ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
1: ये हमने बनवाया, मतलब बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से एक सेप देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
0: जी
1: लोग, सब लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हैं, कोई नहीं।
0: जी सर बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
1: हाँ वो बोट जो बोटलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते तो ढक्कनों का भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में। हमने क्या, आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को, तो
0: जी
1: अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया मेरी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर
0: आपसे इंस्पायर होके
1: जी।
0: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
1: उसका विचार क्या, जब हमारे पास क्या बहुत सारी वाटर इकट्ठी हो गई, तो मैंने जब कुछ क्या बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कि कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं। हम
0: जी
1: तो धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया हैं, काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा। तो फिर इसे विचार चला, काना ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई। तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया। तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव प्यावरा हमारे लिए बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
0: एब्सोल्युटली जी सर,
1: जी
0: बहुत खूब सर। सर, आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
1: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मान लो कुछ क्या बर्थडे है, शादी है, या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाएं, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क दे के चले जाएं, और वो वापिस साफ करके हमको दे के चले जाएं, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि
0: जी
1: कुछ चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
0: जी सर,
1: इसलिए बर्तन
0: तो
1: बैंक का
0: बर्तन
1: शुभारंभ।
0: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
1: वो क्या है उनको मान लो सर 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन जीन के ले जाना जो उनको आवश्यकता है, मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच ऐसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, वो गिन के ले जा वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके हमको दे जाते हैं।
0: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
1: जी बिल्कुल नहीं, जी
0: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो वापस आपको रीयूज करने के
1: वापिस
0: लिए
1: कर
0: देते
1: जी।
0: हैं। जी, बहुत खूब। तो सर, अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
1: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे
0: ओके
1: स्तर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इकोवृक्ष का एक बढ़िया से मतलब किसी को गाँव में करना है, तो बढ़िया जो भी अब गाँव में छोटे 50 को परिवारों की बस्ती रहती है, तो काम करने में आसानी रहती है शहर के अपेक्षा गाँव में।
0: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
1: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को, और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है, और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई तो जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, आवश्यकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
0: जी सर, सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ कर के प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
1: हाँ
0: करके
1: कर
0: ये
1: सकते
0: कार्य
1: हैं
0: कर सकते हैं?
1: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना एमआरएफ प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते वो नगर
0: जी
1: पालिका भी
0: सर,
1: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
0: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलीथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
0: जी बिल्कुल, तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं। ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप और नई दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी दुनिया बनाने का हम सब सपना देखते हैं जहां प्रकृति और मानव दोनों हाथ में हाथ लिए एक साथ आगे बढ़े, दोहन ना हो लेकिन खुशी भरपूर हो। और आज हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल भाई सतारिया जी जो कि फाउंडर हैं बंसी गिर गौशाला के। और उनके बारे में बता दें आपको कि वो मेंबर हैं नेशनल एडवाइजरी कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ साथ केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इनवाइटी मेंबर हैं गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज, इनवाइटी ट्रस्टी हैं शिवानंद आश्रम अहमदाबाद के, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं ग्लोबल विकास ट्रस्ट महाराष्ट्र के, साथ साथ मेंबर हैं गुजरात आयुर्वेद अनुषद मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गौशाला में उनके सारे काम एक आधुनिक तरीके से भी किए जाते हैं लेकिन वो पालन करते हैं बहुत ही प्रेम से। और उनकी अगर आप तस्वीरों को देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको ये महसूसता होगी। और उनकी गौशाला को भारत की श्रेष्ठ गौशाला का अवार्ड भी मिल चुका है। कई विशेषताएं हैं, आपको धीरे धीरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनके बारे में बताती रहूंगी, लेकिन पहले स्वागत करते हैं गोपाल भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद बहन।
0: सबसे पहले एक बार हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप कुछ, आपके जीवन की जो शुरुआत हुई और जो ये आपने नया, क्योंकि एक बिजनेस भी आप करते थे और एक बहुत बड़ा, उसे छोड़कर आपने इस रास्ते को चुना, तो कुछ अपने जीवन के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल। बहुत पहले तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया किसानों के साथ में ये वार्तालाप का। तो बचपन से, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरे गुरु महाराज जी ने बोला था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश खुश नहीं रहेगा। तो उस समय के वो शब्द हमारे हृदय में बसते हैं और उनको साक्षी मान के हमने प्रयत्न किए। तो FYJC करने के बाद 10 साल डायमंड का बिजनेस किया
0: जी।
1: 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद आके प्रयोग शुरू किए। प्रयोग करके किसी को बोल सकते हैं, तो हमने आकर के प्रयोग किए। कोई भी प्रयोग में, वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, वो सारा अभ्यास करके जब ठीक लगता है तब प्रचार करते हैं। तो 17 साल पहले मुंबई छोड़ के अहमदाबाद गौशाला शुरू करी, लेकिन सबसे पक्ष था कि किसी का शोषण ना करके प्रकृति जो करना वो सही है, उसी हिसाब से हमने सारे प्रयोग किए
0: जी। आपने जैसा बताया प्रकृति के और नजदीक आप गए, लेकिन इतने बड़े बिजनेस को जब आपने छोड़ा या फिर आपने सोचा कि नहीं अभी मुझे अपने जीवन को पूरा बदल देना है, तो लोगों ने आपको कुछ कहा तो होगा या चैलेंजेस तो आए होंगे उस वक्त?
1: देखिए, हमेशा लोग तो कहते ही है, चैलेंजेस भी बहुत आते हैं
0: जी,
1: आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार से
0: जी।
1: लेकिन उसको हम एक हमारी परीक्षा ही समझते हैं
0: जी।
1: और परीक्षा का सबसे अच्छा उत्तर हम मानते हैं कि हमारा कार्य बोलेगा
0: जी।
1: तो किसी को नम्रता पूर्वक हम उत्तर देते थे कि हम ये प्रयत्न करने जा रहे
0: जी,
1: ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसा प्रार्थना कीजिए
0: जी, जी।
1: और हम करते रहे और फिर जैसे परिणाम मिलता है तो वही लोग हम फिर प्यार से हमसे वापस जुड़ते भी
0: जी। आपने जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और साथ साथ संगीत का भी आपने वो चयन किया, सब माध्यमों का इस्तेमाल किया, तो कुछ आप बताएं कि किस प्रकार से पालना होती है गाय की?
1: जैसे वहां पे मैं किसान मित्रों को और सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि हमने गाय और किसान को एक दूसरे के साथ जोड़ा है
0: जी।
1: तो खाली किसानी करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, खाली गाय रखेंगे किसानी नहीं करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन गाय रखना था तब हमने ऐसे जोड़ा कि कोई गाय को बांधा नहीं जाएगा, वो अपनी मर्जी से खाना खाती है, अपनी मर्जी से पानी पीती है। फिर दोहने के समय जिसको नाम बोलते हैं वो दूध देने के लिए बाहर आ जाती है, 10 दिन का बच्चा भी नाम सुन के वही बाहर आता है।
0: अच्छा,
1: तो ये ईश्वरी तत्व है, 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे
0: जी।
1: तो आधा दूध ही हम लेते, आधा बच्चे को पिलाते
0: जी।
1: तो उसका शोषण नहीं करना, जो हमारे यहाँ पे कार्य करते उनका भी शोषण नहीं करना और धरती माता का भी। फिर जो आया वो प्रसाद है
0: जी।
1: और 18 पेडिग्री की गौ माता है हमारे पास, भावनगर राजा, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब। तो 18 बच्चे देने के बाद भी 25 लीटर तक जाने वाली कुछ गौ माताएं हैं। तो ऐसी अच्छी गौ माताओं के बछड़े जिस गांव में 100 गाय होती हम निशुल्क देते हैं ताकि अगली पीढ़ी गांव में ऐसी पैदा हो कि लोग रख पाए
0: जी।
1: उनके घर पे तंदुरुस्त गाय हो, अच्छा दूध की क्षमता वाली हो। और फिर भी हमने दूध को बाय प्रोडक्ट बनाया क्योंकि दूध ऊंचा नीचा होगा, सबकी नजर ऊंची नीची होगी। हमने गोबर और गौमूत्र को मुख्य प्रोडक्ट खेत के अंदर बनाया।
0: अच्छा,
1: और वो उसको अवेलेबल फॉर्म करने के लिए हमने एक बैक्टीरिया तैयार किया है, वो पंचगव्य में से आइसोलेट किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको कहूंगा कि वो बैक्टीरिया डालने से 7 दिन में ही यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड बंद हो जाएगा और उत्पादन केमिकल जितना उससे डबल और 3 गुना भी हमने लिया है
0: जी।
1: तो बिल्कुल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में माननीय चंद्रेश भाई और यहाँ की जो भी टीम है और हमारी गौशाला में दोनों जगह पे आकर के इस चीज का निःशुल्क प्रशिक्षण पा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है किसान। जैसे आप किसान भाइयों को मैं की बात बोलूंगा, बहनों को, कि आप अगर 10 एकड़ भूमि है तो पहले 20x20 या 50x50 फीट में करके देखिए और परिणाम मिले तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि गौ माता क्या है। तो देशी गाय के गोबर का एनालिसिस हमने करा है तो 1200 कंपाउंड निकले जो पूरे विश्व में किसी के मल में नहीं है। देशी गाय के मूत्र में हमने एनालिसिस करा है 5100 कंपाउंड निकले जो किसी के भी मूत्र में नहीं है। महाऔषधि है वो
0: जी।
1: लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में जब हमने पौधे को दिया
0: जी।

0: समझ में आ जाएगा। एक कल्चर आता है उसके अंदर 100 बैक्टीरिया होते हैं, वो कोई 24 है जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन दे देंगे, तो मतलब यूरिया आपको मिल गया, फॉस्फोरस देने वाले अलग है। यही बैक्टीरिया आपको स्प्रे करना है तो पेस्टिसाइड का काम करेगा, अपने शरीर में से रस छोड़ता है, किन्हीं काम के कीटक दूर रहेंगे। तो ये सारा प्रशिक्षण हमारा, आप एक वीडियो चैनल है यूट्यूब गोपाल भाई सुतरिया उस पर देख सकते हैं, और एक मॉड्यूल यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में चंद्रेश भाई और यहाँ की जो कृषि की जो टीम है, बहन और भाई जो संभालते हैं, उनसे आकर के वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अहमदाबाद में हमारी बंसी गिर गौशाला है, वहां पर भी आप नोंदणी करके या फोन नंबर प्राप्त करके वहां पे फोन करके, पूरा निशुल्क योजना है, इसमें किसी भी प्रकार के पैसे का कोई व्यवहार ही नहीं है। तो सिखाते भी फ्री है, वो कल्चर भी हम निःशुल्क देते हैं। तो बिल्कुल किसान मित्रों, इसका जरूर लाभ लीजिएगा। आपकी जमीन में बिकनी चाहिए, आपकी गाय बिकनी नहीं चाहिए, और स्वाभिमान से आप कैसे खड़े हो जाए और वापिस शहर से ज्यादा आमदनी आप कृषि के द्वारा कैसे कर पाए, आने वाला समय कृषि का है। तो बिल्कुल मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है, इसको समझिए और थोड़ा सा प्रयोग करिए, आपका पौधा और आपकी मिट्टी आपसे बात करेंगे।
1: जी क्या बात है। नहीं जी, आपकी दिनचर्या क्या होती है?
0: जी जब से ये कार्य लिया तो दिनचर्या का अता पता लगभग रहा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन सवेरे लगभग 4-5 बजे उठना
1: जी।
0: और गुरु जी को याद करना, ईश्वर को याद करना, और नित्य क्रम करके जो 28 साल से गुरु जी ने जो दिया है वो पूजा अर्चन करके फिर बस यही गाय का कार्य में लगे जाते हैं। तो पिछले 5 सालों में तो लगभग हमने 22 राज्यों में 500 शिविर करी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो कभी कभी तो हफ्ते में 2-2 घंटा ही एवरेज सोने को मिलता है, तो कभी आगे पीछे जो होता है। लेकिन गौ माता आधारित जो औषधि है
1: जी,
0: वो पा करके ये कार्य अभी भी कर पा रहे हैं, नहीं तो शरीर खराब हो जाए
1: जी।
0: तो 10 रोग है जिन्हों में हम मतलब नी रिप्लेसमेंट बोला हो, हेयर फॉल हो, पेट की समस्या, पेट में से सभी रोग खड़े होते हैं
1: जी।
0: स्किन डिजीज हो, चमड़ी का रोग हो, रेस्पिरेटिव, तो ये सारे रोगों में लगभग 90% सक्सेस रेशियो हमने गौ आधारित पूरी GMP लाइसेंस के साथ फार्मेसी बनाई है
1: जी। क्या
0: उसी का उपयोग हम करके
1: जी।
0: तो गाय का उपयोग जैसे मैं किसान मित्रों एक ही बोलूंगा, जैसे दूध आपके घर पे वो अमृत है, आप दूध को खाने का सही तरीका भूल चुके हैं, दूध को किसी सब्जी के साथ नहीं जमता है, विरुद्धार हो जाएगा, खाली परवल वो भी घी में बनाए तो, दूध को कोई फल के साथ नहीं जमता है, सिर्फ मीठा आम, तो हम खाते हैं गलत तरीके से और फिर हमें सोचा उतना परिणाम नहीं मिलेगा। तो तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाना कैसे वो भी हम जब संजोग मिलेगा तो और भी डिटेल में आपको बताएंगे। पर आप आपके घर पे ही स्वर्ग कैसे बना सकते गौ आधारित, वही परंपरा को वापिस हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं
1: जी। बहुत बड़ा प्रयत्न है और एक तरीके से हमारी जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद का भी आपने प्रयोग किया, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे गौमूत्र का एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले
1: जी।
0: उसके अंदर आज तक जितनी एलोपैथी दवाई निकली, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, स्टीरोइड, वो सारा कुदरती स्वरूप में निकला। उसका पीएच 8 से ज्यादा है तो अल्कलाइन रखता है बॉडी को, और उसी प्रकार उसके अंदर नेचुरल फॉर्म में स्टीरोइड भी निकले, गोल्ड के पार्टिकल्स निकले, जो सुवर्ण धातु बताते हैं सुवर्ण भस्म आयुर्वेद में वो भी निकला, और नैनो पम में और पाच्य स्वरूप में। घी, जैसे मैं घी हर महीने 2 किलो खाता हूँ, अकेला हर रोज मिठाई खाता हूँ, लेकिन ये बाहर का खाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे, बट घी खाने की परंपरा, घी बनाने की परंपरा
1: जी।
0: तो वो जो सारा सिस्टम समझ लिया ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसान मित्रों, 25,000 रुपये लीटर Omega-3 Omega-6 की कैप्सूल मछली के तेल से मार्केट में बिकती है, वो 2 चम्मच देशी गाय के बिलोने के घी में है। 1,00,000 रुपये बिटारेट बिकता है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, 2 चम्मच देसी गाय के घी में है, बट वो खाना कैसे
1: जी।
0: तो बहुत सिंपल तरीके हमने तैयार करे हैं और बहुत कम बजट में हमने कुछ औषधियां निकाली है, उसका भी अगर आप किसी को लाभ लेना चाहते हैं तो निशुल्क निदान होता है, तो भी आप कभी भी हमारी गौशाला में आ सकते हैं। और हम कैसे आपके घर पे ही आप काफी चीजों से अच्छे रह सकते हैं, जैसे मैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए एक बात बताऊंगा कि मासिक धर्म के आपको कोई भी इश्यू, हार्मोन इंबैलेंस हो, तो दुर्वा जो श्री गणेश भगवान को माथे चढ़ती है वो 200 ग्राम लीजिए, पानी में मिक्सी बना के चटनी बनाइए, कपड़ा छान कीजिए और सवेरे खाली पेट पी लीजिए, और 2 घंटा उसके बाद खाना नहीं, है ना, इसको करिए, 2 महीने में आपको ठीक होना ही होना है। तो ऐसी बहुत सरल चीजें जो खेत किनारे और आपके रसोई घर में है और गौ आधारित, वो कैसे आप श्रेष्ठतम जीवन जी सकते हैं, अगर आपने ठान लिया तो पूरा घर परिवार आपका तंदुरुस्त रह सकता है
1: जी।
0: धन्यवाद
1: जी। आपके पास समय कम है, 2 सवाल और थे कि अगर अभी किसानों को कुछ बदलाव करना है पहला स्टेप क्या होता है?
0: पहला स्टेप किसानों को एक ही है कि जो भी करे ठीक करे। जैसे आपके पास भले 10 एकड़ भूमि हो, हमारे पास आएंगे तो हम बोलेंगे 50x50 फीट, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। आधा अधूरा किसान मित्र मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छी चीज का बाल मृत्यु हो सकता है। तो एकदम भरोसा रखिए, समझिए पहले एक ही सीजन में आपको पता चल जाएगा, 7 दिन में आपका पौधा आपसे बात करना शुरू

0: कर देगा। तो जितना करे सही करे, और उसको विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करिए और एग्जिट प्रोटोकॉल के साथ करिए, बस वही मेरी विनती रहेगी।
1: ये नंदीगिर योजना के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
0: जी, नंदीघर ऐसा है कि देखिए, अच्छा नंदी बहुत कीमत बढ़ा दी है ब्रीडर्स ने,
1: जी
0: तो हम लोग ने क्या किया कि जिस गांव में 100 गाय है उधर हमारा एक नंदी निशुल्क जाता है,
1: अच्छा
0: और 25 सेंटरों में उसका खाने पीने का खर्चा भी कभी कभी हमारे यहाँ से जाता है।
1: जी
0: तो एक नंदी 100 गाय को फॉलो कर सकता है, और नंदी के ऊपर आधार रहता है, 80-90% गुण नंदी खींचता है। तो अगली जनरेशन की तंदुरुस्त कैसे होना, नंदी का गुण क्या होना, लक्षण क्या होना, गाय के लक्षण क्या होना, तो हमारे YouTube के ऊपर वीडियो है गोपाल भाई सुतरिया नंदी के लक्षण, वो आप जरूर देखना किसान मित्रों। तो बिल्कुल वो नंदी कैसे चयन करें और नंदी के द्वारा पूरी अगली जनरेशन कैसे बदल सकती है। दूसरा, जो भी स्थानीय नस्ल है उसी को सम्मान पूर्वक कैसे तुरंत एक ही साल में दूध बढ़ाया जा सकता है। हमें डबल ट्रिपल तक लेके गए हैं, तो 1.5 लीटर वाली डांगी को भी 4 लीटर पे लेके गए, वो कैसे करना वो इम्पोर्टेंट है किसान मित्रों। आपको गोबर देख के पता चलना चाहिए कि आज गाय माता का पाचन कैसा है। तो बस ठीक तरीके से रखना सीखिए, अपने आप सब ठीक होने लगेगा।
1: जी, क्या बात है, तरीका सीख जाए तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं।
0: जी
1: जी, कोई और संदेश जो आप गांव में, जो भी बच्चे भी रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं और बकरी चराने भी जाते हैं और बचपन से ही प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश या आप लोगों के लिए?
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। उत्तम खेती मध्यम व्यापार कनिष्ठ नौकरी कहा गया है, क्योंकि सच में किसान सबको खिलाता है और गौ माता सबको बाद में 100 साल दूध पिलाती सगी माँ के बाद में। तो किसान मित्रों, आप सही में प्रोडक्टिव काम कर तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, और सभी को मैं कहूंगा कि किसान जहां मिले उसको 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहिए। और सभी भाई बंधुओं को और बहनों को मेरी विनती है कि माता पिता और आचार्य हर रोज अपने बच्चों को संस्कार डालने का एक प्रैक्टिस शुरू कीजिए, उसके मन में आदर्श उनके ही रोज बदलिए, उनका कर्म निष्ठा और धर्म निष्ठा बढ़ाइए। वो जहां पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डिग्री मायने नहीं रखता है, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ आपने बच्चा बना दिया, और पल पल ईश्वर जो भी आप पंथ में मानते हैं पल पल अपने हृदय में महसूस करने का प्रयत्न कीजिए, और सच में हृदय पूर्वक काम करेंगे, ईश्वर देने के लिए बैठा है, बस आप उसके पात्रतावान बनाइए, अपने बच्चों को ईश्वर दे देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने मुझे जिस प्रकार मौका दिया किसानों के साथ बात करने।
1: जी,
0: और सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, एक बार पधारिए गौशाला।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल भाई जी आपका, और बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने जो शेयर किया वो एक एक जो शब्द है वो हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, आपको कोई सवाल है आप हमें रेडियो मधुबन पर मैसेज कीजिए 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, शनिवार की सुप्रभातम, कैसन हैं? आशा करते हैं सब लोग बारिश का बहुत मज़ा ले रहे होंगे। गर्मा गर्म चाय, कहीं पकौड़े, कहीं समोसा और कहीं और चीज़ ऐसी गर्म गर्म बना के खा रहे होंगे, है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान में बारिश पड़ रही, बहुत पानी की ज़रूरत रही भाई, तो हम भी खुश हैं, आप लोग भी खुश होंगे ऐसी आशा करते हैं। और आपकी प्रभा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का दिल से बहुत बहुत बहुत बहुत स्वागत करती है। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एक कहानी से, बहुत सुंदर कहानी है। शमशान से लौटते समय पूरा परिवार में गहरा सन्नाटा रहा। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने प्रिय मित्र रिश्तेदार को अंतिम विदाई दी थी। किसी की आंखें नम थी, कोई चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, जीवन इतना छोटा क्यों है? इस बीच 9 साल का आर्यन अपने दादाजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था और कुछ दूर चलने के बाद उसने मासूमियत से पूछा, दादाजी, जो अंकल आज चले गए, कब वह अपना घर, गाड़ी और बैंक का सारा पैसा भी अपने साथ ले गए? दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं बेटा, इंसान इस दुनिया से खाली आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ सिर्फ उसके अच्छे कर्म, लोगों की दुआएं और उसकी अच्छी यादें जाती है। आर्यन कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने ऐसा सवाल पूछा कि वहाँ चल रहे सभी लोगों के कदम रुक गए। आप सब कुछ यहीं रह जाता है तो लोग अपने ही लोगों से बात करना क्यों छोड़ देते हैं? छोटी छोटी बातों पर सालों तक नाराज क्यों रहते हैं? अगर एक दिन सबको चले जाना है तो लोग गले लगाकर क्यों नहीं जीते? उसकी मासूम आवाज सुनकर सबकी आंखें झुक गई। किसी के पास उत्तर नहीं रहा। दादाजी ने उसे सीने से लगाया और बोले, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो सोचता है अभी बहुत समय है, वो माफ़ी कल मांग लूँगा, प्यार बाद में जता दूँगा, रिश्ता फिर कभी ठीक कर लूँगा, लेकिन समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कई बार कल आने से पहले ही जिंदगी की किताब बंद हो जाती है। आर्यन ने तुरंत कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर कभी किसी अपने से नाराज होकर नहीं सोऊंगा। अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसी दिन माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मुझे किसी को खोने के बाद पछतावा नहीं है। उसकी ये बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आई। घर पहुँचते ही एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जो दो भाई बरसों से जमीन के झगड़े में बात नहीं करते रहे, उनमें से छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन लगाया, भैया, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, जमीन बाद में भी बांट जाएगी, लेकिन अगर रिश्ता टूट गया तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर बड़े भाई की भर्राई हुई आवाज आई, मुझे भी माफ़ कर दे, मैं भी तुझे बहुत याद करता था। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। उधर परिवार की एक बहू जो कई महीनों से अपनी सास से नाराज थी, चुपचाप उनके कमरे में गई, उनके पैरों पर सिर रख कर बोली, माँ जी, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उठाकर गले लगा लिया। उसी शाम में एक बेटे ने बरसों बाद अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाया, एक पिता ने अपने बेटे को पहली बार गले लगाया, एक बहन ने अपनी रूठी ही बहन को संदेश भेजा, बहन रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं, घर आ जाओ। धीरे धीरे पूरे परिवार का माहौल बदलने लगा। दादाजी ने रात को सभी बच्चों और बड़ों को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा धन कमाना बुरी बात नहीं है, बड़ा घर बनाना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर उन दीवारों के बीच रहने वाले अपने ही लोग हमसे दूर हो जाएं, तो वो घर महल नहीं सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर रह जाता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन की धवलता यानी मन की पवित्रता तभी बनी रहती है जब हमारे दिल में प्रेम, क्षमा और अपनापन हो। जो व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है, उसका मन कभी बोझिल नहीं होता। जो हर दिन प्रेम बांटता है, उसके जाए के बाद लोग उसकी दौलत नहीं उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं। फिर उन्होंने सबको एक छोटा सा संकल्प दिलाया, कभी भी गुस्से में सोने से पहले अपने अपनों से बात करेंगे, गलती होने पर माफ़ी मांगने में देर नहीं करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, रिश्तों को अहंकार से ऊपर रखेंगे, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। सभी ने हाथ जोड़कर ये संकल्प किया। समय बीतता गया। उस दिन की घटना पूरे परिवार के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। अब घर में त्योहार सिर्फ मिठाइयों से नहीं बल्कि दिलों के मिलने से मनाए जाए लगा। जहां पहले शिकायतें रहीं वहां अब मुस्कानें थी, जहां पहले दूरी रही वहां अब अपनापन हो गया, और जब भी कोई नया विवाद शुरू होता सबसे छोटा आर्यन मुस्कुरा कर सिर्फ एक ही बात कहता, याद है ना शमशान से लौटते समय दादाजी ने क्या कहा था, आखिर में साथ सिर्फ कर्म और प्यार ही जाता है। बस इतना सुनते ही सबका गुस्सा शांत हो जाता। उस दिन सबने समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन कमाने में नहीं बल्कि ऐसे रिश्ते कमाने में है जिनकी आंखें हमारे जाने के बाद भी हमें ये प्यार से याद करें। ये छोटी सी बात से आप का सीखें, जिंदगी बहुत छोटी है, अपनों से प्रेम जताने, माफ़ी मांगने और रिश्ते निभाने में कभी देर मत कीजिए। धन पद और संपत्ति यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपका प्रेम, आपके संस्कार और आपके अच्छे कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाए के बाद लोग आपकी दौलत नहीं आपकी इंसानियत को याद करें। देखिए भाई, ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए तो बहुत आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। परिवार आपका जैसे कहते हैं घर घर स्वर्ग बनना चाहिए, वो बन जाएगा। कहे कि आज अगर कोनो चीज़ की कमी है तो वो अपनापन की ही कमी है, और वो जब जीवन में आ जाता है तो जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। समय और शब्द दोनों अनमोल है, इन्हें सोच समझकर खर्च करें। मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे और जीवन सुखमय बन जाएगा। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें, दूसरों से नहीं अपने कल से बेहतर बने, यही निरंतर प्रगति का मार्ग है, यही में जीवन की सच्ची सफलता छिपी है। किसी ने का खूब कहा है कि साइकिल तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो, और इसी तरह हमारी जिंदगी भी तभी सही चलती है जब उसमें चैन हो। दोनों चैन बहुत जरूरी है। सच्ची सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, अच्छे संस्कार, मधुर

व्यवहार और सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। किसी ने कहा, खूब कहा है कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो आपस में बात करने से ही बात बनती है, आपस में बात न करने से आमतौर पर बातें बनती है जिसका लोग हंसकर मजाक उड़ाते हैं। आशा करते हैं आप हमारी बात पर ध्यान देंगे और अपने घर को, अपने संबंध को, अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को कहीं ना कहीं माफ़ करेंगे, अपनापन दिखाएंगे और जीवन में वो कमाई करेंगे जो हमारे साथ जाए वाली है, अच्छे कर्म, खुशी और दूसरों को प्यार देना। चलिए यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा ये गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्रतिशोध की अग्नि और भीष्म का पतन। महाभारत के समय काशी नरेश ने अपनी तीन पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबलिका का स्वयंवर आयोजित किया। उसी समय हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म अपने छोटे भाई विचित्र वीर के विवाह के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को पराजित कर तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर अंबा ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन राजा सालु को अपना पति मान चुकी हूं, कृपया मुझे उनके पास जाने दे। भीष्म धर्म का पालन करने वाले थे, उन्होंने अंबा को सम्मान पूर्वक साल्व के पास भेज दिया। लेकिन जब अंबा वहां पहुंची तो राजा सालो ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वो कहा, तुम्हारा हरण भीष्म कर चुके हैं, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इस सुनकर अंबा का हृदय टूट गया। वो फिर भीष्म के पास लौटी और बोली, मेरी ये दशा तुम्हारी वजह से हुई है, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं कर सकता। अब अंबा के पास कोई सहारा नहीं बचा। वो एक एक राजा के पास न्याय की गुहार लेकर गई, लेकिन भीष्म जैसे अपराजय योद्धा से शत्रुता मोल लेने का साहस किसी में नहीं रहा। अंत में वो भगवान परशुराम के पास पहुंची। परशुराम को उसकी पीड़ा पर दया आई, उन्होंने अपने शिष्य भीष्म को युद्ध की चुनौती दी। गुरु और शिष्य के बीच लगातार 28 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, देवता भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अंत में कोई विजेता नहीं बना। परशुराम भी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। अंबा समझ गई कि इस जन्म में उसे न्याय नहीं मिलेगा। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंबा ने कहा, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं स्वयं भीष्म के वध का कारण बन सकूं। भगवान शिव ने कहा, अगले जन्म में तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इस सुनकर अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वो राजा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी। समय बीतता गया और अंततः महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र में जब शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे खड़ा हुआ, तब भीष्म ने उसे पूर्व जन्म में स्त्री होने के कारण लक्ष्य बनाना उचित नहीं समझा। उसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर असंख्य बाण चलाए। महान योद्धा भीष्म सरसैया पर लेट गए और इस प्रकार अम्बा का वर्षों पुराना प्रतिशोध पूरा हुआ। अन्याय चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका परिणाम एक दिन अवश्य सामने आता है। शक्ति के साथ न्याय, करुणा और सही निर्णय भी उतने आवश्यक है। इस जीवन में हम जरूर ध्यान रखें, सिर्फ शक्ति से कुछ नहीं होता, जीवन में कुछ न कुछ हमारे हाथ में भी होना चाहिए। और सिर्फ क्रोध ही या जिद ही इंसान को सुख नहीं देती, कई बार उसको हमें अपनों के लिए त्यागना भी पड़ता है। और जो इंसान ये बात को समझ जाता है, वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाता है। आपके बोल कितने भी महान हो, परंतु आप अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाएंगे। सच्ची सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, अच्छे संस्कार, मधुर व्यवहार और सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखिए। किसी ने कहा, खूब कहा है कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो आपस में बात करने से ही बात बनती है, आपस में बात न करने से आमतौर पर बातें बनती हैं। हर दिन परमात्मा का धन्यवाद करें, जीवन में सुख और शांति स्वतः बढ़ने लगती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार झुकना जानता है, वो कभी टूटता नहीं। नम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। शायद ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लेना चाहिए। और जिसने इस सीख को समझ लिया, उसका जीवन बल्ले बल्ले है। जिनको परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर भरोसा है, उनके निष्पक्ष न्याय पर विश्वास है, उन्हें इस संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए, कोई भी लक्ष्य पहली बार में ही सफल नहीं होता, इसलिए धैर्य को हथियार बनाकर आगे बढ़ते रहिए। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। आज हम शुरू से वही बात कह रहे हैं, जीवन में अहंकार ना हो, जीवन में नम्रता हो, क्षमा हो, प्रेम हो, अपनापन हो, तब जीवन हमारा संवर जाता है। हर पल खुद को शांत रखने से आप खुद को ठीक कर लेंगे, इससे आपका आत्मविश्वास फिर से जाग उठेगा। कहे कि शांत मन से जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें सफलता अवश्य मिलती है। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि पूजा तो रावण भी करता था। अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि कुदरत का नियम है कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं पर रहते हैं। सड़क जो है वहीं की वहीं है, शिक्षक ही जीवन भर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। एक शिक्षक से पढ़ा लड़का IAS ऑफिसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है और बड़े बड़े पद पर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है, लेकिन शिक्षक ही रह जाता है। गाड़ी सड़क पर से गुजरती है, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, सड़क वहीं की वहीं रह जाती है। इन दोनों का धन्यवाद करें, जीवन में खुश रहेंगे। और चलिए यही बात पर फिर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बतियाएंगे। आज लाइव कर रहे हैं, फ़ोन घनघना दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं गीत।

कहता है कि पैसे कमाएंगे तो घर बनाएंगे तो सुख होगा। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो अपने बेटे की शादी करता है,

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: टुनटुना राजू आज बहुत उदास रहा। आजू के हाथ से गिरने की वजह से मोबाइल की स्क्रीन टूट गई रही। शोरूम वाले ने उसे कल तक ठीक करके देने के लिए बोला है। क्या करूं, टाइम ही पास नहीं हो रहा। राजू, ओ राजू, अंदर से माँ ने आवाज लगाई तो राजू आया। माँ कहकर उठकर चल दिया। पिछले 3-4 साल में शायद ये पहला अवसर था जब माँ की एक आवाज पर राजू ने जवाब दिया हो। बोलो माँ। बेटा आज घर में सब्जी नहीं है, सुबह पानी की मोटर ने पानी देर से उठाया बेटा, इसलिए मैं तेरी मौसी बगल वाली आंटी के साथ सब्जी लेने नहीं जा पाई। मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा ये काम कर देना बेटा, माँ ने लगभग मनोहार करते हुए कहा। खाली बैठने से अच्छा है चलो आज बाजार ही घूम आता हूँ। मन ही मन मैंने सोचा अच्छा बताओ क्या लाना है। माँ ने मुखमंडल पर एक नई सी चमक थी। माँ ने सब्जी की लिस्ट और थैला मुझे थमा दिया। बाजार जा रहे हो बेटा, ठहरो मैं भी चलता हूँ, दादाजी ने छड़ी उठाते हुए कहा। हाँ दादाजी चलिए। बेटा मेरा ये चश्मा टूट गया है, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से टाइम नहीं लगता, मिलता ही नहीं टाइम, तुम ही ठीक करवा कर ला दो। दादी जी ने मेरी तरफ बढ़ते हुए टूटा हुआ चश्मा मुझे थमा दिया। मैं और दादाजी स्कूटी पर बाजार चल दिए। दादाजी को नाई की दुकान पर छोड़कर मैंने सब्जी ली और दादी जी के चश्मे का फ्रेम बदलवाया। मैं थोड़ी ही देर में फ्री हो चुका था। नाई की दुकान पर पहुंचा तो दादाजी का नंबर अभी नहीं आया था, कटिंग करवानी थी उन्हें। बेटा अभी मुझे आधा घंटा और लग जाएगी, इतने तुमको कोई और काम है तो कराओ, दादाजी ने कहा। अरे हाँ याद आया, रमेश का घर यहीं बगल में ही तो है, कितनी बार बोल चुका है कभी घर आना यार। मैंने मन ही मन सोचा। मैं रमेश के घर पहुँचा तो घर पर ही था। आंटी से नमस्ते हुई और हम वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। आंटी चाय ले आई, खूब गपशप हुई, पता ही नहीं चला कब आधा घंटा बीत गवा। आज कितने दिनों बाद किसी दोस्त के घर आया था। अच्छा रमेश चलता हूँ, दादाजी वेट कर रहे होंगे, आते रहा करो बेटा, आंटी ने कहा। नाई की दुकान पहुँचा तो दादाजी फ्री हो चुके थे। हम दोनों घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दादाजी ने स्कूटी रुकवा कर कुल्फी वाले से कुल्फी खाई और मुझे भी खिलाई। दादाजी ने बहुत सी बातें बताई उस कुल्फी वाले के बारे में, काफ़ी पुराना था उस कुल्फी वाले का इतिहास। वाकई कुल्फी थी भी गजब की, भूल ही गया था उसका स्वाद।

0: अगर पहले कभी खाई भी होगी तो याद नहीं। हम वहाँ से चलकर घर पहुँचे तो दोपहर में 2 बज चुके थे। दादाजी बोले, निहाल कर दिया बेटा, तुम जा रहे थे तो साथ चला गया, नहीं तो गर्मी में हालात खराब हो जाती। दादाजी ने स्कूटी से लगभग उतरते हुए कहा, कितना आनंद था उस पल में। दादी जी के हाथ में जब चश्मा थमाया तो सैकड़ों आशीषों की पिटारी उपहार स्वरूप मिली। माँ ने भी फटाफट सिकंजी बनाकर पिलाई और पास बैठकर अपनी साड़ी से मेरा पसीना पोंछा। शायद बहुत बड़ी खुशी दी थी मैंने उन्हें आज सब्जी लाकर। थोड़ी देर में खाना तैयार बन हो गया। मैंने खाना खाया और सो गया। शायद थोड़ा थक गया था आज बाजार जाकर। 2 घंटे की नींद के बाद उठा तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। कैसे हो बरकुलदार, पापा ने पूछा तो मैंने ठीक से सिर हिला दिया। पार्क चलोगे मेरे साथ? खाली घर बैठने से तो अच्छा चलो आज पापा के साथ पार्क ही हो आता हूँ। इस सोच कर मैंने हामी भर दी। आधा घंटे बाद हम दोनों पार्क में थे। पढ़ाई, खेल कूद और न जाने कितने विषयों पर बातचीत हुई। पार्क में पापा के दोस्तों से भी मिला। शायद पहली बार ही मिल रहा था क्योंकि कभी मोबाइल से इत्र की दुनिया मैंने देखी नहीं थी। बड़ा फ्रेश सा महसूस कर रहा था आज मैं खुद को। 2 घंटे पार्क में बिताकर घर लौटे तो 8 बज चुके थे। खाना तैयार रहा। खाने की टेबल पर हम सभी ने बैठकर खाना खाया। खूब हंसी मजाक हुआ। माँ और दादाजी ने मेरी खूब तारीफ की। उन्होंने बताया कि आज मैंने बाजार के काम निपटा कर उनकी कितनी मदद की। क्यों बरखुरदार, आज तुम्हारे पास तुम्हारा टुनटुना नहीं है? पापा अक्सर मेरे मोबाइल को टुनटुना ही कहते हैं क्योंकि वो बजता ही रहता है, कभी व्हाट्सएप और कभी फेसबुक की नोटिफिकेशन की टोन से। पापा उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक कर कर देगा। तभी मैं सोचूं, हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालनपुर से कृष्ण साहब बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति, नमस्कार, कैसे हैं भैया?
1: बस एकदम अच्छे हैं।
0: हाँ,
1: और आपने जो और क्या बोला उसमें तो देखने को जाओ ना तो मैंने कई 25 से 30 ड्रावर बनाए होंगे।
0: हाँ
1: हाँ, और मेरे को गाड़ी सिखाने में कोई कसूर नहीं है मेरा। मैं खुद सीखा, गैरेज के अंदर 4 बस काम करके आगे पीछे करके मैं खुद सीखा।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी।
1: और ऐसा है कि कई लोग जो मैंने भी सीखा इसमें, कई सरकारी बसें चलाई, कोई तालुका पंचायत जिला पंचायत के अंदर ये लोग करते नहीं, ये वो कई कई बार मेरे को मिलते हैं कि भाई इतना भाई आपकी बदौलत से हम ये हमको अच्छा है ये नौकरी मिली
0: जी,
1: तो ये लोग अपने को गुरु मानते हैं
0: जी। जी, बहुत अच्छी बात है। दुआएं लोगों की आप प्राप्त करते हैं। हाँ, किसी को जी, जी, कोई गुण दे के सिखा के, बहुत अच्छी बात है भैया। जी जी, जी, जी, जी, जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी कमाई है जीवन में।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, ऐसे ही।
1: और इनके भी आशीर्वाद हमको भी मिले तो इनके भी आशीर्वाद से भी हमको अच्छा है।
0: जी जी, बस यू ही नेक कार्य करते रहिए, दुआएं इकट्ठे करती रहिए, वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, वही सबसे बड़ा धन है। हाँ?
1: जी जी जी, जी। और इनको मेरा मंत्र एक ही मैंने दिया है।
0: हाँ,
1: के देखो के दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुंचा दूंगी, और जरा सा नींद का झुका आया तो कयामत सुला दूंगी।
0: मैंने भी एक ट्रक के पीछे पड़ा था, धीरे धीरे चलोगे तो हर मोड़ पर मिलोगे, जोर से चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। यानी तेज गाड़ी चलाएंगे तो डेथ हो जाती है, तो फिर हरिद्वार में मिलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो हर मोड़ पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब जीवन में इतनी ज्यादा भी स्पीड ना हो, है ना? बहुत
1: जी जी
0: जी जी, जी, जी।
1: गुजराती में कहा कि खुदना माटे बदा जीवे छे, पण बीजा ने जीवाड़वा जीवी लइए, ये जिंदगी जीवी कहेवाय।
0: सही बात है जी, बहुत अच्छे भैया। ऐसे ही दुआएं प्राप्त करते रहिए, देते रहिए, खुश रहिए।
1: और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: धन्यवाद। पूरे रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से आपको भी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू।
0: ओके। तो पापा, उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई थी, ठीक होने को दे रखा है, कल ठीक कर देगा। तभी तो मैं सोचूं, आज हमारे बरखुरदार को हमारे पास बैठने का वक्त कहाँ से मिल गया। मैं बस झेप कर रह गया। सच्ची तो कह रहे थे पापा, शायद पिछले 3-4 साल में परिवार के इतना करीब मैं आज के अलावा शायद ही रहा था। खाना तो अक्सर मैं अपने कमरे में ही खाता था। वो आवाज़ लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन शायद आज पहली बार था जब मैंने हर किसी की पहली आवाज़ पर उनको जवाब दिया था, अच्छा चलो सो जाओ। सुबह 5 बजे उठकर मेरे साथ पार्क में चलना, सुबह की हवा और भी सुहानी होती है, पापा ये कहकर सोने चले गए। मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। मोबाइल पास नहीं था, इसलिए बिस्तर पर पसरते ही नींद आ गई। गुर्र गुर्र की आवाज़ से अचानक आंखें खुल गई। देखा था सुबह के 8 बज रहे थे, लेकिन पापा ने तो सुबह 5 बजे उठने को कहा था। और ये का फ़ोन तो आज ठीक होकर मिलने वाला था, फ़ोन किसने लाकर रख दिया मेरे सिराने? ओ तो का ये सब सपना था? दिल ने खुद ही दिल से सवाल किया और दिल ने दिल को ही जवाब दिया, हाँ ये सपना था। उसने एक झटके से टुनटुने को टेबल पर रख दिया और माँ पापा दादाजी चिल्लाता हुआ नीचे की ओर दौड़ पड़ा, नाश्ते की टेबल की तरफ, जहाँ उसने अपने रिश्ते, उसकी खुशियाँ पलके बिछाए उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टुनटुना अब भी बज रहा था, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका गुलाम आज आज़ाद हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि कहानी बताए का मतलब क्या है। आज हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं ड्राई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पहले जैसा प्रेम नहीं है। साइंस ने साधन दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, लेकिन साइंस ने कहीं ना कहीं अपनों का प्यार, अपनों का साथ अलग कर दिया है। एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 के हाथ में मोबाइल है और 6 अपने आप में बिजी है, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से हंसता नहीं, कोई किसी के काम नहीं आता, सब कुछ मोबाइल पे होए लगा। हर चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है, यूज़ करिए साधन सुविधा मिली है तो, लेकिन अति मत कीजिए। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच आपकी सोच से अलग है, उस दिन से आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएंगे। बदलाव से मत डरिए, कई बार वही नई खुशियों का द्वार खोलता है। अगर मैं दूसरों की कमियां मन में रखता हूं तो वो शीघ्र ही मेरी बन जाएगी। मत रखिए, जो मन से शांत है वही जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत है। खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए सदा खुश रहो और खुशी बांटो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वो सही समय पर सुख और सफलता बनकर लौटते हैं, इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करने का संकल्प ले, यही सच्ची कमाई है। चलिए यही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर बताएंगे। सुनिएगा ये गीत, बहन जी को निनक वासा गीत सुना दीजिए।

बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के परम भक्त एक संत रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था। वो कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनके लिए संसार की हर वस्तु से बढ़कर प्रभु का प्रसाद था। एक दिन संत अपने शिष्य के साथ कोनो धार्मिक कार्य से हस्तिनापुर, अभी जो दिल्ली है, वहाँ गए। कार्य पूरा होने के बाद वो वापस वृंदावन लौट रहे थे। मार्ग में अचानक उनकी बैलगाड़ी टूट गई। शाम होए लगी और आसपास केवल एक छोटा सा भोजनालय दिखाई दिया। शिष्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, जब तक गाड़ी ठीक होती है आप यहीं पर विश्राम कर लें। भोजनालय का मालिक बड़ा श्रद्धालु था। उसने संत को पहचान लिया और तुरंत शुद्ध सात्विक भोजन बनवाया। हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा ई भोजन स्वीकार करें। संत मुस्कराए और बोले, बस मैं केवल वही अन्न ग्रहण करता हूँ जिसे पहले मेरे ठाकुर श्री कृष्ण को भोग लगाया गया हो। इस सुनकर भोजनालय का मालिक, हेलो, इस सुनकर भोजनालय का मालिक बहुत दुखी हो गया। शिष्य भी सोचने लगा कि गुरुदेव सुबह से भूखे हैं, अब क्या होगा। उही समय जैसे स्वयं भगवान ने लीला रच दी। थोड़ी देर बाद एक रथ वहां आकर रुका। उसमें से एक भक्त दंपति उतरे। उनके हाथों में सुंदर बाल गोपाल की प्रतिमा थी। उन्होंने भोजनालय के मालिक से कहा, भैया

0: जल्दी से सात्विक भोजन तैयार कर दो, हमारे लड्डू गोपाल के भोग का समय हो गया है। रास्ते में विलंब हो गया इसलिए हम समय पर घर नहीं पहुंच सके। हेलो
1: दादी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति।
0: नमस्ते
1: दीदी, कैसे हो?
0: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बात बहुत अच्छे थे, देख कार्यक्रम वापस सुन रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ी से देर के बाद बात करूं आपसे, लेकिन फिर भी लेट हो गया बहुत।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी दीदी, बहुत अच्छी बातें हो रही है आज, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला, आपको बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम दीदी
0: जी।
1: और जो शुरुआत में आपने बताया कि परिवार में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लेकिन एक छोटी से छोटा सा जो लड़का ने परिवार को एक खुशियाँ वापस दे दी दीदी, ये एक ऐसा जो हम मानते हैं कि हम बड़ों से ही ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चे की भी एक अच्छा काम कर देते हैं और खुशियाँ पूरी पूरे माहौल में खुशियाँ कर देता है दीदी। तो ऐसे ही बच्चे ने जो किया कि जो भाई नहीं बोलते थे, अनबन थी थोड़ी सी, तो पूरा परिवार एक कथा हो गया और पूरी खुशियाँ वापस आ गई दीदी। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हम कोई बन बन फंसी है तो दीदी बहुत देर करते हैं, लेकिन देर नहीं करना है, तुरंत उसको माफी मांग लेना या
0: उसका
1: जोड़ देना वापस
0: जी।
1: तो ये तो एक परिवार हो जाता है, वरना आज देखो कई भाई भाई बरसों से नहीं बोलते और बोलते भी नहीं, जब तक वो कुछ पूरा हो जाता है फिर भी नहीं बोलता है दीदी, ऐसा हाल होता है अभी परिवार में
0: जी।
1: ऐसा नहीं करना दीदी, और बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आज का दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि टाइम पूरा हो रही की तैयारी है। नमस्ते दीदी, ओम शांति।
0: ओम शांति, थैंक यू। भोजनालय का मालिक आश्चर्यचकित रह गया, उसने तुरंत वही भोजन भगवान गोपाल को अर्पित कराया जो संत के लिए बनाया गया था। भोग के बाद वही प्रसाद संत के पास लाया गया। जैसे ही संत ने ये बात सुनी, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वो दौड़कर बाल गोपाल के चरणों में दंडवत लेट गए, भाव विभोर होकर बोले, हे मेरे श्याम, जहाँ मैं तेरे बिना एक ग्रास भी नहीं खा सकता था, वहाँ तू स्वयं मेरे लिए आ गया। मैं तेरा कितना ऋणी हूँ, तू अपने भक्त की छोटी सी भावना का भी कितना ध्यान रखता है। संत ने प्रसाद को अपने मस्तक से लगाया और बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उस दिन उन्हें वो प्रसाद अमृत से भी अधिक मधुर लगा। ये सब देखकर भोजनालय का मालिक भी रो पड़ा। उसने मन ही मन कहा, हे बाकी बिहारी, मैं तो कभी कभी ही तुझे याद करता हूँ, फिर भी तू अपने भक्तों की लाज रखने स्वयं चला आता है, सचमुच तेरी करुणा का कोई अंत नहीं। उस दिन वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति ने समझ लिया कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपने सच्चे भक्तों की निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास में भी निवास करते हैं। जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, उसकी रक्षा और सेवा के लिए स्वयं प्रभु कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। उसकी लीला मनुष्य की समझ से परे है, इसलिए हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। आशा करते हैं आप इन बातों को जरूर गौर करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि प्रभु की वरदान आप पर बरसते रहे, प्रभु की कृपा आप पे बरसती रहे और आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11 बजे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है बच्चों का प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुँचाए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय ये दोनों विद्यालय के मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में उनका हुनर जो टैलेंट है जो प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज एक मंच मिलेगा। बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे नादान होते हैं और बच्चे महात्मा होते हैं। बच्चे को जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो बच्चे करते हैं और माँ बाप तो खुश होते हैं, क्योंकि माँ बाप को कोई तंग नहीं करते हैं और विद्यालय में आते हैं तो माँ बाप भी अपना गृह काम में लग जाते हैं। तो आज बहुत खुशी लग रहा है, सभी बच्चों के साथ हम रूबरू होंगे और इस कार्यक्रम को हमारा संस्था प्रधान भी सहयोग देते हैं। एक इशारे में आज राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू में पहुंचे। मोडू का बच्चों का आवाज़ बारी बारी सुनने को मिलेगा, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस तरह कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में जाते हैं और बच्चों को एक मंच एक स्टेज देते हैं। बच्चे अपना हुनर को भी सबका सामने रखते हैं और इस कार्यक्रम को हमारा आसपास का गतिविधि जन जन तक पहुंचाते हैं। बहुत खुशी लग रहा है और इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए हमारा सांस्कृतिक प्रभारी मैम को भी धन्यवाद देते हैं। सबको एकत्रित कि मैम अपना परिचय देंगे, बच्चों को थोड़ा वार्म अप हो जाएगा आपका आवाज़ सुनकर, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे।
1: हाँ, ओम शांति। मेरा नाम है शोभा ग्रासिया, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू से हूँ।
0: शोभा जी, आप कितने साल से इस स्कूल में?
1: मैं 8 साल से।
0: लगातार अपना घर से बच्चों को भी एक घर से समाज से आते हैं और बच्चों को अपना भाषा से प्रस्तुत करते हैं। तो पहला प्रस्तुति हम सुनेंगे एक प्रार्थना के रूप में और सभी का नाम का साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुबह आज तो सुबह बढ़ाएंगे, अभी तो बढ़ा दिए। प्रार्थना पहले करेंगे, इसके बाद दूसरा गीत करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करते तो प्रार्थना से शुरू करते हैं माँ सरस्वती से। और सुबह मैम बच्चों को वार्म अप कर दिए, पहले एक बार मैम आए थे हमारे रेडियो कार्यक्रम में, याद है?
1: जी जी,
0: अभी भी बच्चे को याद है। तो चलिए एक प्रार्थना सुनते हैं।

0: बच्चों को ताली चाहिए। और इस तरह कार्यक्रम में बच्चे जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनका आवाज़ ही उनका पहचान होता है, क्योंकि जब उनका आवाज़ सुनते हैं तो अपना नाम बताएंगे कौन सा क्लास में और कहाँ से।
1: चट्टी।
0: नाम क्या था?
1: आरती।
0: आरती, अरे वाह।
1: आठवीं कक्षा जयंती कुमारी, बसंती कुमारी, कक्षा आठ शोभा, कक्षा आठ सुमित्रा, कक्षा आठ
2: ज्योत्सना, कक्षा सात कमला कुमारी चट्टी, दुर्गा कुमारी।
0: दुर्गा, कमला, सभी दोस्त को धन्यवाद देते हैं। इस तरह तोतली तोतली आवाज में पहला प्रस्तुति दिए, लेकिन बहुत सुंदर रूप में स्वर और लय का साथ। शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देंगे, ग्रामांचल बच्चे, आदिवासी बच्चे, गरासिया बच्चे भी कम नहीं है, और सभी ऐसे शुद्धता शुद्ध मन से अपना प्रस्तुति देते तो बहुत अच्छा हो जाता। और हमारा मैम शोभा मैम इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं, और हमारा और एक मैम भी है तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते। ये था राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला प्रस्तुति आवाज का दुनिया में सभी का आवाज जब सुनते हैं तो हमें खुशी होता है। जब इस तरह आकाशवाणी में बच्चे आते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो गांव का, शहर का और सभी का नाम रोशन होता है, विद्यालय का भी नाम रोशन होता है। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए एक आदिवासी गीत हो तो हमें कैसे लगेगा आदिवासी गीत में? तो मैम, आदिवासी गीत में बहुत मिठास होता है और शुद्धता होता है, भोलापन भी होता है। तो आप भी आदिवासी संस्कृति में आते, तो आदिवासी जो शुरू से बास करते उसको कहते हैं आदिवासी। तो आदिवासी का ऊपर में क्या जानते हैं?
2: आदिवासी जो पूर्व से जो निवास करते हैं, जो कोई ऐसी भी जातियां हैं जो कहीं से आती है, किसी देश से आती है, लेकिन हम जो है वो पूर्वों से यहीं पे है। हाँ, हमारे जो पूर्वज है उनके भी पूर्वज ठेर से यही है, यही जो निवास है उनका निवास स्थान यही है।
1: इसलिए आदिवासी जब नाम सुनते पूरा गर्व महसूस करते हैं। हाँ। कोई भी बच्चा बोला मैं आदिवासी हूँ।
2: हाँ।
1: तो इसका आदि से जो शुरू से जो बात करते हैं,
2: जी शुरू से हम जो निवास है वो आदिवासी है, जो लगभग जो 80% तो पहाड़ों क्षेत्रों में ही रहते हैं और हमारा जो है ये पशु है इनको पालन करते हैं यही है और खेती बाड़ी करते हैं ये हमारी आजीविका है। अब थोड़ा शिक्षा की और बड़े हैं तो शिक्षा में भी है, लेकिन फिर भी हमारे जो है मगरेज जो भी मिलता है उनको बेचा करते हैं, पशुओं को रखते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, यही आजीविका है।
1: तो क्योंकि आबू रोड आबू सिरोही जिला खासकर TSP एरिया है। हाँ। और सभी आदिवासी बच्चे बहुत नामांकन में वृद्धि होता है। तो और एक आदिवासी गीत प्रस्तुत करेंगे, तो चलिए वेरी गुड, शुरू हो जाए बच्चे, रेडी?
3: हाँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदिवासी अंचल में जो जाते हैं, आदिवासी जो गीत में जो भजन में जो मिठास है, जो शुद्धता देखने को मिलता है, तो आज बच्चे मोड़ू का बच्चे भी कम नहीं है, सब तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

कार्यक्रम का अगला कड़ी में बच्चों को पुनः स्वागत करते हैं। एक मंच के लिए जो तरसते हैं, आज वो मंच मिल रहा है। आज तो कार्यक्रम ही कार्यक्रम बच्चों का, आज नो बैग डे जैसे कोई पढ़ाई नहीं, पूरा मनोरंजन। उधर भी गीत चल रहा है, इधर भी नाच चल रहा है और इधर गीत चल रहा है। तो सभी भागीदारी को धन्यवाद देते हैं और एक प्रस्तुति के लिए रेडी शुरू।

0: गोसाई में बेटी तो दो कुल को उधार करती है, एक कुछ कुल को उधार कर देती है। बेटी एक पराया धन नहीं है, बेटी सबके लिए धन है, मान है, धन है, तन है। तो बेटी पराया नहीं है और अपना है। जहाँ बेटी रहेंगे वहाँ तो साफ स्वच्छता, परिवेश, पर्यावरण सब कुछ मिलता है, क्यों बेटी के पास इतना शक्ति है। क्योंकि शिव शक्ति कहते हैं बेटियों, क्या कहते हैं, शिव शक्ति, शिव का शक्तियाँ है ना। बेटी हमारा गुड़िया बहुत परिया है और सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद। ये था राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय का नन्हे मुन्ने बच्चों का बेटियों का ऊपर में एक कविता जो कि सुंदर रूप में प्रस्तुति दिए, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और अपना मन का बात गीत के माध्यम से बोलते हैं। तो ये ग्रुप कम नहीं है, छोटा सा ग्रुप है, लेकिन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सब बड़े होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई मैडम बनेंगे, है ना। क्या बनेगी तुम?
1: पुलिस।
0: देखो पुलिस का काम होता है चोर को पकड़ना है, कोई चोरी करेगा तो उसको जेल दंड दे देंगे, है ना। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

पहले हम बच्चों का गीत सुन रहे थे, बेटी का ऊपर में, बेटी सभी को उद्धार करती है और घर का रोशनी बढ़ाती है। एक प्रेरणादायी गीत सुनेंगे तो हमारा सभी गुड़िया उपस्थित है एक प्रेरणादायी गीत के लिए, रेडी हो रहे सेम ग्रुप? ओके।

इतना सुंदर प्रस्तुति और हमें बहुत खुशी लग रहा है। इस तरह बच्चे को जो मंच का आवश्यकता था आज वो मंच मिल गया, जिसका चलते एक का बाद एक पूरा गाड़ी चल रहा है और सजा रहे हैं, क्योंकि एक कार्यक्रम गुलदस्ता जैसे बन गया। एक एक फूल को लेकर गुलदस्ता बनता है, तो एक एक आवाज को लेकर, एक एक गीत को लेकर एक आवाज का दुनिया में आवाज सुन पा रहे, हमें बहुत खुशी है। तो इस तरह बच्चे जब सच्चे मन से गाते हैं तो उनका माँ बाप जब सुनते हैं, उनका दोस्त लोग जो सुनते हैं, तो उनको खुशी लगता है। ये हमारा विद्यालय का आवाज है, हमारा गुड़िया का आवाज है, और एक आवाज में ही उनको खुशी मिलता है। तो लेते

0: इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सुनेंगे बच्चों का तोतल तोतल आवाज से। तो हमारा साथ क्या नाम बोले?
1: शोभा।
0: शोभा
1: बसंती।
0: बसंती और शोभा इस गीत को प्रस्तुत करेंगे।
1: दया

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: चलिए कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और कविता भी सुनेंगे, लेकिन पहले कविता सुन लेते हैं। कविता सुनेंगे, एक छोटा सा नन्ना सा हमारा गुड्डा आया है तो अपना प्रस्तुति देने के लिए, बहुत खुशी लग रहा है। तो सिंगल प्रस्तुति के लिए नाम बताएंगे?
1: अमित।
0: अमित
1: जी।
0: और कौन सा क्लास?
1: सातवीं।
0: और बढ़ोकर क्या बनेगा अमित? डॉक्टर, इंजीनियर ना मास्टर?
1: टीचर।
0: टीचर बनेंगे, बहुत अच्छा। तो अमित के लिए धन्यवाद देते हैं और छोटा सा प्रस्तुति देने के लिए आया है, तो सुनाएंगे क्या कविता? देखिए सुनाओ।
1: रणबीर चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराल था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ियावा को पाला था, गिरता ना कभी चेतक रे तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा था हरे मस्तक आसमान पर घोड़ा था, जो तने कवा से बागली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा के पुतले फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल निकलाया ढालों में उड़ गया भयानक बालों में, निर्भीक गया वह ढालों में चरपट दौड़ा करवालों में, यही रहा अभिया नहीं वह वही रहा वह नहीं, थी जगह ना कोई जहां नहीं किस अरे मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया, वीर का राल बर्ज में बादल सा अरियो की सेना की गहर गया, बाला की गया गिरा निसंग यह टापो से खन गया अंग, वीरे समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग गया।
0: चेतक नाम सुनते हैं तो कितना खुशी लगता है, चेतक का वीरता, चेतक का प्रसास। मैम अपना परिचय दीजिए, और खासकर चेतक नाम सुनते तो राजस्थान का जो चेतक राणा प्रताप का चेतक घोड़ा और चेतक का जो वीरता जिसका सास जो प्रभु का मालिक ते उसका बारे में थोड़ा बताएंगे, पहले अपना श्रोता मित्र को और हमारा बच्चों को।
2: चेतक हैं जो महाराणा प्रताप हमारे जो थे मेवाड़ के जो राणा, उनके जो घोड़े का नाम है चेतक, उनकी

0: उन्होंने अंतिम सांस तक अपना साथ अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा। उनकी टांग कट गई, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, और इसलिए यहाँ उनकी साहस और वीरता की ये जो कहानी है कक्षा 6 की है। और चेतक की वीरता, इसके बारे में बालक ने बताया कि चेतक जो कैसा था उसकी वीरता के बारे में उसने छोटी सी कविता सुनाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अंतिम प्रस्तुति देंगे शोभा वासंती एंड पार्टी, और ये कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं, और सभी ने अपना बात को रखें, ये काम बात नहीं है। तो चलिए शोभा एंड पार्टी को स्वागत करते हैं, और सभी बच्चे इनको साथ देंगे। ये पहले करेंगे शोभा और वासंती, इसका बाद बच्चे साथ में करेंगे, सभी साथ में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अंतिम प्रस्तुति की हम चल रहे हैं, और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर, खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोडू का आवाज।

0: बहुत सुंदर प्रस्तुति और भारत का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम काल तक हम जा रहे हैं और बच्चे इस तरह देशभक्ति में, हर बच्चा एक देवी का प्रतिमा है। मैंने पहले भी बोला था, बच्चे सच्चे होते हैं, बच्चे महात्मा होते हैं और बच्चे देवी का प्रतिमा होते हैं, क्योंकि भारत का जो मिट्टी है, भारत देश महान है, इसलिए सभी देश से भारत हमारा श्रेष्ठ क्यों कहते हैं, क्यों भारत माता कहते हैं। कोई भी देश को माता शब्द नहीं बोलते, लेकिन माँ का प्यार, माँ का ममता, माँ का त्याग कभी भूल नहीं पाते, इसलिए भारत हमारा सबसे श्रेष्ठ है। और खुशी लग रहा है सभी इसका आवाज लिए हमारा, और एक मैम अपना खाली नाम बताएंगे और कौन सा विषय पढ़ाते।
1: मेरा नाम रवीना मंडावरिया है, मैं आबू रोड की रहने वाली हूँ और मैं मोर्डू स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ।
0: मैम पढ़ाने में आपको खुशी मिलता है ना?
1: हाँ, पढ़ाने में खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है।
0: बहुत खुशी मिलती है। बच्चे मैम के लिए ताली बजाओ, क्योंकि खुशी मिलना सबसे बड़ी बात है। पैसा देने से भी खुशी नहीं मिलता, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से खुशी मिलता है, क्योंकि कच्चा मिट्टी होकर बच्चे आते हैं और उसको मूर्ति बना देते हैं, जैसे रूप चाहेंगे, जैसे हम उनको बनाना चाहेंगे, जिस तरह उनका विशेषता गुण चरित्र बनाना चाहेंगे मैम बना देंगे। और इसलिए तो बच्चे स्कूल में आते पढ़ने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए। पढ़ाई का महत्व तब होता है जब हम चरित्रवान बनेंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा नागरिक बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे गीत के माध्यम से आप बच्चे सब सुनाएं, तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर बच्चों का साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रेडियो मधुबन द्वारा प्रस्तुतिकरण, जो कि जैसे मैंने सुबह मैम को बताया भाई आप थोड़ा शुरुआत कर दो, बच्चे आपका आवाज को देख कर ही उनका आवाज को रोक नहीं पाएंगे और एक का बाद एक प्रस्तुति दिए। तो कैसे लगा सुबह मैम?
2: बहुत अच्छा लगा, आप आए, हमको हमारे बच्चों को मौका मिला कुछ गाने का, कुछ प्रस्तुति देने का, अपने मन के अंदर जो है उनको अभिव्यक्त करने का, अच्छा लगा। और आते रहना, बच्चे हमारे और कुछ आपको सुनाएंगे अगली बार।
0: धन्यवाद। तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद, हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

मने घणो प्यारो लागे है यो सावण, मने घणो अच्छो लागे है यो सावण, मने घणो प्यारो लागे है यो सावण। सावण में बरखा आवे और नदियां भर भर जावे।

0: कर कर जावे, मने घणो अच्छो लागे यो सावण,
1: मने घणो प्यारो लागे यो सावण। गीत गाय रही है, का हो रही है?
0: अरे राम राम कंचन, आओ भाई आओ, राम राम। और जीव राजी है?
1: बस राजी, थारो गीत सुने वरे जीव राजी वे गयो।
0: तने तो ठाई है के गीत का तो मने घणो ही शौक है।
1: हाँ।
0: आवे के नहीं आवे आपने तो गुनगुनाते रहनो।
1: ना ना, तू गीत तो अच्छो गावे, मन तो पसंद आयो गीत थारो।
0: तो पहले तो आपा अपना सगला श्रोता बंधु को स्वागत करा हा गावरी बातें कार्यक्रम में। सुनता रहो,
1: मुस्कुराता रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।
0: आप सगला ने खम्मा गणिसा,
1: आप सभी रो अभिनंदन है।
0: कंचन थू कह रही कि भाई ये गीत क्यों गा रही, सावन महीनो भाई लागवा वालो है, सावन महीनो।
1: हाँ।
0: और सावन महीना का तो ठाट तू जाने ही है।
1: हाँ, वो तो है।
0: तो
1: हरियाली री झू।
0: हाँ, चारों तरफ तो हरियाली होवे वशान, मारो तो मन अबाणु हरियो भरियो हो गया है।
1: हाँ, सूखो छूको देखे देखे बोर वो जब में बरसात वरे जठ हरियाली हरियाली हैंग जगह।
0: हाँ, वो कहवे कि प्रकृति ने देखा जतरे अपनो मन कतरो आनंदित वे जावे।
1: वे वे सही बात कह रही है, पेड़ पौधा हरा भरा वे वे, जो पेड़ पौधा सूख जाए उन्होंने एक नवो जीवन मिले, परो
0: नयो जीवन मिले पेड़ पौधा ने और आपने उमंग उत्साह मिले।
1: हाँ,
0: तो देख मने सावन महीना की भी याद आ रही कि सावन महीना की आपा पहली भी बात की दी ही, अपन भी आपा करा कि भाई सावन महीना में तो मंदिरा में बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा झूला
1: झूला झूली।
0: हाँ, झूला चालू,
1: चालू
0: हो जावे, भजन कीर्तन सत्संग फुल वे वे, श्री कृष्ण जी के झूला का श्रृंगार होवे, श्रीनाथ जी का मंदिर चले जाए, ठाकुर जी का हर मंदिर में।
1: हाँ, ने श्रावण तीस हर त्योहार चालू वे जाए, सबसे मोटी बात तो आए।
0: हाँ, और मने थोड़ी ये बात भी याद आ गई कि देखो ये बारिश का मौसम है, माँ का एक गेम खेलता है, एक खेल बचपन में।
1: हाँ,
0: जिन्हें हग्गो कहता।
1: हाँ, मने याद आ गयो
0: है ना।
1: हाँ,
0: तो बरसात के मौसम में ही खेल सकता, जटे गिली मिट्टी वेती मंटे भी खेल सकता।
1: हाँ।
0: क्यों एक लोखंड को सलिया जैसे हुए वे भले मोटी खिल्ली समझ ले।
1: हाँ।
0: ऐसे सलियो ले लेता।
1: हाँ। पसे निशानो लगाता।
0: हाँ, पछे जैसे आके भले दो भी खेल सका, दस भी खेल सका।
1: हाँ।
0: तो बच्चे कहता भाई अतरी दूरी पे मारनो।
1: हाँ।
0: वटे गिलो वटे मार, तो आपाने दूरी बताता, 10 कदम दूर, 15 कदम दूर, वनी खिल्ली ने फेंकता हो निशान साधन।
1: हाँ।
0: अगर वह धरती में घच जाती।
1: हाँ।
0: तो आप जीत गया
1: जीत
0: और वह पड़ जाती
1: तो आउट हो गया,
0: तो आउट हो गया।
1: हाँ।
0: पचे दूसरा को नंबर
1: नंबर न गीली मिट्टी में तो निशान हो तो लागवारो इसे
0: लाग जावे। पर कतरी बार कई का आपा निशानो डालती टाइम पे चूक गया।
1: हाँ।
0: तो आड़ी पड़ गई खिल्ली, तो पचे वा क्या जाए।
1: हाँ, वातो वात सही है,
0: तो वह रह जाते। तो वे खेल याद आ गया कि आजकल तो टाबर के सब खेल बंद हो गया,
1: सब मोबाइल स्मार्टफोन रे वजह थी सब बंद हो गया। मैं बच्चा टावर बारे खेले ही कोनी नहीं, आप तो देख बारे इस पूरा दिन खेलता रहता, स्कूल रो बस तो फेंकियो नहीं खेल बारी मस्ती।
0: बिल्कुल, सब बच्चा बच्ची बाने जोर जोर चिल्लाता जाता खेल।
1: तन याद है सितोलिया?
0: अरे सितोलिया तो घना खेलता भाई, याद
1: आवे। अच्छो गेम तो वो,
0: बहुत बढ़िया गेम।
1: हाँ।
0: आज भी यूं लागे खेला।
1: हाँ, बोलती एक दूसरा मारता, पत्थर गिरावता जमावता, कतरो अच्छो याद आवे जरे के पहला रो समय खूब अच्छो तो।
0: सात पत्थर वेता भली। हाँ। तो चौरस भली गोल।
1: हाँ।
0: सब बड़ो पचे भी कहूँ छोटो पचे भी कहूँ छोटो, एक दूसरा का ऊपर जमाता
1: सही है, टीम बनाता, टीम बनाया टीम वन साइड,
0: पचे बोलू मारता वे पत्थर पड़ गया तो भाग जाता,
1: भाग जाता। जो जमावा आता उन्हें बॉल बॉल मारता,
0: जो जमावा आता जैसे बॉल दूर पर हो गया तो फटाफट आपा जमा लेता।
1: हाँ।
0: और बॉल जो पास में है तो छेटी भाग जाता,
1: छेटी भाग
0: वे आपने बॉल मारता ना आपने टच नहीं वे तो वे लेवा जाता जितने आपा पत्थर ने जमा
1: देता ना ऊपर जीत जाता,
0: जीत जाता।
1: बहुत अच्छा गेम तो।
0: आज भी एडी इच्छा हो एडा गेम आपा खेला, पर अबे आपा कठे जावा, बालक के अत्र खुलो मैदान है ये नहीं खेल सक रहे, और अबे आपा आनी उम्र में खेला तो सब हंसे
1: हंसे।
0: पर मैं तो यू ही कहूँ कंचन के खेलवा की और पढ़वा की कोई उम्र
1: नहीं, नहीं होती। सही बात है,
0: पर सब आपको ग्रुप होना चाहिए,
1: ग्रुप पहनो अपने सामने मनक वे तो ओपे खेलो ही खराम, बच्चों हाथे ओपे कीकन खेलो तो शर्म आवे।
0: बच्चा का साथ में तो अच्छो को नहीं लागे,
1: पर रतन मु तो खेलो मो बारिश गाम गई बच्चा बच्चा देखिया हमें अपरो घर है ओपन कान नहीं शर्म आवे ओपरे बच्चा खेलता था। हाँ। खो खो खेलता था वे हारवा लागा मुंह उन टीम में घुस गई न उन्होंने जीता दीदा।
0: अरे वाह वाह भाई तो तू तो होस जीता दीदा तो हाँ। तो बचपन याद आ गयो।
1: बचपन याद आ गयो ना आवा तन वास्ते याद आई मने के थे कयो ने के हमें शर्म आवे तो खेलवारी कोई उम्र नहीं बहती।
0: नहीं यह सही बात है पर तू क्यों ना कि भैया हर की कई साथ में नहीं खेल
1: हाँ,
0: सकता
1: तो
0: वाह बात अलग
1: वाह बात अलग है पर बारे कटे जाओ तो थोड़ा सोचनो पड़े हाँ। पे नहीं खेल सकता
0: क्योंकि खो खो एडो गेम है कि मैं आपने दौड़नो पड़े और आखी नीचे टीम बैठी रहे पचे वाने गोल गोल आपने राउंड मारने आपने करना बटे बैठनो इमे कम से कम 10-11 जना वे तो ही मजा
1: मजो आवे ज्यादा संख्या हाँ, तो
0: ज्यादा संख्या वे तो ही मजा आवे। और कोई कोई गेम एडा है जो इमें आपा दो दो भी खेल सके जैसे बैडमिंटन है
1: बैडमिंटन
0: ये आज भी खेला तो कोई शर्म को नहीं
1: है। बैडमिंटन तो थन बात को हमें बरसात में खेलवा रो और मजा आवे मिट्टी एकदम जमे परी
0: हाँ।
1: ने बैडमिंटन खेलो ने बरसात वेती वे तो और भी मजा आवे
0: हाँ। और ये मैं दो भी खेल सका टेबल टेनिस है बैडमिंटन है
1: हाँ।
0: ये आप दो भी खेल सका
1: हाँ।
0: और टेबल टेनिस में तो घना सिस्टम है टेबल वगैरह सब छावे पर बैडमिंटन में कई सिस्टम नहीं है आपने जरूरी को ने नेट बंदी सकी वे तो यहाँ पर खेल सका
1: यूं भी खेल सको हाँ? मैं तो थन टायर थन लाइन खोचो इन खेलो लाइन बाउंड्री बना दो
0: हाँ।
1: अनपालम पड़े तो थारी अनपालम पड़े तो मारी हाँ, वाजी
0: तो ये तो आज भी चालू है पर एड़ा एड़ा गेम है जो भले स्कूल में नहीं चलता पर आपा खेल खेलन आनंद लेता जैसे हगो क्यों जैसे सितोलिया और खबर है आपा मौसम भाई मौसम भी खेलता
1: हाँ, मौसम भाई खेलता हाँ, वही गेम बहुत पुराना है
0: सही है आमने सामने दो जना खड़ा
1: लाइन बनाता नीचे वे निकलता हाँ,
0: हाथ पकड़ है हाँ, पूरी टीम लाइन बना नीचे निकलता
1: पकड़ लेता
0: जो निकल गया जो पकड़ा गया
1: हाँ खूब अच्छा गेम था पहला हमें तो बच्चा है गेम खेलता ही नहीं है हम तो पूरा दिन फोन लेन बैठा रहे बाहर ही तो नहीं निकलता का खेले
0: तो बात आप आनी वजह कर रहा है कि जो आज का बच्चा मोबाइल में लाग गया सका है ये पुराना गेम अगर ये भी खेले तो याने भी मजो आवे
1: सही बात है।
0: देखो भाई गेम खेलो शारीरिक विकास वे मानसिक विकास वे और अपना मन प्रफुल्लित रहे
1: सही बात कह रही है रतन पर हमें का करो बच्चों ने की कण समझाऊ फोन लियो और आत्माई थी तो चिल्लावा लागे थे तो देखियो से
0: वो सही है पर अब कई तो करना पड़ी ना वो कहे 10 बार बोला 100 बार बोला कटक तो तीर लागी
1: सही बात कह रही पर
0: अब देखो मोबाइल में कई शारीरिक विकास रुक जावे मानसिक विकास रुक जावे कई दर्द भरिया सीन वे तो और मन उदास हो जावे
1: उदास हो जावे
0: और आजकल है तो देख भाई कंचन में थाने कई क्यों मैं एक जगह पे घी ही जटे बच्चा वहाँ के 3 बच्चा हाँ, 3 ही मोबाइल लेन बैठा ठीक है अब एक बच्चा जो 5 साल को वॉशरूम जानो भी कह तो भी मम्मी ने कह रहे मम्मी सुसु करना है मम्मी सुसु करना तू चाह और दिन को टाइम है बाथरूम वो रियो सामने ही दिख रहो
1: हाँ।
0: तो भी माँ डांट रही वो रियो बाथरूम चले जा तू
1: ही हाँ।
0: मैं तो नहीं आऊ और हाँ। मम्मी डर लागे
1: हाँ।
0: क्योंकि आजकल ये कही मोबाइल में भी भूत कान कहीं का नहीं
1: हाँ। ने तू सच कह रही है रतन मैं भी बच्चों ने देखू यू सर्च मारे भूत की वाली वीडियो दिखाओ तो वे भूत वाली वीडियो देखे पसे डरे
0: हाँ पसे डरे अभी कहूँ कई फायदा है
1: कोई फायदा नहीं
0: अभी ये टाबर ने क्या समझावा जो मने भी ठानी पड़ रही पर मैं तो यो क्यों एक दिन रोवे 2 दिन रोवे 1 दिन रोटियां नहीं खावे 2 दिन रोटियां नहीं खावे मत खाओ कहीं नहीं बिगड़े पर याने फोन देनो इस
1: नहीं देनो
0: कभी नहीं मिले फोन अरे 5 साल का बच्चा डरवो कहीं होवे वो भी
1: सही
0: नहीं आवे पहली आतो कहीं
1: पहला बच्चा लाइटो वगैरह रहता
0: हाँ
1: लाइट कटे थी पहले
0: कटे घूम घूम अकेला ही आ जाता और आज एक बाथरूम में जाता बच्चा ने डर लग
1: गए सही बात कह रही
0: तो कई विकास हुआ
1: और रतन आ चीज तो मैं भी खूब बच्चों रे देखी कि अतरा अतरा बच्चा आजकल एन गली थी वन गली जाना ही उन्होंने भी आवे एक रूम थी बीजा रूम में जाता ही डर लागे
0: हाँ
1: अंधेरा
0: हाँ,
1: में नहीं जाए
0: अरे कह रो हॉल में बैठा सका है जनरल बाथरूम है पास में ही है 2 कदम जानो
1: तो ही डर लागे
0: वो बच्चा ने डर लाग रहा आखिरकार माँ ने जान भी ने सुसु कराना पड़ो
1: सही बात कह रही है तू तो 5 साल का मैं तो 10-10 साल का बच्चा ने देखी है जो डर है लाइट चालू करे माँ बाप बारे उबर है तो वॉशरूम करवा वो डर तो है
0: आज का बालक की एड़ी हालत है तो थोड़ा विचार तो आवे ही है ना कि ये देश का भविष्य
1: है सही बात कह रही है
0: देश का भविष्य के आज वर्तमान में यह हालत है तो वे कई बार नहीं आगे जान अनिवार्य जरूरी है बालक को मोबाइल छुड़ावो और ये जो खेलवा को शौक है तो आप खेलो एड़ा एड़ा गेम खेलो।
1: हाँ वन बात ने माँ बाप ने ही थोड़ो बच्चों ने कहना जोजे, क्योंकि वे तो पुराना है, वने तो गेम खेलियोड़ा है, तो वना नहीं कहना जोजे बच्चों बाहर जाओ गेम खेलो, बाहर खेलवारा अच्छा अच्छा गेम है। हाँ आज रो टाइम थोड़ो एड़ो है कि माँ बाप बच्चों ने बाहर मिलता ही दरअप लागे वनो, पर फोन मत दो।
0: हाँ
1: फोन देने कोई सुझाव नहीं, नहीं
0: है तो घर में उछल कूद कर ही तो सही।
1: हाँ पर माँ बाप ही कहड़ा वे थोड़े अदर रोवे तो के हाँ शांत वही तो फोन पास हो पकड़ा वे।
0: वो तो यूं ही वेग्यो के भाई आगे शांति माली मने।
1: हाँ
0: तो मैं आराम कर सकूं।
1: हाँ सही बात कह रही है तू,
0: ले ले तू फोन
1: यूज करे।
0: पर वाह भाई कंचन, चलो आप थोड़ा एक अच्छो गीत भी सुना ला और मैं मस्त घर में गरम नाश्ता बना लई हूँ।
1: अच्छा
0: हाँ जो नाश्ता कर पाछा अपना श्रोता बंधु रूब रूबे वहाँ।
1: ठीक है
0: तो सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: वाह भाई, नाश्तो केड़ो लाग्यो कंचन?
2: मस्त रहता रो हमेशा नाश्तो तो बढ़िया ही फेवर।
1: तो गावरी बाता कार्यक्रम में पाछा अपना सगला श्रोता बंधुओं को स्वागत करा हा। और आपा बात कर रहा हा गेम्स की, मैंने तो आज देख भाई गीत भी याद आयो तो मैंने गेम्स भी याद आ रहा, मैंने स्कूल लाइफ याद आ गई।
2: हाँ वह तो है, स्कूल टाइम बहुत अच्छो तो पहला रा समय रा गेम वगैरह, स्कूल जानो आनो पूरा दिन यू शाम बैठी ने ओपे देखता के ओपरी सहेली बारे आई है तो बस खेलवा भाग जाता। हमें तो बच्चा डर पे लेट अंदर हो नौ पे तो लेट लेट तक खेलता, डरता ही नहीं था।
1: अरे कोई आपने तो आवाज भी नहीं देता कि भाई मोड़ो घरे आओ, थे घर में आओ।
2: पहला रो समय अच्छो तो हमें समय अड़ो हुआ है कि माँ बाप 6 बजे बच्चों ने कहे घर में घुस जाओ।
1: अरे मैं तो क्यों 6 बजे 7 बजे तक बच्चा खेले तो भी बढ़िया ही है। और देख मैंने तो बचपन की बात याद आ रही, रेत का मंदिर इतना बना था
2: रेत में पाऊ गाले बनना मंदिर पसे पाल बना फूलोती सजाता है।
1: फूलोती सजाता अंदर आपा बल्ब लगाता अगर बड़ो बनाता तो
2: खूब बच्चो,
1: और कोई बिगाड़ देता मंदिर ने
2: तो बननी आई बनी है
1: रोन आपा परेशान हो जाता।
2: पर ज्यादा तक है ना मोरे टाइम में है ना मैं लड़का लड़की साथ में खेलता, मोने तो लड़का खूब परेशान करता, छोरा आता मोरा मंदिर यू पगती तोड़न चले जाता, घर बनावता पगती तोड़न चले जाता, पसे मैं चिल्लावता थारे मम्मी ने आवेन कहनो पड़ी तुम्हारा मंदिर तोड़े दी दो, पसे पास ही में छोरिया इकट्ठो में मंदिर बनाती।
1: हाँ।
2: पर खूब आनंद आवतो। हाँ खूब अच्छो टाइम तो वो
1: टाइम भी बढ़िया हो और आपने कहीं कहीं नया करवा की इच्छा रहती। अच्छा आज मंदिर यू बनाए तो काले क्या बना
2: तो सीढ़िया बनाता।
1: सीढ़िया मंदिर में चढ़वा की सीढ़िया बनाता, बाउंड्री बनाता, गार्डन बनाता, आजू बाजू पूरी रेत ने फैलान रख देता जी की रेत वेते वे चिल्लाता रहता और आप रेत में खेला करता और ऊपर कुद का कतरा मारता
2: तो पहला कहतो ही नहीं तो कहता टाबर है खेलवा दो
1: खेलवा दो बस यूज कहता छोरा छोरी रेत मत बिगाड़ो।
2: हाँ बस रेत मत बिगाड़ो। हाँ वही कहता
1: यू कैन परा जाता पर यू स्ट्रिक्ट नहीं औरत था क्यों बिगाड़ो। हाँ। भागो उठू असन क्या वाला कोई नहीं
2: तो उन्होंने खुद ने ठाए बच्चा है खेले रिया बस रेत मत बिगड़ जो बस। हाँ। रेत मत बिगड़ जो वो डायलॉग बोलता
1: और मजो भी आता सब मिलन क्योंकि आखिर रेत ने आप चोरी चोरी कर देता सब खेला करता कतरा जना मिलन खेलता कोई केड़ो मंदिर बना रहा कोई केड़ो मंदिर बना रहा पछे एक दूसरा का देखता एक दूसरा ने खिजोता
2: मारो अच्छो बणियो है मारो अच्छो बणियो। हां पहला रो समय
1: आलो रेत का आपा आखा ऊंचा ऊंचा चूनन पछे ऊपर कूदका भी मारता।
2: ऊपर ती कूदता।
1: हां ऊपर कूदता के भाई देखा कौन कतरा नीचे जा सके।
2: हाँ।
1: और कौन कूद सके कूदन बताओ तो बताता अपन मजो भी आता कोई लागती नहीं करती
2: कोई रेती में का लागती गिरता तो ही हाल तो क्या। हाँ। कपड़ा थोड़ा गंदा वेता मिट्टी में भराता घर जाए मम्मी डांटती है रेती रा वेन आया हो।
1: वो सही है पर अबे मम्मी भी डांटती पर जाने नहीं खेली तो झाई कटे बच्चा बच्ची है तो की करे। जो अपना टाइम का मैंने खेल याद आ रहा के देखो कटा पा तो मौसम बाबा मौसम आपा खेलता जी ने कई बोलता मैं तो भूल गई या मैंने याद एक पोला जी की पोल खोलो पीछे देखे तो मार खाइयो ऐसा बोलता। हाँ लाइन बना इंजन की ना आता पचे माने पकड़ता हंसकी ने पकड़नो सामने ही सामने वाला ने पकड़नो सामने तीसरा नंबर वाला ने पकड़नो
2: जोरती पकड़ता है
1: और पकड़ में नहीं आता तो एक मुक्को मारता।
2: खूब अच्छा अच्छा गेम था
1: जो मने याद आवे कि देखो आपा केड़ा केड़ा खेलता हा अन खेल खेल में आपा ने कतरो सीखो मिल जातो। अपना टाइम में बड़ा ने रिस्पेक्ट करवो धोग लाग कटे भी जाता तो बड़ा बुजुर्ग के आपा धोग लाग जाता
2: लोग लगा में जाता। हाँ। सही बात है।
1: अब आज बालक कटे भी जाओ तो मोबाइल की बात ही वहां का दिमाग में बस उड़ी।

0: अरे मैं देखे एक जगह पे वे वहां का बच्चा ने माँ बाप को कोई दोस्त को नहीं, माँ बाप कह रहा बच्चा आप बहाने जा रहे हैं तो दादा दादी के धोख लाग, तो बच्चा तो बस धोख ही नहीं लागे
1: वो मोबाइल में मस्त।
0: हाँ माँ बाप धोख लाग रहा गले मिल रहा, टाबर ने क्यों बेटा धोख लागो दादा के दादी जी के, तो कटी झुकवा की जरूरत ही कोई ना, बाय बाय दादू
1: बस मोबाइल रिसीक है वा।
0: हाँ अब मोबाइल बोले माँ बाप संस्कार डालो छावे पर बच्चा पे हावी भी हो सको कहिए मोबाइल तो वे सीखो ही नहीं छावे,
1: सीखवा ही नहीं चाहे। सही बात है,
0: माँ पराने अगर डांट डपटाई माता पिता माने झुकाओ छाए तो आधा झुकन लाग गया धो गया चल
1: बस अधूरा। हाँ? तो पूरा झुके ही नहीं
0: पूरा झुके ही कोनी, वो भी मजबूरी
1: मजबूरी में वो मम्मी पापा मारी नहीं झुकिया तो।
0: हाँ हाँ बाकी मोबाइल तो निकल ही जत रहे वो गेम। अरे एक मिनट बेचारा माँ बाप कह अरे भाई आपने टाइम हो रहा था रखो एक मिनट कारण 10 मिनट ऐसा खींचे
1: 10 मिनट ऐसा खींचे। सही बात कह रही है।
0: और मैं एक बार देखियो मैं ध्यान रखियो ये टाबर कई खेले देखू तो सही कि एडो कई हमें इंटरेस्ट है जो ये फोन का सिवा यानी दूसरों की जीवन ही नहीं
1: गेम। एक तो मैं हॉब लियो है रतन पबजी, एक तो बच्चा पबजी खेले आज थू अगर पाडला घर में बैठी है मुंह हटाती और एक बिजोरी आवाज हबलाए एड़ा एड़ा गेम खेल है, मुंह विचार करू कि एड़ा एड़ा फोन में बात करे के कई करे है तो गेम खेले रही है एड़ा एड़ा गेम
0: खेले। और मैं तो 4 साल की बच्ची ने देखे क्या कई कर रही, अरे वो तो शॉर्ट्स देख रही धमाधम धमाधम शॉर्ट्स में कई आ रहा है वो कई ठाको नहीं पर बस वो शॉर्ट्स देख रही, मैं क्यों इसमें क्या है मुझे नहीं पता और शॉर्ट्स देख रही। अब बालक में मतलब वाने खबर ही कोई नहीं कि मैं कई बेरो कई नहीं बेरो पर बस वो देख रही है कि मोबाइल में कहीं कहीं चालो छाले
1: ओले देखो
0: वे हंसे जदी वही हंसे
1: और
0: और वाको हंसो बन तो विको भी हंसो बन तो मन आश्चर्य होगो हो अनि में तो कई है ही कोई नहीं शॉर्ट्स में तो कई का कई बताता रहे वे आपने कई मतलब है
1: सही है
0: पर अब बच्चा समझी कोई नहीं शॉर्ट्स देख देख कर खुश है कहा कि माने 3 साल का 4 साल का बच्चा ने गेम्स कतरे तो ये खुद ही ओपन कर करे कतरे यान डाउनलोड नहीं करता हुए तो बच्चे शॉर्ट्स देख क्या करे।
1: सही बात है, पहला टाइम अच्छो तो पहला तो बच्चों ने फोन रो था ही नहीं तो कोई लेना ना देना कोई मतलब नहीं,
0: फोन छोड़न टीवी कटे
1: टीवी कटे में हाँ टीवी बाद में भी थी पर टीवी देखवा रो टाइम इच्छा ही नहीं रहती थी बस बाहर जाए गेम खेलना अच्छा अच्छा वन में पूरा दिन निकल जातो।
0: अरे मैंने याद आवेगा अपना पड़ोस में दादी जी को पियर बॉम्बे तो वे बॉम्बे की बात आन करता छुट्टिया में तो जाता वे दादी जी कहता और बॉम्बे में तो एडी चीज चाली जिन्हें 100 जना बेटन भी देख सको
1: ओ?
0: तो आश्चर्य वे तो केडी कई चीज है अरे टीवी ने कतरा भी बेटन देख सको ना तो वे यू कहता तो मानो आश्चर्य हुए तो एडी कई चीज है एडी कई चीज है 100 जना देख सके अरे अक्कल तो ही कोई ना तो पांचवी जटी में बना वाला कई अक्कल
1: होना
0: आश्चर्य हो तो एडी कई चीज है टीवी आई तो ठा पड़ी ओ इन्हें तो 100 देखो 50 देखो कतरा भी देखो देख सको तो आश्चर्य वे तो हो विका बावजूद भी यदि टीवी घर में आई तो आपने हर चीज थोड़ देखवा देता
1: नहीं नहीं देखवा देता जिन्ने हाथ में रिमोट है वन्नो इक्को हाल है
0: और रिमोट देखो भाई पहले तो बड़ा बुजुर्ग भी कंट्रोल रखता समाचार चालू कर देता पचे काटे पहले तो रामायण महाभारत ये सीरियल
1: चलता
0: ये चालू और बस पचे बंद
1: बस
0: पुरानी पिक्चर आती तो कनिक टाइम पे
1: पुरानी पिक्चर मैं तो एडू देखी है रतन मैं तो बीजो और घरे जाए टीवी देखता
0: अरे तो घर में नहीं ही यदि आप यूज करता ना देख मोला बच्चा खबर है अपने बाजू वाले मोहल्ला में आई ही टीवी सब जान माँ को दरवाजा खकड़ा माने परेशान कर देता
1: तो पहला मने गुस्सा भी नहीं रहता था ने हमें करने घरे जानो विचार करना पड़े वो भी दंदरा जानो वो नींद आराम करतो वे वरना दरवाजो खटखटावनो
0: और अबे तो एक सुई मांगता भी यूं लागे अरे कौन मांगे
1: और
0: पहला तो कतरी चीजा भी मांग लेता टीवी देखवा तो वहां घर पहुंच जाता बानु साकल ने बजा बजा करता कतरी बार तुम्हारी सहेली है वेकर दादी जी अतरा वे चिल्लाता सका आता ये छोरा छोरी माने तो नेम काम ही नहीं करवा देवे
1: टीवी आरु आई है
0: पचे कहता वो पिक्चर के लिए जाता बस 6 बजे 6 बजे के बजे 5 बजे ही जान
1: वो अनाउंस वेतन आज ये पिक्चर 6 बजे आने वाली है तो टावर तो क्या आज पिक्चर शाम रे 6 बजे आवे
0: तो 5 बजे हुआ के घर का बाने सब उबा भेजाता माने याद आवे यार आज अपना घर का बाने से उभर है तो अपन अजीब लागे
1: अजीब लागे अब मैं ओपे विचार करो तो याद आवे ओपे 6 बजे जैन बना दरवाजा में खड़ा है था
0: 5 बजे लाइन लाग जाता
1: तो
0: और वे परेशान भेजा था तो? क्योंकि अतरा जना उबा रहता तो दरवाजा खोलन बैठा देता पचे एडवर्टाइजन जो आती टीवी में आप देखता
1: देखता ऊटे नहीं कोई नहीं जातु तो
0: कोई नहीं जाता कबानू चालू हुई
1: चालू हुई जितने पिक्चर खत्म नहीं होती तीन घंटा बैठे रहता बटे
0: आठ दिन में एक दिन पिक्चर देखवा जाता हुई मैं भी अपने अच्छा खुश हो जाता भाई देखी पिक्चर
1: पिक्चर देखी
0: पर तो ही अपना माँ बाप कहता बस आनी अठवाडे देख ले अबे अगली बार नहीं देखना
1: हाँ।
0: तो भी आपने मना करता
1: मना करता
0: क्योंकि आनी बात ने माँ बाप समझता हाँ ये टीवी देखी तो टीवी में रुचि जाए या कोई शारीरिक मानसिक विकास रुक जाए घर का काम में फर्क पड़ जाए तो आदत नहीं बगाड़ता
1: सही बात है
0: भाई औलाद किन्ने प्यारी को सब नहीं प्यारी पर इको मतलब यो थोड़े बच्चा ने जनी रस्ते जावे झावा देवे
1: सही बात है
0: तो समय का साथ में परिवर्तन आयो कंचन कि आज बच्चा भी नहीं दरपे और माता पिता नहीं दरप लागे अरे ये तो रोई अरे ये तो
1: रोई सही बात है
0: बच्चा खानो नहीं खावे तो वहां मोबाइल बतावे
1: हाँ।
0: तो ऐसी आदत पड़ जावे घना बच्चा मोबाइल देखता जावे खानो खावे
1: खानो खावे सही बात कह रही है फोन बंद तो खानो बंद
0: हाँ
1: बंद खानो ही बंद ने मैं तो उदो सिस्टम देखी हूँ मैं तो मारे पास में एडो देखी हूँ मोबाइल वे जितने बच्चों खानो नहीं मांगे न मोबाइल बंद दू मम्मी भूख लगी है ओ कैडो सिस्टम है मैं क्यूँ कोई तो बच्चों खानो खाए जर मोबाइल चालू है बच्चा रो एडो सिस्टम में के मोबाइल चालतू रही जितने बने भूख प्यास कोई लेना देना नहीं
0: वे केड़ा बच्चा जो दो तीन साल का वे ने वाके खानो खाते जानो मोबाइल देखते जानो
1: हाँ।
0: बड़ा बच्चा के खानो कहीं लेना देनो वाके तो मोबाइल मिल गया तो वही कहो
1: सब को एहसास
0: ही नहीं वे
1: भूख को एहसास
0: मोबाइल बंद वे इन बच्चे तो भले रात के 11 भी बजे तो हाँ भूख लगी सही है या तो सही कह रही है तो खैर जो भी है पर मैं तो यही कहो छाऊ आपका टाबर ने फोन कम देवो और नहीं वह तो समय निकालन आप थोड़ा खेलो आसपास का बच्चा ने भी भेल करो और वाने सीखो पहले का गेम एड़ा खेलता
1: खेलता
0: भाई थोड़े आप आठ दिन मेहनत करा ना कंचन
1: तो वे रेगुलर खेलता
0: अच्छा वे रेगुलर खेलता भी जाए भाई आप सेरा की बात करा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में भी नीचे तो खेल के मैदान
1: में
0: तो एक दूसरा माता पिता हूँ मिल लो बच्चा बच्ची का माता पिता हूँ कि देखो भाई अपना बच्चा एक घर की बात कोई ना कंचन घर घर में बच्चा सब एड़ा ही हो गया
1: सब रे एड़ा ऐसे
0: तो कहते भाई अपना बच्चा ने थोड़ा आपस में मिलन टाइम देवा या ना थोड़ा गेम सिखावा और या के मोबाइल की आदत छुड़ावा
1: छुड़ावा
0: तो शायद इको कई निष्कर्ष
1: आ सके
0: तो आप तो अणी उम्मीद में ही राम राम करा
1: सही बात है
0: क्योंकि टाइम भी हो गयो है और बात तो वो करो जितनी ओछी है
1: अंत ही नहीं है
0: तो बस अपना श्रोता बंधु अबानो तो राम राम करा अगली बार महिला तो आज भी कंचन हुई
1: ठीक है राम राम।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए हम लोग इस एपिसोड में अलग अलग विषय को लेकर बातचीत करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, जैसे कि कल हमने खास सफलता का आधार मेरे संस्कार इस विषय पे बातें की थी, तो अब बात करते हैं कि संस्कार बनाने की विधि क्या है। कई बार हम लोग संस्कारों को परिवर्तन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आज हम लोग बनाने की विधि समझने की कोशिश करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं हमेशा की तरह, और आप सभी के साथ जुड़ेंगे, संस्कार बनाने की विधि आज आपको बताएंगे। तो आप सभी की तरफ से राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: चलिए, मैं चाहूँगा कि संस्कार बनाने की विधि इस विषय पे आज बात करने वाले हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि क्या संस्कार भी बनाए जा सकते हैं?
1: जी, बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक मैं समझता हूँ जो हम सबसे ज़्यादा जिस पर कार्य करते हैं या काम करते हैं वो हमारे संस्कार ही हैं, वो हमारी आदतें ही हैं। और जैसे हमने बात पहले की है कि एक व्यक्ति को हम उसकी आदतों और संस्कारों के आधार से ही,
2: माइक थोड़ा आगे ले लो,
1: एक व्यक्ति को हम उसके संस्कारों और आदतों के आधार से ही जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि एज के साथ अपने आप बनती हैं, और कुछ को हम जो है वो सिखाते हैं। लेकिन आदतें बनाने की विधि क्या है उसको पहले हम समझ लेंगे, या ज़रूरत क्या है उसको हम समझ लेंगे। तो जैसे एक कहेंगे कि नियम है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसको प्राप्त करने की या उसको खोजने की कोशिश करते हैं और उसके तरीके जानते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, जितनी भी साइंस में इन्वेंशंस हुई हैं, साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं, तो उसका तो यही आधार है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे हमने पहले भी बात की कि सफलता माना खुशी, आनंद, शांति, प्यार, आराम। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे व्यक्ति को पानी पीना, प्यास लगती है, लेकिन गर्मी में व्यक्ति सोचते हैं कि हमें क्या है वो ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ, ठंडा पानी के लिए क्या किया, बर्फ़ का आविष्कार हुआ। बर्फ़ पहले कारखानों में बनती थी, फिर मुश्किल लगा कि नहीं कारखाने में जाना पड़ता है, फिर साइंसदान ने कहा नहीं आवश्यकता है घर में फ्रिज बना दिया जाए, तो उन्होंने फ्रिज का आविष्कार कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, फ्रिज खोल के अभी बर्फ़ डालनी पड़नी है, इसके लिए क्या बना दो, कूलर बना दो। तो अभी पानी डालो तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी अपने आप ही ठंडा हो जाता है। तो इसी तरह हमारी आदतें, हमारी आवश्यकता, हमारी ज़रूरत पे निर्भर करती हैं। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारी फिज़िकल बॉडी भी है ना। तो इसी तरह हमारी कई तरह की ज़रूरतें होती हैं, वी हैव फिज़िकल नीड्स, वी हैव मेंटल नीड्स, वी हैव इमोशनल नीड्स, वी हैव स्पिरिचुअल नीड्स, वी हैव सोशल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी फिज़िकल नीड्स क्या हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। फिर हमारी मेंटल नीड्स क्या हैं, हमें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। हमारी सोशल नीड्स क्या हैं, हमें समाज से क्या चाहिए, इज्जत चाहिए। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल नीड्स क्या हैं, हमें अपनी पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ वापस जाना है, ये मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन इनकी ज़रूरत हमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज पर पड़ती है। जैसे रोटी कपड़ा मकान, इसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन सुख शांति की बात तो बाद में आती है ना, पहले हमें रोटी कपड़ा मकान मिले, हमें सिक्योरिटी मिले। जब ये चीज़ें हमारे हमें मिल जाती हैं, फिर व्यक्ति सोचता है कि अभी मुझे समाज में इज्जत भी चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति सोचता है, अरे इज्जत तो मिली लेकिन सच्ची सुख शांति नहीं मिली। फिर वो सोचता है मैं कौन हूँ, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे सच्ची सुख शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि धन मैंने प्राप्त कर लिया, इज्जत भी मुझे समाज से मिल गई, लेकिन वो केवल बाहर से है, लेकिन मुझे अंदर से सदा के लिए कैसे मिले। तो ये सारी ज़रूरतें ही व्यक्ति का आधार बनती है उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को बनाने का।
0: जी राजेश जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, और जैसे जैसे आपने बताया कि आविष्कार जो है ज़रूरत की जननी है, जैसे हमें नीड हो जाती किसी चीज़ की चाहत होती है या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है आविष्कार होता है और वो चीज़ हम बना लेते हैं। शायद आज से 50 या 100 200 साल पहले कोई साबुन से नहाता भी होगा या शैम्पू लगाता होगा, लेकिन समय के साथ साथ हमने देखा कि आज हम बिना साबुन या शैम्पू के कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कुछ लोग थे जो बिना इसके भी काम चलाते थे। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताया वैसी ही ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर भी आवश्यकता के समय पर बदलती है क्या?
1: हाँ, ह्यूमन नेचर भी बदलती है, क्योंकि कई बार ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम
0: मोल्ड नहीं कर सकते या चेंज नहीं हो पाता है।
1: चेंज, हाँ, ऐसी कुछ होते हैं जो अपने आप, जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप बदलती हैं। उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसके हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे जो बड़े हैं उनको पता होता है कि इनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में कभी बोला था कि आप में ये संस्कार आदत होनी चाहिए, लेकिन बचपन में वो समझ नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तब उनको समझ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सुबह उठने की आदत है, अमृत वेला उठने की आदत है, तो अमृत वेले जैसे बड़े लोग हैं उनको पता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक तो जैसे ही आप सुबह उठेंगे वातावरण बहुत अच्छा होता है, आपको फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं तो आपका मन फ्रेश होने की वजह से आप जो पढ़ाई करते हैं, रात को सोने से पहले पढ़ाई करेंगे तो आप 3 घंटे पढ़ाई की, लेकिन सुबह आप 1 घंटा पढ़ाई कर लेंगे तो उतना ही काम हो जाएगा। तो मज़ा आता है, खुशी मिलती है, आपकी शारीरिक सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन वो आपको बचपन में समझ नहीं आती कि हमें सुबह उठना चाहिए। माँ बाप भले हमें कहेंगे कि बेटा उठो उठो, लेकिन हम लोग उठते नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमें उस चीज़ की उस एज पे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे आप बड़े होंगे तब आपको एहसास होता जाएगा, तब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आदतें कई होती हैं कि एक एज के हिसाब से भी वो बदलती हैं। दूसरा ये है कि जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत नहीं भी होती, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई संस्कार कई में होते हो नेचुरली, जैसे आपने कल भी बात की थी कि बाय बर्थ होते हैं। जैसे कई बच्चे हैं बाय बर्थ उनको हम कहेंगे कि क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में जाएंगे और उनको आप बोलेंगे कि आप क्रिकेट खेलो, तो वो आपके बिना बोले ही ग्राउंड में भाग जाएंगे, क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। और कई बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का सम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मुझे याद है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, मेरे पास एक टीचर थे, उन्होंने बीटेक में टॉप किया था, तो वो मैथ्स पढ़ाते थे, उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि गांव में पढ़ते थे, 10th के स्टूडेंट थे, उनके गांव में स्कूल में कोई भी मैथ का टीचर नहीं था, लेकिन वो अपने आप पढ़ना सीख गए क्योंकि उसमें उनका क्या था, इंटरेस्ट था, और ये इंटरेस्ट बाय बर्थ होते हैं। तो जो बच्चे को क्रिकेट खेलने और लेकिन उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, उनको मैथ्स और उनको बोलो कि क्रिकेट खेलो तो उनको बहुत झंझट लगेगा, ग्राउंड में जाना ही मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपने उनमें संस्कार डालना है क्रिकेट खेलने का, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उनके ऊपर। वो एक विधि है, वो एक तरीका है, लेकिन उनको बोलो कि मैथ्स के सम अपने आप सॉल्व तो करेंगे। ऐसे जो बच्चा क्रिकेट खेलता है, आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोत्साहित नहीं करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ेगा कि वो क्रिकेट खेलना सीखे, क्योंकि वो नेचुरली सीख ही जाएगा और बहुत अच्छा खेलेगा। लेकिन उसको बोलो कि, और वो मैथ में अच्छा नहीं है, उसको बोलो तुमको मैथ के सम सॉल्व करने हैं, तो वो बैठ नहीं पाएगा क्योंकि उसको मैथ में स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसके पीछे हमें उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ हमारे में होते हैं। जैसे कई बच्चे आपने देखा होगा सुबह उठ जाते हैं, कई बच्चे वेजिटेरियन होते हैं, और अगर वो किसी नॉन वेजिटेरियन फैमिली में उनका जन्म हो गया, तो मान लीजिए पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे और वो नॉन वेज नहीं खाते थे, तो इस जन्म में अगर वो नॉन वेज फैमिली में बाई चांस चले गए, तो उनका दिल होगा कि मैं नॉन वेज नहीं खाऊं लेकिन मैं वेजिटेरियन भोजन ही करूं। तो ऐसे हमारे कुछ संस्कार होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ नहीं होते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है वो तो हम बिना कहने से हमारे बने बनाए होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। अगर हमने उनके ऊपर काम कहें कि पिछले जन्मों में किया है तो फिर हमारे साथ वो अगले जन्म में भी पूरा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अच्छे संस्कार जो हमारे इस जन्म में नहीं हैं, उनके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम में अगर कुछ बुरे संस्कार बाई चांस आ गए हैं तो हमने अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदलना है। और वो हम मेहनत से बदल सकते हैं, खुद भी बदल सकते हैं और दूसरों के सहयोग से भी बदल सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर हमारी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि समय और परिवेश को देखकर चीज़ें बदलती जाती हैं और हम लोग भी अपने आदतों में परिवर्तन करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि समय के साथ साथ हम लोग एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो हम पढ़ने भी लग जाते हैं और जब टीचर शुरू से ही हमको बताते हैं तो हम लोग फिर कुछ बच्चे होते हैं जो सुनते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एग्ज़ाम के पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो समय के अनुसार हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाता है, हम कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि जैसे कड़े संस्कारों की बात आती है, समटाइम्स ऐसे रिजिड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज हम लोग देखते हैं सरकार की तरफ से एडिक्शन केंद्र बने रहते हैं, मना नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाते हैं। जो लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं तो उनको उसके लिए ये खास प्रायोगिक तौर पे ये सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर भी देखा गया है कि 90% लोग जब तक वहाँ रहते हैं तब तक तो ज़बरदस्ती उनको छोड़ना पड़ता है, और जैसे ही वो आउट ऑफ द बॉक्स माना वापस आ जाते हैं अपने घर में, फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो रीगेन कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम लोग इन चीज़ों पर?
1: देखिए, जो आपने डिडिक्शन सेंटर की बात की है, पहली बात तो ये कि पहले कारण पता लगे कि वो ड्रग्स में गए क्यों हैं। इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति का ड्रग्स में जाने का कारण अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। पहले तो उसके कारण का पता चले कि उसका कारण क्या है, क्यों वो ड्रग्स में गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन वो है जो अपनी एक्सेप्टेंस चाहता है, वो चाहता है कि मेरे को जैसे फ्रेंड्स में स्वीकार किया जाए। जैसे मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसलिए उस ग्रुप में जाते हैं जहां पे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकें, उनके साथ वो मिल सकें। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दुख को भूलने के लिए, अपने गम को भूलने के लिए ड्रग्स में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ड्रग्स जो है बुरी चीज़ नहीं है। उनके मन में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए किसी को नौकरी नहीं मिलती है या किसी ने उसको कुछ बोल दिया है, ताना मार दिया है, दुख हो गया है, किसी को गम पहुंचा है, या कोई किसी का हक मार लेता है, तो व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है, चिंतित हो जाता है। जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई आप इन चीज़ों को लेंगे तो अपने गम को भूल जाएंगे, अपने दुख को भूल जाएंगे, अपनी चिंता को भूल जाएंगे, परेशानी को भूल जाएंगे। तो वो तो जो ड्रग्स हैं उनके दोस्त का काम करती हैं। जब भी जीवन में उनको कोई मुश्किल आती है, जिस मुश्किल का, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि उस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते वो लोग। अगर वो सामना नहीं कर सकते तो क्या करें, उनका मन टूट गया। जैसे कईयों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो दोस्त हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, एक लड़का है, एक लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, उनको इतना सदमा पहुंचता है कि उस सदमे को सहन नहीं कर पाते वो लोग। तो उस सदमे को दूर करने के लिए वो इनका सहारा लेते हैं। तो ये ड्रग्स उनके लिए सहारे का काम करती हैं। तो उनमें पहली बात तो ये है कि उनको हम काउंसिल करें, उनको ये बताएं कि ये ड्रग्स जो आपने जो रास्ता अपनाया या आपने सही नहीं अपनाया था, कि ड्रग्स जो है वो आपकी दुख को दूर नहीं करती, चिंता को दूर नहीं करती, परेशानी को दूर नहीं करती, बल्कि जब तक आप इनको लेते हो तब तक आप भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही उनका असर ख़त्म हो जाएगा आप और दुख और परेशानी और चिंता में चले जाएंगे। तो हमको उनको वो कोई ना कोई टेक्निक सिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई विधि सिखानी पड़ेगी, जिस विधि के कारण, जैसे किसी बच्चे को कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा, देखो तुम कितने महान हो, तुम्हें दूसरों से अपने आप से अपनी रिस्पेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं ही स्वयं को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करो। जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, जिसका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, वो उसको ये लगता है कि मेरा प्यार मुझसे चला गया, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि वो व्यक्ति जो है केवल एक मोटिवेटर का काम करता है, लेकिन प्यार तो अंदर से आता है, खुशी तो अंदर से आती है। तो अगर हम उनको ऐसी विधि सिखा दें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, खुशी मेरे अंदर है, अगर किसी को गम है, दुख है, तो एक ऐसी उसको विधि सिखा दें कि उस विधि से उसमें इतनी शक्ति बढ़ जाए कि उस गम को सहन करने की उसमें शक्ति आ जाए। तो मैं समझता हूँ इन सब का एक, जो हम कहेंगे, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है, राजयोग एक ऐसी विधि है, जिस विधि से हमको ये सारी गुण जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम राजयोग मेडिटेशन भी, हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर है, वो उनको ये काउंसलिंग की बातें तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएंगे, जब तक वो काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक काउंसलिंग सेंटर पे रहते हैं, उनके ऊपर विजिलेशन होती है, ध्यान रखा जाता है कि ड्रग्स उनको मिले नहीं, और उसके बाद उनको वो दवाइयाँ भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सुपरविजन छूट जाती है और वो बाहर जाते हैं और उनको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, वो ड्रग्स का ही सहारा लेते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम उस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनमें एक तो विल पावर नहीं होती, शक्ति नहीं होती, ताकत नहीं होती है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, उनको लगता है कि मैं ड्रग लूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अपने अंदर से वो खुशी, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं ढूंढते, लेकिन बाहर से ड्रग से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उनको मेडिटेशन सिखा दें, ध्यान सिखा दें, योग सिखा दें, रिलैक्सेशन सिखा दें, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जा कर के उस खुशी को, आनंद को, प्यार को ढूंढ सकते हैं, जिससे उनकी विल पावर भी बढ़ेगी और वो इस नशे को छोड़ पाएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी
0: जी
1: कि हमारे जितने भी डिडिक्शन सेंटर हैं, वो राजयोग को एज ए वन ऑफ द काउंसलिंग टूल्स, काउंसलिंग स्किल की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो उनका जो रिलैप्स है डिडिक्शन सेंटर से, जब उनके जो पेशेंट्स हैं निकलते हैं, तो उनका रिलैप्स मैं समझता हूँ बहुत कम हो सकता है, और वो सेल्फ को एम्पावर करके जाएंगे। और ये अगर उनको वहीं पे सिखाया जाए डिडिक्शन सेंटर में, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो अपने रास्ते से भटक गए थे, वो अपने रास्ते पे द्वारा वापस आ सकते हैं।
0: चलिए राजेश जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा। जिस तरह से हम लोग संस्कारों को बनाने की विधि आज इस पर बात किया है, और जैसे कि आखिरी में आपने डी एडिक्शन वाली चीज़ों को भी आपने इसमें इंक्लूड किया, और जिसमें ये बताया कि कारण पता चले तो फिर निवारण भी हो सकता है, कई बार कारण पता नहीं चलता तो निवारण में मुश्किलें आ जातीं हैं, ये भी आपने बताया। और साथ में राजयोग का अगर प्रयोग करते हैं, आत्मचिंतन का अगर प्रयोग करते हैं, तो उनका जो वापस गिव अप करके फिर से वही रास्ते पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और उनको एक दिशा मिल जाएगा, एक एम ऑब्जेक्ट उनके क्लियर होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो फिर वो एक अच्छे नागरिक बनने के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज संस्कार बनाने की विधि बताने के लिए आपको। और चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति आज 26 जुलाई 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन सी रेखाएं देखी बाबा ने? तो एक है मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है, फिर मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। ये भाग्य बाबा देख रहे हैं और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। इतने भाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है कि ऐसा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देखकर मुबारक भी देते हैं। क्या मुबारक देते हैं? वाह बच्चे वाह, ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और कोई समय नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते संगम का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्ति सत्युग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं ऐसे अपने भाग्य को स्मृते हुए खो जाओ, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? जब भाग्य को स्मृति में लाते हैं तो दिल से क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य वाह। स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, यहाँ रोज जाते हैं आपको क्या मिला है? तो बाबा कहते हैं आप लोग क्या कहते थे, पाना था वह पा लिया, काम क्या बाकी रहा। फलक से कहते हो क्या प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में, और मिला कैसे? बाप को जाना माना अपना बनाया और भाग्य मिल गया। शिव बाबा को जाना माना और अपना बनाया और भाग्य मिल गया। भाग्यवान आत्मा का चेहरा कैसा होगा? सदा हर्षित रहेगा, उनकी दृष्टि वृत्ति और प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। और संतुष्टता का आधार क्या है? सर्व प्राप्तियां। इसीलिए बाबा कहते आप कहते हो पा लिया जो पाना था। बाबा कहते हैं सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया, आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। फिर बाप दादा क्या चाहते हैं बच्चों से? बाबा से पूछते हैं ना कि बाप दादा आप क्या चाहते हो? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। यही बाबा की चाहना है। क्यों? क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। इन सभी कर्मेंद्रिय के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो, कर्मेंद्रिय के और मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो, ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का निश्चय और नशा रहे। बाप दादा ने इशारा तो दे दिया है, कई बार दिया है। कौन सा इशारा दिया है? कुछ भी आपदा अचानक आनी है
और उसके लिए अभ्यास कौन सा है? सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं जब परीक्षा आएगी उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, पुरुषार्थ का समय अभी मिला है। पुरुषार्थ मतलब अभ्यास, अभ्यास का समय अभी मिला है और जितना अभ्यास करते जाएंगे तो उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। और पुरुषार्थ कितना सहज बताया बाबा ने फुल स्टॉप का, मैं भी बिंदी और लगाना भी बिंदी है, बस सिर्फ अटेंशन देना है। फिर बाबा विशेष आज बच्चों को सौगात भी देते हैं। कौन सी सौगात देते हैं? बच्चे मैं आपके सदा साथ हूं। बाबा की ये सौगात बाबा कहते हैं यूज करो कि मैं सदा आपके साथ हूं। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया कि हुजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही है, इसलिए विजयी बनना। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। ये बाबा की चाहना है, स्वराज्य अधिकारी बनना और उस सीट पर सदा सेट रहे। फिर बाबा ने नए बच्चे जो आए थे उनको खड़ा किया और कहा बस बाबा की याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा कहे सेवा करने से पुण्य अपना जमा करते हो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। फिर बाबा ने विशेष अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो बाबा कहते बाप दादा अमृत वेले सब तरफ चक्कर लगाते हैं। 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं। बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे, इसलिए अमृत वेले का महत्व समझो और अटेंशन देना है। बाबा ने कहा विशेष बाबा ने देखा चक्कर लगाते हुए कि जो बाबा ने इशारा दिया है संस्कार जीत बनने का, उस पर सभी का अटेंशन है। लेकिन साथ में बाबा उस संस्कार जीत बनने की विधि भी बताते हैं कि रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अमृत वेले उस संस्कार जीत बनने का स्वमान लो और फिर प्रतिदिन एक एक संस्कार को उठाओ, उसके ऊपर अटेंशन दो। बाबा कहते अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा? फिर बाबा ने मुरली पर अटेंशन खिंचवाया और कहा मुरली कभी मिस नहीं करना। मुरली जिस दिन मिस होती है तो बाप दादा के याद प्यार को भी मिस कर देते हैं और बाप दादा के वरदान को भी मिस कर देते हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाप दादा ने आज जो मुरली चलाई है उसका टाइटल है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। बाबा हरेक बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा को खुशी हो रही है सब बच्चों को देख करके, और उसमें भी सब बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं।
ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। बाबा का ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य दाता है। भाग्य दाता कहो, भाग्य विधाता कहो, वो हमारे हम बच्चों को भाग्य देने वाला है। हर एक के मस्तक में अब कौन सी भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं? हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। बाबा कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है, मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है, हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है, और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। तो इसीलिए बाबा भाग्य की रेखाएं देख करके खुश हो रहे हैं। कौन सी भाग्य की रेखा देखी? मस्तक में सबसे पहले चमकता हुआ सितारा, ये भाग्य है। मुख में मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा, और हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा, और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इतनी जहां भाग्य की रेखा चमक रही हो तो बाबा कहे ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। बाबा कहते इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है, और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को बनाया है। यह भाग्य स्वयं किसने बनाया? भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। इतना ऊंचा भाग्य

देख करके भगवान भी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं और क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। संगम युग का ये सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। ऐसे परमात्मा सुख, परमात्मा प्राप्ति और कोई युग में नहीं है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ। तावक है इतना ऊंचा भाग्य जिसका हो तो वह अपने भाग्य में खो जाओ। बाबा कहते कुछ भी होता रहे, बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है, वहां मेरा भाग्य। दिल से यही गीत निकलता, वहां मेरा भाग्य, क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है। तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो, बाबा पूछते हैं, जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो, बाबा पूछते, सदा नशा रहता है? दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो, जो पाना था वह पा लिया। पा लिया है, पूछते बाबा, हाथ उठाओ, पा लिया, अच्छा पा लिया है। बाबा कहते फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। फलक से कहो, ऐसे नशे से कहो, है ना फकुर? और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया और भाग्य मिल गया। भाग्य विधाता को अपना बना लिया। पहले तो जाना, माना यानी स्वीकार किया और अपना बना दिया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा कैसा होगा? सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। बाबा कहते उनकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति कैसी होगी? संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम ही नहीं है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाले कौन है? बाबा देखते हैं देश विदेश के सभी बच्चों को कितने दूर से यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। फिर बाबा पूछते सबसे दूर से आने वाले कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना, और बाप कहाँ से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन?
यह है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा, बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा, यही प्यार है। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया है। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहां शांति मिलेगी, कहां सुख मिलेगा? और आपकी जीवन ही क्या हो गई है, सुख शांति संपन्न हो गई है। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाबा आज अपनी चाहना बताते हैं। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाबा बताते हैं क्या बाबा की चाहना है। तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। ये बाबा की चाहना है कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरी कर्मेंद्रियां बोलते हैं, मेरा मन बुद्धि संस्कार कहते हैं। तो बाबा कह, सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्यधारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित है। कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, बाबा के जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित है। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, बाबा कहते हैं, हे पूर्वज दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है। बाबा ने तो पहले इशारा कंटिन्यू देते जा रहे हैं कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है, इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, अंतिम समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें। हम बाबा कहते लगाओ फुल स्टॉप, और अगर हो जाए आश्चर्य की मात्रा। इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला है, ये नहीं कि अंतिम समय लगाओ फुल स्टॉप और आश्चर्य की मात्रा लग जाए। पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास बढ़ाओ। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो, बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है, मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। आज बाबा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। क्या सौगात देते? बच्चे मैं आपके सदा साथ हूं। अब इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? बच्चे मैं आपके सदा साथ हूं। बाबा कहा
और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हुजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है लेकिन हुजूर हाजिर है, लेकिन बच्चों के आगे हुजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजयी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता है उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहां भगवान है वहां विजय है ही है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में। वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं, ट्रेन प्लेन से तो बाबा कहे शरीर द्वारा पहुंचे हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है, दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपना स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। बाबा यही चाहते हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं, वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बाबा कहते खड़े हो जाओ, बहुत है। अच्छा, जैसे पहली बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना, पूछते बाबा जाना है। बाबा का वरदान है, जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी, और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वह चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी, और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है, बाबा के लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। पर बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं, ट्रायल करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसीलिए अमृत वेले का महत्व देते तो है, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उसे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी है, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो भी बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए विधि बताते हैं बाबा। संस्कार जीत बनने के लिए, करने के लिए क्या करना है, रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अर्थात जैसे मान लो क्रोध के संस्कार के ऊपर विजय पाना है तो अटेंशन क्या देना है, शांति के ऊपर।